मीडियम वेव 374.5 मीटर यानी 801 किलोहर्ट्ज पर और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 6वीं तिथि, तदनुसार 27 मई सन 2026। इस वक्त सुबह के 5:58 हुए हैं। आरंभ होती है आज की पहली सभा। इस सभा में आप सभी सुधी श्रोताओं का स्वागत अभिनंदन।

ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। सुबह के 6 बजने को हैं। अब से कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ 17वें विदेश मंत्रियों के द्विपक्षीय संवाद बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र, पश्चिम एशिया की स्थिति, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। भारत और रोमानिया ने कल नई दिल्ली में रक्षा सहयोग पर संयुक्त समिति की दूसरी बैठक की। इसमें दोनों देशों के बीच जारी रक्षा सहयोग की समीक्षा की गई और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के बारे में बातचीत की गई। दोनों पक्षों ने साइबर सुरक्षा, सैन्य चिकित्सा सहयोग, संयुक्त प्रशिक्षण, क्षमता विकास और रक्षा औद्योगिक सहयोग पर आपसी रक्षा सहयोग योजना को अंतिम रूप दिया। भारत ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में चीन और पाकिस्तान के अवांछित संदर्भों को सिरे से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अविभाज्य अंग हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक के लिए अगले 6 महीने में ड्रोन रोधी प्रणाली स्थापित करेगी। राजस्थान में बीकानेर की सांचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने कल ये घोषणा की।
1: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
0: सरकार ने प्याज का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। ये वृद्धि राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें कल से लागू हो गई। अमेरिका के राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया है। अमेरिका की वर्ष 2028 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त होने से पहले अमरीकियों को चंद्रमा पर उतारने की योजना है। चीन की भी वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर मानव उतारने की योजना है। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन आधारित 10 कोच वाली DEMU रेलगाड़ी के संचालन को मंजूरी दे दी है। ये रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। रेल डीजल या बिजली की जगह हाइड्रोजन फ्यूल सेल के जरिए ऊर्जा उत्पन्न करेगी। इसकी कुल क्षमता 1200 किलोवाट होगी। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकीय बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव होंगे। पश्चिम बंगाल में एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों को सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में

0: रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर मांडविया ने नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 374.5 मीटर यानी 801 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। सुबह के 6:05 हुए हैं। विचार मंथन। सरदार वल्लभ भाई पटेल के शब्दानुसार, कठिन समय में कायर बहाना ढूंढते हैं, बहादुर व्यक्ति रास्ता खोजते हैं। प्रस्तुत है वंदना। अपने देश के प्रति भक्ति भाव हमारे देश को विकसित करने में सहयोग करता है। एक एक भाव यानी देशभक्ति की अलख उसे विश्व में अग्रणीय रहने में सफलता दिलाती है। आइए वंदना करें अपने देश की, सुख चैन के लिए वंदना करें अपने देश की।

हम अपना सारा ध्यान, प्रेम, लगन उस सर्वशक्तिमान के चरणों में लगा सच्ची आत्मिक शांति पा सकते हैं, जीवन सफल कर सकते हैं, भटकाव से दूर रह सकते हैं।

निर्गुण राख लिया संतन का सदका, सदगुर ढाक लिया मोहे पापी पर्दा। ढाकन हारे प्रभु हमारे जी प्राण सुख दाते, अविनाशी अभिगत स्वामी पूरन पुरख पिधाते।

परमात्मा की भक्ति में लीन भक्त सदैव अनुरागी मन से प्रीत लगा बैठता है। तेरा जन राम नाम रंग जागा, आलस छीज गया सब तंते प्रीतम स्यो मन लागा।

0: वंदना में आज आपने समूह स्वर में देशभक्ति गीत सुना, साथ ही भक्ति गीत में आवाज थी किशोरी अमोनकर, अंजलि जैन और श्रुति सडोलिकर की। अब भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना यहीं संपन्न हुआ। मीडियम वेव 374.5 मीटर यानी 801 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। सुनिए आज का चिंतन।
1: हमारी संस्कृति में माता पिता का दर्जा बहुत ऊंचा है। इस सच्चाई को वर्तमान सामाजिक परिवेश में समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि दुनिया जैसे जैसे तरक्की करती जा रही है, मानवीय रिश्तों का मूल्य उतना ही कम होता जा रहा है। शिक्षा का उद्देश्य अब केवल पैसा कमाना ही रह गया है, व्यक्ति के चरित्र निर्माण की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस विषय में इस्लाम का दृष्टिकोण क्या है। कुरान शरीफ की एक आयत का अनुवाद इस प्रकार है, ये अल्लाह का हुक्म है कि उसके सिवा किसी की इबादत ना करो और अपने माता पिता के साथ भलाई करते रहो। यदि उनमें से एक या दोनों तुम्हारे सामने बुढ़ापे को पहुंच जाएं, तो उनसे उफ तक ना कहना और ना उन्हें झड़कना, उनसे अदब के साथ बात करना। इसके अलावा एक आयत में ये भी कहा गया है कि और हमने इंसान को जिसे उसकी माँ तकलीफ पर तकलीफ सहकर पेट में उठाए रखती है, फिर उसको दूध पिलाती है और दो बरस में उसका दूध छुड़ाना होता है, उसके माता पिता के बारे में आदेश दिया है कि मेरा भी शुक्रिया अदा कर और अपने माता पिता का भी, क्योंकि तुमको मेरी ही तरफ लौट कर आना है। इसी प्रकार किसी व्यक्ति ने पैगंबर मोहम्मद साहब से पूछा, मुझ पर सबसे पहला अधिकार किसका है? आपने फरमाया, तेरी माता का। उस व्यक्ति ने दो बार यही प्रश्न किया और आपने दोनों बार यही उत्तर दिया। जब उस व्यक्ति ने चौथी बार यही प्रश्न किया तो आपने कहा, तेरे पिता का हक तेरी माता के बाद है। माता पिता के साथ अच्छे व्यवहार पर कुरान शरीफ में कई जगह आदेश अवतरित हुए हैं। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने भी अपने वक्तव्यों में बार बार माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार करने की हिदायत दी है। आपकी एक बहुत मशहूर हदीस है, जन्नत माँ के कदमों के नीचे है और पिता जन्नत का दरवाजा है। एक व्यक्ति ने पैगंबर साहब से पूछा, माता पिता का औलाद पर क्या हक है? तो आपने फरमाया, वह दोनों तेरा स्वर्ग और नरक हैं। यदि तूने उन्हें खुश रखा तो तेरे लिए स्वर्ग हैं, अन्यथा नरक ही तेरा ठिकाना है। किताबों में लिखा है, एक व्यक्ति मृत्यु शैया पर पड़ा हुआ था, उसकी जान नहीं निकल रही थी। हजरत मोहम्मद ने उस व्यक्ति की माता को बुलाकर पूछा, उसका व्यवहार तुम्हारे साथ कैसा था? माता ने कहा, बहुत बुरा, मेरे बेटे ने मुझे बहुत तकलीफ पहुंचाई है। मोहम्मद साहब ने माँ से उनके बेटे की गलती को माफ करने की सिफारिश की। आपके कहने पर माता ने अपने बेटे को माफ कर दिया। माँ के माफ करते ही बेटे की जान निकल गई। माँ की दुआ पुत्र के लिए वरदान है, परंतु यदि वो नाराज हो जाए तो उसका जीवन सफल नहीं हो सकता। दुनिया के सभी धर्मों और सभ्यताओं में माता पिता को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। दुनिया में जितने अवतार और पैगंबर हुए हैं या जितने बहादुर या नेक व्यक्ति हुए हैं, वे सभी माता पिता को सम्मान देने वाले महापुरुष कहलाते हैं। भगवान श्री राम ने तो अपने पिता के आदेश पर 14 वर्ष का वनवास सहर्ष स्वीकार किया और अपनी माता कौशल्या जी की तरह जीवन भर माता कैकेयी का आदर सम्मान करते रहे। आपका जीवन इतना मर्यादित था कि आज भी लोग उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहकर अपना स्नेह और आदर सम्मान प्रकट करते हैं। पांडवों का मातृ प्रेम भी जग जाहिर है। कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों ना हो, परंतु वो अपने माता पिता का सदैव ऋणी रहता है। विशेषकर माता के त्याग और बलिदान को कभी अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। वेद व्यास जी ने 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराणों की रचना की है। वृहद धर्म पुराण के पहले भाग के 2 अध्याय में उन्होंने लिखा है कि बेटे के लिए

0: माँ की जगह पिता से बढ़कर है, क्योंकि वह उसे अपने पेट में रख चुकी है और माँ ने ही उसका पालन पोषण किया है। इसलिए तीनों लोक में माँ के जैसा कोई गुरु नहीं होता। परंतु आज की भौतिकवादी संस्कृति में माता पिता का स्थान कहाँ है, ये एक विचारणीय प्रश्न है जिस पर विचार करना अति आवश्यक है।
1: ये था आज का चिंतन। आलेख डॉक्टर महमूद शेख का, वाचक दिनेश नामदेव। ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। सुबह के 6:35 हुए हैं। सुनिए श्री रामचरित मानस का संगीतमय पाठ। गायक कलाकार हैं भूपेंद्र सिंह।

प्रयाग क्षेत्र को तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। गंगा, यमुना तथा सरस्वती के संगम पर स्थित इस पुण्य भूमि पर पहुंचकर सबके मनोरथ सफल हो जाते हैं। ऐसी पावन भूमि के दर्शन कर श्री रामचंद्र ने परम सुख का अनुभव किया। उन्होंने सीता, लक्ष्मण तथा सखा निषादराज को तीर्थराज प्रयाग की महिमा कह सुनाई। सभी ने त्रिवेणी के दर्शन किए, वहां स्नान कर विधि पूर्वक शिव तथा तीर्थ देवताओं की पूजा की और फिर भरद्वाज मुनि के आश्रम पहुंचे। श्री राम ने भरद्वाज मुनि को दंडवत प्रणाम किया तो मुनिराज ने उन्हें हृदय से लगा लिया। आनंदातिरेक में आशीर्वाद देते हुए उन्हें यह प्रतीति हुई कि देवी सीता और लक्ष्मण सहित श्री राम के दर्शन कराकर विधाता ने उनके संपूर्ण पुण्यों का फल लाकर आंखों के सामने रख दिया है। प्रेम सहित पूजन करके भरद्वाज जी ने उन्हें कंद मूल फल खिलाए और स्नेह सनिवाणी में अपने उद्गार प्रकट किए। आपके दर्शन कर आज मेरी तपस्या, जप योग, तीर्थ सेवन और त्याग, वैराग्य सभी सफल हो गए। प्रभु दर्शन के अतिरिक्त लाभ और सुख की कोई अन्य सीमा नहीं है। जब तक मनुष्य मन, वचन और कर्म से छल कपट त्याग कर आपका दास नहीं हो जाता, तब तक कोटि उपाय करके भी उसे स्वप्न में भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती।

0: श्रोता सुन रहे थे श्री रामचरित मानस का संगीतमय पाठ। गायक कलाकार थे भूपेंद्र सिंह। आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। 6:45 हुए हैं। समय है कृषि सामयिकी में का। आज जानकारी है खरीफ की तैयारी विषय पर।
1: किसान भाई बहनों, अब समय आ गया है कि हम खरीफ की पहले से तैयारी करके रखें। तो पहला काम होगा, जिन खेतों का ढाल बहुत अधिक है या समतल नहीं है, तो उन खेतों को रबी की फसल के कटाई के बाद समतल करने का ये समय अच्छा है। समतलीकरण के साथ साथ आप अपने खेतों का सही तरीके से मेड़बंदी जरूर कराएं, ताकि खेत का पानी खेत में रहे और आपकी खेत की मिट्टी और पानी इसका क्षरण ना हो। जिन खेतों में पिछले 3 सालों से गहरी जुताई नहीं हुई है, उन खेतों में गर्मी की गहरी जुताई अवश्य कराएं, यानी कि ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई 3 साल में एक बार जरूरी होती है। गहरी जुताई के लिए किसान भाइयों बहनों, 55 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर और रिवर्सिबल प्लाउ का उपयोग करें। जिन खेतों में पिछले 3 साल में यदि एक बार आपने गर्मियों की गहरी जुताई कर ली है, तो उन खेतों को रबी फसल की कटाई के बाद साधारण जुताई कल्टीवेटर या हैरो से कर लें। जल संरचनाओं का विकास करें, डबरी या छोटी छोटी तलैया इनको विकसित करें, साथ साथ इसमें मछली पालन के लिए भी तैयारी कर सकते हैं, सिंघाड़े का उत्पादन कर सकते हैं। इससे जो आसपास के खेत होते हैं उनमें भूजल स्तर का सुधार होता है। खेतों के लिए बूंद बूंद और फव्वारा पद्धति, यानी कि ड्रिप सिंचाई जिसे हम बोलते हैं, और स्प्रिंकलर सिंचाई जिसे बोलते हैं, इसको आप बढ़ावा दें। इससे पानी की बहुत बचत होती है। ओवरहेड मुर्गी पालन की इकाई का निर्माण भी आप कर सकते हैं, जिससे कम जगह पे अधिक व्यावसायिक उत्पादन होगा और आपको लाभ बढ़ेगा। जल ग्रहण इकाई और रूफ वाटर हार्वेस्टिंग, ये मिला के एक संरचना बनाई जाती है, जिसमें आपके प्रक्षेत्र में बने फार्म हाउस या जो घर होते हैं उसके ऊपर भी जल का पानी इकट्ठा होता है या आसपास इकट्ठा होता है, वो सीधे भूमि में पहुंचाया जाता है। बुआई के लिए जो यंत्र होते हैं इनको दिखाकर सुचारू रूप से तैयार कर लें। मेड़ नाली पद्धति, VBF पद्धति और उठी हुई क्यारी पद्धति, जिसे कि हम रेज्ड बेड पद्धति कहते हैं, ये करिए, तो इससे जल इकट्ठा होने पर आपके पौधों को नुकसान नहीं होगा। मेड़ नाली पद्धति या VBF मशीन नहीं है, वो अपनी साधारण सीड ड्रिल मशीन को अटैचमेंट लगवा कर मेड़ नाली एवं VBF पद्धति का रूपांतरित करके काम चला सकते हैं। इस समय एक और महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं आप, आपके खेत की मृदा या मिट्टी का स्वरीकरण। ये एक ऐसी तकनीक है जो मिट्टी को कीटों, बीमारियों और खरपतवारों से बचाती है और सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करके मिट्टी को उपजाऊ बनाती है। इसके उपयोग के लिए प्लास्टिक शीट का प्रयोग किया जाता है, जिससे मिट्टी गर्म होती है और सभी प्रकार के कीटाणु, अंडाणु, खरपतवारों के बीज और रोगजनक नष्ट हो जाते हैं। ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करें, यह एक जैव नियंत्रक एजेंट है। इसका प्रयोग पौधों में फफूंद जनित रोगों को रोकने और मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए मदद करता है। इसका उपयोग आप बीजोपचार, पौधों के उपचार, नर्सरी उपचार, फसलों में छिड़काव और मृदा या मिट्टी के उपचार के लिए भी कर सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण आदान जो हमारा होता है वो होता है बीज या किस्म। आप उन्नत और नवीनतम किस्मों का चुनाव करें। नवीन किस्में जो होती हैं वो अधिक उत्पादन देने के साथ साथ कीटों और रोगों के प्रति ज्यादा सहनशील या प्रतिरोधी होती हैं। साथ ही जैव संवर्धित किस्में पोषण की दृष्टि से उन्नत होती हैं। जो भी हमारे किसान बहन भाई हैं घर का बीज बोने के लिए उपयोग करते हैं, वो बीज की छनाई करके उसे साफ कर लें। छोटी बड़ी छतरियों का उपयोग करके टूटे दाने या छोटे दाने या अन्य बीजों को अलग कर लें। चिकने और गोल दाने वाले बीज जैसे कि सोयाबीन, इनकी सफाई के लिए आप स्पाइरल सेपरेटर का भी उपयोग

0: कर सकते हैं। जिन बीजों को खरीफ मौसम में बोना है उनकी अंकुरण क्षमता की जांच के लिए सबसे सरल तकनीक थाली तकनीक है। इसके लिए एक मध्यम आकार की थाली या प्लेट ले लें, उसमें 1.5 से 2 किलो बारीक मिट्टी रखें, यदि उपलब्ध हो तो आधा किलो गोबर की खाद भी उसमें मिला लें और इसमें परीक्षण किए जाने वाले बीज से 100 दाने निकालकर 1 से 1.5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखकर उंगलियों से बीज को मिट्टी में दबा दें। 5 से 10 दिन के अंदर अंकुरण योग्य बीज अंकुरित हो जाएगा और अंकुरित बीजों की गिनती करके बीज का अंकुरण प्रतिशत आप निकाल सकते हैं। परंपरागत खेती के स्थान पर खेती में विविधता लाएं ताकि वहां पर फलों, फूलों और सब्जियों को भी खेती में उपयोग करें। समन्वित खेती पद्धति अपनाकर कम लागत में अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं।
1: कृषि सामयिकी में आज जानकारी थी खरीफ की तैयारी विषय पर। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। श्रोताओं, हम आपको बता दें, आप हमारे कार्यक्रम न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम संबंधी जानकारी के लिए सबसे पहले हम आपको बता दें आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। विश्व दर्पण सुबह 10:10 पर, स्पॉटलाइट रात 9:15 पर और 9:30 पर होगा कार्यक्रम चर्चा का विषय।

आकाशवाणी भोपाल से आज रात 8 बजे सुर्खियों में आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम सुबह 10:58 से। स्थानीय कार्यक्रमों में रात 10 बजे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में डॉक्टर प्रभा अत्रे का गाया राग मधुबंती में ख्याल सुनिएगा। कृषि जगत में शाम 7:21 पर सुनिएगा डॉक्टर विकास गुप्ता से ली गई भेंटवार्ता, गेहूं की कटाई की आधुनिक तकनीक और भंडारण। प्रसारण समय याद रखिए शाम 7:21 और कार्यक्रम होगा कृषि जगत। सुगम संगीत में आनंद लीजिएगा प्रकाश तिवारी के गाए गीत और भजन का, प्रसारण शाम 6:45 पर।

नेपाल सिंह राजपूत के गाए बुंदेली लोकगीत शाम 6:30 पर लोक संगीत के कार्यक्रम में। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग शाम 6:00।

वंदे मातरम गौरवगान की डेढ़ सदी सुनिएगा सुबह 10:05 पर। लोक रसधार में रामगोपाल दीक्षित और राजकुमार चौधरी के गाए बुंदेली लोकगीतों का आनंद लीजिएगा। प्रसारण समय सुबह 9:00।

गुड मॉर्निंग जबलपुर, ये नियमित कार्यक्रम समय सुबह 7:20। आज इसमें है चर्चा पंडित नेहरू पुण्यतिथि पर, कलामी शायर जिसमें है रिजवान हकीमी अंसारी के कलाम और संगीतिका, फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सारंगा सुबह 10:20 पर और मन भावन रात 10:30 पर। श्रोता सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। मीडियम वेव 374.5

105 मीटर यानी 800 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को है। अब से कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे समाचार जिन्हें हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।

0: केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्र, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ. शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले से जनसांख्यिकी परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की थी।
1: मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूँ। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ विदेश मंत्रियों की 17वें द्विपक्षीय संवाद बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र, पश्चिम एशिया की स्थिति, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा भी की। भारत और रोमानिया ने कल नई दिल्ली में रक्षा सहयोग पर संयुक्त समिति की दूसरी बैठक की। इसमें दोनों देशों के बीच जारी रक्षा सहयोग की समीक्षा की गई और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने के बारे में बातचीत की गई। दोनों पक्षों ने साइबर सुरक्षा, सैन्य चिकित्सा सहयोग, संयुक्त प्रशिक्षण, क्षमता विकास और रक्षा औद्योगिक सहयोग पर आपसी रक्षा सहयोग योजना को अंतिम रूप दिया। भारत ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में चीन और पाकिस्तान के अवांछित संदर्भों को सिरे से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अविभाज्य अंग हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। CBSE ने कहा कि वास्तविक मूल्यांकन कार्य के लिए उपयोग किए जा रहे पोर्टल पर कोई सुरक्षा उल्लंघन सामने नहीं आया है। बोर्ड ने कहा कि ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली शिकायतों के निवारण के साथ साथ मूल्यांकन में पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए लागू की गई है। बोर्ड ने संबंधित पक्षों को आश्वस्त किया कि मूल्यांकन प्लेटफॉर्म की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े और ठोस उपाय किए गए हैं। अमेरिका के राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया है। अमेरिका की वर्ष 2028 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त होने से पहले अमरीकियों को चंद्रमा पर उतारने की योजना है। चीन की भी वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर मानव उतारने की योजना है। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन आधारित 10 कोच वाली DEMU रेलगाड़ी के संचालन को अपनी मंजूरी दे दी है। ये रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। रेल डीजल या बिजली की जगह हाइड्रोजन फ्यूल सेल के जरिए ऊर्जा उत्पन्न करेगी और इसकी कुल क्षमता 1200 किलोवाट होगी। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कल पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से मोहाली के न्यू चंडीगढ़ में शुरू होगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by VC Pramod.

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले ऑस्ट्रेलिया और जापान के विदेश मंत्री। ओलंपिक खेलों की सूची में योगासन को शामिल करने के प्रयास होंगे, कहा केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने। भोपाल में आज होगा जल संरक्षण पर केंद्रित सदा नीरा समागम का शुभारंभ। और आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला। अब समाचार विस्तार से। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी पोंग ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि इस दौरान रक्षा, व्यापार, प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती सुनिश्चित करने जैसे क्षेत्रों में भारत ऑस्ट्रेलिया की व्यापक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया एक स्वतंत्र, खुले, सुरक्षित और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे। प्रधानमंत्री से जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने भी मुलाकात की। उन्होंने हिंद प्रशांत क्षेत्र और उससे परे शांति, स्थिरता तथा समृद्धि को बढ़ावा देने में भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की महत्वपूर्ण भूमिका की पुष्टि की। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के प्रयास किए जाएंगे। डॉ. मांडविया ने कल नई दिल्ली में कहा है कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। ये देश की पारंपरिक स्वास्थ्य पद्धति को वैश्विक खेल के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि योगासन देश की सॉफ्ट पावर को दर्शाता है और विश्व भर में शारीरिक फिटनेस, मानसिक स्वास्थ्य और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देने का एक माध्यम बनकर उभरा है।
1: योग ये हमारे देश की संस्कृति भी है, हमारी जीवन शैली भी है। आज से सदियों पहले योग भारत से निकल के सारे दुनिया में गया है। फिर से योगासना की फर्स्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप करके उसको पुनः भारत में एक बड़ा कार्यक्रम के रूप में आयोजित करेंगे। वर्ल्ड चैंपियनशिप है, अभी प्रारंभ भारत से कर रहे हैं और सारी दुनिया के अलग अलग कंट्री में उसको भविष्य में करा जाएगा।
0: प्रदेश में जनगणना 2027 के तहत मकान सूचीकरण का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। 25 मई तक 2,39,00,000 से ज्यादा मकानों की गणना पूरी हो चुकी है। 1 मई से शुरू हुआ ये काम 30 मई तक पूरा कर लिया जाएगा। नोडल अधिकारी शिल्पा गुप्ता ने बताया कि इस बार पूरी प्रक्रिया डिजिटल है। प्रगणक घर घर जाकर HLO ऐप के जरिए जानकारी दर्ज कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान जन आंदोलन बन गया है। जनता की सहभागिता से जल संरक्षण में मध्य प्रदेश देश में अग्रणी राज्य बन गया है। डॉ. यादव कल उज्जैन में शिप्रा तट पर शिप्रा तीर्थ परिक्रमा के समापन समारोह में मां शिप्रा को 351 फीट की चुनरी अर्पित करने के उपरांत जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस कार्यक्रम में भारतीय नौसेना के बैंड ने रामघाट पर मनमोहक प्रस्तुति दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अन्य अतिथियों के साथ अंतर्जली यात्रा, श्री शिप्रा महिमा और ये है मोहन की सरकार पुस्तकों का विमोचन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आगामी सिंहस्थ के दौरान शिप्रा नदी के घाट पर श्रद्धालुओं को स्वच्छ जल की उपलब्धता आयोजन को पावन बनाएगी। श्रद्धालुओं की आकांक्षा को पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने आवश्यक व्यवस्थाएं की हैं।
2: जल संरक्षण के काम कर रहे हैं और जल संरक्षण के काम हम नदी, तालाब, कुएं, बावड़ी, पोखर, नदियों के उद्गम हर एक जगह जल की महत्ता को स्थापित करते हुए जन सहयोग के माध्यम से शासन भी 10,000 करोड़ की राशि का अमृत सरोवर से लेके सही कई प्रकार के जल रचनाओं पे काम कर रहा है, तालाबों पे काम कर रहा है और हमारा प्रदेश तो अब और नदी जोड़ो अभियान की तरफ आगे बढ़ रहा है। नदी में हमारे लिए जीवन, जल में ही जीवन है। ऐसे में नदी जोड़ो अभियान विश्व का सबसे पहला अगर कहीं हो रहा है तो मध्य प्रदेश में हो रहा है।
0: पर्यावरण अनुकूल जीवन

0: शैली जलवायु अनुकूल शहरी विकास पर केन्द्रित राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन आगामी 30 और 31 मई को भोपाल के पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संस्थान एप्को परिसर में किया जाएगा। सम्मेलन में जैव विविधता संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और शहरी विकास के संबंध में विषय विशेषज्ञ अपने विचार प्रकट करेंगे। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज भारत भवन में जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत राष्ट्रीय संगोष्ठी और सांस्कृतिक उत्सव सदानीरा समागम का शुभारंभ करेंगे। वीर भारत न्यास द्वारा जल संरक्षण, भारतीय संस्कृति, पंच महाभूतों तथा सतत विकास के विषयों पर केन्द्रित ये गरिमामय आयोजन 2 जून तक चलेगा, जिसमें देश विदेश के विद्वान, पर्यावरण विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, नीति निर्माता और कलाकार सहभागिता करेंगे। इस 7 दिवसीय समागम में भारतीय दर्शन के पंच महाभूत जल, पृथ्वी, वायु, आकाश और अग्नि पर आधारित विभिन्न वैचारिक सत्र आयोजित किए जाएंगे। महिला और बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया की अध्यक्षता में कल मध्य प्रदेश महिला वित्त और विकास निगम की बैठक हुई। बैठक में महिला रोजगार, कौशल विकास और संस्थागत सुधारों को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में मंत्री सुश्री भूरिया ने निर्देश दिए कि महिला वित्त एवं विकास निगम को प्रदेश की महिला वर्कफोर्स तैयार करने वाली प्रमुख संस्था के रूप में विकसित किया जाए। इसके लिए नियम एक व्यापक ऑनलाइन पोर्टल तैयार करेगा, जिसमें महिलाओं की कौशल दक्षता पर परीक्षण कर उन्हें कुशल, अर्धकुशल और अकुशल श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा। प्रधान मुख्य वन संरक्षक और वन बल प्रमुख शुभ रंजन सेन ने भोपाल स्थित वन भवन में अत्याधुनिक IT ट्रेनिंग हॉल का लोकार्पण किया। IT ट्रेनिंग हॉल के माध्यम से विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को डिजिटल तकनीकों, ई गवर्नेंस प्रणाली, आधुनिक सॉफ्टवेयर आधारित कार्य प्रणालियों का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इससे विभागीय कार्यों में दक्षता, पारदर्शिता और त्वरित निर्णय प्रक्रिया को मजबूती मिलेगी। धार जिले में विकसित किए जा रहे PM मित्र पार्क के अंतर्गत प्रभावित परिवारों के पुनर्वास का कार्य संवेदनशीलता और मानवीय दृष्टिकोण के साथ निरंतर प्रगति पर है। परियोजना से प्रभावित कुल 89 परिवारों में से अब तक 48 परिवारों को 2 चरणों में 24-24 परिवारों के समूह के रूप में सफलतापूर्वक नवीन आवासीय कॉलोनी में स्थानांतरित किया जा चुका है, जबकि शेष 41 परिवारों का पुनर्वास आगामी 3 माह में पूरा किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। IPL प्रतियोगिता में दूसरा क्वालिफायर मुकाबला आज सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच शाम 7:30 बजे न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। इसके पूर्व कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को पहले क्वालिफायर मुकाबले में 92 रन से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा पुलिस अधीक्षक अगम जैन ने कल पुलिस लाइन का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। झाबुआ में संभागीय चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला ने ग्रामीण क्षेत्र में औचक निरीक्षण कर 29 नमूने जांच के लिए लिए हैं। आगरमालवा में कल आयोजित हुई जिला शांति समिति की बैठक में कलेक्टर प्रीति यादव ने ईद और मुहर्रम पर्व शांति सौहार्द से मनाने की अपील की है। भोपाल में संभावित हवाई हमले और बड़े आपदा हालात से निपटने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय आवास परिसर में मॉक ड्रिल की गई। शिवपुरी में आज शासकीय ITI झांसी रोड में युवा संगम कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। बालाघाट में वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को वन अधिकार पट्टों का वितरण करने के लिए जिले में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। डिंडौरी कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया की अध्यक्षता में कल सर्व शिक्षा अभियान की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

मीडियम वेव 374.5 मीटर यानी 801 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। श्रोताओं, हम लेकर आए हैं गुड मॉर्निंग जबलपुर विविध रंगों के साथ।

रात के सन्नाटे को चीरती हुई जब सूरज की पहली किरण खिड़की से होकर कमरे में दाखिल होती है तो ये मानो एक नई कहानी की शुरुआत करती है। ओस की बूंदों से सजी घास, चिड़ियों की मीठी चहचहाहट और हवा में घुली ताजगी हमें ये याद दिलाती है कि कल की चिंताएं बीत चुकी और आज का दिन एक नया कैनवास है जिसमें हम जितने चाहे रंग भर दें, आकार दे दें। ये समय खुद से जुड़ने, एक गहरी सांस लेने और जीवन की अनमोल ऊर्जा को महसूस करने का है। ऊपर से चाय के कप से उठती भाप, अदरक इलायची की खुशबू मानो सुबह का सबसे बड़ा सुकून भरा एहसास है। और अगर एक प्यारा सा गीत इस समय खुद गुनगुना उठे तो

जैसे ही आसमान का रंग नीले से बदलकर सुनहरा होने लगता है, प्रकृति मानो अपनी आलमारी से नए रंग निकालकर बिखेर देती है। पेड़ पौधों के पत्ते हवा के झोंके से थिरकने लगते हैं। ये बदलाव हमें प्रेरणा देता है कि परिवर्तन ही जीवन का नियम है। कल के दुखों और असफलताओं को पीछे छोड़कर हमें भी हर सुबह एक नए रूप में खिलने का प्रयास करना चाहिए। हर सुबह हमें इस बात का एक और मौका देती है कि हम अपने कल से बेहतर बन सके। रात कितनी भी गहरी क्यों न हो, सुबह की रोशनी उसे मिटा ही देती है। अपने विचारों में हमेशा आशा का दिया जलाए रखें और संगीत की भीनी भीनी खुशबू का एहसास लेते चलें।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: श्रोताओं, आज है 27 मई। इस दिन भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि हम सभी मनाते हैं। उनका निधन आज के दिन ही 1964 को हुआ था। आधुनिक भारत के निर्माण में उनके योगदान और उनकी स्मृति को सम्मान देने के लिए इस दिन देश भर में उन्हें श्रद्धांजलि हम अर्पित करते हैं। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाते हुए 1947 से 1964 तक देश के पहले प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। उन्होंने 1950 के दशक के दौरान संसदीय लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दिया, जिसे एक आधुनिक राष्ट्र के रूप में भारत के विकास पर गहरा प्रभाव पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में उन्होंने भारत को शीत युद्ध के दो गुटों से दूर रखा। एक प्रतिष्ठित लेखक के रूप में उन्होंने लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर, एन ऑटोबायोग्राफी और द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जैसे पुस्तकें लिखी, जिन्हें दुनिया भर में पढ़ा गया, जाना गया। आज उनकी पुण्यतिथि है, हम उन्हें नमन करते हैं, आदर भाव सौंपते हैं। श्रोताओं, विविध रंग हैं गुड मॉर्निंग जबलपुर के। आज कलामे शायर में आप सुने रिजवान हकीमी अंसारी के कलाम।
4: गजल का मतला पेश खिदमत है। मतला कहा कि देखते ही दौड़ कर सीने से लग जाने की ईद, देखते ही दौड़ कर सीने से लग जाने की ईद, आने वाली है इन आँखों में तेरे आने की ईद, आने वाली है इन आँखों में तेरे आने की ईद, और लौट कर आया हुआ है आरजुओं का सुहाग, लौट कर आया हुआ है आरजुओं का सुहाग, अब के बार आई है हिस्से में सनम खाने की ईद, अब के बार आई है हिस्से में सनम खाने की ईद, छुप गया जाने कहाँ पर जाके उम्मीदों का चांद, छुप गया जाने कहाँ पर जाके उम्मीदों का चांद, क्यों नज़र आती नहीं उम्मीद बर आने की ईद, क्यों नज़र आती नहीं उम्मीद बर आने की ईद, और लग के होठों से तुम्हारे किस कदर मसरूर है, लग के होठों से तुम्हारे किस कदर मसरूर है, मैं कदे में हो गई है आज पैमाने की ईद, मैं कदे में हो गई है आज पैमाने की ईद, और हाथ से हाथ और दिल से दिल मिलाएं क्यों ना गैर, हाथ से हाथ और दिल से दिल मिलाएं क्यों ना गैर, आ गई इस साल फिर अपनों से कतराने की ईद, हाथ से हाथ और दिल से दिल मिलाएं क्यों ना गैर, आ गई इस साल फिर अपनों से कतराने की ईद। और मक्ता अर्ज किया कि टिकटिकी बांधे हकीमी कर

0: रहा है इंतजार, टिकटिकी बांधे हकीमी कर रहा है इंतजार, बाम पर तुम आओ तो हो जाए दीवाने की ईद, बाम पर तुम आओ तो हो जाए दीवाने की ईद, आने वाली है इन आँखों में तेरे आने की ईद। और दूसरी गज़ल का मैं मतला पेश कर रहा हूँ, समाज फरमाए। मतला कहा कि तुम्हारी याद के फूलों में है लिपटा हुआ कागज़, तुम्हारी याद के फूलों में है लिपटा हुआ कागज़, तुम्हारे ज़िक्र की खुशबू से है महका हुआ कागज़, तुम्हारे ज़िक्र की खुशबू से है महका हुआ कागज़, अब पयामे वसल की ठंडी हवा आए तो कुछ लिखूं, पयामे वसल की ठंडी हवा आए तो कुछ लिखूं, तुम्हारे हिजर की गर्मी से है झुलसा हुआ कागज़, तुम्हारे हिजर की गर्मी से है झुलसा हुआ कागज़, तुम्हारे जी में जो आए वही तहरीर कर डालो, तुम्हारे जी में जो आए वही तहरीर कर डालो, मेरा क्या है तुम्हारे हाथ में रखा हुआ कागज़, मेरा क्या है तुम्हारे हाथ में रखा हुआ कागज़, एक एक टुकड़ा मिसाल लखते दिल मेरे लिए है वो, एक एक टुकड़ा मिसाल लखते दिल मेरे लिए है वो, जिसे कहते हैं तेरे हाथ का फाड़ा हुआ कागज़, जिसे कहते हैं तेरे हाथ का फाड़ा हुआ कागज़, और लगाता है कोई आँखों से कोई सर पे रखता है, लगाता है कोई आँखों से कोई सर पे रखता है, मुबारक है तुम्हारे हाथ से लिखा हुआ कागज़, मुबारक है तुम्हारे हाथ से लिखा हुआ कागज़, और गज़ल लिखो कसीदा लिखो अब मर्ज़ी तुम्हारी है, गज़ल लिखो कसीदा लिखो अब मर्ज़ी तुम्हारी है, तुम्हारे सामने है मेज़ पर रखा हुआ कागज़, तुम्हारे सामने है मेज़ पर रखा हुआ कागज़, मैं जितनी बार पढ़ता हूँ तजस्सुस और बढ़ता है, मैं जितनी बार पढ़ता हूँ तजस्सुस और बढ़ता है, अनोखा है दियारे यार से आया हुआ कागज़, अनोखा है दियारे यार से आया हुआ कागज़। और शेर देखें, ठिकाना जाने किसका पूछता फिरता है दीवाना, ठिकाना जाने किसका पूछता फिरता है दीवाना, थका मांदा लिए हाथों में एक रिश्ता हुआ कागज़, थका मांदा लिए हाथों में एक रिश्ता हुआ कागज़, और शिफा तावीज़ से मिलती है जब ईमान कामिल हो, शिफा तावीज़ से मिलती है जब ईमान कामिल हो, नहीं तो है गले में बस कोई बांधा हुआ कागज़, नहीं तो है गले में बस कोई बांधा हुआ कागज़। और मक्ता अर्ज़ किया कि हकीमी बेख्याली बेसुकूनी में बदल जाए, हकीमी बेख्याली बेसुकूनी में बदल जाए, सुलग उठे अगर पैरों तले रौंदा हुआ कागज़, सुलग उठे अगर पैरों तले रौंदा हुआ कागज़, तुम्हारी याद के फूलों में है लिपटा हुआ कागज़, तुम्हारे ज़िक्र की खुशबू से है महका हुआ कागज़। और हजरात यहीं से एक गज़ल का मतला और कुछ शेर पेश खिदमत कर रहा हूँ, समाज फरमाए। मतला कहा कि ठहरता कब है किसी एक जगह पे जी का ख्याल, ठहरता कब है किसी एक जगह पे जी का ख्याल, कभी किसी का ख्याल और कभी किसी का ख्याल, कभी किसी का ख्याल और कभी किसी का ख्याल, अब मजाल क्या वो करेंगे कभी किसी का ख्याल, मजाल क्या वो करेंगे कभी किसी का ख्याल, है जिनके जहन में एहसास कमतरी का ख्याल, है जिनके जहन में एहसास कमतरी का ख्याल। और शेर देखें, कज़ा जब आके खड़ी हो गई सरहाने मेरे, कज़ा जब आके खड़ी हो गई सरहाने मेरे, तब आया जाके उसे मेरी ज़िंदगी का ख्याल, कज़ा जब आके खड़ी हो गई सरहाने मेरे, तब आया जाके उसे मेरी ज़िंदगी का ख्याल, एक आप हैं कि हमारा ज़रा ख्याल नहीं, एक आप हैं कि हमारा ज़रा ख्याल नहीं, और एक हम हैं कि हर वक्त आप ही का ख्याल, और एक हम हैं कि हर वक्त आप ही का ख्याल, हर एक लिहाज से जिसने हमारा ध्यान रखा, हर एक लिहाज से जिसने हमारा ध्यान रखा, रखा गया ना हमी से कभी उसी का ख्याल, रखा गया ना हमी से कभी उसी का ख्याल। और शेर देखें कि मैं बदला लेने की नीयत बना के निकला था, मैं बदला लेने की नीयत बना के निकला था, अचानक आ गया दिल में मगर किसी का ख्याल, अचानक आ गया दिल में मगर किसी का ख्याल। और मक्ता देखें कि आकाश पूछ लें एक रोज़ वो हकीमी से, आकाश पूछ लें एक रोज़ वो हकीमी से, कहाँ से आ गया तुझको ये शायरी का ख्याल, कहाँ से आ गया तुझको ये शायरी का ख्याल, मजाल क्या वो करेंगे कभी किसी का ख्याल। और हजरत ये एक गज़ल का मतला और कुछ शेर और पेश खिदमत है, समाज फरमाए कि सामना कैसे करेगा वो परेशानी का, सामना कैसे करेगा वो परेशानी का, ढूंढता फिरता है जो रास्ता आसानी का, ढूंढता फिरता है जो रास्ता आसानी का, मर्तबा चाहते हैं लोग शहादत का मगर, मर्तबा चाहते हैं लोग शहादत का मगर, हौसला रखता नहीं कोई भी कुर्बानी का, हौसला रखता नहीं कोई भी कुर्बानी का। मैं सुलगती हुई एक प्यास का हूँ सहरा नवर्द, मैं सुलगती हुई एक प्यास का हूँ सहरा नवर्द, और तू दूधिया चश्मा है किसी पानी का, और तू दूधिया चश्मा है किसी पानी का। और आरजू होती रही कत्ल शबो रोज़ मगर, आरजू होती रही कत्ल शबो रोज़ मगर, दिल ने नोहा ना पढ़ा बेसरो सामानी का, दिल ने नोहा ना पढ़ा बेसरो सामानी का। ज़िंदगी भर के गुनाहों की तलाफ़ी के लिए, ज़िंदगी भर के गुनाहों की तलाफ़ी के लिए, एक लम्हा ही गनीमत है पशेमानी का, एक लम्हा ही गनीमत है पशेमानी का। और आला दर्जे की मियाँ ये भी तो होशियारी है, आला दर्जे की मियाँ ये भी तो होशियारी है, हम जिसे नाम दिया करते हैं नादानी का, हम जिसे नाम दिया करते हैं नादानी का। और जब तक आसूदगी इश्क न मजजूब बने, जब तक आसूदगी इश्क न मजजूब बने, रंग चढ़ता ही नहीं चाक गिरेबानी का, रंग चढ़ता ही नहीं चाक गिरेबानी का। जिसने जिस मन से सही जितनी भी मनमानी की, जिसने जिस मन से सही जितनी भी मनमानी की, मन को खमियाजा भुगतना पड़ा मनमानी का, मन को खमियाजा भुगतना पड़ा मनमानी का। रब की रहमत के सिवा आपकी मेहनत के सिवा, रब की रहमत के सिवा आपकी मेहनत के सिवा, हल नहीं कोई भी इंसान की परेशानी का, हल नहीं कोई भी इंसान की परेशानी का। ये मक्ता यहीं से हर्फ आखिर के, बाशऊर ऐसे भी कुछ लोग हकीमी हैं यहाँ, बाशऊर ऐसे भी कुछ लोग हकीमी हैं यहाँ, फ़ायदा लेते हैं जो शोहरत नादानी का, सामना कैसे वो करेगा परेशानी का, ढूंढता फिरता है जो रास्ता आसानी का। बहुत बहुत शुक्रिया हजरत।
1: कलाम शायर में श्रोता भी सुन रहे थे रिजवान हकीमी अंसारी के कलाम।
2: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: आइए अब संगीत के रंग में ढल जाया जाए, संगीतिका सुनी जाए। आशिकी फिल्म का गीत अनुराधा पौंडवाल और कुमार सानू के स्वर में।

फिल्म खेल खेल में का गीत अभी आपने सुना। आवाज़ थी शैलेंद्र सिंह और साथियों की। श्रोताओं, एक गीत और है संगीतिका का। एक बात कहनी थी, गर्मी का मौसम अपने गर्म थपेड़ों में आग सा एहसास करा रहा है हम सभी को। मौसम है, बदलते रहने का हुनर है इनमें। पर हाँ, हर मौसम के अनुरूप ढलना हमें भी तो आता है ना। जैसे गर्मी है तो डिहाइड्रेशन और सनबर्न से बचने के लिए हाइड्रेट रहना, यानी खूब पानी पीना, तरल पदार्थ ज़्यादा लेना, धूप में जाने से बचना, यानी जाना ही अगर जाना ही पड़े तो अपने को कपड़ों से पूरा कवर करके मुंह भी ढक लें, सनग्लास लगा लें, हल्के सूती ढीले ढाले कपड़े पहन लें ताकि पसीना अब्जॉर्ब हो सके। शरीर में नमक और पानी की कमी को पूरा करने के लिए नींबू पानी, नारियल पानी, छाछ या ORS का घोल सेवन जरूर करें। ताज़ा और सुपाच्य भोजन करें।

0: श्रोता सुन रहे थे हमारा नियमित कार्यक्रम गुड मॉर्निंग जबलपुर। आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। सुबह के 8 बजने को है, अब से कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे समाचार प्रभात आकाशवाणी दिल्ली से।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से जनसंख्या आंकड़ों में परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय ऐसा

0: तैयार को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज फैसला सुनाएगा। सीबीएसई ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही उन अफवाहों को खारिज किया जिनमें उसके ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के उल्लंघन की बात कही गई थी। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया। नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नवलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्र, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले से जनसांख्यिकी परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की थी।
1: मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया।
0: इस समिति के कार्यों के बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
2: ये उच्च स्तरीय समिति अवैध अप्रवासन और अन्य अप्राकृतिक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का व्यापक आकलन करेगी। ये धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या स्थानांतरण का भी विश्लेषण करेगी और इसके लिए एक योजनाबद्ध और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। वहीं आवश्यकता पड़ने पर समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ सत्र में विदेश मंत्रियों के द्विपक्षीय संवाद बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र, पश्चिम एशिया की स्थिति, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा भी की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत कनाडा आर्थिक साझेदारी का अगला अध्याय विश्वास पर आधारित होगा जिससे दोनों देशों की साझा समृद्धि सुनिश्चित होगी। कनाडा में आयोजित मंत्री स्तरीय सत्र को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बढ़ते विश्वास से व्यापक आर्थिक साझेदारी के अंतर्गत नए व्यापार और निवेश के अवसरों पर कार्य हो रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था की गतिशीलता पर श्री गोयल ने कहा कि भारत अगले 3 दशकों तक विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना रहेगा। सर्वोच्च न्यायालय निर्वाचन आयोग के मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज निर्णय सुनाएगा। ये याचिकाएं बिहार में पिछले साल जून में SIR प्रक्रिया शुरू करने के निर्वाचन आयोग के फैसले के बाद दायर की गई थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था। एक रिपोर्ट।
3: याचिकाओं में SIR प्रक्रिया की वैधता को चुनौती दी गई थी। इसमें कहा गया था कि SIR प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 326, जन प्रतिनिधित्व कानून 1950 और इनके अंतर्गत बनाए गए नियमों में निर्वाचन आयोग को दी गई शक्तियों के दायरे से बाहर थी। याचिकाकर्ताओं की ये भी दलील थी कि SIR प्रक्रिया ने बड़ी संख्या में गरीब और विस्थापित लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया। सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR प्रक्रिया से प्रभावित मतदाताओं के बीच पारदर्शिता को बढ़ावा देने और कठिनाई को कम करने के लिए अंतरिम निर्देश जारी किए थे। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने 1983 में बिहार में पांच लोगों की हत्या के मामले में

0: कई दोषियों की सजा बरकरार रखते हुए कहा है कि इस घटना की क्रूरता न्यायिक अंतरात्मा को झकझोर देती है। न्यायमूर्ति संजय करोल और एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कल कहा कि निचली अदालत और पटना उच्च न्यायालय दोनों ने सही कहा है कि इस मामले में किसी भी तरह की सहानुभूति या नरमी की गुंजाइश नहीं है। न्यायालय ने कहा कि घटना मार्च 1983 में मुजफ्फरपुर जिले के एक गांव में हुई थी, जहां कम से कम 58 लोगों की भीड़ ने चंद्रशेखर चौधरी के घर में आग लगा दी, जिसके बाद 5 लोगों की बेरहमी से हत्या की गई और कई लोग घायल हो गए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने सोशल मीडिया पर किए गए इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। बोर्ड ने कहा कि उत्तर पुस्तिकाओं के वास्तविक मूल्यांकन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पोर्टल पूरी तरह से एक अलग URL पर काम करता है। एक रिपोर्ट।
1: CBSE बोर्ड ने कहा है कि cbse.onmarks.co.in केवल एक टेस्टिंग साइट है जिसमें सैंपल डाटा होता है, जिसका इस्तेमाल पूरी तरह से आंतरिक टेस्टिंग और समीक्षा के उद्देश्यों के लिए किया जाता है और इसमें परीक्षा से संबंधित कोई भी वास्तविक जानकारी नहीं होती है। बोर्ड ने कहा है कि ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली शिकायतों के निवारण के साथ साथ मूल्यांकन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लागू की गई है। बोर्ड ने संबंधित पक्षों को आश्वस्त किया कि मूल्यांकन प्लेटफॉर्म की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े और ठोस उपाय किए गए हैं। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: अमेरिका के राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका के वर्ष 2028 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त होने से पहले अमरीकियों को चंद्रमा पर उतारने की योजना है। चीन की भी वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर मानव उतारने की योजना है। मार्च में नासा ने वर्ष 2032 तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर परमाणु और सौर ऊर्जा से संचालित एक स्थायी अड्डा बनाने के लिए $20 अरब के कार्यक्रम की घोषणा की थी। जेफ बेजोस की अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन को इन मशीनों का निर्माण करने के लिए चुना गया है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: कोलकाता की एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हुए हमले के मामले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA की हिरासत में भेज दिया है। इन आरोपियों को केंद्रीय एजेंसी द्वारा सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया था। भारतीय वायुसेना ने अधिकारी काडर के तकनीकी शाखा में भर्ती के लिए अभियांत्रिकी स्नातक अभिक्षमता परीक्षा GATE के अंकों के आधार पर चयन करने की योजना बनाई है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि GATE के अंकों के आधार पर उम्मीदवारों को वायुसेना चयन बोर्ड में परीक्षा के लिए सीधे चयनित किया जाएगा। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली 10 डब्बों वाली DEMU रेलगाड़ी को चलाने की स्वीकृति दे दी है। ये निर्णय रेलवे क्षेत्र में हरित और टिकाऊ परिवहन को प्रोत्साहन देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हाइड्रोजन रेलगाड़ी के बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी कृष्णकांत शर्मा।
3: यह रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेगी। इसमें 2 ड्राइवर पावर कार और 8 पैसेंजर कोच शामिल हैं, जिनकी कुल क्षमता 2500 यात्रियों की है। इसकी कुल विद्युत क्षमता 1200 किलोवाट है। यह ट्रेन शून्य कार्बन उत्सर्जन करती है। इसकी परिचालन गति 110 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसमें यात्रियों के लिए आधुनिक डिजिटल डिस्प्ले, ऑटोमेटिक दरवाजे और एयर कंडीशनिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सिक्किम की यात्रा के दूसरे दिन आज नाथुला दर्रे का दौरा करेंगी। राष्ट्रपति नाथुला में तैनात सैनिकों से बातचीत करेंगी। वरिष्ठ सैन्य अधिकारी उन्हें क्षेत्र में जारी विभिन्न गतिविधियों की जानकारी देंगे। राष्ट्रपति बाबा हरभजन मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगी। अमरीकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमरीका और ईरान के बीच मध्यस्थता के लिए पाकिस्तान की भूमिका की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि इजराइल के प्रति पाकिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे विरोध के कारण उसे तटस्थ नहीं माना जा सकता। श्री ग्राहम ने दावा किया कि ईरानी सैन्य विमान पाकिस्तानी हवाई अड्डे का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इजराइल के बारे में पाकिस्तानी नेताओं की टिप्पणियां चिंताजनक हैं। ये टिप्पणियां पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में अब्राहम समझौते में पाकिस्तान के शामिल होने से इनकार के बाद आई हैं। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया है और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है और अगले 2 से 3 दिनों तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी भीषण गर्मी की आशंका व्यक्त की है। वहीं केरलम में मॉनसून 1 या 2 दिन की देरी से आ सकता है। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कल पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। 255 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात टाइटंस 162 रन पर सिमट गई। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल राजस्थान के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। और लीजिए अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
4: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों ने क्वाड समूह की एकजुटता और सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ रोकने के लिए सख्ती को सुर्खियों में जगह दी है। साथ ही कई स्थानीय मुद्दे भी मुखपृष्ठ पर प्रमुखता से प्रकाशित किए गए हैं। वीर अर्जुन की सुर्खी है, क्वाड हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ाएगा निगरानी। पत्र ने भारत, अमरीका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्रियों की तस्वीरों को भी समाचार के साथ प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने घुसपैठ से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन संबंधी अमित शाह के ऐलान को सुर्खी बनाया है। पंजाब केसरी ने अपने संपादकीय को शीर्षक दिया है, धर्मशाला नहीं है भारत। पत्र लिखता है, जनसांख्यिकी संरचना बदल जाने से स्थानीय समुदायों में ये भावना बढ़ रही है कि घुसपैठिए सरकारी योजनाओं और राजनीतिक संरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, जिससे भाषा और भूमि को लेकर तनाव बढ़ रहा है। जनसत्ता ने दिल्ली में सीएनजी के दाम 2 रुपये प्रति किलोग्राम और बढ़ाए जाने को पहली खबर बनाया है। अमर उजाला ने भी इस खबर को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर जगह दी है, जबकि दैनिक ट्रिब्यून ने दिल्ली रेस क्लब को राहत न मिलने और जिमखाना पर सरकार के कुछ नर्म रुख को पहली खबर बनाया है।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से जनसंख्या आंकड़ों में परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय SIR को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज फैसला सुनाएगा। CBSE ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन अफवाहों को खारिज किया है जिनमें उसके ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के उल्लंघन की बात कही गई है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया। महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी। और IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बनाई। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am VC Pramod, the headlines. Center forms high-level committee to study demographic change caused by infiltration and other reasons. Supreme Court to deliver its verdict today on petitions challenging special intensive revision of electoral rules. CBSE rejects claims circulating on social media about breach of its on-screen marking system, saying it was only testing site and not actual platform. IMD issues red alert for severe heat wave conditions in Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Vidarbha today.
6: NASA releases details of robotic landers, hopping drones and vehicles it aims to send to Moon as part of its plan to build lunar base. And in IPL cricket, Royal Challengers Bengaluru storm into final beating Gujarat Titans by 92 runs in qualifier 1 at Dharamshala. The centre has constituted a high-level committee to address the challenges of demographic changes caused by infiltration and other reasons. In a social media post, Union Home Minister Amit Shah said that the committee will be chaired by former Supreme Court Judge Justice Prakash Prabhakar Navlekar. Census Commissioner along with former IAS Officer Durga Shankar Mishra, former IPS officer Balaji Srivastava and economist Dr. Shamika Ravi have been appointed as members of the committee. The Joint Secretary, Foreigners 1 in Home Ministry, will serve as the member secretary in the committee. Mr. Shah said infiltration and other reasons are causing unnatural demographic change, which poses a very significant challenge to the present and future of any nation. He said demographic change is a serious issue linked not only to the sovereignty, but also to national security, law and order, profound changes in social structure, and the preservation of tribal society. A report.
7: The high-level committee will conduct a comprehensive assessment of demographic changes occurring across India due to illegal immigration and other unnatural causes. It will also analyze patterns of abnormal population shift at the levels of religious and social communities and will present a planned and time-bound solution for the same. Prime Minister Narendra Modi, in his Independence Day speech from Redford last year, had announced about the high-level committee on demographic change.
8: I want to talk about a question in front of the country. देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं, एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है।
7: द कमिटी विल सबमिट इट्स रिपोर्ट विद इन वन ईयर। इफ नेसेसरी द टेन्योर ऑफ द कमिटी मे बी एक्सटेंडेड बाय अप टू 6 मंथ्स। विद अनुपम मिश्रा, दिस इज विष्णु पीएस, आकाशवाणी न्यूज, दिल्ली।
6: The Supreme Court will today pronounce its judgment on a batch of petitions challenging the legality of the Special Intensive Revision SIR of the electoral rules done by the Election Commission of India. A bench of Chief Justice of India, CJI Surya Kant and Justice Joymala Bagchi is scheduled to pronounce its verdict today after reserving judgment in the matter earlier this year following extensive hearings. The petitions challenging the legality of the SIR exercise undertaken by the poll body, contending that the revision process exceeds the powers conferred upon the ECI under Article 326 of the Constitution, the Representation of the People Act 1950, and the rules framed thereunder. Over the course of the proceedings, the Supreme Court issued interim directions designed to promote transparency and mitigate hardship among voters impacted by the SIR exercise across various states and union territories. The poll body had initially identified 11 documents for verification purposes. However, the apex court later directed the inclusion of Aadhaar as an additional document for the SIR process. Most of the petitions were filed in June last year after the ECI decided to conduct an SIR in Bihar. The exercise was subsequently extended to multiple states and UTs, including West Bengal, Kerala and Tamil Nadu. The poll body defended the exercise before the apex court, contending that the revision was aimed at ensuring the purity of electoral rolls and preventing duplication or inclusion of ineligible voters. After hearing the parties, the CJI Surya Kant-led bench reserved its verdict on Jan 29th. Central Board of Secondary Education, CBSE, has clarified that there has been no security breach in its actual on-screen marking system used for evaluation of answer books. The board said that the URL http://cbse.onmarks.co.in is the testing site only with sample data for internal testing and review purposes. More from our correspondent.
9: The Central Board of Secondary Education stated that the URL circulating on social media is different from the portal used for the evaluation of answer books. It noted that the system has been implemented for enhanced transparency in assessments with strong grievance redressal mechanisms. Refuting claims of any security breach on its actual on-screen marking system, CBSE reassured all concerned that safeguards are in place to ensure the integrity and security of the evaluation platform. Priya Mondal, Akashwani News, Delhi.
6: This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle @AIRNewsAlerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download the News on AIR app. President Draupadi Murmu will visit Nathula Pass in Sikkim this morning on the second day of her visit to the state. The president will interact with soldiers stationed at Nathula, where senior army officers will brief her on various activities in the area. She will also visit the Baba Harbhajan Shrine. Later in the day, President Murmu will award degrees and medals to students during convocation ceremony of Sikkim University at Manan Kendra in Gangtok. Nearly 14,000 degrees across 33 departments will be awarded, along with 285 gold and silver medals to meritorious students, which include 199 women. India Meteorological Department, IMD, has issued a red alert predicting heat wave to severe heat wave conditions over Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Vidarbha today. The weather agency has also forecast heat wave conditions over Delhi, Haryana, Chandigarh, Punjab, Rajasthan, Chhattisgarh, coastal Andhra Pradesh, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Ladakh, Jharkhand, Odisha, Telangana and Uttarakhand for the next 2 days. Onset of monsoon in Kerala, which was earlier predicted for yesterday, may be delayed for 1 or 2 days. More from our correspondent.
10: The arrival of the southwest monsoon in Kerala, which was earlier predicted for May 26, may be further delayed by 1 or 2 days. As of 7 a.m. this morning, 5 mm of rain has been recorded in some areas in the southern parts of Kerala, while no rain has been experienced in most places in Kerala and Lakshadweep today. The onset of the monsoon in Kerala will officially be declared if 2.5 mm of rain is recorded for 2 consecutive days in at least 60% of the monitoring stations in Kerala and Lakshadweep. As of now, there is no heavy rain warning for Kerala for the next 4 days. Midhi M. Palluruthi, Akashwani News, Thiruvananthapuram.
6: A special court in Kolkata has remanded 15 more individuals to National Investigation Agency NIA custody till the 5th of June in connection with the attack on judicial officers in Motabari, Malda. The accused were arrested during a series of raids conducted by the central agency in Motabara and its adjoining areas late Monday night. During the court proceedings, the NIA submitted 2 case diaries regarding the matter. According to NIA sources, the suspects were identified by analyzing CCTV footage from the day of the incident alongside various video clips that went viral on social media. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar co-chaired the 17th Foreign Ministers Framework Dialogue with his Australian counterpart Penny Wong in New Delhi last evening. Dr. Jayashankar said that they exchanged views on the Indo-Pacific, the situation in West Asia and other regional, global and multilateral issues. They also reviewed the steady progress of the comprehensive strategic partnership between the two nations. Dr. Jayashankar added that cooperation is expanding in energy sector, including uranium supplies to generate nuclear energy.
11: On the energy side, we are looking to expand that as well into uranium supplies. Our own nuclear sector has undergone reform, which would grow nuclear energy. Our teams have been in discussion on critical minerals as well. Our defense exchange and exercises, again, have been taking place. Our maritime cooperation has been the centerpiece of that. We've had some talks on space cooperation.
6: NASA has released details of robotic landers, hopping drones and vehicles it aims to send to the moon as part of the US plans to build a lunar base. Amazon founder Jeff Bezos's space company Blue Origin is one of the several companies picked to build the machines. The US wants to land Americans back on the moon before President Donald Trump leaves office in 2028. But NASA is competing with China to return humans to the lunar surface, meaning the space agency is under pressure to appear to be winning the new space race. China is forging ahead with its own plans to land humans on the moon by 2030. Yesterday, it launched its Shenzhou 23 spacecraft, sending a crew of astronauts to the country's Tiangong space station. Royal Challengers Bengaluru stormed into the final of the IPL 2026, beating Gujarat Titans by 92 runs in the qualifier one match at Dharamshala last night. Chasing a mammoth target of 255 runs set by Royal Challengers Bengaluru, Gujarat Titans were all out for 162 with three balls to spare. Rahul Tevatia was the top scorer with 68 runs. For Royal Challengers Bengaluru, Jacob Duffy scalped 33 wickets, while Bhuvaneshwar Kumar, Razik Salam Dar and Krunal Pandya to 2 wickets each. Earlier, Gujarat Titans won the toss and elected to field. Put into bat, Royal Challengers Bengaluru posted a massive 254 runs for the loss of 5 wickets in the stipulated 20 overs. Rajat Patidar top scored with an unbeaten 93 runs of 33 balls. Virat Kohli and Krunal Pandya added 43 runs each. For Gujarat Titans, Kagiso Rabada and Jason Holder took 2 wickets each. Rajat Patidar was adjudged the player of the match. Today, Sunrisers Hyderabad will face Rajasthan Royals in the eliminator in New Chandigarh, Mohali at 7:30 p.m. And now, for a look at today's newspapers, it's over to Tanvi Khurana.
1: Thank you, Pramod. Quad announces energy initiative, Fiji Port Project, headlines the Hindustan Times. While the Tribune headlines committed to free and open Indo-Pacific, Quad unveils energy security initiative. And the Asian Age headlines, Quad unveils 4 key initiatives, expands energy, maritime ties. Another major story covered in most newspapers is the U.S. self-defense strikes casting shadow on Iran peace talks. The Asian Age headlines, talks under strain as U.S. strikes Iran, Tehran to retaliate. While the Tribune headlines, deal to end war may take a few days, says Rubio as U.S. strikes Iran again. The government forming panel on demographic changes caused due to infiltration is also a major story covered on the front page of most newspapers. The Times of India headlines, government panel to examine demographic changes, and the Hindu says panel set up to study demographic change. The Indian Express headlines, HDFC Bank camouflaged crores as marketing spent to pay higher interest to state firm. The paper adds that violating RBI and bank norms, 45 crore extra interest was paid to Maharashtra State Road Development Corporation as sponsorship for road safety drive. The Indian Express in its editorial titled India First Can Converge with America First writes that against the backdrop of an uneasy phase in India-US relations over the past year or so, US Secretary Marco Rubio's visit to India signaled reassurance to New Delhi that Washington remains committed to a long-term strategic partnership. During his joint press conference with Rubio, Indian Foreign Minister Jaishankar acknowledged that the Trump administration has been forthright about pursuing an America First policy and said that Delhi too is guided by an India first approach. Convergence of interests may sustain cooperation, but India's standing in a fractured world will ultimately rest on the strength it builds at home, the paper concludes. And with that, it's back to you, Pramod.
6: Thank you, Tanvi. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Center forms high-level committee to study demographic change caused by infiltration and other reasons. Supreme Court to deliver its verdict today on petitions challenging special intensive revision of electoral rolls. CBSC rejects claims circulating on social media about breach of its on-screen marking system, saying it was only testing site and not actual platform. IMD issues red alert for severe heatwave conditions in Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Vidarbha today. And in IPL cricket, Royal Challengers Bengaluru storm into final, beating Gujarat Titans by 92 runs in qualifier 1 at Dharamshala. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
12: मीडियम वेव 374.5 मीटर यानी 801 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। सुबह के 8:30 हुए हैं। समय है फिल्म संगीत का। आज इस कार्यक्रम का पहला गीत जब वी मेट फिल्म से मीका सिंह और साथियों की आवाजें, इरशाद कामिल के बोल, प्रीतम का संगीत।

अब सुनिए यीशुदास को। फिल्म दादा का ये गीत है। गीत लिखा कुलवंत जैन ने और उसे संगीत से संवारा उषा खन्ना ने।

श्रोताओं, गीतों के बीच में एक सूचना है आपके लिए। हम आपको बताते चलें, क्या आपके आसपास कोई ऐसा बच्चा है जो अपनी असाधारण प्रतिभा से समाज में सकारात्मक बदलाव लेकर आया है? भारत सरकार का महिला एवं बाल विकास मंत्रालय लेकर आया है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026। ये पुरस्कार 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को वीरता, समाज सेवा, पर्यावरण, खेल, कला, संस्कृति और विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। बालिकाओं, कमजोर वर्गों, अनुसूचित जाति, जनजाति और दिव्यांग बच्चों की छिपी प्रतिभा को आगे बढ़ाने का ये एक बेहतरीन अवसर है। नामांकन केवल ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल award.government.in पर 31 जुलाई 2026 तक स्वीकार किए जाएंगे। देर ना करें, आज ही अपने क्षेत्र के होनहार बच्चों का नामांकन सुनिश्चित करें। सूचना समाप्त हुई और अब बढ़ते हैं फिल्म संगीत की ओर। सुनते हैं वडाली ब्रदर्स का गाया गीत। गीत हमने लिया है तनु वेट्स मनु फिल्म से। कृष्णा ने इसे संगीत से सवारा है।

अगला गीत फिल्म राज से अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ से सजा ये गीत, जिसे लिखा समीर ने और संगीतबद्ध किया नदीम श्रवण ने। आइए सुनें।

कार्यक्रम का ये आखिरी गीत है लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज़ से सजा फिल्म प्यासा सावन का ये गीत है, बोल संतोष आनंद के, धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।

0: श्रोता सुन रहे थे फिल्म संगीत मिनीवे पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। सुबह के 8:58 होने को हैं। अब से कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे आकाशवाणी भोपाल से न्यूज हेडलाइंस, इस घंटे की खास खबरें।
1: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा, इसका शेष भाग आप सुनेंगे इस घंटे की खास खबरों के बाद। प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कल ऑस्ट्रेलिया और जापान के विदेश मंत्रियों ने मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया एक स्वतंत्र, खुले, सुरक्षित और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे। श्री मोदी ने शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने में जापान भारत विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की महत्वपूर्ण भूमिका की पुष्टि की। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कल नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहले विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। ये देश की पारंपरिक स्वास्थ्य पद्धति को वैश्विक खेल के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज भारत भवन में जलगंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत राष्ट्रीय संगोष्ठी और सांस्कृतिक उत्सव सदा नीरा समागम का शुभारंभ करेंगे। ये आयोजन 2 जून तक चलेगा, जिसमें देश विदेश के विद्वान, पर्यावरण विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, नीति निर्माता और कलाकार सहभागिता करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल उज्जैन में शिप्रा तट पर शिप्रा तीर्थ परिक्रमा के समापन समारोह में अंतर्जल यात्रा, श्री शिप्रा महिमा और ये है मोहन की सरकार पुस्तकों का विमोचन भी किया। मध्य प्रदेश महिला और वित्त विकास निगम की बैठक में कल हुई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। महिला बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया के निर्देश दिए हैं कि निगम को प्रदेश की महिला वर्कफोर्स तैयार करने वाली प्रमुख संस्था के रूप में विकसित किया जाए। और आईपीएल क्रिकेट में कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को पहले क्वालिफायर मुकाबले में 92 रन से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: मीडियम 374.5 मीटर यानी 801 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। सुबह के 9 बजे हैं और हम लेकर आए हैं लोक रसधार। आज इस कार्यक्रम में आप 2 कलाकारों के गाए लोकगीत सुनेंगे, रामगोपाल दीक्षित और राजकुमार चौधरी। आइए सबसे पहले सुनते हैं रामगोपाल दीक्षित के गाए बुंदेली लोकगीत।

श्रोता सुन रहे थे राम गोपाल दीक्षित के गाए बुंदेली लोकगीत। लोक रसधार में अब बारी है राजकुमार चौधरी के गाए बुंदेली लोकगीतों की, आइए सुनें।

लोक रसधार में श्रोताओं, आज आपने दो कलाकारों के गाए बुंदेली लोकगीत सुने, रामगोपाल दीक्षित और राजकुमार चौधरी। अब ये कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। मीडियम वेव 374.5 मीटर यानी 801 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। एक सूचना है आपके लिए, क्या आपके आसपास कोई ऐसा बच्चा है जो अपनी असाधारण प्रतिभा से समाज में सकारात्मक बदलाव लाया है? भारत सरकार का महिला एवं बाल विकास मंत्रालय लेकर आया है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026। ये पुरस्कार 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को वीरता, समाज सेवा, पर्यावरण, खेल, कला संस्कृति और विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। बालिकाओं, कमजोर वर्गों, अनुसूचित जाति, जनजाति और दिव्यांग बच्चों की छिपी प्रतिभा को आगे बढ़ाने का ये एक बेहतरीन अवसर है। नामांकन केवल ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.government.in पर 31 जुलाई 2026 तक स्वीकार किए जाएंगे। देर ना करें, आज ही अपने क्षेत्र के होनहार बच्चों का नामांकन सुनिश्चित करें। सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। हम लेकर आए हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म मेरे हमसफर, आवाज लता मंगेशकर और मुकेश की, शब्द रचना आनंद बख्शी की और धुन कल्याण जी आनंद जी की।

जगजीत सिंह और चित्रा सिंह को सुनिए। फिल्म का नाम है साथ साथ। शब्द रचना जावेद अख्तर की और संगीत कुलदीप सिंह का।

जंगल में मंगल। इस फिल्म का गीत जिसे आवाज दी किशोर कुमार ने, हसरत जयपुरी के बोल शंकर जयकिशन की धुन।

फिल्म संगीत का ये अगला गीत मुकद्दर का सिकंदर फिल्म से लिया गया ये गीत जिसे आवाज दी किशोर कुमार ने बोल अनजान के कल्याण जी आनंद जी का संगीत

मत कभी कभी। लता मंगेशकर का गाया ये गीत अभी आपने सुना, फिल्म आंखें का ये गीत था। लिखा था साहिल लुधियानवी ने और उसे संगीत से सवारा था रवि ने। कार्यक्रम का आखिरी गीत, फिल्म का नाम बॉम्बे टू गोवा, आवाज लता मंगेशकर और किशोर कुमार की।

0: बॉम्बे टू गोवा इस फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। मीडियम वेव 374.5 मीटर यानी 800 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। श्रोताओं, हम आपको बता दें, हमारे कार्यक्रम आप न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। सुबह के 10 बजने को है, अब से कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे जिले की चिट्ठी आकाशवाणी भोपाल से।
1: कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें। सुबह के 10 बजे हैं, प्रस्तुत है जिले की चिट्ठी।
2: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है डिंडौरी जिले की चिट्ठी। आलेख लक्ष्मी नारायण अवधिया, वाचन स्वर दीपा सिंह। डिंडौरी जिले में इस समय अन्य शहरों की तरह ही अत्यधिक गर्मी पड़ रही है। अधिकतम तापमान 41 डिग्री तक पहुंच गया है, जो अभी तक का सर्वाधिक तापमान है। भीषण गर्मी का असर आम जनजीवन पर पड़ रहा है। दिन में बाजार में सन्नाटा पसरा है। लू के प्रभाव से बचने के लिए जरूरी सलाह भी चिकित्सक दे रहे हैं। गर्मी के चलते कई गाँवों में पेयजल की भी समस्या बन गई है। जनगणना 2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना के व्यापक प्रचार प्रसार और जन जागरूकता के उद्देश्य से जनगणना कार्य निदेशालय मध्य प्रदेश द्वारा LED प्रचार रथ रवाना किया गया है। ये प्रचार रथ मंडला पालाघाट होते हुए डिंडौरी जिले पहुंचा, जहां सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया। LED प्रचार रथ जिले के सातों विकास खंडों में भ्रमण कर गांव-गांव पहुंचकर आमजन को जनगणना 2027 के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों की जानकारी देगा और जनमानस में जनगणना के प्रति जागरूकता लाने का प्रयास करेगा। प्रचार रथ के माध्यम से प्रथम चरण के तहत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रदर्शित की जाएगी, जिससे नागरिकों को जनगणना प्रक्रिया को समझने और उसमें सहभागिता सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी। जिला प्रशासन डिंडौरी के सहयोग से जिले के 23 ग्रामीण नल जल योजनाओं का जीर्णोद्धार किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संकट को देखते हुए जिला प्रशासन ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को 90,39,000 रुपए की राशि हस्तांतरित कर महत्वपूर्ण पहल की है। मध्य प्रदेश शासन किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग द्वारा कृषक कल्याण वर्ष 2026 के अंतर्गत

किसानों तक नवीन और वैज्ञानिक कृषि तकनीकों की जानकारी पहुंचाने के उद्देश्य से जिले के विभिन्न विकास खंडों में किसान रथ का 10 दिवसीय संचालन प्रारंभ किया गया है। इस अभियान के माध्यम से किसानों को कृषि विभाग की योजनाओं, उन्नत खेती तकनीकों, फसल विविधीकरण, प्राकृतिक खेती, कृषि यंत्रीकरण संबंधी जानकारी प्रदान की जाएगी। किसान रथ के माध्यम से किसानों को ई विकास से उर्वरक वितरण व्यवस्था, खरीफ फसल हेतु बीज उपचार, मृदा परीक्षण, फसल विविधीकरण, प्राकृतिक खेती, फसल सुरक्षा पराली प्रबंधन, कृषि अभियांत्रिकी द्वारा खरीफ पूर्व खेतों के समतलीकरण आदि विषयों पर जानकारी दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोल डीजल बचाने, सोना नहीं खरीदने सहित अन्य अपील को आमजन ने सकारात्मक तौर पर लिया है। अब लोग वाहनों का उपयोग कम कर रहे हैं, साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारी भी साइकिल, स्कूटी सहित अन्य दो पहिया वाहनों का उपयोग कर रहे हैं। कार्यालयों में वाहनों की कतार नहीं लगती है, साथ ही अधिकांश बैठकें भी वर्चुअल माध्यम से की जा रही हैं। इसी तरह बाजार में भी ज्वेलर्स की दुकानों में भीड़ कम हो गई है। व्यापारी भी प्रधानमंत्री की अपील में सहयोग कर रहे हैं। कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी अंजू पवन भदुरिया द्वारा पेट्रोल और डीजल की बचत, ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिले के सभी विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों और शासकीय वाहन चालकों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जारी आदेश में कहा गया है कि ऊर्जा संरक्षण और वैश्विक परिदृश्य के दृष्टिगत शासकीय वाहनों का उपयोग केवल शासकीय कार्यों के लिए किया जाए। अनावश्यक वाहन संचालन और बिना अनुमति वाहन उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा जिले में 5 मई से 5 जून तक ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण आरोह 2026 के अंतर्गत मां नर्मदा नदी तट पर विशेष संडे एक्टिविटी में डांस एरोबिक्स का आयोजन किया गया। इस मौके पर एरोबिक्स, योग, सामूहिक फिटनेस गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों के साथ साथ उनके परिजनों, स्थानीय नागरिकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। सभी विकासखंड मुख्यालयों में भी ग्रीष्मकालीन खेल प्रतियोगिताएं संचालित की जा रही है। डिंडौरी में पिछले दिनों मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह योजना के तहत विभिन्न विकासखंडों में समारोह पूर्वक विवाह का आयोजन किया गया, जिसमें 750 से अधिक जोड़ों का विवाह रीति रिवाज से संपन्न कराया गया। जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारियों ने विवाह समारोह में शामिल होकर वर वधुओं को शुभकामनाएं दी। जल संचय जनभागीदारी अभियान के अंतर्गत जिले में कुल 5,52,638 जल संरचनाओं का निर्माण किया गया है। कृषि विभाग, वन विभाग, उद्यानिकी, स्वास्थ्य विभाग, एनजीओ प्रदान, महिला और बाल विकास, पीएचई, जल संसाधन विभाग, इन सभी विभागों के समन्वय से वर्षा के पानी को सहेजने के लिए लाखों रिचार्ज पिट, सोखता पिट बनाए जा रहे हैं। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आपने सुनी डिंडोरी जिले की चिट्ठी, आलेख लक्ष्मी नारायण अवधिया, वाचिका दीपा सिंह। ये प्रसारण आकाशवाणी भोपाल से किया जा रहा था।
1: मिनीवेव 374.5 मीटर यानी 801 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का यह जबलपुर केंद्र है। समय है वंदे मातरम गौरवगान की 150वीं इस कार्यक्रम का।

वंदे मातरम गीत की एक रोचक कहानी है। ये कोई साधारण गीत नहीं, वंदे मातरम को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जोड़कर देखा जाता है। ये भारत की आजादी की लड़ाई का वो नारा है जिसने करोड़ों लोगों के दिलों में देशभक्ति की अलग जगाई। ये गीत अपने आप में इतनी शक्ति समेटा हुआ है कि सुनते ही मन में गर्व की भावना जाग उठती है। इस गीत का मूल संदेश भूमि पूजा माता के रूप में करना है, जिसमें अलौकिक शक्ति है, सुंदरता है, ममता है, विस्तार है, विश्वास है। बंकिमचंद चट्टोपाध्याय द्वारा रचित इस गीत में भारत को केवल एक भूखंड न मानकर उसे साक्षात माँ और देवी के रूप में बताया गया है। ये गीत मातृभूमि के प्रति असीम प्रेम, समर्पण और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की भावना का प्रतीक है। ये गीत हमें सिखाता है कि जिस प्रकार हम अपने जन्म देने वाली माँ का सम्मान करते हैं, उसी प्रकार हमें अपनी मातृभूमि, जो जल और अन्न, हरियाली और संस्कृति से ओतप्रोत है, उसके प्रति भी कृतज्ञता रखनी चाहिए। ये हमारा फर्ज है और उसके प्रति कर्ज है।

श्रोता सुन रहे थे वंदे मातरम गौरव गान की 150वीं। मीडियावेव 374.5 मीटर यानी 801 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। सुबह के 10:10 होने को है। अब से कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे विश्व दर्पण, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित कर रहे हैं।

नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग के साथ विदेश मंत्रियों की 17वीं द्विपक्षीय संवाद बैठक की सह अध्यक्षता की। इसराइल की सेना ने कहा गाजा में हमास का नया सैन्य प्रमुख और 7 अक्टूबर 2023 के हमलों का मुख्य षड्यंत्रकर्ता मोहम्मद ओदे मार गिराया गया है। नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया है। और ग्रैंड मास्टर इनियान पन्नीर सेल्वम ने श्रीलंका में आयोजित राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप में रैपिड और ब्लिट्स दोनों खिताब जीतकर दोहरा स्वर्ण पदक हासिल किया। और अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग के साथ विदेश मंत्रियों की 17वीं द्विपक्षीय संवाद बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र, पश्चिम एशिया की स्थिति, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा भी की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत कनाडा आर्थिक साझेदारी का अगला अध्याय विश्वास पर आधारित होगा, जिससे दोनों देशों की साझा समृद्धि सुनिश्चित होगी। कनाडा में आयोजित मंत्री स्तरीय सत्र को

0: संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बढ़ते विश्वास से व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA के अंतर्गत नए व्यापार और निवेश के अवसरों पर काम हो रहा है। उन्होंने बताया कि CEPA व्यापार और निवेश संबंधों के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
1: सरकार का प्रयास है कि चीजों को आसान बनाया जाए। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से व्यापार में आने वाली बाधाओं को दूर करने में मदद मिलेगी। इससे निवेश के नए अवसर भी खुलेंगे। हमने बहुत ही अच्छा और संतुलित समझौता किया है।
0: इजराइल की सेना ने कहा है कि गजा में हमास के नए सैन्य प्रमुख और 7 अक्टूबर 2023 के हमलों के मुख्य षड्यंत्रकर्ता मोहम्मद ओदेह को मार गिराया गया है। एक रिपोर्ट।
2: इसराइल ने कहा है कि यह अभियान इसराइली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री इसराइल काट्स के आदेश पर चलाया गया था। रिपीट, इसराइल ने ये आदेश पर 7 अक्टूबर 2023 के हमलों के दौरान कई इसराइली नागरिकों और सैनिकों की हत्या, अपहरण और घायल होने में शामिल होने का आरोप लगाया। ओधे हाल ही में अजेद्दीन अल हदाद के स्थान पर सैन्य प्रमुख बना था। अजेद्दीन अल हदाद इससे पहले इसराइली हमले में मारा गया था। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइल 7 अक्टूबर के हमलों में शामिल सभी लोगों को बनाना जारी रखेगा। इस बीच इसराइल ने दक्षिण लेबनान में बड़े हवाई हमले कर टायर और मर्जियून जिले को निशाना बनाया है। इन हमलों में कल 31 लोग मारे गए और 40 अन्य घायल हो गए। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: अमरीकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमरीका और ईरान के बीच मध्यस्थता के लिए पाकिस्तान की भूमिका की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि इसराइल के प्रति पाकिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे विरोध के कारण उसे तटस्थ नहीं माना जा सकता। एक रिपोर्ट।
3: श्री ग्राहम ने दावा किया कि ईरानी सैन्य विमान पाकिस्तानी हवाई अड्डे का उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसराइल के बारे में पाकिस्तानी नेताओं की टिप्पणियां चिंताजनक है। श्री ग्राहम ने पाकिस्तान से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अब्राहम समझौते में शामिल होने के आह्वान पर स्पष्ट प्रतिक्रिया देने का भी आग्रह किया। ये टिप्पणियां पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के एक टीवी चैनल को दिए गए साक्षात्कार में अब्राहम समझौते में पाकिस्तान के शामिल होने से इनकार करने के बाद आई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान किसी भी ऐसे समझौते का समर्थन नहीं करेगा जो देश की मूलभूत विचारधाराओं के खिलाफ हो। श्री ट्रंप ने हाल ही में ईरान के साथ वार्ता से जुड़े व्यापक पश्चिम एशिया शांति प्रयासों के हिस्से के रूप में पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, मिस्र, जॉर्डन, बहरीन और तुर्की सहित कई मुस्लिम बहुल देशों से अब्राहम समझौते में शामिल होने का आह्वान किया था। वर्ष 2020 में हस्ताक्षरित अब्राहम समझौता अमरीका समर्थित समझौता है। इसके अंतर्गत इसराइल और कई अरब देशों के बीच संबंधों को सामान्य बनाया था। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया है। एक रिपोर्ट।
4: अमेरिका की वर्ष 2028 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त होने से पहले अमरीकियों को चंद्रमा पर उतारने की योजना है। चीन की भी वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर मानव उतारने की योजना है। मार्च में नासा ने वर्ष 2032 तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर परमाणु और सौर ऊर्जा से संचालित एक स्थायी अड्डा बनाने के लिए $20 अरब के कार्यक्रम की घोषणा की थी। जेफ बेजोस की अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन को इन मशीनों का निर्माण करने के लिए चुना गया है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: दक्षिण अफ्रीका में रूसी दूतावास ने कहा है कि रूस के वैज्ञानिकों ने इबोला वायरस के सबसे नए स्ट्रेन के खिलाफ एक नई वैक्सीन तैयार की है। रूस के स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुराशको ने इस उपलब्धि की घोषणा की। वैज्ञानिकों ने बताया कि यह वैक्सीन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में हाल ही में फैले दुर्लभ बुंडी बुग्यो स्ट्रेन के खिलाफ भी असरदार हो सकती है। एक रिपोर्ट।
5: विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस महीने की 17 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियमों के अंतर्गत डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो और युगांडा में इबोला के प्रकोप को वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया। इधर देश में हाल ही में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने भी विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इसे अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के बाद एयरलाइन के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। नागरिक उड्डयन उड्डयन महानिदेशालय ने कहा कि युगांडा और कांगो से आने जाने वाली

0: उड़ानों का संचालन करने वाली एयरलाइंस के लिए ये अनिवार्य है कि वो यात्रियों के विमान से उतरने से पहले उनसे स्वघोषणा पत्र अनिवार्य रूप से भरवाएं। इबोला एक गंभीर वायरल बीमारी है जिसमें मृत्यु दर काफी अधिक होती है। फिलहाल बुंडी बुगियो स्ट्रेन के लिए विशेष रूप से तैयार की गई कोई भी आधिकारिक रूप से स्वीकृत वैक्सीन या उपचार उपलब्ध नहीं है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: पूर्वी लेबनन की बेका घाटी में स्थित मशगारा गांव पर हुए इजरायली हवाई हमले में 12 लोग मारे गए हैं। ये हमले लेबनन और इजरायल के सैन्य प्रतिनिधिमंडलों की अमरीका में होने वाली बैठक से 3 दिन पहले हुए हैं। इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू द्वारा हिजबुल्ला के खिलाफ और अधिक आक्रामक हमले करने के ऐलान के बाद ये कार्रवाई की गई है। इजरायल की सेना ने हमले पर कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन कहा है कि वो पूर्वी लेबनन में हिजबुल्ला के बुनियादी ढांचे को निशाना बना रहा है। राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप में भारतीय ग्रैंड मास्टर इनियान पन्नीरसेल्वम ने श्रीलंका में रैपिड और ब्लिट्स दोनों खिताब जीतकर 2 स्वर्ण पदक अपने नाम किए हैं। इनियान ने प्रत्येक प्रारूप में 6.5 अंक हासिल करके दोनों वर्गों में चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। रैपिड स्पर्धा में ग्रैंड मास्टर श्रीहरि ने रजत और जीएम मित्राभा ने कांस्य पदक हासिल किया। ब्लिट्स प्रतियोगिता में ग्रैंड मास्टर रोहित कृष्णा ने रजत और श्रीहरि ने कांस्य पदक जीता। मित्राभा ने क्लासिकल वर्ग का खिताब अपने नाम किया, जबकि श्रीलंका के रानिंदु लियानागे ने रजत और श्रीहरि ने कांस्य पदक हासिल किया। पीवी सिंधु सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने इंडोनेशिया की पुत्री कुसुमा वरदानी को 21-17, 21-18 से हराया। प्री क्वार्टर फाइनल में कल सिंधु का मुकाबला होगा जापान की रिको गुंजी से। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी भी पुरुष डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग के साथ विदेश मंत्रियों की 17वीं द्विपक्षीय संवाद बैठक की सह अध्यक्षता की। इजरायल की सेना ने कहा है कि गजा में हमास का नया सैन्य प्रमुख और 7 अक्टूबर 2023 के हमलों का मुख्य षड्यंत्रकर्ता मोहम्मद ओदे मार गिराया गया है। नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया है। और इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good morning. This is Akashwani. I am VC Pramod with the World News.

मीडियम वेव 374.5 मीटर यानी 801 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। सुबह के 10:20 हुए हैं। सुनिए फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सारंगा। कार्यक्रम के पहले गीत के लिए ये चिट्ठियां आई हैं गांधी चौक रोपर से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयतक बिरक और मीका बिरक की, छत्तीसगढ़ भाटापारा दंतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक कुमार, झावेंद्र कुमार और ये हैं गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले और आरती जोंधले। आप सबकी पसंद पर सुनिए फिल्म बंधन का गीत, जिसे गाया है उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति ने। भैरव अरुण के लिखे बोल से ये गीत बना और आनंद राज आनंद ने संगीत दिया।

हम साथ साथ हैं, यह है फिल्म का नाम। आवाजें हैं कविता कृष्णमूर्ति, अलका याग्निक और अनुराधा पौंडवाल की। आर किरण का ये गीत है और राम लक्ष्मण

का संगीत है, सुनना चाहते हैं आप सभी। घीसु दिलवारे, लक्ष्मी माधुरी, सोनाली भगवान, पुष्पा नेहा, एकता अस्मिता, सौरभ कुणाल दिलवाले, ये इन्होंने चिट्ठी भेजी है राजपुर से। कोटवा नारायणपुर, बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा, अमित कुमार और हैप्पी राय, दुबिया नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय, शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय, इसी गीत को सुनना चाहा है। आज़ाद नगर लवसर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहराज जहाँ ने। तो आइए सुनते हैं, हम साथ साथ हैं फिल्म का ये गीत।

फिल्म गुरु का गीत, आशा भोसले की आवाज, शब्द रचना अनजान की, धुन बपी लहरी की।

श्रोता सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सारंगा। अगला गीत फिल्म आनंद आश्रम से। इंदिवर ने ये गीत लिखा, श्यामल मित्रा ने उसे संगीत की चाशनी में डुबोया और आशा भोसले और किशोर कुमार ने गाया। पसंद किया आप सभी ने गांधी चौक बाड़मेर से बबलेश पवार, डैनी पवार और मास्टर मनीष। महाराजा रेडियो श्रोता संघ के सदस्य हैं। जिला खंडवा ग्राम लाहौरी से चिट्ठी आई है। राजेश कुमार धंजे, राहुल कुमार, विशाल कुमार, शीला गायत्री, खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी महिमा, नीतू, इन्होंने लिखा है हमें ये गाना सुनना है। जी हाँ, आपको ज़रूर सुनवाएंगे। दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार। प्रणाम सिटी खंडवा मध्य प्रदेश से यथार्थ कुमार खंडाले, सुभाष मंदा, राजेश कुमार, अंजलि, संदीप कुमार, माधुरी, पिंटू कुमार और जयश्री खंडाले। आइए सुनते हैं फिल्म आनंद आश्रम का ये गीत।

अगला गीत फिल्म हंसते जख्म से मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, कैफ़ी आज़मी के बोल, मदन मोहन का संगीत और फरमाइश करता आप सभी। डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये। ये चिट्ठी आई है दुर्गादास जोशी, गंगाधर, गजानन, संजय, आशीष, पृथ्वीराज, साध्वी और परभणी की। और दुर्गादास, गंगाधर, गजानन, संजय, आशीष, पृथ्वीराज, इन्होंने ये चिट्ठी भेजी है। पता क्लियर नहीं हो पा रहा है। जी हाँ, सावरकर से ये चिट्ठी इन्होंने जांभरुन से भेजी है। कृपया साफ साफ अक्षरों में अगर आप भेजें तो पढ़ने में भी आसानी होगी। आपके नाम कुरई तिगड्डा, ग्राम कल्याणपुर से। ये हैं मनीष कुमार पराशर, बेबी आकांक्षा, राधिका, जीवा, खुशी, प्रेम नारायण, हेमंत, अनीता, किशन, सविता, अभिषेक, दीपक, मोहित, मयंक, राजकुमार, पूजा, गढ़ाकोटा वाले नन्हे भाई, वृंदावन से मयंक राजा, पुष्पेंद्र, दीपक, गिरीश, गौरीशंकर, कृष्ण कुमार और इनके परिवार के और सभी सदस्य। साथ में इन्होंने अपने सभी ग्रामवासियों को भी एड्रेस किया है। तो आइए सुनते हैं हंसते जख्म का ये गीत।

0: लगता है कि यहाँ मिल गया।
1: कार्यक्रम का आखिरी गीत फिल्म इश्किया से, आवाज रेखा भारद्वाज की, गुलजार के शब्द और विशाल भारद्वाज का संगीत, ग्राम अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश, तारनी, सूरज, ज्योति, रियांश और गुड़िया ने इस गीत को पसंद किया है। नागचून रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डाफर, खुशनसीब अब्दुल, रियाउल और मोहम्मद, बेमतेरा से सुरेश सारथी और पूर्णिमा सारथी, बाजार पारा बेमतरा से भाई भरत लाल सिन्हा, लव कुमार और लक्की, और ये हैं कवर कॉलोनी बड़वा से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, शिवानी श्रीमाली और मीनूरा श्रीमाली।

0: श्रोता सुन रहे थे फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सारंगा। आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। समय है न्यूज हेडलाइंस का।
1: वाणी भोपाल से बोल रहे हैं, प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर संस्कृत सुभाषितम को साझा करते हुए कहा कि सबसे बड़े लक्ष्यों को भी सतत प्रयास, धैर्य, दृढ़ इच्छा शक्ति से प्राप्त किया जा सकता है। देश के लोग इसी भावना से प्रेरित होकर भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत राष्ट्रीय संगोष्ठी और सांस्कृतिक उत्सव सदानीरा समागम आयोजन भोपाल स्थित भारत भवन परिसर में किया जा रहा है। ये आयोजन आज से 2 जून तक चलेगा, जिसमें देश विदेश के विद्वान, पर्यावरण विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, नीति निर्माता और कलाकार सहभागिता करेंगे। खजुराहो में मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और आयुष मंत्रालय के सहयोग से 25वें काउंटडाउन का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन में केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने आज योग कार्यक्रम का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 21 जून को योग का प्रमुख कार्यक्रम कोलकाता में कराया जाएगा। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप 4 से 8 जून तक अहमदाबाद में आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह देश की पारंपरिक स्वास्थ्य पद्धति को वैश्विक खेल के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। और पीवी सिंधु सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। कल सिंधु का मुकाबला जापान की रिको कुंजी से होगा। वहीं सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी भी पुरुष डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। कल रंकी रेड्डी और शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला ताइवान के ली झे हुई और यांग पोहान से होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: हम आकाशवाणी भोपाल से बोल रहे हैं, कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। आज का कार्यक्रम प्रस्तुत किया है छाया पाठक ने।
3: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूं मैं छाया पाठक। सभी को मेरा नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम आरंभ करने से पूर्व हम आपको बता दें, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हम करते हैं प्रतिदिन सुबह 10:30 बजे से। हमारा फोन नंबर है 2660902, भोपाल का एसटीडी कोड है 0755। हमें प्रतिदिन आपके फोन कॉल्स का इंतजार रहता है। तो चलिए बात करते हैं हमारे पहले श्रोता से। हेलो,
4: गाना सुना दीजिए।
3: जी, गाना तो सुनाएंगे आपको, अपना नाम तो बताइए।
4: हरदयाल जाटव, जिला सीपी, मध्य प्रदेश।
3: पूरा नाम फिर से बताएं।
4: हरदयाल जाटव।
3: हरदयाल जाटव।
4: हाँ, हरदयाल जाटव।
3: कहाँ से हैं?
4: सीपरी से, जिला सीपरी।
3: जिला सीपरी से। जी, अब बताएं कि कौन सा गाना सुनना चाहते हैं।
4: हमको सुना दी अजनबी।
3: अजनबी फिल्म का?
4: हाँ, अजनबी का इंतजार, अजनबी से प्यार है।
3: सीपरी में आप क्या करते हैं?
4: इस टाइम तो गर्मी है, गर्मी के मारे अभी फ्री है। अभी
3: गर्मी के मारे सब फ्री हैं?
4: हाँ।
3: तो खेती किसानी करते हैं?
4: हाँ जी।
3: जी, चलिए तो सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत।
4: नमस्ते।
3: नमस्ते।
4: आपसे पहली बार बात हो रही है।
3: जी जी।

0: हेलो,
1: हेलो, फरमाइश, आकाशवाणी भोपाल।
0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से फोन करें, गीत सुने कार्यक्रम में आपका स्वागत है
1: जी, हृदय से धन्यवाद।
0: जी। नाम बताएं अपना।
1: जी, मैं आपका शारदा प्रसाद प्रजापति, श्री राधा सिटी, मथुरा उत्तर प्रदेश से आदरणीय दीदी से वार्तालाप कर रहा हूँ। दीदी, आप कैसी हैं? मौसम कैसा आपके यहाँ?
0: बहुत अच्छा मौसम है, आप बताइए। बस मौसम तो इस समय बस सबके मुंह से एक ही शब्द निकल रहा है, उफ, इतनी गर्मी है ना।
1: जी, निसंदेह यहाँ
0: हाँ,
1: मथुरा में भी यही हाल है।
0: सब
1: जबरदस्त गर्मी
0: जी,
1: हो रही है,
0: सभी जगह
1: चमचमाती हुई
0: यही
1: धूप
0: हाल हो रहे
1: रहती है,
0: हैं,
1: गर्म गर्म हवाएं चलती
0: सब
1: हैं।
0: बेहाल है उससे।
1: जी, लू के प्रकोप में है इस वक्त मथुरा वृंदावन, पूरा ब्रज क्षेत्र।
0: जी, बताएं आज क्या फरमाइश आपकी है।
1: आदरणीय दीदी, आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ। फिल्म का नाम है बाबरची, भोर
0: बावर्ची फिल्म।
1: आई गया अंधियारा। बहुत ही सुंदर प्यारा सा गीत है।
0: तो इस समय तो दोपहर
1: जी, जब ये तो
0: है
1: प्रसारित होता है तो भोर ही रहता है, 11 बजे तो हम
0: तो
1: भोर ही
0: आप
1: मानते हैं,
0: नहीं, तो
1: गुड
0: हमारा
1: मॉर्निंग
0: हमारा
1: बोलते
0: रेडियो
1: हैं,
0: का
1: सवेरे
0: प्रसारण
1: बोलते
0: तो
1: हैं।
0: सुबह 6 बजे से आरंभ हो जाता है, आप देर से आरंभ करते होंगे,
1: जी,
0: है ना।
1: जी
0: हाँ, सुबह से सुना करिए, सुबह से ही कार्यक्रम हमारे, सुबह 6 बजे से हमारा रेडियो आरंभ होता है, जो रात के 11 बजे तक लगातार चलता है।
1: जी निसंदेह आप
0: सुनिए।
1: मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश या समस्त भारत के आकाशवाणी केंद्र सुबह 6 बजे से प्रारंभ हो जाते हैं। जी
0: चलिए, फोन करने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।

पर रोक करत सब हा हा दैया लाय उठाय लियो गिर नक पर बंसी बजावत धेनु चरैया जग के मोहन मन में भाए नित्य करत राधा राधा राधा।

Get it,

0: Good morning. Good morning. Good morning. Good morning.
1: बेटा।
2: Yes papa.
1: बरखोरदार।
0: Yes daddy.
1: अपनी भाषा में बोलो।
0: अरे हाँ हाँ I'm sorry.
3: नमस्ते नमस्ते ओ पिताजी।
4: नमस्ते।
3: जय हिंद ओ पिताजी।
4: जय हिंद।
3: नमस्ते नमस्ते है सबको।
5: नमस्ते बाबू चाचा।
3: नमस्ते
0: नमस्ते नमस्ते नमस्ते।

0: na na na de de tom na na na de de tom na na na de de tom na na na de de tom de de tom de de tom de de tom de tom de tom de tom de tom de tom de tom de tom de tom de tom de tom de tom de tom. कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आपका स्वागत है।
1: नमस्कार मैडम जी।
0: नमस्ते।
1: मध्य प्रदेश से देवीदास वड़ेले बोल रहा हूँ मैडम जी।
0: देवीदास जी स्वागत है कार्यक्रम में आपका।
1: हाँ जी मैडम जी, आज मुझे गाना सुनना है। इस फिल्म का नाम है जैसी करनी वैसी भरनी।
0: जैसी करनी वैसी भरनी, इसका कौन सा
1: गायककार है? नितिन मुकेश
0: जी।
1: और गीत के बोले जैसी करनी वैसी भरनी, जो जो बोएगा वही पाएगा।
0: ये बात तो बिल्कुल सच है कि जो हम बोते हैं वही पाते हैं, कर्मों का फल हमको यही मिल जाता है ना।
1: हाँ मैडम, जो करने के वो तो जो जैसी करने वैसी भरने होती है मैडम जी।
0: हाँ ये बात सही है। आप अपने जीवन में लागू करते हैं?
1: बिल्कुल मैडम जी, मैं तो बिल्कुल अमल करता हूँ।
0: करते हैं?
1: हाँ बिल्कुल मैडम जी। और वो छोटा सुनते उनको भी मैं यही कहना चाहता हूँ, वो भी अपनी बात को अमल करे। कोई भी काम अपने से गलत ना हो,
0: किसी के लिए बुरा ना करे,
1: किसी का बुरा ना करे, ना बुरा होए।
0: ना बुरा होए के लिए तो ईश्वर देखिए अच्छा बुरा दोनों करता है, लेकिन हमारा प्रयास होना चाहिए कि हमारी तरफ से किसी को कोई नुकसान ना पहुंचाए हम।
1: जी कहते ना मैडम जी, बुरा जो देखण में गया बुरा ना मुझसे होए।
0: जी
1: जो दिल खोजा अपना बुरा ना मुझसे होए।
0: बिल्कुल, मुझसे बुरा ना कोई।
1: जी
0: चलें, फोन करने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।

0: कार्यक्रम फोन करें, गीत सुने। हेलो,
1: हाँ हेलो, मैं बैंक में बोल रहा हूँ कश्मीर से। जी
0: थोड़ी आवाज़ ऊंची रखिए, आवाज़ नहीं आ रही आपकी बिल्कुल।
1: मैं सुनील गर्ग बोल रहा हूँ
0: सुन,
1: कटनी से।
0: कटनी से,
1: जी हाँ,
0: कटनी के हालचाल सुनाए कुछ।
1: बस यहाँ गर्मी बहुत तेज पड़ रही है। हाँ,
0: आपके यहाँ ही नहीं, सभी जगह गर्मी बहुत तेज़ पड़ रही है। क्या
1: बहुत
0: उपाय
1: तेज
0: करते हैं आप
1: गर्मी।
0: गर्मी के लिए फिर?
1: क्या है, अपन तो घर ही में रहते हैं तो निकलते ही नहीं है, चार
0: बाहर नहीं निकलते
1: पांच
0: घर
1: बजे
0: से।
1: के बाद निकलते हैं शाम को, तो जाके अपनी दुकान खोल लेते हैं, राशन
0: काय की दुकान है आपकी?
1: की दुकान है। हाँ,
0: राशन की दुकान है, तो दिन में बंद रखते हैं।
1: गर्मी की वजह से भी, और हमारे ग्राहक जो है वो केवल रात्रि में है, 5 से 8 बजे तक खुलते हैं।
0: तो सुबह भी आप नहीं खोलते दुकान?
1: नहीं, हम ऑफिसर को भी मालूम है हमारे कि ये दोपहर में नहीं खोलते।
0: चलिए, अच्छी बात है। बताएं क्या गीत सुनेंगे आज?
1: आप अब्दुल्ला पिक्चर का सुना दीजिए।
0: कौन सा
1: मैंने पूछा चांद से, देखा है कहीं।
0: सुनिए आपकी पसंद का गीत। नमस्कार।
1: जी।

0: हाँ जी नमस्कार मैडम।
1: नमस्कार, किससे बात हो रही है हमारी?
0: मैडम जी लोकेंद्र वर्मा बोल रहा हूँ, नानाखेड़ा बस स्टैंड उज्जैन मध्य प्रदेश से। मैडम
1: महाकाल के लोक से बोल रहे हैं आप?
0: जी, महाकालेश्वर जी की नगरी है उज्जैन, और महाकाल लोक कॉरिडोर भी बना हुआ है उज्जैन
1: तो
0: से
1: अभी
0: उज्जैन।
1: गर्मी में कुछ व्यवस्था वहां पर हुई है ना, ऐसा सुना
0: हाँ
1: है?
0: बिल्कुल मैडम जी, ये मंदिर के आसपास जो भी दर्शनार्थी आते हैं सभी उनके बैठने की व्यवस्था भी रहती है, और साथ में जो सामाजिक कार्यकर्ता जो रहते हैं उनमें जितने भी तीर्थ यात्री आते हैं उनके पानी पीने की व्यवस्था, बैठने की
1: ठंडे पानी
0: व्यवस्था
1: की
0: करते हैं।
1: व्यवस्था है?
0: जी बिल्कुल, और एक सामाजिक संस्था है जो जितने भी एक गाड़ी घूमती है उसमें सभी जगह जो यात्री रहते हैं उनके लिए पानी पिलाने की और बॉटल भरने की व्यवस्था भी, चलित वाहन है वो।
1: अच्छा, और
0: जी मैडम,
1: मतलब गर्मी से बचाव के लिए जो लाइन लगती है,
0: जमीन पे भी कॉलिन बिछा रहता
1: कालीन
0: है
1: बिछा
0: और
1: है?
0: टेंट लगा रहता है, और ऐसे तो सारा परिसर बिल्कुल जो आसपास का है वो जो बना हुआ है मतलब उसमें गर्मी नहीं लगती है, और पानी पीने की व्यवस्था, साथ में कूलर भी लगे रहते हैं,
1: जी,
0: और जितने भी जो कॉरिडोर के अंदर जो घूमते हैं ना, बीच में रास्ता है जो जाने में थोड़ा समय लगता है क्योंकि घुमावदार रास्ता बना हुआ है, तो उसमें सब जगह पानी पीने की व्यवस्था भी रहती है।
1: चलिए बताएं आज क्या गीत आपको सुनवाए।
0: गाना सुनना है मैडम मुझे, ये जब जब फूल खिले ये समा समा है ये प्यार का।
1: जी, बहुत बढ़िया गीत आपने पसंद किया,
0: जी मैडम जी, और
1: सुनिएगा
0: आज
1: आपकी
0: करीब एक
1: पसंद का
0: महीने के
1: गीत।
0: बाद में फोन लगाया है मैंने।
1: बहुत अच्छी बात है, आप जैसे जागरूक श्रोता ही तो इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना सहयोग देते हैं।
0: जी मैडम, हम तो सालों से जुड़े हुए हैं, बचपन से ही मतलब आकाशवाणी भोपाल को सुनते आ रहे हैं, पहले रेडियो के माध्यम से सुनते थे, अब डिजिटल ऐप के माध्यम से सुनते हैं, और आपका प्रोग्राम तो डीटीएच पर भी जो फ्री टू एयर है ना उस पे साफ स्पष्ट क्वालिटी में सुनाई देता है मैडम।
1: इससे
0: जी जी
1: संबंधित अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त करते रहिए, हम यही चाहते हैं। फोन
0: जी
1: करने के
0: मैडम,
1: लिए
0: बिल्कुल कहते
1: धन्यवाद,
0: हैं।
1: नमस्कार।

0: हेलो,
1: हाँ नमस्कार। हाँ
0: नमस्ते।
1: मैं राजेश अग्रवाल बोलता हूँ दीदी, देवास मध्य प्रदेश, राजाराम नगर देवास मध्य प्रदेश। आप
0: आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: कौन बोल रहे हैं?
0: छाया पाठक।
1: अच्छा छाया जी। हाँ तो मैं मनोरंजन फिल्मों का गीत है, आया हूँ मैं तेरे लिए तुझको ले जाऊंगा, ऐसा गीत है। मैं अपने किशोर दा और आशा भोसले की आवाज में, संजीव कुमार साहब की पिक्चर है ये जी, और आरडी बर्मन शायद म्यूजिककार है, इसके मतलब संगीतकार है
0: चलिए, बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि आपको इतनी जानकारी है कि
1: जी।
0: गीतकार कौन है,
1: और
0: संगीतकार कौन है, गायक
1: जी
0: और किस
1: बिल्कुल,
0: पर
1: ये तो
0: फिल्माया
1: हमको
0: गया है।
1: 40-45 वर्षों से सुनते आ रहे हैं ना।
0: जी चलिए, नमस्ते।
1: नमस्ते।

0: हेलो,
1: हेलो,
0: नमस्कार मैडम। फोन
1: नमस्कार
0: करेगी इसने?
1: जी। हाँ, फोन करें, गीत सुने।
0: हाँ मैडम, मैं जसराम जाटव बोल रहा हूँ, जोराई से। हाँ
1: जसराम जाटव, जौराई से।
0: जिला
1: जौराई कहाँ पड़ता है?
0: सीपी में। हाँ
1: जिला सीपरी में।
0: मैडम,
1: अच्छा, वहाँ पर आपका क्या कारोबार है?
0: बस कुछ नहीं मैडम, खेती किसानी करते हैं।
1: खेती किसानी। खेती किसानी से अभी फुर्सत है या कुछ वहाँ पर अभी बोया हुआ है या कुछ काम लगा है आपका?
0: नहीं मैडम, क्या है, अब तो गर्मी का टाइम है तो अब तो कुछ काम नहीं है। अपना काम जो जून से चालू हो जाएगा।
1: जून से चालू हो जाएगा। पानी की कैसी व्यवस्था है आपके यहाँ?
0: पानी की व्यवस्था मैडम, हमारे यहाँ कुआ की व्यवस्था है, कुआ है।
1: कुआं है तो कुएं में
0: नहीं
1: अभी पानी पूरी गर्मी में रहता है?
0: नहीं मैडम, गर्मी में नहीं रहता है।
1: अच्छा,
0: क्या मैडम, गेहूं गेहूं की खेती करा देता है, गर्मी में नहीं रहता पानी उसमें।
1: तो आप लोगों ने सबका मिलकर के कुआं है या आपका अकेला कुआं है? वो
0: तीन तीन भाई हैं।
1: 3 भाई हैं।
0: हाँ
1: अच्छा, तो आप उसके कुएं में पानी पर्याप्त रहे उसके लिए आपने कुछ प्रयास करते हैं आप लोग?
0: प्रयास तो मैडम अभी नहीं किया, प्रयास करेंगे।
1: करेंगे उसको, और या तो गहरा खुदवाइए, उसके
0: हाँ हाँ मैडम,
1: आसपास
0: वो क्या है,
1: पेड़
0: गहरा
1: पौधे
0: खुदवा
1: आसपास
0: लेंगे तो
1: पेड़
0: इसमें
1: पौधे
0: पानी
1: लगाइए
0: रहेगा।
1: जी।
0: अरे इसमें गहरा हो जाएगा तो पानी रहेगा ना इसमें।
1: हाँ, रहेगा, साथ में आसपास पेड़ पौधे लगाइए, है ना? ये
0: हाँ वो
1: व्यवस्था
0: तो
1: भी
0: खैर सही है मैडम।
1: जी, थोड़ा व्यवस्था करेंगे तो आप ही के लिए सुविधा रहेगी, आपके साथ साथ गांव वालों का भी भला होगा। कभी उनको ज़रूरत है तो उनके लिए भी आप पानी दे सकेंगे
0: हाँ वो तो खैर सही है मैडम।
1: जी। बताएं, क्या गीत सुनना चाहेंगे?
0: हमको मैडम सुनना है खयामत फिल्म का गाना सुनना है मैडम। खयामत
1: कौन सा?
0: फिल्म का सुनना है, लड़की बहुत याद आती है।

0: हेलो, कार्यक्रम फोन करें, गीत सुने।
1: जी सर, नमस्कार।
0: नमस्कार, आपका क्या रेडियो चल रहा है?
1: जी हाँ,
0: रेडियो का वॉल्यूम कम कर दीजिए या आप उससे दूर हो जाइए। नाम बताएं, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: कोदूलाल जायसवाल, पोस्ट मुकाम भैंसवाही, तहसील बिजराहलगढ़, जिला कटनी।
0: जी, आप बताएं क्या सुनना चाहेंगे।
1: जी मैं,
0: हाँ,
1: आप कौन मैडम बोल रही हैं सर?
0: मैं छाया पाठक बोल रही हूँ। आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: मैं अभी इसी वक्त से कल
0: इसी वक्त नहीं, कल।
1: धड़कन का दिल ने ये कहा है, दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे।
0: चलिए सुनिए अब आप गीत। नमस्कार।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर संस्कृत सुभाषितम को साझा करते हुए कहा कि सबसे बड़े लक्ष्य को भी सतत प्रयास, धैर्य, दृढ़ इच्छा शक्ति से प्राप्त किया जा सकता है। देश के लोग इसी भावना से प्रेरित होकर भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत राष्ट्रीय संगोष्ठी एवं सांस्कृतिक उत्सव सदानीरा समागम भोपाल स्थित भारत भवन में आयोजित किया जा रहा है। आज से 2 जून तक चलने वाले इस कार्यक्रम में देश विदेश के विद्वान, पर्यावरण विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, नीति निर्माता और कलाकार सहभागिता करेंगे। खजुराहो में मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और आयुष मंत्रालय के सहयोग से 25वें काउंटडाउन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यहां आज केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने योग कार्यक्रम का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 21 जून को योग का प्रमुख कार्यक्रम कोलकाता में कराया जाएगा। पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक आयोजित की जाएगी। ये देश की पारंपरिक स्वास्थ्य पद्धति को वैश्विक खेल के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। इस दिन के बारे में आयुष मंत्रालय द्वारा जारी बहुभाषी पुस्तिका अंग्रेजी, हिन्दी और 21 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है। ये पुस्तिका एक व्यवहारिक डिजिटल टूल किट के रूप में भी कार्य करती है। और राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप में भारतीय ग्रैंड मास्टर इनियान पन्नीर सेल्वम ने श्रीलंका में रैपिड और ब्लिट्स दोनों खिताब जीतकर 2 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। दोपहर के 12 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। सभी सुनने वालों को साधना जैन का नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों? आपने हमें चिट्ठियां भेजी हैं और आपके गाने हमने तैयार कर लिए हैं। पहला गीत हम ले रहे हैं दो बदन फिल्म से। आशा भोसले की आवाज़ है, शकील बदायूनी ने गीत को लिखा है और रवि ने संगीत दिया है। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर, गुड़िया ठाकुर। छत्तीसगढ़ भाटापारा से दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झाविंद्र कुमार वर्मा। आप सभी की पसंद पर भेज रहे हैं हम ये गीत।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आपकी फरमाइश। अगला गीत हमने लिया है आप सभी की पसंद पर और जिसे हम सुनवा रहे हैं। आपने चिट्ठियां भेजी हैं गौतम नगर भोपाल से केएल पंजाबी, कमलेश पंजाबी, आशा राय जादा ने, अनिल श्वेता पंजाबी ने, उज्जैन से सुनील पंजाबी और शिल्पा पंजाबी ने, राजेश पंजाबी भोपाल से, डॉक्टर किरण ग्रोवर, डॉक्टर नरेश ग्रोवर ने। तो आप सभी की पसंद पर हम आपको सुनवा रहे हैं लव स्टोरी फिल्म का ये गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर के साथ अमित कुमार ने, आनंद बख्शी साहब ने ये गीत लिखा है और राहुल देव बर्मन ने इसका संगीत तैयार किया है।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आपकी फरमाइश। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 12:11 हुए हैं। लीजिए अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं दो कलियां फिल्म से। लता मंगेशकर के साथ मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है। साहिर लुधियानवी जी ने इस गीत को लिखा है और रवि ने संगीत दिया है। आप सभी ने ये पत्र लिखे हैं मुझे और ये गीत सुनने की फरमाइश की है। भोपाल से विनोद आर्या, शांता आर्य, सीमा विनय अग्रवाल, मृदुल मीनू आर्य, अतुल विनीता अग्रवाल, नेहल, ऋत्विक सात्विक, अवि अनु अग्रवाल ने। तो आप सभी की पसंद पर ये गाना हम आपको भेज रहे हैं।

0: कृषि विश्वविद्यालय से पोतोता कार्यक्रम के अंतर्गत सूर्यमुखी की उन्नत कृषि तकनीक इस विषय पर आज हमारे बीच डॉक्टर अनय रावत जो कि वैज्ञानिक है विस्तार संचालनालय जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में। रावत जी आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत
1: जी। नमस्कार।
0: सबसे पहले जैसे सूर्यमुखी फसल बहुत किसान हमारे आसपास यहाँ लेते हैं तो उसके लाभ क्या क्या हैं?
1: जी हाँ, आज के व्यस्त जीवन में सूरजमुखी एक महत्वपूर्ण तिलहनी फसल है। इसका तेल स्वास्थ्य की दृष्टि से काफी उत्तम होता है और देखा जाए तो दिन ब दिन इसकी मांग बढ़ती जा रही है और ये एक ऐसी तिलहनी फसल है जो 100 से 110 दिन में पककर तैयार हो जाती है। और रबी फसलों में मसूर, अलसी, सरसों, मटर, तोरिया, इनकी कटाई करने के बाद जो खेत खाली हो जाता है तो फिर सूरजमुखी की खेती बहुत अच्छे से हमारे किसान भाई कर सकते हैं। चाहे तो किसान भाई ग्रीष्म ऋतु में इसकी एक खेती करके अतिरिक्त फसल भी ले सकते हैं और अतिरिक्त मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में पानी की आवश्यकता अधिक रहती है, अतः ऐसी जगह पर सिंचाई के पर्याप्त साधन होने पर ही किसान भाई इस फसल को ले। ये बताना आवश्यक है कि सूरजमुखी का तेल बहुत स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा होता है और इसमें बीजों में 42 से 48% तक तेल प्राप्त कर सकते हैं और ये किसानों को अतिरिक्त लाभ का एक अच्छा साधन है।
0: जी, तो इसमें सबसे पहले एक बात आती है कि सूरजमुखी के लिए भूमि का चयन किस प्रकार करें किसान भाई ताकि उनको उत्पादन अच्छा मिल सके।
1: वैसे तो सामान्यतः देखा जाए तो हमारे प्रदेश की जो भूमि है वो सरलता उपयुक्त है सूरजमुखी की खेती के लिए, लेकिन यदि हम विशेषताओं से बात करें तो मध्यम से भारी जो काली मिट्टी है जिसमें जल धारण क्षमता अच्छी हो सूरजमुखी खेती के लिए उपयुक्त मानते हैं। रबी फसलों की कटाई के उपरांत खेत की यदि जुताई कर दी जाए ताकि उसकी जो नींदा है वो नष्ट हो जाए और खेत को समतल करके भुरभुरा बना दे ताकि अंकुरण अच्छा हो सके। इस प्रकार यदि हम चाहें तो 5 से 6 सेंटीमीटर गहरी नालियां बना के इसमें बोनी कर सकते हैं और जो खरपतवार होते हैं यदि खेत में खरपतवार ज्यादा है किसान भाई समझ रहे हैं कि उनका नियंत्रण आवश्यक है तो दवाई के नाम पे क्लोरीन नामक एक दवा जो है उसकी 1.5 से 2 लीटर मात्रा, ये मैं आपको रासायनिक तत्व की मात्रा बता रहा हूँ, प्रति हेक्टेयर में डालें और उसके बाद जो है खरपतवार का प्रभावी नियंत्रण हो जाता है।
0: जी रावत जी, बीज सबसे महत्वपूर्ण होता है तो बीज का चुनाव किस आधार पे करें या कैसा बीज वो हमारे किसान भाई लें?
1: जी हाँ, सूरजमुखी में सामान्यतः 2 प्रकार के बीज, एक तो साधारण किस्में जो आपके पिछले थे और दूसरा संकर किस्में।
0: जी,
1: तो इन दोनों बीजों को अलग अलग रूप से उपयोग में कर सकते हैं। सिर्फ समस्या यह है कि संकर बीज यदि किसान भाई उपयोग करते हैं

0: तो उन्हें प्रतिवर्ष नया बीज लेना पड़ता है और साधारण बीज जो है उसको प्रतिवर्ष बदलने की आवश्यकता नहीं होती है। साधारण बीज जो है यदि उसकी उपज अच्छी आ रही है तो 3-4 साल तक किसान भाई उसको लगातार उपयोग कर सकते हैं। और मध्य प्रदेश की जलवायु के लिए मॉडर्न किस्म जो है वो अधिक उपयुक्त मानी जाती है। यह किस्म जो है 15 से 20 क्विंटल तक आपको उपज देती है। और संकर किस्मों में KBSH1, MSRH1, MSRH8, APSH11 और ज्वालामुखी नाम की जो किस्में हैं, संकर किस्मों में बड़ी हमारे प्रदेश के लिए अनुकूल परिस्थितियों में अच्छी उपज देती हैं। बस ये है कि संकर किस्में 100 से 105 दिनों में तैयार होती है और इसकी उपज भी सामान्य से ज्यादा प्राप्त होती है। 18 से 20 क्विंटल ये आपको एक हेक्टेयर में उपज दे देती है।
1: तो बोने के पहले और क्या क्या सावधानी किसान भाई रखें और कब लगाएं इस फसल को उपयुक्त समय?
0: किसी भी फसल की अच्छे उत्पादन के लिए है कि बोने के समय में थोड़ा सा भी हम लेट होते हैं तो निश्चित रूप से उत्पादन पर इसका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। और सूरजमुखी खेती साल भर की जा सकती है लेकिन शीत ऋतु में इसको यदि बोनी की जाए तो अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है।
1: जी, जैसे ये बीज की तो आपने बात की, तो जो संकर किस्में हैं या जो साधारण बीज है इसमें भी क्या मात्रा अलग अलग रखना होता है कि मात्रा कितनी रखें किसान?
0: जी, ये है कि बीज की मात्रा 10 किलोग्राम बीज एक हेक्टेयर के लिए और संकर किस्मों के लिए 5 से 6 किलो जो है एक हेक्टेयर में लगता है। मतलब संकर किस्मों का बीज कम
1: लगेगा
0: और बोनी में कतारों में करना चाहिए। कतार से कतार की दूरी साधारण किस्मों में 45 सेंटीमीटर तथा संकर किस्मों में 60 सेंटीमीटर रखना चाहिए। पौधों से पौधों की दूरी 25 सेंटीमीटर हो और बीज को 4 या 5 सेंटीमीटर गहराई पर रखें ताकि अंकुरण प्रभावित न हो और इस प्रकार जो है अच्छे बीज की सही मात्रा डालने से उत्पादन अच्छा प्राप्त होता है।
1: जी जी रावत जी, इसके अधिक उत्पादन के लिए एक और बात आती है महत्वपूर्ण, जो हमारे किसान भाई अक्सर कई बार इसमें ध्यान नहीं देते हैं कि उसमें खाद कितनी डाली जाए या कौन से और रासायनिक उर्वरक डाले जाएं ताकि उनको उत्पादन अच्छा मिल सके।
0: जी हाँ, किसी भी फसल के उत्पादन के लिए है कि हमको पोषक तत्व की सही समय पर सही मात्रा देना आवश्यक है। और मेरा ये मानना है कि आज के समय किसान भाई अपने खेत में मिट्टी परीक्षण आदि ना कराया हो तो एक बार अवश्य करा लें। मिट्टी परीक्षण के उपरांत ही पोषक तत्व या खाद देना सर्वाधिक उपयुक्त रहता है। यदि मिट्टी परीक्षण नहीं कराएंगे तो ये पता नहीं है कि हमारे जमीन में किस पोषक तत्व की कमी है और हम उसको किस मात्रा में डालना चाहिए। सूरजमुखी में बुआई के समय 30 से 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 30 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से देना चाहिए। नाइट्रोजन की मात्रा को पूरा न देके 20 से 30 किलोग्राम जो है खड़ी फसल में एक माह फिर पश्चात दे देते हैं। और किसान भाइयों को सलाह है कि सूरजमुखी की खेती में स्फुट तत्व की पूर्ति में यदि हम सिंगल सुपर फास्फेट डालते हैं तो इससे फसल में गंधक की पूर्ति हो जाती है जो कि तिलहनी फसलों खासकर सूरजमुखी के लिए एक आवश्यक तत्व है। इससे उपज तो मिलती ही अच्छी, साथ में उसकी गुणवत्ता में भी सुधार होता है। इसके अतिरिक्त बुवाई के पूर्व एजिकोबैक्टर, PHB, जैव उर्वरक जो कहते हैं इनका टीका लगाना है। इन टीकों से क्या होता है रासायनिक उर्वरकों की मात्रा में कमी होती है और मृदा के स्वास्थ्य में आपके सुधार होता है।
1: जी, अच्छा, ये बोनी के बाद और क्या सावधानियां किसान भाई रखें हमारे?
0: जी हाँ, सिर्फ बोनी करके किसान भाई यदि चाहें कि उत्पादन अच्छा मिले तो इसके अलावा ये है कि आपको थोड़ा सा खेत में आपको सतत निरीक्षण रखना आवश्यक है। बोनी के 15-20 दिन पश्चात देख लें कि पौधों का अंकुरण समुचित रूप से हो गया है। जहां अंकुरण नहीं हुआ है, पौधों की संख्या कम है, तो दूसरी जगह पौधे ला के उसको वहां पे लगाना चाहिए। एक स्थान पर यदि ज्यादा पौधे लग गए तो उनकी भी संख्या कम करना उचित होगी। और नींदा यदि आ रहे हैं तो मजदूर लगा के या डोरा या कल्पा लगा के कतारों के बीच में जो नींदा है जो कि फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं उनको 20 से 25 दिन की अवस्था में ही उखाड़ देना चाहिए।
1: जी, तो सिंचाई कब कब वो दें, किस अवस्था में सिंचाई करें, ये हमारे किसान भाइयों को जानकारी।
0: वैसे सामान्य तौर पर 6 सिंचाइयां अनुशंसित की जाती है लेकिन यदि 4 सिंचाइयां भी सूरजमुखी खेत में अपन कर देते हैं तो उत्पादन में बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। और कली बनते समय, खासकर फूल खिलते समय एवं दाना भरते समय सिंचाई करना अति आवश्यक है। इस समय सिंचाई की मात्रा में कमी नहीं होना चाहिए अन्यथा पैदावार में बहुत ज्यादा कमी हो जाती है। और सिंचाई करने से ये भी हम ध्यान रखें कि अत्यधिक रूप से पानी खेत में जमा ना हो ताकि फसल को नुकसान ना हो।
1: जी, जैसे और फसलों में भी हमारे कीट लगते हैं, कई तरह के रोग लगते हैं, तो सूरजमुखी में भी इस तरह की समस्या आती है, तो उसके लिए किसान भाई किस तरह का प्रबंधन करें?
0: किसान भाई सतत निरीक्षण करते रहें कि कोई कीट लगता है, चने की इल्ली लग रही है, कटुआ इल्ली लग रही है, तो उसके लिए आपको निरीक्षण करना आवश्यक है। लेकिन सूरजमुखी में ज्यादा समस्या पक्षियों से होती है, खासकर तोतों से। तो इसके लिए किसान भाई को ये है कि जितना नुकसान कीटों से होगा वो तोतों से पक्षियों से बहुत नुकसान होता है और एक प्रमुख समस्या

0: इसके लिए आपको खेत में बार बार जाना चाहिए। यदि इन पक्षियों का आक्रमण होता है तो देशी तरीके अपनाएं, इनके लिए कोई रासायनिक दवाएं नहीं है पक्षियों के लिए, और ये हम अनुशंसित भी नहीं करते हैं, तो जो देशी तरीके उनसे जरिए पक्षियों को फसल से दूर रखना ही उचित होगा।
1: जी जी। अच्छा, ये फसल जब हमारी तैयार हो जाती है उस समय कटाई का उपयुक्त समय कौन सा है और उसका तरीका क्या होना चाहिए?
0: ये पौधा जब बिल्कुल सूख जाता है तो स्वाभाविक रूप से उसमें पीलापन आता है
1: जी।
0: और जो फूल होते हैं सूरजमुखी काफी बड़े होते हैं, तो इनके पीछे का जो रंग जो हरा होता है वो आपका पीलापन उसमें भी आ जाता है, और जो बीज है वो स्पष्ट रूप से काले रंग के हो जाते हैं। ये सही समय है कि उस समय आपके जो मुंडक है आपके फूल है उनकी कटाई की जाए और उन फूलों को फिर धूप में सुखाएं, और जो भी यंत्र है उनकी सहायता से या लाठी से पीट कर आपस में रगड़ कर बीजों को निकाल लिया जाता है
1: जी।
0: और फिर इस गहाई के बाद जो बीज हैं उनको कड़ी धूप में सुखाएं ताकि उनकी जो नमी की मात्रा है वो अलग हो जाए, और फिर दो दिन तीन दिन छाया में रखें, उसके बाद भंडार घर में रखें उसको उच्चारित करें। इस प्रकार यदि किसान भाई इस उन्नत तकनीक को अपनाते हैं तो सामान्य जो आपकी किस्में हैं उसमें 12 से 15 क्विंटल और ये संकर किस्में हैं तो 18 से 20 क्विंटल उपज आसानी से वो किसान भाई प्राप्त करके अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं
1: जी। सूर्यमुखी की उन्नत कृषि तकनीक, इस विषय पे जानकारी दे रहे थे डॉक्टर अनय रावत। धन्यवाद।
0: नमस्ते।

अभी आप सुन रहे थे आपकी फरमाइश, मैं थी आपके साथ साधना जैन। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, अगला प्रसारण अंतराल के बाद।

नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना जो

0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। दोपहर के 12:30 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से। इसमें सुनिएगा सिसकियों का भाग एक।
1: वैभवी पिक्चर्स प्रस्तुत करते हैं रेडियो धारावाहिक सिसकियां। ये धारावाहिक खेमलता बकलू के उपन्यास खिला फूल मुरझाया पर आधारित है।

0: अजी सुनते हो,
1: अरे क्या है?
0: ये ट्रंक तो जरा खिसकवा दो। रात को सोने के लिए एक तरफ कर दिया था।
1: अरे अरे ये क्या सुबह सुबह ट्रंक लेकर बैठ गई? अरे अभी अभी तो बहू घर में आई है, सुबह सुबह का वक्त है, सब सो रहे हैं। अभी इसे ट्रंक को कुछ मत कहो।
0: अजी, बहू आई है घर में तो कोई गैर नहीं है, तुम्हारी सगी भांजी है। और वैसे भी तो वो यहाँ एक महीना रह कर गई है। इस घर के मिजाज के बारे में बखूबी जानती है।
1: अरे अरे मुश्ताक की अम्मा, मैं कह रहा हूँ अभी अभी वो लोग सो रहे हैं, सुबह ही सुबह उनकी आँख खुल जाएगी।
0: अजी कहाँ की बात कर रहे हो,
1: अब
0: हमारी बहू तो सुबह ही उठ गई। वो देखो गाय को चारा डाल रही है।
1: अरे फजी भाई, ये तो गलत बात है, अरे उसे मना करो। अरे अभी अभी रात ही तो ब्याह कर लाए हैं, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि बहू के आने में देर नहीं हुई और आते ही बैल की तरह खेत में जोत दिया।
0: अजी मैंने कुछ नहीं कहा उसे, वो खुद उठी है। और शादी से पहले भी जब वो आया करती थी तो घर में सबसे पहले वो ही तो उठती थी। अरे अपने घर में भी तो ऐसे ही उठती थी सारे। उसकी माँ वाता कौन सा काम करती थी, बस सारा बोझ इसी बेचारी पर था।
1: हाँ बात तो तुम ठीक कहती हो, सारे की बचपन से ही ऐसे ही काम करने की आदत है, अपने छोटे भाइयों को भी तो यही संभालती थी।
0: सही कहते हो, तुम्हारी बहन को तो फुर्सत ही नहीं थी घर की तरफ देखने की। वो तो पता नहीं किन किन कामों में अपनी अकल लड़ाती रहती थी।
1: अरे उस पाता के बारे में तो बस बस क्या कहूँ। अरे गांव का शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिससे उसका झगड़ा ना हुआ हो।
0: हाँ।
1: बाप रे फाता की क्या लंबी जबान है। अरे अरे वो तो मेरी बहन है, इसलिए डर से ज्यादा नहीं बोलती, वरना वरना नाकों चने चबवा दे। अरे तुम तो उसके आगे बहुत सीधी हो, ये फाता बचपन से ही ऐसी थी, घर में सबसे ज्यादा बोलने वाली और लड़ने वाली ये फाता ही थी।
0: लाहौल बिलाकुवत, क्या कर रहे हो जी, आहिस्ता बोलो। अब उसकी बेटी हमारी बहू है, ये बातें अब हमें जेबा नहीं देती।
1: हाँ जी चुप रहो, अपनी बहन के बारे में ही तो कह रहा हूँ, सारे तो बच्ची है। अरे अपने मामा की बात का क्या, बुरा थोड़ी मानेगी वो।
0: खैर छोड़ो भी ये सब बातें, वो अब हमारी समधन है, उनके बारे में हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वैसे कुछ कहो, दोनों की जोड़ी माशाल्लाह अच्छी रही, हमारे मुश्ताक के साथ खूब जचेगी सारे।
1: अरे जचेगी क्यों नहीं, जैसे हमारा मुश्ताक खूबसूरत है वैसे ही सारे में भी देखो कितनी कोशिश है, अरे कोई देखे तो देखता ही रह जाए।
0: हाँ जी,
1: अरे खुदा ने बड़े सोच समझ के जोड़ी बनाई है।
0: हाँ चलो निकाह तो हो गया, अल्लाह ताला अब कर्जा चुकवा दे। निकाह के लिए हम लोगों ने बहुत कर्जा ले लिया, अभी हमारे दो बेटे और हैं, उनके बारे में भी तो सोचना है।
1: अरे तुम फिक्र क्यों करती हो बेगम, तुम देखना देखना, तुम अल्लाह ताला सब कर्जा चुकवा देगा। अरे मुझे मुश्ताक पर पूरा भरोसा है, उसका मालिक कह रहा था मुश्ताक जैसा दर्जी पूरे कश्मीर में ढूंढने से नहीं मिलेगा। और कहता है जितनी मेहनत से काम यहाँ मुश्ताक करता है उतना और कोई भी नहीं करता। अरे देखना देखना, एक दिन तुम बहुत नाम पैदा करेगा हमारा मुश्ताक। और पैसे का क्या है, अरे जब अच्छा कारीगर है तो पैसा कमाना कौन बड़ी बात है। हाँ, चुक जाएगा सब पैसा धीरे धीरे।
0: हाँ हाँ, अब तो सब कुछ पहले से ही सोच कर बैठे हो। अरे ये तो मेरी ही तजवीज थी कि मुश्ताक को दर्जी बनाना है।

0: वरना वो भी आज रसूल की तरह ड्राइवर ही बना होता।
1: उसका तुम ना मतलब उसका मेरे सामने।
0: अरे क्या हो गया? अब तो उसने रिश्तेदार की बेटी से निकाह भी कर लिया है।
1: अरे नूरी से शादी करके कोई कोई बहुत बड़ा काम अंजाम नहीं दिया उसने। अरे नूरी की शादी उससे नहीं होती तो किसी और से हो जाती, लेकिन ऐसी नौबत तो ना आती कि वो अब
0: क्यों? अब क्या हो गया? मैं तो उसके घर भी नहीं गई, तुम तो गए थे ना परसों वहाँ।
1: हाँ।
0: क्या हुआ? खैरियत तो है ना, तुमने आकर कुछ बताया ही नहीं था।
1: अरे क्या खैरियत है, उस कमबख्त रसूल ने नूरी की नाक में दम कर रखा है, न जीने देता है न मरने देता है, उसको मारता है इतना कि बस पूछो मत। यहाँ आई थी अपने मैके में, मैंने उसे देखा, अरे जिस्म पर जगह जगह नील पड़े हुए थे।
0: अरे देखो जी, वैसे ये नूरी भी कम नहीं है, बहुत बड़ी जबान है इसकी, औरत की तो जबान ही जूते खिलवाती है और जबान ही सिर पर बिठवाती है। यहाँ जब नूरी आती थी तो कितना बोलती थी और कितने नखरे करती थी।
1: देखो देखो देखो ये, अरे रसूल की तुम तरफदारी मत करो। अरे तुम्हें पता नहीं, अरे कितना याश आदमी है, तुम्हें पता है? हाँ पता नहीं तुम्हें? अरे गांव के बाहर कितनी औरतों से, और तो और दो नंबर की कमाई खूब करता है, अरे तभी तो उसके पास इतना पैसा है।
0: अरे रे रे, ये तो बड़ा ही खराब आदमी है। मैं तो इसे इतना बुरा नहीं समझती थी, लेकिन आज तुमने ये सब बताकर।
1: अरे तुम तो औरतें घर में रहती हो, तुम्हें किसी बात की खबर भी रहती है?
0: हाँ हाँ ठीक है, चलो अब ये ट्रंक खिंचवा दो, बहुत हो गई बातें।
1: ठीक है आओ लो। लो।
0: लाइए अम्मी, मैं आपकी मदद करवा देती हूँ। नहीं सारे, तुम अभी किसी भी काम को हाथ ना लगाओ, तुम्हारे मामू नाराज हो रहे थे।
1: अरे
0: अब तुम्हें जिंदगी भर यहाँ काम ही तो करना है, अगर थोड़ा वक्त मिला है तो उसे आराम से काट लो।
1: बेटी।
0: अभी तुम जाओ जाओ, मैं ये काम कर लूंगी।
1: बेटी।
0: कैसी बातें करती हैं अम्मी, मैं आपकी कोई बहू थोड़े ही हूँ, आपकी बेटी हूँ, और जो काम कल करना है वो आज से ही क्यों ना शुरू कर दूँ?
1: अरे नहीं सारे बेटी, ये सब ठीक नहीं है। देखो आखिर जिम्मेदारी तुम्हें ही निभानी है, अभी अब तुम्हारी अम्मी काम कर रही है तो तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है?
0: हाँ सारे, अभी तुम जाओ, देखो तो शायद मुश्ताक तुम्हें बुला रहा है।
1: देखो बेटी देख लो।
0: ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, अब मैं आप लोगों के लिए चाय बना कर लाती हूँ। मैं अभी आती हूँ, सबके लिए चाय बनाने जा रही हूँ। अरे भाई ये नहीं मानेगी, देखना अब तुम, ये मुझे किसी काम से हाथ नहीं लगाने देगी।
1: वाह वाह, खुदा ऐसी बहू सबको दे।
0: हाँ।

0: साराय?
1: हाँ?
0: ओ प्यारी साराय, अरे अपने हाथों से एक प्याली चाय तो पिला दो भाई, अब हमारे काम पर जाने का वक्त हो गया है।
1: अजी, हमारी आंखों के सामने बैठोगे तभी तो चाय पिलाएंगे ना।
0: अरे लो लो लो, ये पानी पियो। इतनी बार कहा है कि चूल्हे में ये गीली लकड़ी मत डाला करो।
1: लो चाय पियो।
0: वाह सारे, तुम्हारे हाथ की चाय पीना भी नसीब वालों को नसीब होता है। क्या चाय बनाई है
1: अजी, पहले एक घूंट पी तो लो,

0: चाय अभी तुमने पी भी नहीं और तारीफ करनी पहले ही शुरू कर दी।
1: अरे साराए, तुमने जो कुछ बना दिया वो मेरे लिए अमृत है, चाहे वो जैसा भी बना हो।
0: बस बस, अब जल्दी से चाय पियो, आपके जाने का वक्त हो गया है। और वैसे देख रही हूं आप आजकल यहीं पर देर कर देते हैं।
1: सोच रहा हूं कि आज जाऊं ही नहीं।
0: क्या?
1: हाँ, कुछ मन नहीं कर रहा है। सारे चलो, आज हम दोनों बैठकर पूरे दिन बात करेंगे।
0: शादी को अब तो काफी दिन गुजर चुके हैं, ये सब बातें अब तो ना किया करो।
1: अरे भाई, हम तो ऐसे ही जिंदगी तुम्हारे आगे बैठकर गुजार दें। सोचता हूँ आज की छुट्टी कर ही लूँ।
0: बस बस, आप छुट्टी का नाम ना लिया करें, पहले ही बहुत छुट्टी कर चुके हैं, ज्यादा छुट्टियां की तो नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। क्या
1: अरे बाप रे,
0: हुआ?
1: आज तो बहुत देर हो गई सारा है। अच्छा, मैं चलता हूँ, हो सकता है मैं दोपहर में चक्कर लगाऊं। जब सब सोते हुए होंगे मैं तभी आऊंगा।
0: हाय अल्लाह, नहीं, उस वक्त अम्मी जाग रही होती हैं।
1: अच्छा, ये सब बातें दोपहर को करेंगे। खुदा हाफिज।
0: हाफिज खुदा।

0: अरे क्या बात है फाता, आज बड़े गुस्से में घर साफ कर रही हो।
1: अरे घर तो साफ कर रही हूं ना, चाहे गुस्से में ही सही। और यहाँ है भी कौन मेरे साथ काम करने वाला? सारे की शादी ऐसी हुई कि उसने आने की खबर तक नहीं ली। 8 महीने हो गए हैं उसे अपनी ससुराल गए हुए, और एक दिन के लिए भी नहीं आई अपनी माँ से मिलने।
0: अरे अगर वो नहीं आई है तो तुम जाकर क्यों नहीं मिल लेती? आखिर वो भी तो तुम्हारे भाई का घर है।
1: हाय अल्लाह, तुमसे मैंने कोई मशवरा नहीं मांगा। जब देखो उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाते रहते हो। अरे अब वो समधी है हमारे, समझे?
0: अरे बेगम, पता नहीं क्या क्या सोचती रहती है तू। अरे तुझे तो खुशी होनी चाहिए कि मैके की उसे याद नहीं आती। उसको ससुराल में इतना प्यार मिला है।
1: क्या क्या कहा? मैं क्या उसे यहाँ मारा पीटा करती थी जो मुझे याद नहीं करती?
0: अरे मुझे पता नहीं क्या, फालतू में अपना दिमाग खराब करती हो और मेरा भी। अरे अब तो उसकी खुशी में ही खुश रहा करो।
1: क्यों क्या हुआ? मुझे कौन सी जलन हो रही है उसके खुश रहने से?
0: वैसे कुछ भी कहो, सारे की किस्मत खुल गई है वहां जाकर। अब तो उसके पास 2-2 गायें हो गई हैं। मुश्ताक की सब जगह धूम है। बहुत अच्छे कपड़े सीता है और पैसा भी बहुत अच्छा कमा रहा है। अरे उसने फजी और सारे को बहुत सारी किरण ला कर दी है। तुम्हारी बेटी वहां खूब ऐश कर रही है।
1: ऐश कर रही है? अरे ये तो मेरी बेटी का नसीब था जो उसे मिल रहा है। कहीं और भी जाती तो ऐसी ही महारानी की तरह रहती। बल्कि किस्मत वाली तो फजी है जिसे सारे जैसी बहू मिली। अरे उसके भाग्य से ही तो ऐश कर रही है, इसलिए तो सारे को यहाँ नहीं आने देती। खुद तो वहां महारानी बनकर बैठ जाती होगी और मेरी बेटी पर हुकुम चलाती होगी।
0: अरे अरे बेगम कैसी बातें करती है। अरे अपनी भाभी के बारे में भी तुझे शर्म नहीं आती?
1: शर्म कैसी जी, जो बात सही है वो सही है, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? देखा नहीं है गांव की और लड़कियां कैसे अपने शौहरों और सास ससुर को अपने कब्जे में किए रहती हैं? हमारी सारे तो इतनी सीधी है कि फंस गई होगी उनके चंगुल में।
0: अरे तू पगला गई है क्या? तेरे भेजे में इतनी सी बात क्यों नहीं आती कि वो वहां खुश है?
1: या खुदा अजी, अब वो अपने मुंह से थोड़े ही कहेगी कि मैं परेशान हूँ। वो जो उसकी सास है ना फजी, बहुत ही चुप भुन्नी औरत है। बड़े प्यार प्यार से सारे काम करवा लेती है। और वो जो है हमारी सीधी लड़की सारे, उसको तो बिल्कुल अक्ल ही नहीं है। अरे अपने आप को उस घर में जाकर झोंक दिया। अरे अगर ऐसे ही चलता रहा तो जिंदगी भर उन लोगों की गुलाम बनकर रहेगी, महारानी बनकर नहीं।
0: ओहो, वहां पर करीम और फजी अपने बच्चे की तरह उससे प्यार करते हैं, उसे किसी बात की कमी नहीं होने देते।
1: अरे मेरे भोलू राम, कितने भोलू हो तुम। अरे तुम लड़की के बाप हो। जब तुम वहां पर जाओगे तो तुम्हारे सामने तो काम नहीं कराएंगी ना, बल्कि झूठा प्यार ही करेंगे, समझे?
0: फाता फाता, वो तेरे भाई का घर है, उसके लिए ऐसी गंदी सोच रखती हो।
1: अजी चुप रहो जी, मैंने अच्छे अच्छे घर देखे हैं। करीम अगर मेरा भाई है तो मेरा खून है, पर फजी तो मेरा खून नहीं है। पता नहीं मेरी बच्ची सारे के ऊपर उस फजी ने क्या जादू कर दिया है कि वो हमें याद ही नहीं करती। एक दिन के लिए कभी मिलने भी नहीं आई। अब मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा।
0: ओफो, अरे देखो बेगम, तुम कुछ भी ऐसा मत कर देना कि हंसते खेलते परिवार में आग लग जाए।
1: वक्त आने पर बताऊंगी।

0: अम्मा।
1: हाँ बहू।
0: अम्मा, मैं आपसे कह रही हूं कि आप भी दरगाह शरीफ चलती तो अच्छा होता।
1: नहीं बहू, तुम लोग जाओ दरगाह पर और दीप जला कर आओ, जाओ।
0: लेकिन अम्मा, आप घर का सारा काम करेंगी, अब ये तो अच्छा नहीं लगेगा ना।
1: तुम इसकी फिक्र मत करो बहू, मैं घर का सारा काम कर लूंगी। जाओ, आज तुम मुश्ताक के साथ घूम कर आओ, जाओ।
2: अब चलो भी साराय, बहुत देर हो चुकी है, निकलो यहाँ से।
0: हाँ, चलते हैं जी। इतनी जल्दी किस बात की है?
2: अगर मैंने तुम्हें आगे की बात बता दी तो तुम सिर के बल भागती हुई चलोगी।
0: अच्छा, बताओ तो जरा क्या बात है?
2: अभी नहीं, वक्त आने पर बताऊंगा।
0: ओफो मुश्ताक, आप बहुत खराब हैं।
2: अच्छा बाबा, अब चलो यहाँ से, चलो।
0: चलिए। मुश्ताक, देखो कितना अच्छा लगता है ना, इस डल झील के किनारे बैठकर वादियों को देखना। कितनी खूबसूरत दरगाह है, कैसा अच्छा लग रहा है यहाँ।
2: साराय,
0: हाँ
2: तुम तो शायद यहाँ पहली बार आई हो।
0: हाँ मुश्ताक, मैं पहली बार आई हूँ यहाँ पर। मुझे अगर इसकी खूबसूरती का जरा भी अंदाजा होता ना, तो मैं यहाँ तुम्हारे साथ रोज आती।

0: अच्छा चलो, अब दरगाह में अंदर आओ, रत्नदीप और रोट वहीं चढ़ाया जाएगा।
1: हाँ
0: हाँ आओ।
1: चलिए।
0: लो साराय, मैंने तुम्हारा दीप जला दिया, इसे वहां ले जाओ। अरे जाहिल औरत, इसने तो दीप बुझा दिया।
1: मुश्ताक, ये तो अपशगुन है, ये ठीक नहीं हुआ।
0: अरे नहीं, तुम फिक्र मत करो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हवा से तो दीप बुझ ही जाते हैं, फिर जल जाएगा।
1: नहीं मुश्ताक, ये अच्छा नहीं होता। मेरी एक सहेली का दीप भी इसी तरह बुझ गया था। उस बेचारी का 1 महीने के अंदर ही तलाक हो गया था मुश्ताक।
0: अरे मेरी प्यारी गुड़िया, जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। अरे जब तक हम नहीं चाहेंगे तो हमें कौन अलग कर सकता है। बस तुम नमाज पढ़कर खुदा से दुआ करती रहो। चलो तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ, आओ इधर आओ। वो देखो, तेज हवा में कैसे पानी में बहते हुए दिए बुझते जा रहे हैं और पीर साहब उन्हें बार बार जलाते जा रहे हैं।
1: हाँ सही कहा आपने, वो देखो पीर साहब फिर से जला रहे हैं दीप।
0: अरे जब पीर साहब दोबारा जला सकते हैं तो हम क्यों नहीं जला सकते। ये देखो, ये मैंने माचिस निकाली और ये लगाई आग।
1: लाओ मुझे दो, मैं इसे पानी में बहाऊंगी और अब की बार ये नहीं बुझेगा। मुश्ताक, अब तो बता दो ना कि मुझे कहाँ लिए जा रहे हो, मैं चल तो रही हूँ आपके साथ।
0: चलो अब तुम पूछ ही रही हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, हम लोग अब निशात बाग जा रहे हैं।
1: क्या निशात बाग जा रहे हैं?
0: हाँ।
1: ये तो हमें पता ही नहीं था। ओ मुश्ताक, आप कितने अच्छे हैं, कितने प्यारे हैं आप।
0: बस बस बस, इतना मक्खन मत लगाओ। मुझे मालूम है कि तुम आज तक निशात बाग नहीं गई हो और तुम्हारा वहां जाने का बहुत मन था। और इसीलिए मैं तुम्हें वहां लेकर जा रहा हूँ।
1: मुझे पता है, हम कब तक पहुंच जाएंगे वहां पर?
0: बस समझो कि पहुंच ही गए।
1: हाँ?
0: वो देखो, सामने बाग की रौनक नजर आई।
1: हाँ? क्या क्या यही निशात बाग है?
0: हाँ।
1: ये दूर से तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों है?
0: अरे सारे सवाल यहीं बैठे बैठे पूछ लोगी क्या? किनारा आ जाए तो खुद ही सब देख लेना। अब देखो सारा नजारा कैसा लगा।
1: नजारा तो बहुत अच्छा है, लेकिन मुश्ताक यहाँ लड़कियाँ देखो ना, कैसे लड़कों के गले में हाथ डालकर घूम रही हैं। इन्हें शर्म नहीं आती, कैसी गंदी लग रही हैं।
0: अरे सारा ये तो आजकल का फैशन है।
1: और देखो तो कैसे बेहुदा कपड़े पहने हैं इन्होंने, सारा जिस्म नजर आ रहा है।
0: अरे मैं ऐसे ही तो कपड़े सिलता हूँ।
1: क्या?
0: हाँ मेरे पास ऐसे ही लोग आते हैं, देखो कितने अच्छे लगते हैं। और ये सब कपड़े मैं तुम्हें भी लाकर दूंगा।
1: मुझे नहीं पहनने। क्या तुम इतने बेहुदा कपड़े सिलते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती?
0: अरे शर्म किस बात की, ये काम है मेरा। अगर ये कपड़े ऐसे नहीं सी कर दूंगा तो मुझे कौन पूछेगा। अब तुम जरा यहाँ पेड़ के नीचे बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ।
1: ठीक है, मैं तुम्हारा यहीं इंतजार कर रही हूँ, पर जल्दी आना।
0: अरे बस यूं गया और यूं आया। देख गुरु देख, क्या लड़की बैठी है। अरे इसका आशिक इसके लिए कुछ लेने गया होगा।
2: अरे गुलाब लेने गया होगा। वैसे यार
3: कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक सिसकियां का पहला भाग। लीजिए अब पेश है इस घंटे की खास खबरें।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर संस्कृत सुभाषितम को साझा करते हुए कहा कि सबसे बड़े लक्ष्य को भी सतत प्रयास, धैर्य और दृढ़ इच्छा शक्ति से प्राप्त किया जा सकता है। देश के लोग इसी भावना से

0: वैज्ञानिक, नीति निर्माता और कलाकार सहभागिता करेंगे। खजुराहो में मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान एवं आयुष मंत्रालय के सहयोग से 25वें काउंटडाउन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यहां आज केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राज जाधव ने योग कार्यक्रम का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 21 जून को योग का प्रमुख कार्यक्रम कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक आयोजित की जाएगी। यह देश की पारंपरिक स्वास्थ्य पद्धति को वैश्विक खेल के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। इस दिवस के बारे में आयुष मंत्रालय द्वारा जारी बहुभाषी पत्रिका अंग्रेजी, हिंदी और 21 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है। और आईपीएल क्रिकेट में आज चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच एलिमिनेटर मैच होगा। विजेता टीम शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस से भिड़ेगी। फाइनल मैच 31 मई को अहमदाबाद में खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है महिला कार्यक्रम प्रस्तुति आकाशवाणी ग्वालियर केंद्र की। महिला सभा कार्यक्रम सुन रही सभी बहनों को सुनीता पाठक का प्यार भरा नमस्कार। सखियों, हम जानते हैं कि आप समय और पैसे की बचत में माहिर हैं और ऐसी ही सीख आप अपने नौनिहालों को भी दे रही हैं। जाहिर सी बात है, हमारे बुजुर्गों की यह सीख हमेशा उपयोगी है। जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाएं। खर्चे जब आय से अधिक हों और गैर जरूरी हों तो वो फिजूल खर्ची ही तो मानी जाती है ना। हमारी जरूरतों की और ख्वाहिशों की कहीं कोई सीमा नहीं होती, हमें उनकी सीमा तय करनी पड़ती है। अपनी आय के मुताबिक व्यय और बचत की आदत तो डालनी ही चाहिए। जरा विचार तो करें कि पैसा तो आया पर गया कहाँ। वेतन मिलते ही एक बजट बनाना जरूरी है सखियों। आपातकालीन बजट हमारा भविष्य सुरक्षित करता है। सुविधाजनक खर्चों पर नियंत्रण जरूरी है, ये बचत बढ़ाने में मदद कर सकता है। हर 15 दिन में खर्चों का हिसाब जरूर देखें। और हाँ, सिर्फ पैसा बचाना ही काफी नहीं है, उसे सही दिशा देना भी जरूरी है। इसलिए धीरे धीरे निवेश की आदत को भी अपनाएं। वित्तीय अनुशासन हमें आत्मविश्वासी बनाता है। अपने भविष्य, अपने सुखद सपनों के जिम्मेदार हम खुद हैं। हमारी बचत ही हमारे आड़े वक्त की सबसे बड़ी साथी है। जरूरत पर हमें किसी के आगे हाथ तो नहीं फैलाना पड़ेगा ना। अब यही सोच रही हैं ना आप कि अब तो सुविधाओं के ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन पेमेंट के आदि हो गए हम, क्या करें, ये आदत तो अब दूर ही नहीं होती। तो हमारा ये कहना है, अच्छी आदत की शुरुआत कभी भी शुरू की जा सकती है, आज से ही और अभी से ही। बजट बनाते समय 50-30-20 का फार्मूला अपनाएं। 50% जरूरी कामों में, 30% घूमने, शौक वगैरह में और 20% बचत के लिए सबसे पहले निकाल कर अलग रख दें। अब कुछ खर्चे तो हमारे हाथ में हैं, जिन्हें सीमित रख सकते हैं। जैसे बिजली के खर्च को सीमित रखना तो हमारे हाथ में ही है। 5-स्टार रेटिंग के उपकरण ही इस्तेमाल करें, एसी का कम इस्तेमाल करें। ईएमआई की सुलभता तनाव को लाती है सखियों। विचार विमर्श के बाद ही ईएमआई पर कोई सामान लेने का निर्णय लें। अपने परिवार के साथ बैठकर बात करें कि पिछले महीने कौन सा खर्च फिजूल ही हुआ, जिसके खर्चे से बचा जा सकता था। ऐसी बातों पर संकोच नहीं करें, अपनी नासमझी पर हंस भी सकते हैं आप। और अगले महीने की बैठकर परिवार के साथ प्लानिंग बनाएं। सच तो ये है सखियों कि हम अपनी मुस्कुराहट को जी भर कर खर्च करने में कतई संकोच न करें। इसे जी भर कर लुटाइए, क्योंकि हमारी मुस्कुराहट जो है ना, वो खुशबू की तरह बिखर कर औरों के चेहरे पर भी मुस्कुराहट ले आती है।

0: और सखियों, हम जानते हैं कि गीत सुनने की तरह ही आपको कहानी सुनना भी बहुत पसंद है। अच्छा कथानक हो, एक सुखद अंत हो और दृश्य इस तरह से रचे गए हों कि ऐसा लगे हम तो इस कहानी के साथ ही चल रहे हैं, ऐसी ही एक प्यारी सी कहानी लेकर आज हम आपके लिए आए हैं। वो सांवली लड़की, ये शीर्षक है इस कहानी का। कहानीकार हैं सुप्रतिष्ठित कहानीकार सुश्री नीरजा वर्मा।
1: रोज शाम को अपने कमरे की बालकनी में बैठे हुए आते जाते लोगों को देखना मेरा प्रिय शगल था। बुजुर्ग, सजी धजी महिलाएं, हंसते खेलते हुए बच्चे, सभी तो गुजरते थे घर के सामने से। इन्हीं सब के बीच एक सांवली लड़की भी थी जिसे मैं रोज देखती थी। उम्र होगी यही कोई 20-22 साल। उसकी सादगी में ऐसा आकर्षण था कि जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो जाती तब तक नजरें उसका पीछा करती थीं। एक दिन उसने नजरें ऊपर उठाई और मुझे अपनी ओर देखते हुए पाया। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी चोरी पकड़ी गई हो। उस दिन के बाद से कई बार हम लोगों की नज़रें आपस में टकराती और इस प्रकार हम लोगों के बीच एक मौन रिश्ता बन गया था। किसी दिन उसे रास्ते से जाते हुए नहीं देखती तो दिन खाली खाली लगता। वो कहाँ जाती है, क्या करती है, मैं कुछ नहीं जानती थी, पर रोज़ उसका इंतज़ार ज़रूर रहता था। कई दिनों से अब उसके साथ उसी की उम्र का एक नौजवान भी कभी कभी उसके साथ दिखने लगा था, शायद उसका दोस्त था। उन दोनों का जोड़ा बहुत अच्छा लगता।

0: मेरे सामने खड़ा था। मैंने उससे कहा, बैठो बेटा। उसकी प्रश्नवाचक निगाहें मुझसे कई सवाल पूछ रही थीं। मैंने उसे ज़्यादा इंतज़ार ना कराते हुए कहना शुरू किया, बेटा आकाश, तुम हैरान होगे कि मैंने तुम्हें क्यों बुलाया। दरअसल तुम मुझे नहीं जानते, पर मैं आरती के ज़रिए तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। बहुत दिनों से आरती दिखाई नहीं दे रही है, मैं बहुत परेशान हूँ उसके लिए। क्या वो बीमार है? पहले तुम दोनों को साथ साथ आते देखती थी। क्या बात है? क्या तुम दोनों का कोई झगड़ा हुआ है? इतने सारे सवाल सुनकर और अपने नाम से किए गए संबोधन से आकाश हैरान था। आंटी, आप मेरे बारे में सब कुछ जानती हैं, और आरती, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कहा, बेटा आरती और मेरा जो रिश्ता है वो शायद तुम नहीं समझोगे, पर बहुत दिनों से आरती को ना देख कर मैं चिंतित हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी बड़ी परेशानी में है, और तुम तो उसके दोस्त हो, तुम्हें तो सब कुछ पता ही होगा, इसीलिए मुझसे रहा नहीं गया और मैंने तुमसे बात करना उचित समझा। आरती यहीं से आती जाती है, करीब करीब रोज़ ही मेरी उससे मुलाकात हो जाती थी, इसलिए हम लोगों ने कभी अपने फ़ोन नंबर आदान प्रदान करने की ज़रूरत नहीं समझी, इसीलिए मैं उससे संपर्क नहीं कर पा रही हूँ। आज तुम देखे तो लगा तुम तो सब कुछ जानते ही होगे। मेरी बातें सुनकर आकाश के चेहरे के भावों से लग रहा था कि उसे सब कुछ समझ में आ रहा है, और मेरी बातों से उसे मेरे और आरती के संबंध का अंदाज़ा भी हो रहा था। धीरे से बोला, आंटी आरती से तो मैं भी बहुत दिनों से नहीं मिला हूँ। अब मैंने संजीदगी से आकाश से कहा, बेटा जिंदगी में कई बार फैसला लेने में इतनी देर हो जाती है कि उसका परिणाम हमें जिंदगी भर भुगतना पड़ता है, और समय पर सही फैसला ना लेने की गलती का एहसास हमें सारी जिंदगी सालता रहता है। मैं नहीं जानती तुम दोनों के बीच क्या परेशानी है, पर अपने तजुर्बे से बस इतना ज़रूर कहूँगी कि अगर वाकई तुम दोनों एक दूसरे को चाहते हो और रिश्ते में गंभीर हो, तो थोड़ी हिम्मत तो करनी ही होगी, वरना सारी जिंदगी इस दर्द, इस कसक को सहने को तैयार रहो। आकाश आश्चर्यचकित नज़रों से मेरी ओर देख रहा था। अब उसे महसूस हुआ कि मुझे सब कुछ मालूम है। बोला, आंटी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत असमंजस में था कि क्या करूं। सच बात तो यह है कि आरती के घर वाले उसका संबंध कहीं और करना चाहते हैं, पर आरती उसका विरोध कर रही है, मेरा इंतज़ार कर रही है वो, और मैं बस इतना कहकर आकाश चला गया। उसके जाने के अंदाज से लग रहा था कि वो निर्णय ले चुका है। कुछ दिनों बाद मैंने आरती और आकाश को साथ देखा। वे दोनों मेरी ओर ही आ रहे थे। पास आकर दोनों ने मेरे पैर छुए। दोनों के चेहरे खुशी से दमक रहे थे। देखकर लग रहा था दोनों एक हो चुके हैं। उनकी कृतज्ञता भरी नज़रें बहुत कुछ कह रही थीं। शब्दों की ज़रूरत ही कहाँ थी। मेरी आंखें भी छलछला आई थीं। दोनों को इस तरह एक साथ देखकर बेहद सुकून मिल रहा था।
1: सखियों, अभी आप सुन रही थी ये कहानी, वो सांवली लड़की। कहानीकार थी नीरजा वर्मा। सखियों, बकरीद का त्यौहार हमारे भारत में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। बकरीद, जिसे ईद उल अजहा या कुर्बानी ईद भी कहते हैं, इस्लाम धर्म का ये एक प्रमुख त्यौहार है। ये रमजान के पवित्र महीने के लगभग 70 दिन बाद इस्लामी कैलेंडर के जिला हिज्जा महीने की 10 तारीख को मनाया जाता है। सखियों, बकरीद पर्व का सामाजिक संदेश भी बहुत व्यापक है, अच्छा है। यह पर्व हमें सिखाता है कि अपनी इच्छाओं और प्रिय वस्तुओं का त्याग करके ही हम इंसानियत की सच्ची सेवा कर सकते हैं। अमीर गरीब सब एक साथ नमाज पढ़ते हैं। कुर्बानी का एक बड़ा हिस्सा गरीबों में बांटा जाता है ताकि वे भी ईद की खुशियाँ मना सकें। बाजारों में रौनक बढ़ जाती है। कई गैर मुस्लिम दोस्त भी अपने मुस्लिम साथियों के घर सेवैयां और बिरयानी खाने जाते हैं। बकरीद सिर्फ जंतु की कुर्बानी का नाम नहीं है सखियों, असल कुर्बानी है अपने लालच, घमंड, झूठ और बुराई की कुर्बानी देना। त्याग, मोहब्बत और भाईचारे का यही पैगाम बकरीद को खास बनाता है।

सखियों, गर्मियों के तपते मौसम में हमें अपनी हरी भरी बगिया सबसे अधिक सुकून देती है। अब ये प्यारी सी बगिया आपकी बालकनी, गैलरी, छत, बरामदा कहीं भी सजी हो सकती है। आप क्रोटन्स पसंद करते हैं या रंग बिरंगे फूलों वाले पौधे, सब कुछ आपकी पसंद पर निर्भर करता है। बगिया के पौधे बस आपका दुलार चाहते हैं और बदले में अपनी ताजगी, खुशबू और प्यार बिखेरते हैं। गर्मी आते ही धूप की तेजी से पौधे मुरझाने लगते हैं, लेकिन थोड़े से प्रयास से लू के मौसम में भी ठंडी और हरी दिख सकती है ये बगिया। सखियों, गर्मियों में पौधों को पानी देने का समय सुबह 6 बजे से 8 बजे और शाम 6 बजे से 7 बजे तक का सही माना जाता है। और हाँ, पानी जड़ में ही दें, सुबह के समय पत्तों पर नहीं, क्योंकि पत्तों पर पानी धूप में लेंस का काम करता है, जिससे कि किरणें पत्तियों को झुलसा भी सकती हैं। पौधों की जड़ों के आसपास सूखी पत्तियां, नारियल के छिलके, लकड़ी का बुरादा या घास बिछा दें। पेड़ों के ऊपर ग्रीन नेट लगाएं। छोटे पौधों को बड़े पौधों की छांव में रखें। गर्मी में सदाबहार, गेंदा, बोगेनविलिया, कनेर, स्नेक प्लांट, एरिका पाम, एलोवेरा, मनी प्लांट जैसे पौधों को लगाना चाहिए। ये लू की गर्मी में भी हरे भरे रहते हैं। सखियों, पौधे भी इंसानों जैसे होते हैं, उन्हें भी गर्मी और सर्दी का

0: एहसास होता है। इन्हें भी लू लगती है, प्यास लगती है। अगर पत्ते मुरझाते हुए कुम्हलाते हुए दिखें तो समझ जाएं कि इन्हें पानी का अमृत और छांव की दरकार है। पंछियों के लिए सकोरे में दाना और पानी रखना भी जरूरी है। इनका घर तो हमारी ये बगिया ही है ना। हमारी बगिया हमसे बहुत अधिक कुछ भी नहीं चाहती, थोड़ी सी देखभाल, प्यार और तेज धूप से बचाओ। घर की सबसे प्यारी जीवंत जगह आपको बार बार अपने पहलू में बुलाएगी। अब महिला सभा कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, तो अपनी सखी सुनीता पाठक को कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम, प्रस्तुति आकाशवाणी ग्वालियर केंद्र की थी।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम। कलाकार है विजय लता पराशर, प्रस्तुति आकाशवाणी ग्वालियर केंद्र की है। इनके गाए कुछ लोकगीत आज आप सुनेंगे। आरंभ में ये दादरा

0: इस देवी गीत के साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। आज आप सुन रहे थे विजयलता पाराशर के गाए कुछ लोकगीत, प्रस्तुति आकाशवाणी ग्वालियर केंद्र की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: सुनिए आकाशवाणी भोपाल पर स्वराज संस्थान संचालनालय का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग, हर गुरुवार सुबह 8:30 पर।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है सुगम संगीत के कार्यक्रम में वैशाली मोघे के गाए कुछ भजन। प्रस्तुति आकाशवाणी ग्वालियर केंद्र की है।

0: इस भजन के साथ ही सुगम संगीत का एक कार्यक्रम समाप्त होता है। आज आप सुन रहे थे वैशाली मोघे के गाए कुछ भजन, प्रस्तुति आकाशवाणी ग्वालियर केंद्र की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब समय है एक अंतराल का।
1: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
2: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
3: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
1: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
2: आकाशवाणी है ना,
4: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
2: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
1: शाम सुहानी हो,
2: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
1: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
2: सफर में
1: आपके साथ
2: आकाशवाणी।

मैं विनय उपाध्याय। आकाशवाणी की यात्रा के 9 दशक पूरे हो रहे हैं। ये सूचना निश्चित रूप से हम जैसे लोगों के लिए बहुत ही खुशी की सूचना है। हम भी आकाशवाणी की इस यात्रा में एक आवाज के रूप में हम सफर रहे हैं। कहते हैं कि नदियों का गोमुख बहुत छोटा होता है। एक छोटी सी झील के रूप में कोई नदी निकलती है अपने अमृत कुंड से और अपनी यात्रा में

0: जन इन तीन पदों को साथ में लेकर आकाशवाणी ने जो अपनी यात्रा शुरू की थी वो नए उत्कर्ष पर पहुंचे। सभी आकाशवाणी से जुड़े साथियों और श्रोताओं को एक बार फिर हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं।
1: सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत दिल धड़कने दो। इस फिल्म का ये गीत है, यशिता शर्मा, मनीष कुमार टीपू और साथियों ने इसे गाया है। जावेद अख्तर ने इसे लिखा है, शंकर एहसान लॉय ने धुन बनाई है।

0: कुमार सानू के गाए फिल्म दिल का क्या कसूर के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। देशभर में बढ़ती गर्मी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर खुद को हाइड्रेटेड रखने, दोपहर की तेज धूप में बाहर निकलने से बचने और घर से निकलते वक्त पानी साथ रखने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि जो प्यासा हो उसे पानी पिलाएं और जानवरों व पक्षियों के लिए भी बाहर पानी रखें। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि परिवार और प्रियजनों का हालचाल पूछते रहें और इन मुश्किल दिनों में संवेदनशीलता के साथ एक दूसरे का ख्याल रखें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम गंगटोक में सिक्किम विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। इस समारोह में 33 विभागों के करीब 14,000 छात्रों को उपाधि दी जाएगी। 285 मेधावी छात्रों को स्वर्ण और रजत पदक से नवाजा जाएगा, जिनमें 199 छात्राएं शामिल हैं। राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे। इससे पहले खराब मौसम के चलते राष्ट्रपति का नाथुला दौरा रद्द करना पड़ा था। खजुराहो के पश्चिमी मंदिर परिसर में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों के तहत योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने 100 दिवसीय काउंटडाउन सीरीज के 25वें कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसमें करीब 2,000 लोगों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि योग और खजुराहो दोनों ही हमारी महान भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग हैं।
1: योग आज केवल व्यायाम नहीं बल्कि वन अर्थ वन हेल्थ की भावना को साकार करने वाला समग्र जीवन दर्शन बन चुका है। मध्यप्रदेश सरकार घर घर योग हर व्यक्ति निरोग इस संकल्प के साथ योग और आयुष को जन जन तक पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। यह अत्यंत प्रसन्नता का विषय है। काउंटडाउन इवेंट के माध्यम से देश भर में लाखों लोग योग से जुड़ रहे हैं और युवा पीढ़ी भी उत्साह से इसको अपना रही है।
0: इस बार 21 जून का मुख्य योग कार्यक्रम कोलकाता में होगा, जिसकी थीम स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग रखी गई है। भोपाल के भारत भवन में आज सदा नीरा समागम का शुभारंभ हुआ। जल संरक्षण, पर्यावरण और भारतीय संस्कृति पर केंद्रित यह 7 दिवसीय कार्यक्रम 2 जून तक चलेगा। इसमें इसरो और काशी हिंदू विश्वविद्यालय जैसी संस्थाओं के विशेषज्ञ विमर्श करेंगे। शाम को नृत्य नाटिका, लोक गायन और नौसेना बैंड की सिम्फनी जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज माता रमाबाई अंबेडकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि माता रमाबाई ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संघर्ष में कंधे से कंधा मिलाकर वंचितों के उत्थान और शिक्षा के प्रसार में अहम भूमिका निभाई। नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में सीबीआई ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। लातूर के डॉक्टर मनोज शिरूरे पर आरोप है कि उन्होंने 3 छात्रों को रसायन विज्ञान के लीक प्रश्न दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। वहीं दूसरे आरोपी पुणे के कोचिंग फैकल्टी तेजस शाह को भौतिक विज्ञान के लीक प्रश्न मिले थे। इस मामले में अब तक 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और 49 जगहों पर छापेमारी की जा चुकी है। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में इन दिनों गर्मी का कहर जारी है। कल 16 शहरों में पारा 44 डिग्री के पार चला गया। खजुराहो में तो पारा 46.4 डिग्री तक पहुंच गया, जो प्रदेश में सबसे ज्यादा रहा। आज भी निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर समेत कई जिलों में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। राहत की बात यह है कि 29 मई से आंधी और बारिश का दौर शुरू हो सकता है और जून के दूसरे हफ्ते तक मानसून भी दस्तक दे सकता है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। छिंदवाड़ा जिले में ग्रीष्मकालीन सर्वे में पूर्व और पश्चिम वनमंडल में कुल 148 गिद्ध दर्ज किए गए हैं। प्रदेश की पुलिस में कंप्यूटर संवर्ग के 89 पदों पर भर्ती के लिए सफल उम्मीदवारों की शारीरिक दक्षता परीक्षा 7-9 जून तक भोपाल के लाल परेड ग्राउंड और जबलपुर के रांझी स्थित परेड ग्राउंड पर होगी। पन्ना में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत 27 मई से 2 जून तक जिले के 191 तीर्थयात्री श्री द्वारका सोमनाथ जी की यात्रा करेंगे और आगरमालवा जिला चिकित्सालय में आयोजित बैठक में आगामी सिंहस्थ के दौरान जिला चिकित्सालय में 300 अतिरिक्त बेड की मांग शासन को भेजे जाने पर चर्चा की गई। इस बुलेटिन पे इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दोपहर के 2:15 होने वाले हैं। अब दोपहर समाचार दिल्ली केंद्र से होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के चुनाव आयोग के फैसले को बरकरार रखा। न्यायालय ने कहा यह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बढ़ते तापमान के मद्देनजर नागरिकों से सावधानी बरतने का आग्रह। मौसम विभाग ने हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण लू की संभावना व्यक्त की। भारत और कनाडा ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब अमरीकी डॉलर तक बढ़ाने के साझा लक्ष्य की पुष्टि की। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमरीका ईरान वार्ता में संभावित मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान की भूमिका की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। उन्होंने इसराइल के प्रति पाकिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे विरोध का हवाला दिया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम एलिमिनेटर मैच में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला होगा। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के तहत SIR करवाने की शक्ति रखता है। एक रिपोर्ट।
2: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन रिट याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया का उद्देश्य स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लक्ष्य को हासिल करना है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा सुनाए गए फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि चुनाव आयोग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के विपरीत थी। न्यायालय ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि इस प्रक्रिया से मतदाता सूचियों में पहले से मौजूद व्यक्तियों की नागरिकता की अनुमानित मान्यता समाप्त हो जाती है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: भारतीय जनता पार्टी ने SIR को पूर्णतः संवैधानिक करार देने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की प्रक्रिया 20 जून से शुरू होगी। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 5 अगस्त को और अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। श्री कुमार ने बताया कि बूथ स्तर के अधिकारी BLO 30 जून से दिल्ली की मतदाता सूचियों के सत्यापन के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे।
3: कमीशन की तरफ से दिल्ली में SIR टाइम शेड्यूल लॉन्च हो चुका है जो कि 20 जून से शुरू होगा और 7 अक्टूबर को हमारा फाइनल इलेक्टोरल रोल पब्लिश होगा। तो इसमें जो हाउस टू हाउस विजिट है BLOs की वो हमारी 30 जून से शुरू होगी और 29 जुलाई तक चलेगी। इस हाउस टू हाउस शेड्यूल में BLO हर इलेक्टर के यहाँ जाएंगे जो भी उनका एड्रेस इलेक्टोरल रोल में है और दो फॉर्म लेके जाएंगे इनुमरेशन फॉर्म। एक फॉर्म में इलेक्टर ने अपनी डिटेल भरनी है और अपने पास रखना है, दूसरा फॉर्म भर के BLO को दे देना है और दोनों फॉर्म पे BLO काउंटर साइन करेंगे एक्नॉलेजमेंट के लिए।
1: दिल्ली के मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि मतदाताओं को

0: भरे हुए जनगणना प्रपत्र ऑनलाइन जमा करने की सुविधा भी मिलेगी। श्री कुमार ने कहा कि सत्यापन प्रक्रिया के हर चरण में जांच पड़ताल की व्यवस्था है। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: SIR का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से न छूटे और कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न हो। मतदाताओं की भागीदारी को सुगम बनाने के लिए जागरूकता अभियान और विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे ताकि मतदाताओं को जनगणना प्रपत्र जमा करने में सहायता मिल सके। आम जनता की सुविधा के लिए दिल्ली में वर्ष 2002 में हुए अंतिम विशेष गहन पुनरीक्षण की मतदाता सूची आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। इस प्रक्रिया में 1 अक्टूबर तक 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। सत्यापन प्रक्रिया के हर चरण में जांच की व्यवस्था रहेगी और राजनीतिक दलों को बूथ स्तर के एजेंटों के माध्यम से इसमें शामिल किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि ट्रांसजेंडर के अधिकारों के संरक्षण संशोधन अधिनियम 2026 के खिलाफ उच्च न्यायालयों में उसकी कई याचिकाएं लंबित हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख करते हुए अनुरोध किया कि स्थानांतरित की जाने वाली याचिकाओं को शुक्रवार को सूचीबद्ध किया जाए। राजस्थान उच्च न्यायालय ने आसाराम बापू को आज आंशिक राहत देते हुए पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत सामूहिक दुष्कर्म, सामूहिक यौन उत्पीड़न और आपराधिक साजिश से संबंधित आरोपों से बरी कर दिया। हालांकि न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत नाबालिग से दुष्कर्म मामले में उसकी सजा को बरकरार रखा है। इस मामले में आसाराम की आजीवन कारावास की सजा जारी रहेगी। उच्च न्यायालय ने आसाराम को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। वो फिलहाल अस्थायी जमानत पर है, जिसे सप्ताह की शुरुआत में 7 दिन के लिए बढ़ा दिया गया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने लोगों से कहा कि वे भरपूर पानी पिएं और घर से बाहर निकलते समय अपने साथ पानी जरूर रखें। उन्होंने सुझाव दिया कि जो भी प्यासा हो उसे एक गिलास पानी जरूर पिलाएं। प्रधानमंत्री ने सभी से यह भी कहा कि वे अपने परिवार और प्रियजनों के संपर्क में रहें और उनका हालचाल पूछते रहें। दोपहर की तेज धूप में बाहर निकलने से बचें और जितना हो सके आराम करें। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि जानवरों और पक्षियों के लिए घरों, बालकनी, छतों, दुकानों या दफ्तरों के बाहर पानी से भरा एक छोटा बर्तन जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने लोगों से इन मुश्किल दिनों में पूरी संवेदनशीलता और करुणा के साथ एक दूसरे का ख्याल रखने का अनुरोध किया। मौसम विभाग ने हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में कुछ स्थानों और दिल्ली में भीषण लू की संभावना व्यक्त की है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, कोंकण और गोवा, ओडिशा, सौराष्ट्र, कच्छ, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और कारिकाल में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच आज राज्य के 5 जिलों में लू की चेतावनी जारी की गई है। एक रिपोर्ट।
2: झुलसाने वाली गर्मी से प्रदेश का ज्यादातर हिस्सा प्रभावित है। जयपुर, कोटा, जोधपुर, नागौर, बीकानेर और दौसा सहित कई शहरों में न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मापा गया। करीब 33 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ कोटा की रात सबसे गर्म रही। भीषण गर्मी और लू को देखते हुए प्रशासन की ओर से सड़कों पर पानी का छिड़काव करने, आश्रय स्थल बनाने और पीने के पानी की व्यवस्था लगातार की जा रही है। चिकित्सा संस्थानों में भी लू और तापघात के मरीजों के लिए बेड आरक्षित करने के साथ आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम गंगतोक में होने वाले सिक्किम विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग भी इस समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट UG 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। CBI ने इस मामले में अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नीट प्रश्न लीक मामले में लातूर के रहने वाले डॉक्टर मनोज शिरोडे को भी गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई के अनुसार उन्होंने एक कोचिंग केंद्र के मालिक के बेटे सहित तीन छात्रों को आरोपी पीवी कुलकर्णी से रसायन विज्ञान के प्रश्न दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। गिरफ्तार किया गया दूसरा आरोपी तेजस हर्षद कुमार शाह है, जो पुणे स्थित एक कोचिंग सेंटर डॉक्टर अभंग प्रभु मेडिकल एकेडमी में फिजिक्स का फैकल्टी है। उसे नीट परीक्षा के लीक हुए भौतिक विज्ञान के प्रश्न के आरोपी मनीषा हवलदार से मिले थे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने केरला में पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के आवास सहित कई स्थानों पर जांच शुरू कर दी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज सुबह से तिरुवनंतपुरम में पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के आवास सहित कई स्थानों पर निरीक्षण शुरू कर दिया है। केरलम में 10 से अधिक जगहों पर तलाशी और निरीक्षण की कार्रवाई चल रही है। हालांकि ईडी की ओर से अब तक इन कार्रवाइयों के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है। इस बीच केरलम हाईकोर्ट ने कल प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी। यह याचिका केरलम के कोच्चि स्थित एक निजी कंपनी के अधिकारियों द्वारा दायर की गई थी। ईडी की जांच उस निजी कंपनी के परिसरों में भी जारी है। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पुलरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा की अपनी यात्रा के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के वरिष्ठ नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाना और कार्यान्वित क्षेत्रों में निवेश तथा तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। इस यात्रा के दौरान श्री गोयल कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू से मुलाकात की। मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब डॉलर तक बढ़ाने के लक्ष्य की पुष्टि की। प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने भारत कनाडा व्यापार को मजबूत करने में कनाडा में रह रहे भारतीय प्रवासियों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया।
4: भारत और कनाडा के बीच साझेदारी की सबसे बड़ी ताकत उनकी मजबूत लोकतांत्रिक नींव है। दोनों देश इस बात पर विश्वास करते हैं कि जब सशक्त संस्थाएं कानून के शासन को मजबूती से कायम रखती है, तब दुनिया के सामने यह एक उदाहरण बनता है कि अच्छे मित्र और भरोसेमंद साझेदार किस तरह साथ मिलकर काम करते हैं। दोनों देशों की सरकारों, संस्थाओं, व्यवसायों और आम लोगों के बीच जो आपसी विश्वास और सहयोग है, वही इस रिश्ते को और अधिक मजबूत बनाता है।
0: संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है। श्री हरीश ने कहा कि पाकिस्तान को यह स्वीकार करना होगा कि सीमा पार आतंकवाद को प्रायोजित करने के परिणाम उसे भुगतने होंगे।
5: पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ युद्ध, बिना उकसावे की आक्रामक कार्रवाइयों और लगातार सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देकर संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है। हजार घाव देकर भारत को कमजोर करने की उसकी नीति आतंकवाद, धार्मिक कट्टरता और भारत विरोधी गतिविधियों को लगातार बढ़ावा देने की उसकी सोच को दर्शाती है।
6: Anti-India rhetoric has continued unabated since its creation.
0: पाकिस्तान का अब्राहम समझौते में शामिल होने से इनकार करने की रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने कड़ी आलोचना की है। रिपब्लिकन सेनेटर ग्राहम ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ईरान से संबंधित किसी भी कूटनीति में पाकिस्तान की भूमिका अनुचित है। आईपीएल क्रिकेट में आज मोहाली के न्यू चंडीगढ़ में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से होगा। विजेता टीम शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस से खेलेगी। फाइनल मैच 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के फैसले को बरकरार रखा। न्यायालय ने कहा यह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बढ़ते तापमान के मद्देनजर नागरिकों से सावधानी बरतने का आग्रह। मौसम विभाग ने हरियाणा मध्य प्रदेश पंजाब राजस्थान उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण लू की संभावना

0: भावना व्यक्त की। भारत और कनाडा ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने के साझा लक्ष्य की पुष्टि की। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया। अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमेरिका ईरान वार्ता में संभावित मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान की भूमिका की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। श्रोताओं, आपके पत्रों द्वारा भेजी पसंद हम शामिल कर रहे हैं। पहला पत्र शामिल किया है कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय की। दुबिया नेवदा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय की। यादव मोहल्ला सनावद मध्य प्रदेश से दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार और मुस्कान की। सुंदरखेड़ राजमाता नगर बुलढाणा महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति नरवाड़े, आकांक्षा नरवाड़े और आकाश कुमार की। सुनना चाहा है दिल है तुम्हारा फिल्म का टाइटल ट्रैक, अलका याग्निक और कुमार सानू और साथ उदित नारायण की आवाज़ है। समीर ने लिखा है, नदीम श्रवण ने स्वरबद्ध किया।

अगला अनुरोध है सलामी फिल्म के लिए। कुमार सानू और अलका याग्निक ने इसे गाया है, समीर का लिखा, नदीम श्रवण ने स्वरबद्ध किया है। सुनना पसंद किया है देवरी भाटापारा से गन्नू लाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा और गणेश मिस्त्री ने। नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका और रॉबिन राणा ने। कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार के मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता।

अगली पसंद शामिल कर रहे हैं छबड़ा राजस्थान से आसिफ अली सिद्दीकी, वाहिद अली सिद्दीकी और शमीम बानो की, घंटा घर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया और संप्रीत पंचोलिया की, सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, असमा सालिया, शुएब खान, पोतरा मुजतबा खान, रऊफ भाई, शाहिद भाई, गाधीबाग गकोला से महेश कटनकर और वैशाली कटनकर, शिवाजी चौक राजिम छत्तीसगढ़ से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव, अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंसी लाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लबी श्रीवास्तव, पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया और बेबी आरजू जाजोरिया, डर फिल्म का गीत लता मंगेशकर और ए हरिहरन ने इसे गाया है, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार शिवहरी।

कार्यक्रम में अगला गीत सुनने की पसंद अपने भेजी है मनमोहन राजावत, राज मधु राजावत, राशि रक्षित, चितरंजन, कमलेश, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, रितिका, रिचा, स्वीटी, सागर, रिया, रीत, ऋषभ राजावत और उनके परिवार के सदस्य महसवाड़ी मलकापुर महाराष्ट्र से शत्रुघ्न धाड़े, वाल्मीकि धाड़े, नीनाजी धाड़े, स्वप्निल धाड़े और अजय खिरोड़कर, गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी पारस, तपस्या करिश्मा कामले, सुनना पसंद किया है। सलाम नमस्ते का टाइटल है, कुमार गाने जय वाला और सुनने वाला। जयदीप सहनी का लिखा है, विशाल शिखर की।

ये थी जानकारी आकाशवाणी भोपाल और आकाशवाणी मध्य प्रदेश से संध्याकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्ज, डीटीएच के ऑडियो चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप और साथ ही वेव्स OTT ऐप पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। इस समय दोपहर के 3:02 होने वाले हैं। हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। शाम 5:00 अपने कार्यक्रमों के साथ मीडियम वेव पर हम पुनः उपस्थित होंगे। अब अनुमति दीजिए, इस बीच हमारा प्रसारण DTH पर जारी है। DTH के ऑडियो चैनल पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम। आज आप सुनेंगे विजयलता पाराशर के गाए कुछ लोकगीत। आरंभ कर रहे हैं इस दादरा के साथ।

0: वो
1: बिल्कुल
0: क्या कहते हैं ना, रिवीजन होते रहना
1: बिल्कुल
0: चाहिए,
1: होते
0: है
1: रहना
0: ना।
1: चाहिए। और गर्मी के ये जो दिन है ना, इसमें पसीना जब बहता है, बहुत ज़्यादा पसीना निकलता है जब हमारे शरीर से, तो बहुत ज़्यादा हमें पानी की कमी अंदर हो जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि हम थोड़ी थोड़ी देर पर पानी पीते रहें, बहुत ज़्यादा मत पिए लेकिन थोड़ा थोड़ा घूट घूट भर के पानी पीते रहें,
0: बिल्कुल।
1: तो शरीर में नमी बनी रहेगी।
0: और ऐसे पेय जो ठंडे होते हैं, तो जैसे कि जलजीरा हो गया है या आम का पन्ना, इसका भी सेवन करते रहें, और अपना गन्ने का रस है इसका
1: हाँ
0: करते रहें, नारियल पानी लेते रहें, ताकि जो खनिज है, मिनरल्स हमारे शरीर में पसीने के साथ साथ निकल जाते हैं, उनकी कहीं पे भी किसी तरह से कोई कमी ना हो, और
1: बिल्कुल
0: ज़रूरत ना हो तो भर दोपहरी में बिल्कुल बाहर ना निकलें,
1: बिल्कुल।
0: है ना।
1: और साथ ही
0: 11 बजे के
1: हाँ
0: बाद से तो ऐसा लगता है कि धूप जैसे तप रही है और
1: बिल्कुल
0: हम 5 मिनट के लिए भी खड़े नहीं हो सकते,
1: जी।
0: लेकिन फिर भी अगर कहीं ऐसा लगता है कि नहीं आज तो जाना ज़रूरी है, तो पूरे तरह से अपने आप को ढक कर जाए, हाथ पे सर पे भी हम स्टोल लगाती हैं महिलाएं, और अब तो बंडाना भी आ गए हैं जो कि हमारे
1: हाँ
0: सखा भाई सब इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत तरह के अलग अलग आ गए हैं, तो उन सबको आप अच्छे से बिल्कुल अपने
1: बिल्कुल,
0: शरीर
1: अपने को
0: पर
1: पूरा ढक के
0: लगा के
1: निकलें,
0: आए
1: जिससे कि
0: जी।
1: धूप जो है वो बहुत ज़्यादा आपको परेशान ना कर सके। और साथ ही आप जैसे खीरा है, ककड़ी है, इस तरीके जो पानी वाले जो फल हैं, जो सैलेड हैं, वो आप ज़रूर खाएं,
0: बिल्कुल
1: और खाने से ज़्यादा आप इनका सेवन करें और पानी पिएं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है
0: जी,
1: इस समय अपने
0: और
1: आप को
0: खाने में
1: बचा के
0: भी
1: रखना।
0: जी, और खाने में भी ऐसा नहीं है भाई, मन क्योंकि छुट्टियों के भी दिन चल रहे हैं ना, बच्चे
1: जी
0: भी आए हैं घर में और मेहमान भी हैं, कुछ ना कुछ तो अलग अलग तरह के व्यंजन तो बनते ही रहते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि
1: जी
0: तला भुना ना हो, पर अगर खाना भी पड़े तो उसको सीमित मात्रा में
1: जी
0: लें,
1: हाँ बिल्कुल
0: और दूसरे दिन कुछ हल्का भोजन, हल्का इस तरह का रेसिपी
1: बिल्कुल।
0: बना
1: और
0: लें
1: कोशिश करें कि हल्का फुल्का ही खाएं,
0: जी।
1: जिससे कि कोई परेशानी ना हो, क्योंकि इस मौसम में अगर हम बहुत गरिष्ठ भोजन करते हैं तो शरीर के ऊपर बुरा असर तो पड़ता ही है, क्योंकि हजम नहीं हो पाता ना वो चीज़।
0: जी
1: तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि थोड़ा हल्का खाना खाएं। अगर एक टाइम आपने भारी भोजन किया है तो आप दूसरे टाइम बिल्कुल हल्का लें,
0: हल्का हल्का
1: सैलेड
0: लें,
1: वगैरह ले
0: और
1: लीजिए।
0: बात जब इतनी व्यंजन की

0: रही है, तो हम ये भी बताते चलते हैं अपना श्रोताओं को, सखियों को, कि आज हम चावल के व्यंजन के बारे में बातचीत
1: बिल्कुल,
0: करेंगे।
1: तरह
0: तो
1: तरह के
0: आपके घर
1: व्यंजन,
0: में जी
1: तरह तरह के चावल के
0: तरह
1: व्यंजन
0: तरह के चावल के व्यंजन
1: जी।
0: आपके घर में कोई स्पेशल बनता है क्या, तो वो जरूर बताइएगा। वैसे संदेश आए हैं,
1: जी
0: पर हम
1: हाँ,
0: चाहते हैं आपके घर में अगर चावल का कुछ ऐसा बनाना हो जाए तो आप क्या बनाएंगी, हमारी सखियां बताएं और हमारे सखा भी बताएं कि उन्हें किस
1: बिल्कुल
0: तरह का
1: बिल्कुल,
0: व्यंजन
1: क्योंकि
0: पसंद है।
1: आजकल सखा भी बनाते
0: हाँ
1: हैं
0: बिल्कुल।
1: हर घर में सखा भी इसमें भोजन बनाने में अपनी पूरी सहायता करते हैं सब कामों में। तो आप बताइए आपको कौन सी ऐसे कौन सा ऐसा व्यंजन है जो बहुत ज़्यादा पसंद है, जो आप बनाते भी हैं और खिलाना आपको पसंद है।
0: बिल्कुल। और आरती, आज हमने हमारे जो भी सखी सहेली परिवार के सारे श्रोताओं को एक शब्द दिया है, आलोचना। तो शब्द यहाँ से स्टूडियो से आए हैं लेकिन आप तक पहुँचे हैं, तो आप बताइए इस
1: जी
0: शब्द आलोचना के लिए आपके क्या विचार हैं, क्या अनुभव हैं और क्या आपको लगता है
1: बिल्कुल,
0: ये
1: आप क्या
0: का
1: सोचते हैं
0: क्या
1: इसके बारे
0: सोचते
1: में,
0: हैं इसके
1: क्योंकि
0: बारे
1: इसको
0: में।
1: सकारात्मक तरीके से भी समझा जा
0: बिल्कुल
1: सकता है और नकारात्मक तरीके से भी इसके पहलू हो
0: बिल्कुल।
1: सकते हैं।
0: और उसकी वजह से कई सारे जिंदगी में हम लोग ने अलग अलग तरह के अनुभव भी सब लोगों ने
1: जी हाँ
0: उसको जिया
1: बिल्कुल,
0: है ना, तो वो जरूर बताइएगा। और साथ में देखिए, बुजुर्गों में जो एक मोबाइल के प्रति प्रेम जो हम देखते आ रहे हैं, हम अपने घर के नीचे गार्डन में या कुछ ऐसा कॉमन एरिया होता है वहां देखते हैं, बड़े मतलब बच्चे तो मोबाइल की तरफ है ही आकर्षित।
1: हाँ,
0: अब जो घर के जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उन्हें भी मोबाइल देखने की आदत बढ़ती चली जा रही है।
1: बहुत ज्यादा।
0: ठीक है, बढ़ रही है आदत, उसके फायदे भी हैं क्योंकि वो सीख भी रहे होते हैं कि टेक्निक क्या है, किस तरह से हम इसका इस्तेमाल करें, अगर हम घर में अकेले हैं तो क्या क्या चीजें हमें इसके लिए जानकारी होनी चाहिए। और कुछ हमारे बड़े ऐसे भी होते हैं वो जो बहुत आसानी से
1: बहुत
0: चल
1: हाँ
0: फिर नहीं
1: बिल्कुल।
0: सकते, तो उनके लिए ये एक मनोरंजन का साधन भी हो जाता है। देखिए, इसके सकारात्मक
1: वही,
0: विचार भी हैं
1: हर चीज
0: और
1: के दो पहलू होते
0: नकारात्मक
1: हैं
0: गुण, हर
1: जी।
0: एक चीज के सिक्के के तो दो पहलू हमेशा होते हैं। तो बहुत सारी राय हमारे श्रोताओं ने तो लिख भेजी, हम चाहते हैं आप और लिख के बताइए
1: कि
0: कि
1: इसमें
0: आपको इसमें
1: नकारात्मक पहलू क्या है
0: क्या
1: इसके
0: है।
1: और
0: जी
1: सकारात्मक क्या है। और
0: जी
1: साथ ही आज हम बात बात करेंगे साड़ियों संसार लेकर आए हैं, तो
0: साड़ियों
1: तरह
0: के
1: तरह की
0: संसार में आज
1: साड़ियां
0: कहाँ चलने वाले हैं,
1: आज हम साड़ी लेकर आए हैं, कलमकारी साड़ी जो आंध्र
0: क्या
1: प्रदेश में
0: बात
1: बहुत
0: है।
1: की है।
0: बहुत सारी सखियों को ये प्रिय होगी साड़ी, मुझे तो पूरा विश्वास है।
1: बिल्कुल,
0: तो बहुत सारे संदेश लिखने हमें हमने अपने श्रोताओं को कह दिए हैं,
1: तो अभी
0: तो
1: गीत सुन लेते हैं पहले।
0: चलो चलते हैं।

0: यही तो सवाल हम आरती से कर रहे हैं कि भाई आरती आप हमारी कौन है?
1: हम आपकी सखी हैं और सभी सखियां जो हैं अब सुन रही हैं उनकी भी सखी हैं, सखाओं के भी।
0: तो हम सबकी हैं सखियां सहेलियां और ये संसार है बातों का, ज्ञान का, मनोरंजन का और गीतों के सफर का, जहाँ बहुत सारी हम बातें करते हैं, बहुत सारी जानकारियां देते हैं। आज हम कलमकारी साड़ियों के बारे में बता रहे हैं।
1: बिल्कुल, साड़ियों के तो बारे में सुनने के लिए वैसे भी हमारी जो सखियां हैं, जो सखा तो इसलिए उतारू रहते हैं कि भाई चलो हम कोई गिफ्ट कर देंगे अपने
0: बिल्कुल।
1: तो इस वजह से तो हम आज लेकर आए हैं कलमकारी साड़ी। तो आंध्र प्रदेश के श्रीकालहस्ती और मसूलीपट्टनम कलमकारी साड़ियों की उत्कृष्ट डिजाइन और सुंदरता के जो जन्म स्थान, मतलब यहीं से ये साड़ियाँ निकली हैं। ये साड़ी कॉटन, मलमल और सिल्क जैसे फैब्रिक में आती हैं और ये पहनने में बहुत ज़्यादा हल्की, आरामदायक और क्लासी लुक देती हैं। क्योंकि हम लोग ऐसी साड़ियाँ ढूंढते हैं ना कि थोड़ी एकदम आरामदायक हो और बहुत ज़्यादा भारी ना हो।
0: बिल्कुल, क्योंकि अब आरती रोज़मर्रा में पहनने की आदत उतनी बची नहीं है ज़्यादातर महिलाओं की, तो उन्हें ऐसा लगता है कि जो बिल्कुल हल्की फुल्की हो, कंफर्टेबल हो और साथ में एक एक जो उनके लुक आए वो
1: हाँ,
0: बहुत
1: एक गरिमामयी
0: लुक आए। तो कलमकारी साड़ियाँ कला और कहानी कहने की परंपरा का संगम है। ये हाथ से बनी होती हैं, ब्लॉक प्रिंटेड डिज़ाइनों के लिए ये साड़ियाँ हमारे देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। इनके अनूठे रूपांकन और जीवंत पैटर्न इन्हें पारंपरिक अवसर और आधुनिक पहनावे दोनों के लिए पसंदीदा बनाते हैं, क्योंकि उसमें जो प्रिंट होती है और हाथ से बनी होती हैं, फूल होते हैं, कहीं पे जानवरों के डिजाइन होते हैं, कहीं पे ज्योग्राफिक पैटर्न होते हैं, तो बहुत
1: बहुत
0: सुंदर
1: बहुत
0: लगती है।
1: सुंदर लगती हैं।
0: जी
1: और कलमकारी शब्द फारसी शब्द कलम और करी से बना है, जो कि यानी कि कलम और कारीगरी,
0: जी
1: जिस तरह से इसमें कारीगरी करते हैं ना, जिसका अर्थ है कलम का शिल्प। ये प्राचीन कला जो शैली है वो 3000 वर्ष से भी ज़्यादा पुरानी है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में उत्पन्न कलमकारी कला में प्राकृतिक रंगों का उपयोग करके जटिल हस्तचित्रण या ब्लॉक प्रिंटिंग का टेक्निक अपनाई जाती है।
0: बिल्कुल, और परंपरागत रूप से अगर देखें तो इन साड़ियों में महाभारत, रामायण, पुराणों के पौराणिक दृश्यों को दर्शाया जाता है। अक्सर इनका उपयोग मंदिरों की पृष्ठभूमि के रूप में किया जाता था। उस समय समय के साथ साथ कला का यह रूप फिर धीरे धीरे विकसित भी हुआ। फिर इसमें पुष्प, पशु और जैसे हम बात कर रहे थे ना, ज्यामिति आकृतियों को, इनको भी सबको शामिल किया गया।
1: बिल्कुल, और इससे कलमकारी साड़ियाँ विभिन्न अवसरों के लिए एक बहुत ज़्यादा बहुमुखी बन गई, मतलब आप किसी भी अवसर पर इनको पहन सकते हैं। पर्यावरण के अनुकूल हैं, प्राकृतिक रंगों के उपयोग से इन साड़ियों को उनके विशिष्ट मिट्टी जैसे रंग और जीवंत रंग मिलते हैं। और कलमकारी डिज़ाइन आमतौर पर सूती, रेशम और यहाँ तक कि ऑर्गेन्जा जैसे कपड़ों पर तैयार किए जाते हैं, जो आरामदायक भी होते हैं और सुंदर भी दिखते हैं।
0: जी, अब एक अगर साड़ी बनानी होती है सखियों, तो उसमें कई तरह के चरण हैं, मतलब बहुत सारे स्टेप्स हैं जिसे पूरा करने के लिए अक्सर हफ्तों लग जाते हैं। अब इनमें जितनी जो मनमोहक कलाकृति है, उसमें कृष्ण रास लीला है, पार्वती विष्णु या महाभारत रामायण के दृश्य चित्रित होते हैं। ये दिव्य आकृतियाँ कलमकारी साड़ियों में एक आध्यात्मिक आकर्षण इसे जोड़ती है।
1: बिल्कुल, और अक्सर लोग जब मंदिर वगैरह जाते हैं तो इनको लेना पसंद करते हैं।
0: जी,
1: और ये

0: पहाड़ी कला के माध्यम से समृद्ध प्राचीन इतिहास को संरक्षित भी करती है। पौधों और सब्जियों से निकाले गए प्राकृतिक रंगों से इसे जीवंत रंग और अनूठी बनावट मिलती है। रंगाई और छपाई की प्रक्रिया के बीच एक निश्चित अंतराल कलमकारी साड़ियों की कारीगरी को और भी ज्यादा जटिल बना देता है।
1: बिल्कुल, और कलमकारी साड़ी बनाने में, एक पीस को बनाने में आप ये समझिए कि 2 से 3 हफ्ता लग जाता है। बेहतर रंग अवशोषण के लिए कपड़ों को धोया जाता है, गोबर और दूध से उपचारित किया जाता है, गुड़ और लोहे के जंग से बने रंग का उपयोग करके वो काली रूपरेखा जो एक उसमें बॉर्डर हमेशा जो इसमें आकृति की बॉर्डर होती है वो काले कलर की होती है, तो वो इस तरह से तैयार की जाती है। फिर जो नेचुरल यानी कि प्राकृतिक रंगों को धीरे धीरे एक एक परत दर परत फिर लगाया जाता है।
0: जी, कितना इतना अलग ही तरीके का एकदम प्रोसेस है
1: हाँ,
0: इसका।
1: और हम देखिए ना जाके दुकान पे फिर कितना बार्गेनिंग करते हैं, हम जानते ही नहीं कि ये साड़ी अगर आप मतलब एक प्योर कलमकारी साड़ी लेने जाते हैं तो कितना उसमें
0: बहुत मेहनत
1: उसमें
0: है।
1: कितनी मेहनत है,
0: और
1: परिश्रम है।
0: बिल्कुल, और पीले रंग के लिए हल्दी का प्रयोग होता है, लाल रंग के लिए अनार का छिलका और नीले रंग के लिए नील। प्रत्येक रंग लगाने के बाद धुलाई और सुखाने की आवश्यकता होती है। कुछ कपड़ों को रंग स्थायी रूप से लगाने के लिए उबाला जाता है। एक बार जब रंग कपड़े पर पूरी तरह से समा जाता है तो कारीगर हाथ से चित्रकारी करके या ब्लॉक प्रिंटिंग द्वारा डिजाइन बनाते हैं।
1: क्या बात है, और कलमकारी डिज़ाइनों को उत्तम फिनिशिंग और बारीकियां देने का काम केवल वर्षों के अनुभव और उत्कृष्ट कौशल वाले कारीगर ही कर सकते हैं। और डिज़ाइनों की रूपरेखा बनाने के लिए एक महीन नोक वाले ब्रश या स्याही से भरे लकड़ी के ब्लॉक का इसमें उपयोग किया जाता है।
0: जी, और रूपरेखा पूरी होने के बाद रंगों को भरा जाता है। फिर रंगों और प्राकृतिक बनावट को पक्का करने के लिए साड़ी को धूप में सुखाया जाता है। अच्छी तरह सूखने के बाद अतिरिक्त रंग को हटाने के लिए कपड़े को दोबारा धोया जाता है। और कलमकारी डिज़ाइन भारतीय पारंपरिक कला और रचनात्मकता की चिरस्थायी विरासत का सम्मान करते हैं।
1: जी, कलमकारी साड़ियाँ आमतौर पर प्राकृतिक रंगों से बनाई जाती हैं, इसलिए इन्हें जब इनकी देखभाल होती है बहुत ध्यान पूर्वक करना चाहिए। इन्हें हमेशा अलग से धोइए, ठंडे पानी और हल्के डिटर्जेंट का प्रयोग करें। साड़ी को ज़्यादा देर तक पानी में न भिगोएं, क्योंकि उसको अगर आपने घर में धोया भी है, ड्राई क्लीनिंग नहीं कराया, घर में धोया भी, तो बस डालना है और बाहर
0: बस
1: निकाल देना
0: हाँ
1: है, और इसे छाया में ही सुखाना है, तेज़ धूप में कभी नहीं सुखाना है, कम आँच पर उल्टी तरफ से ही इस्त्री इसे करना है।
0: बिल्कुल, और सही देखभाल करने पर कलमकारी साड़ियाँ वर्षों तक चलती हैं। समय के साथ ये और भी मुलायम होती जाती हैं और इनके रंग भी बरकरार रहते हैं। क्योंकि सब कुछ हाथ से बनाया जाता है, इसलिए कोई भी दो साड़ियाँ पूरी तरह से एक जैसी नहीं होती। मामूली अंतर ही इसकी प्रामाणिकता का सूचक होता है।
1: बिल्कुल सही कहा, और इसके जो नेचुरल रंग है, आध्यात्मिक डिज़ाइन, कलात्मक प्रक्रिया, समृद्ध परंपरा, संस्कृति और कला का उत्सव मनाते हैं। विकास, सद्भाव, संरक्षण और दिव्य आकर्षण का प्रतीक प्रत्येक कलमकारी साड़ी पीढ़ियों से चली आ रही एक कहानी बयां करती है। और
0: बिल्कुल
1: ये सच में ये साड़ियाँ इतनी सालों तक चलती हैं कि हाँ, नानी माँ को दे सकती है, माँ अपनी
0: बिल्कुल
1: बेटी को दे सकती है, तो आपके लिए एक धरोहर के रूप में ये साड़ी बनकर आती है।

0: हमारा भी कुछ ऐसा ही हाल होता है ना
1: बिल्कुल
0: कि साड़ियों के बिना हमारा मन ही नहीं लगता।
1: मन ही लगता। और अब हम आ जाते हैं अपने अगले विषय पे।
0: हाँ, वो भी तो कुछ ऐसी चीज है जिसके बिना बिल्कुल मन नहीं लगता।
1: मन नहीं लगता है
0: भाई, बात हम सिर्फ बुजुर्गों की या बड़ों की कर रहे हैं, लेकिन सबका हाल कुछ इसी
1: बच्चे
0: तरीके
1: बूढ़े जवान सबका एक ही एक ही है बिल्कुल। जिसके लिए सब लोग मतलब जिसके बिना जी नहीं सकते हैं, वो है मोबाइल।
0: बिल्कुल। और ये स्मार्टफोन ना आरती, हमारे जीवन का जैसे एक अभिन्न अंग सा बन गया है।
1: जी
0: जीवन को आसान बनाने के लिए हम तरह तरह के गैजेट्स पे देखो ना आजकल निर्भर होते ही चले जा रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था, लोग अपने कामों को पूरा करने के लिए एक दूसरे पर विश्वास भी करते थे, लेकिन आज हमारे जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण गैजेट है वो है हमारा
1: स्मार्टफोन। जी, चाहे कॉल करना हो, चैट करना हो, खरीदारी करनी हो, पैसों का लेन देन करना हो या कुछ और, हमारा स्मार्टफोन सब कुछ संभाल लेता है। बुजुर्गों में बढ़ता मोबाइल का जो शौक है वो उनके लिए एक वरदान और अभिशाप दोनों ही हो सकता है। सोशल मीडिया और वीडियो कॉलिंग के जरिए बुजुर्ग अपने दूर रहने वाले बच्चों और रिश्तेदारों से आसानी से जुड़ सकते हैं। इस तरह से कह सकते हैं कि वरदान की तरह है।
0: बिल्कुल सही कहा। और ये किसी भी मेडिकल इमरजेंसी या मदद की ज़रूरत पड़ने पर मोबाइल एक जीवन रक्षक साबित होता है। इसके अलावा मदद पहुंचाने के लिए जीपीएस से उन्हें ट्रैक करना भी आसान हो जाता है। मोबाइल पर वो अपनी पसंद के पुराने गाने हो या भजन हो, धार्मिक प्रवचन हो या समाचार, जो भी चाहें आसानी से देख सुन सकते हैं।
1: बिल्कुल, घर बैठे ऑनलाइन बिल जमा करना, दवाइयाँ मंगाना या बैंकिंग से जुड़े काम करने के लिए उन्हें दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। बस एक क्लिक पर वो सारा काम बिना किसी परेशानी के कर सकते हैं। कई मोबाइल फोन में स्वास्थ्य संबंधी ऐप्स भी होते हैं जिससे बुजुर्ग व्यक्ति अपने स्वास्थ्य की निगरानी भी कर सकते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। और साथ ही दवाओं का समय पता लगा सकते हैं, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं से जुड़ सकते हैं। मोबाइल की ई पुस्तकें भी होती हैं, संगीत वीडियो जैसे कई मनोरंजक गतिविधियों ये हमें प्रदान करते हैं। तो बढ़ती उम्र में दिमाग को भी सक्रिय रखना पड़ता है ना, तो उस वो भी रहता है और मनोरंजन भी हमारे बड़ों को मिलता रहता है।
1: बिल्कुल, और मोबाइल फोन अब महज विलासिता के उपकरण नहीं रह गए हैं, ये जीवन रेखा की तरह बन गए हैं जो बुजुर्गों को अनेक लाभ पहुंचाते हैं। संचार और आपातकालीन सहायता से लेकर ऑनलाइन खरीदारी और बैंकिंग तक, ये उपकरण कई ऐसे फायदे प्रदान करते हैं जो वरिष्ठ नागरिकों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं।
0: बिल्कुल, सभी उपकरणों की तरह तकनीक को समझना और सही तरह से इसका उपयोग करना जरूरी है। लेकिन आज जिस तरह से युवाओं के साथ बुजुर्गों में फोन का प्रेम बढ़ रहा है, वो दूसरों से बातचीत करने के बजाय स्क्रीन देखने में, हम ऐसा देख रहे हैं कि स्क्रीन देखने में समय उनका ज्यादा बीतता है और इससे अवसाद हो सकता है।
1: बिल्कुल, क्योंकि आप बहुत ज्यादा समय तक अगर इन सब चीजों में लगे रहते हैं ना, तो एक जो हमारा जो दिमाग है ना वो उसमें लगे लगे अवसाद का शिकार होने लगता है, डिप्रेशन सा होने लगता है हमें।
0: क्योंकि वो बाहरी दुनिया से ऐसा लगता है जैसे कट से गए और घंटों फोन पे गर्दन झुकाए अगर देखते रहते हैं तो एक किसी और ही दुनिया में चले जाते
1: बिल्कुल
0: हैं।
1: और वो हमारे शारीरिक बनावट पे भी बुरा असर डालता है।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि एक ही तरीके के उसमें हम बैठे रहते हैं, एक तरीके के पोज बनाए हम बैठे होते हैं, तो वो भी बहुत ज्यादा शारीरिक रूप से परेशान करता है। और हम सभी ने बाहर घूमते फिरते देखा ही है कि लोग अपने फोन में इतना मगन रहते हैं कि वो अपने काम का आनंद ही नहीं ले पाते। और जब बुजुर्ग लोग परिवार के साथ समय बिताते हैं या अन्य गतिविधियों में स्क्रीन से चिपके रहते हैं, तो वो खुद को और अपने प्रियजनों को उन यादों से वंचित कर देते हैं जो जीवन का सबसे अनमोल हिस्सा बन सकती थी, जब वो साथ में सबके बैठ के बातें करते करें या बच्चों के साथ में खेलें या उनसे कुछ सवाल पूछें, उन्हें अपने अनुभव बताएं। तो छोटे छोटे बच्चे जो हैं जो खेलते हैं अपने दादी दादा के साथ में, तो वो जो समय है वो उनका रह जाता है।
0: बिल्कुल, वो कहीं छूटता सा चला जा रहा है। एक रिपोर्ट भी आई आरती इसमें कि अब बच्चों की तरह बुजुर्ग में भी फैमिली टाइम के दौरान सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग के साथ साथ AI चैटबॉट से चैटिंग में लगे रहते हैं, ये इस तरह की रिपोर्ट आई है। और एक और रिपोर्ट आई है कि अगर स्मार्टफोन, टैबलेट और TV समेत सारे डिजिटल डिवाइसेस को मिला लिया जाए तो बुजुर्ग लोगों का स्क्रीन टाइम युवाओं से ज्यादा
1: बिल्कुल
0: हो रहा है।
1: ये शोध में सामने आया है कि बुजुर्ग युवाओं से ज्यादा फोन देख रहे हैं और बहुत ज्यादा फोन देखने की वजह से फोन से निकलने वाली जो नीली रोशनी होती है, वो जो ब्लू लाइट कहते हैं जिसे, वो जो नींद लाने वाला हार्मोन होता है वो उसको रोकती है, जिससे रात में ठीक से नींद नहीं आ पाती और सारे दिन की दिनचर्या बिगड़ जाती है। जब हमारी नींद पूरी नहीं होती ना, तो सारा दिन अजीब सा रहता है, बिल्कुल सुस्ती छाई रहती है
0: और हम शिकायतें करते रहते हैं, आज हमारी नींद अच्छे से नहीं हुई, आज हम परेशान से हो रहे हैं। तो एक कहीं कारण ये भी देख लेना चाहिए कि कहीं देर रात तक हम फोन पे तो नहीं बैठे हुए थे।
1: बिल्कुल, और बुजुर्गों में फोन की लत डिजिटल डिमेंशिया भी तनाव वाला भी और तनाव भी पैदा कर रही है, क्योंकि ज्यादा स्क्रीन टाइम से दिमाग पर दबाव पड़ता है, वो भूलने लगते हैं हम चीजों
0: हाँ,
1: को।
0: हाँ ये बात तो है बिल्कुल सही। और भूलने की आदत और चिड़चिड़ापन देखो ना बढ़ता चला जाता है सोशल मीडिया या वर्चुअल दुनिया में समय अधिक बिताने से। वो जो असल की दुनिया है उसमें अकेलापन उनका बढ़ने लग जाता है, डिप्रेशन का कारण बन जाता है फिर ये। इसके अलावा घंटों गलत तरीके से झुक कर बैठे रहना, फोन चलाने से गर्दन, रीढ़ की हड्डी, आप ये देखिए सब में उनमें दर्द की ये शिकायतें करने लगते हैं।
1: और फोन में उलझे रहने के कारण लोग टहलना बंद कर देते हैं जिससे घुटनों के दर्द और मोटापे की समस्या घेर लेती है। और लगातार छोटी स्क्रीन देखते रहने से आंखों में सूखापन, जलन और धुंधलेपन की समस्या भी हो जाती है। और बहुत से बुजुर्ग अक्सर तकनीकी रूप से इतने ज्यादा बहुत ज्यादा जागरूक नहीं होते हैं क्योंकि शहरों में छोड़ दीजिए गाँव में या और किसी ऐसी जगहों पर जहाँ पे बहुत ज्यादा वो तकनीकी रूप से उसमें सुदृढ़ नहीं हुए हैं तो वो परेशानियों का कारण भी बन सकता है।
0: बिल्कुल। और डिजिटल साक्षरता की कमी के कारण बुजुर्ग अक्सर ऑनलाइन ठगों के जाल में भी फंस सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और फंस भी जाते हैं। ऐसे में लॉटरी, बैंक या सस्ते सामान के जो लुभावने संदेश आते हैं ना, उसके चक्कर में भी आ जाते हैं। उसके बदले में वो अपनी गाड़ी, जो कमाई होती है मेहनत से कमाया हुआ पैसा, वो सब गवा बैठते हैं। तो बड़ों के पास समय खूब तो रहता है लेकिन ऐसे यूजर्स के लिए कंपनियां एंडलेस गेमिंग के कंटेंट को डेवलप कर रही है।
1: ऐसे
0: तो
1: गेम बना रहे हैं ना वो लोग
0: जी
1: कि जिससे कि वो गेम में लगे रहें, फिर अगला लेवल करना है, अगला लेवल करना है। जैसे कि बच्चों में होता है
0: हाँ,
1: वैसे ही बुजुर्गों के लिए भी अलग तरीके के गेम्स बनाए जाने कि वो अगले लेवल पे जाने के लिए पैसा लगाएं तो जिससे कि उनको
0: तो ये
1: फायदा
0: और उनको लुभावना और आकर्षित करने वाली चीजें हो जाती है और वो फंस जाते हैं उसमें। तो अपनी पैसों को भी संभाल के रखें, वो ध्यान रखें कि हम इन सब चीजों से।
1: और सबसे बड़ी बात है दीपक कि हमको वास्तविक दुनिया से ज्यादा जुड़ना चाहिए बजाय इस तरीके के वर्चुअल दुनिया में रहने के।
0: बिल्कुल। और इसी को लेके देखो ना, कई सारे संदेश हमारे साथियों ने लिख भेजे हैं। ये एक संदेश कहता है कि बड़े बुजुर्गों के हाथ में मोबाइल आने के अनेक फायदे हैं। वो अपने पुराने मित्रों से बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल पर मुलाकात हो जाती है। शरीर साथ नहीं देता है मोबाइल, लेकिन तो साथ देता है, वो आपस में परिवार के साथ भी जुड़े रहते हैं। मोबाइल आने से उन्हें बहुत फायदा हुआ है।
1: बिल्कुल। और एक कविता भी एक हमारी सखी ने लिखकर भेजी है जिसको हम पढ़ लेते हैं। गुजरे हुए जमाने में घर के बड़े बुजुर्ग करते थे चिट्ठी पत्री मुलाकातों का इंतजार, जीवन सीधा साधा था, यारों का मेला भी था, तब गप्पों की नगरी में कोई नहीं अकेला था, सब सुख दुख के साथी थे, होठों पे मुस्काने थी, जब से आए नेट की आंधी सब उसमें उड़ चले, इससे सीखा ज्ञान का पान कर लिया, अब तो व्हाट्सएप चैटिंग करते करते थकते नहीं है उनके हाथ, वीडियो कॉल और सोशल मीडिया में खूब रंग जमाते हैं, हंसी मजाक और किस्से जमकर खूब सुनाते हैं, नींद उड़ गई उनकी लेकिन

0: रातों को भी बतियाते हैं, डर है इतना हमको कहीं ना हो वो बीमार, फ्रॉड कॉल्स में फंसे कभी ना हो जी का जंजाल। डॉक्टर से सब हाल बताकर मिनटों में दवा मंगाते हैं, बुजुर्ग बने हैं बड़े सियाने, दवा खोज कर खाते हैं। उस पीढ़ी से इस पीढ़ी के दौर में वो रम जाते हैं, नए जमाने के संग चलकर वे खूब मजे उड़ाते हैं। ये कविता उन्होंने भेजी है, बहुत
1: क्या बात है,
0: बढ़िया।
1: बहुत सुंदर कविता। और बातों का ये सिलसिला जारी रखते हैं एक अंतराल के बाद।
0: जी।

0: हम अंतराल के बाद एक संदेश सुनते हैं और फिर
1: बिल्कुल
0: बातों का सिलसिला भी
1: जी।
0: जारी रखेंगे।
2: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
3: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
2: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
4: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
2: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
4: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
2: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

0: भारती, हमारे एक श्रोता ने संदेश लिखा है कि भाई देखिए, मोबाइल बड़े हो या बुजुर्ग या बड़े, सबके लिए अच्छा तो नहीं है हर वक्त इसका इस्तेमाल करना,
1: बिल्कुल,
0: पर घर में कुछ कुछ घर के लिए इसमें ये होता है कि क्लेश भी हो जाता है, जैसे कि पड़ोस के बुजुर्ग हमेशा मोबाइल पर भजन कीर्तन सुनते रहते हैं और वो भी थोड़ी ऊंची आवाज़ में, हमेशा उनका मोबाइल ऑन रहता है घर में भी, और उनके घर के भी सदस्य चिढ़ जाते हैं और इसी तरह बातों को लेकर के माहौल कुछ गर्म हो जाता है। वो ये कहती हैं कि अगर आपके पास, आप उनके पास प्यार से उनको ये कह दिया जाए कि 2 घंटे मोबाइल बंद कर दीजिए, बच्चों का पढ़ने का समय है, या 2 घंटे आप हमारे साथ बैठिए बातें कीजिए, तो उन्हें लगता है हमारे सखी को वो हमेशा मोबाइल पर नहीं बैठे रहेंगे। और साथ में ये भी कहती हैं कि कुछ गलती उनकी भी नहीं है, या यूं कहिए कि कुछ इस तरह की समस्याएं हो जाती है, जैसे मोबाइल पर पूरा वॉल्यूम इसलिए उस पर सुनते हैं क्योंकि उन्हें कम सुनाई देता है। साथ में कहती हैं फ़ायदा तो मुझे यही नज़र आता है कि कुछ कुछ बातें करते रहते हैं, भजन कीर्तन सुनते रहते हैं, कभी कभी फिल्में भी देख लेते हैं, तो ठीक है, अति हर चीज़ की बुरी होती है, उसके चलते उनकी आंखों में भी प्रॉब्लम हो जाती है, उनकी आंखों में ड्राइनेस आ जाता है, तो जब समय पर दवा नहीं मिलती तो उसके लिए भी वो हल्ला करते हैं, तो हर चीज़ का एक संतुलन उन्हें ज़रूरी है।
1: ये जो चीज़ें हैं इनकी, ऐसा नहीं कि सिर्फ बुज़ुर्गों के लिए, बड़े लोगों के लिए ही बुरी हैं, अगर कोई इफ़ेक्ट होता है, अगर कोई साइड इफ़ेक्ट होता है तो सभी के लिए, बच्चे हों उनकी भी आंखों पर ख़राब असर पड़ता है, बड़ों के लिए भी, है ना। तो कहने का मतलब बस इतना है कि आप उस चीज़ को अच्छी तरीके से समझें, समझ के तब उसका उपयोग करें, ताकि आप किसी इस तरीके की चीज़ों में ना फंसें, जैसे गेम्स हैं या इस तरीके के जो विज्ञापन आते हैं, जो लॉटरी निकला या आपके ऐसे इस तरह की चीज़ें आती हैं, तो उसमें ना फंसें, ठीक है। जैसे कि वो इतनी अपनी पूरी उम्र लगा के वो जिस पैसे को कमाते हैं, वो अपनी कमाई को इस तरह गंवा ना दें, बस कहने का ये मतलब है, और बेहतर होगा इस तरीके की चीज़ों को हम समझें।
0: और एक और संदेश आया है कि बुज़ुर्गों में बढ़ता मोबाइल प्रेम और या फ़ायदे, तो वैसे देखें तो मोबाइल का जो सही उपयोग करता है उसके लिए सही है, पर बड़े जो हमारे घर के बूढ़े हैं वो लोग मोबाइल चलाते हैं तो क्या बुराई है, वो कुछ देर कुछ देख लेते हैं, सीखते भी हैं कुछ दुनियादारी की बातें, उनका समय एक तरह से अच्छी तरह से गुजर जाता है, इस उम्र में कुछ बुरा तो वो शायद सीखते भी नहीं हैं, कुछ इस तरह से एक उन्हें लगता है कि एक तरह से अच्छा है मोबाइल फ़ोन बड़े बुज़ुर्गों के लिए।
1: नहीं, बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल, ये हम कह भी ये नहीं कह रहे कि वो कोई चीज़ बुरी है, सिर्फ उन अपने शरीर का ध्यान रखते हुए चीज़ें करें, अपनी आंखों का ध्यान रखते हुए चीज़ें को करें, तो कोई चीज़ इस तरह से बुरी नहीं, बल्कि और फ़ायदेमंद है कि वो अपना दवाइयाँ मंगा सकते हैं, अपना मनोरंजन कर सकते हैं, अपने जो रिश्तेदार हैं या जो जिनसे वो बात नहीं कर पाते, जा नहीं पाते मिलने, उनसे बातें कर सकते हैं, उन्हें देख के बातें कर सकते हैं वीडियो कॉल पर, बहुत फ़ायदे हैं। नुकसान बस इतना है कि बहुत ज़्यादा अगर उसका उपयोग करेंगे तो आँखों में या उसी पोस्चर में एक ही तरीके से बैठे हुए रहेंगे तो शरीर में परेशानी आ सकती है, और दूसरी चीज़ें चलना फिरना, जो आपसी बातें करते हैं वो चीज़ें छूटने लगती हैं कहीं पीछे, और वो इतना पर कभी कभी ऐसा लगता है कि वो उनको लगता है कि हाँ उसको मोबाइल को देखते देखते कि हम ये चीज़ कर पाते काश हम, तो वो अवसाद में भी आने लगते हैं। बस ये चीज़ें जो बुरा असर अगर आप पर नहीं डाल लें तो वो उसका उपयोग बहुत अच्छा है,
0: बिल्कुल सही
1: जब तक आप
0: और जो अकेले रहते हैं घर में सीनियर सिटीजन
1: जी,
0: उनके बच्चे बाहर हैं या नहीं उनके किन्हीं कारणों से उनके साथ रह पाते हैं, तो उनके लिए इसका बहुत फ़ायदा है
1: जी, बिल्कुल,
0: कि वो अपने बच्चों के साथ लगातार संपर्क में रहते हैं, यहाँ तक कि कई कई घरों में वो नहीं CCTV टाइप लगा दी जाती हैं ताकि वो अपने आप को दिखा सकते हैं, अपने बच्चों को भी देख सकते हैं, और टेक्नोलॉजी सीखने में बुराई नहीं है,
1: बिल्कुल,
0: बस अगर उसका सही तरीके से संयमित इस्तेमाल करना
1: के लिए नहीं, बच्चों के लिए भी है, हर इंसान के लिए जो भी इन सब इन गैजेट्स का उपयोग कर रहा है, सभी के लिए चीज़ें हैं
0: जी।
1: और एक हमारे श्रोता हैं जो लिखते हैं कि थोड़ी सी सावधानी रखी जाए तो बुज़ुर्गों के लिए मोबाइल बहुत फ़ायदेमंद होता है, मोबाइल के जरिए वो लोगों से जुड़ पाते हैं और कुछ काम स्वयं कर पाते हैं, जैसे बैंकिंग है, डॉक्टर से परामर्श करना है, टिकट बुक करना है, और बताती हैं कि वो मेरे पापा भी पहले छोटा फ़ोन चलाते थे, लेकिन कुछ वर्ष पहले जब हमने उन्हें स्मार्टफोन लेकर दिया तो उन्होंने बहुत जल्दी उसे चलाना सीख लिया, अब सुबह उठकर उसका सबसे पहले यही काम उनका रहता है कि वो वीडियो कॉल करके अपनी बहन से बात करते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं, इसके अलावा वो विविध आरती भी फोन भी जो होता है उसको भी फोन पर ही सुनते हैं, तो बहुत अच्छी बात है ये।
0: तो चलो विविध भारती का ही कुछ एक गीत सुनते हैं।

0: तो अब हम कहाँ आ गए हैं?
1: अब हम दूसरे सेगमेंट पर आ गए हैं। अपने विषय है हमारा, जो हमने शब्द दिया था अपने श्रोताओं को कि आप इस पर अपने विचार लिखें, वो है आलोचना।
0: बिल्कुल, और बहुत सारे विचार आए हैं, बहुत सारे उन्होंने अपने अपने अनुभव भी साझा किए हैं।
1: जी
0: तो चलिए जानते हैं क्या कहते हैं। ये पहला संदेश कहता है कि अगर सकारात्मक हो तो उसे समीक्षा कहते हैं। किसी किताब, कविता, नाटक, फिल्म या कार्यक्रम की भली या बुरी विशेषताएं सहज सुंदर शब्दों में सूचित करना। आलोचना अगर जानबूझकर नकारात्मक वृत्ति से हो तो उसे कहते हैं बुराई, जिसमें ऐसे आलोचना ही ज़्यादातर दिखाई देती है, जिसमें मत्सर अहंकार की गंध आती है।
1: और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि भाई आज का शब्द आलोचना है, ये एक बहुत ही अच्छा विषय है, और ऐसा देखा जाता है कि लोग वाहवाही तो सुनना चाहते हैं लेकिन आलोचना नहीं, ये लोगों की प्रियता की बात है। फिर वो है ना कि मीठा मीठा गप और तीता तीता थू, आलोचना ऐसे ही तिक्त रसयुक्त ऐसी चीज़ है जो किंतु जो लोग आलोचना सुनने के प्रेमी होते हैं तो वो

0: लोग अपने अपने में उससे कुछ सुधार भी कर लेते हैं। इस दृष्टिकोण से आलोचना एक सुधार का कार्य भी करती है।
1: क्या बात है, अच्छी उन्होंने जानकारी हमें हमारे श्रोता ने लिख भेजी। अब एक ये संदेश कहता है कि आलोचना किसी कार्य के अच्छे और बुरे दोनों पहलू को दिखाती है। ये सिर्फ एक बुराई नहीं बल्कि एक ऐसी प्रतिक्रिया है जो इंसान को अपनी कमियों के प्रति जिम्मेदार बनाती है, उन्हें उनकी कमियों को बताती है और उन्हें दूर करने के लिए मत देती है। ये सिर्फ बुराई नहीं बल्कि इंसान को सुधारने का एक तरीका है।
0: बिल्कुल
1: बिना किसी निष्पक्षता या भेदभाव के होनी चाहिए आलोचना, रचनात्मक होनी चाहिए। आलोचना वैसे भी नहीं होनी चाहिए किसी के साथ आपके रिश्ते अगर बिगड़ जाते हैं, बल्कि मतलब रिश्ते बिगाड़ देता है ये, बल्कि तरीके से की जानी चाहिए कि सामने वाला इंसान उसे अपनी कमी सुधारने के लिए उसके बारे में सुनने का उसको मौका मिले और फिर वो उसे दूर करने में मददगार साबित हो।
0: बिल्कुल एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि आलोचना का सही अर्थ केवल किसी की कमी निकालना नहीं, बल्कि किसी व्यक्ति विचार या कार्य को गहराई से समझकर उसके गुण और दोष को का निष्पक्ष मूल्यांकन करना है। अगर आलोचना सही भावना और अच्छे उद्देश्य से की जाए तो इंसान को आगे बढ़ने और खुद को सुधारने की प्रेरणा देती है। लेकिन जब आलोचना केवल अपमान या निंदा के लिए की जाए तो मन को चोट पहुँचाती है, और हमें आलोचना से घबराने के बजाय उसे सीख की तरह से लेना चाहिए, क्योंकि कई बार हमारी कमियाँ वही लोग बताते हैं जो हमें बेहतर बनता देखना चाहते हैं। और साथ ही हमें अपने किसी भी आलोचना करते समय अपने शब्दों पर विनम्रता और सम्मान बनाए रखना चाहिए, और सच्ची आलोचना वही है जो इंसान को तोड़े नहीं बल्कि उसे और भी बेहतर बनने की राह दिखाए। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने।
1: बिल्कुल सही कहा। और एक संदेश कहता है कि आलोचना तब अच्छी होती है जब मन में कटुता के भाव ना हो, सलाह हो, सुझाव हो, तब आलोचना लाभदायक मार्गदर्शक बन जाती है। सामने वाला हमेशा कृतज्ञ होता है।
0: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि आलोचना किसी भी कार्य के अच्छे और बुरे पहलू दोनों को दिखाती है। ये सिर्फ एक बुराई नहीं है बल्कि एक ऐसी प्रतिक्रिया है जो इंसान को अपनी कमियों के प्रति जिम्मेदार बनाती है, उन्हें उनकी कमियों को बताती है, उनको दूर करने के लिए मत देती है कि आप कैसे दूर कर सकते हैं इस चीज़ को। ये सिर्फ बुराई नहीं बल्कि इंसान को सुधारने का एक तरीका है। ये बिना किसी भेदभाव के होनी चाहिए, और आलोचना रचनात्मक होनी चाहिए। आलोचना वैसे भी नहीं होनी चाहिए कि किसी के साथ आपके रिश्ते बिगाड़ दे, बल्कि इस तरीके से की जानी चाहिए कि वो सामने वाले को अपने कमी को सुधारने में मदद कर सके।
1: तो अब क्या करना चाहिए?
0: एक गीत सुनना चाहिए।
1: चलिए।

0: आरती, देखो हमारे श्रोता कह रहे हैं कि भाई हमारे सिर्फ होश नहीं उड़े हैं, अब हमें कुछ तृप्त भी कीजिए क्योंकि हमें अब कुछ खाने की इच्छा हो रही
1: खाने
0: है।
1: की इच्छा। तो आज हम लेके आए चावल के व्यंजन, जो हमारे श्रोताओं ने खूब अच्छे से बहुत अच्छी ढेर सारी रेसिपी भेजी है, जिसको हम जाके घर पर भी बना सकते हैं। तो
0: पहले पहले रेसिपी कौन सी बताने वाली हैं आप?
1: पहली रेसिपी मैं बताने वाली हूँ, गाजर और चावल की खीर।
0: क्या बात है।
1: मीठी मिठास से शुरुआत करते
0: बिल्कुल।
1: हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए 400 ग्राम गाजर और 1/4 कप चावल और 1.5 लीटर दूध और आधा चम्मच इलायची पाउडर, 10 काजू भीगे हुए, 1 चम्मच घी और स्वाद अनुसार चीनी। आवश्यकता के अनुसार ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हैं, जो भी आपको चाहिए होगा आप वो से ले सकते हैं। और साथ ही इसकी विधि बता देते हैं। तो सबसे पहले गाजर को धोकर कद्दूकस कर लीजिए, फिर छोटे चावल को धोकर 30 मिनट तक पानी में भिगा कर रखें, काजू को भी पानी में भिगा कर रखें, फिर 2 चम्मच चावल और काजू में थोड़ा सा दूध डालकर उसको दरदरा पीस लीजिए। एक तरफ एकदम सिम पर फ्लेम पर दूध को उबलने के लिए रख दीजिए। अब एक कढ़ाई या पैन में 1 चम्मच घी डालकर गर्म कर लीजिए, फिर कद्दूकस किए हुए गाजर को 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर आप भून लीजिए। अब इसे इसमें आप दूध डाल दीजिए और तब तक पकाइए जब तक कि खीर थोड़ी गाढ़ी ना होने लगे। अब इसमें काजू का पेस्ट डालकर 2 मिनट और पकाइए, फिर इलायची का पाउडर और अपनी पसंद के जितने भी आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद हैं वो आप इसको डाल दीजिए और उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। यदि खीर ज़्यादा गाढ़ी लग रही हो तो आप ऊपर से आधा कप दूध डालकर 1 मिनट और पकाइए और स्वाद के अनुसार आप इसमें चीनी डालिए और तैयार है आपकी खीर।
0: क्या बात है। तो देखिए ये खीर बन गई है चावल की। अब हम बता रहे हैं आपको चावल की पिन्नी। इसके लिए लेना है 2 कटोरी चावल का आटा, 1 गिलास दूध, आधा कटोरी चीनी, 5 इलायची, 15 के करीब बादाम, आप इसको घटा बढ़ा सकते हैं, उसी तरह काजू लेना है, 1 सर्विंग स्पून किशमिश और 1 कटोरी देसी घी। बनाना है चावल की पिन्नी के लिए आप चावल के आटे को कोरा भून लें जिससे उसकी नमी निकल जाए, यानी थोड़ा मॉइस्चर उसका बाहर निकल जाए। अब उसमें आधा घी जितना आपने लिया है ना नाप का, उससे आधा घी डालें, 5 मिनट तक उसको भूनना है। फिर 1 गिलास जो दूध लिया है इस आटे में मिक्स करना है धीरे धीरे।
1: अच्छा
0: अब पहले तो थोड़ा सा धीरे और उसके बाद फटाफट फटाफट चलाइएगा ताकि वो दूध उसमें एब्जॉर्ब होने लग जाएगा और इसमें मावे का स्वाद आ जाएगा। और इसी समय चीनी डालें और अच्छे से मिक्स करके धीरे धीरे चीनी मेल्ट होने लगने लगे तब तक आप उसको चलाइए। अब इसके बाद आपके पास जो पाउडर है आप वो पाउडर आप इसमें डाल सकते हैं और फिर आधा घी जो बचा है वो उसमें आप डालिए और फिर से इसमें जो भुने हुए बादाम हैं, काजू हैं जो आपने भून के रखे हुए हैं, चाहे तो भून लीजिए, ना चाहे तो आप थोड़ा दरदरा पीस के भी उसको डाल सकते हैं। और काजू किशमिश को अलग से घी में उसको थोड़ा सा भून लीजिए, वो डाल लीजिए। फिर इलायची को चीनी डालकर मिक्सी जार में पीस लें और ये पीसी हुई इलायची भी इसमें डाल दीजिए और फिर छिलके सहित इसको आप मतलब पीस लीजिए अलग से, तो खूब अच्छे से ये इलायची पाउडर बन जाती है। इसके बाद अब इसमें कटे हुए ड्राई फ्रूट्स जो आपने भून रखे हैं उसको डाल करके अच्छे से मिक्स कर दीजिए। ठंडा होने पर लड्डू इसके बांध लीजिए। आप देखिए कि चावल की जो चावल के आटे की पिन्नी है ये बनकर तैयार हो गई है।
1: बहुत ही बड़े लगते होंगे।
0: हाँ
1: और
0: बिल्कुल।
1: जी बिल्कुल। और अब एक हम छोटा सा एक ले लेते हैं एक रेसिपी।
0: चलिए
1: तो वो मैं बताते हैं कि चावल का डोडा, इसमें बताते हैं कि बहुत ही अच्छा बनता है, जिसमें टमाटर की चटनी या दही के साथ खाया जाता है। ये सादा भी बनता है और हरी लहसुन के पत्ते, हरी धनिया के पत्ते, प्याज के पत्ते, टमाटर, आलू बारीक कटे हुए मिलाकर नमक मिर्च डालकर गूंद लेते हैं और हाथ से थपथपाकर तवे पर सेकते हैं। चाहे तो बेल कर भी बना सकते हैं और बहुत अच्छा लगता है खाने में।
0: चलिए तो हम इसको भी खाकर देखेंगे, बनाकर देखेंगे,
1: जी
0: लेकिन अभी तो सुन लेते हैं हम
1: एक
0: ये
1: गीत।
0: गीत।

0: आरती देखो ना, बातों का सिलसिला तो लगता नहीं कि कहीं खत्म हो सकता है ना, लेकिन हमारा समय की जो सुइयां
1: है समय हमें सीमित समय दिया गया है बात करने के लिए,
0: तो आज तो हम लेते हैं विदा इस वादे के साथ कि कल दो सखियां आकर के फिर ढेर सारी बातें करेंगे और बहुत सारा होगा मनोरंजन। आप सभी को दीपा माहेश्वरी
1: और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।

0: आज के मेहमान कार्यक्रम में आज हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर सुनीता दुबे को। इनसे बातचीत की है आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। आज के मेहमान कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनीता दुबे। बहुत बहुत स्वागत आपका विविध भारती के स्टूडियो में आके। कैसा लग रहा है आपको?
1: बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर, और जो विविध भारती का जो पेनिट्रेशन जो रूरल में है वो शायद ही किसी भी दूसरे रेडियो चैनल का है। और चूंकि हमारे भारत के खुद गवर्नमेंट का है तो इसका जो सेल्फलेस वर्क है वो कभी भी डिनाई नहीं किया जा सकता, और मेरे लिए गौरव की बात है कि आपने मुझे इनवाइट किया है आज।
0: क्या बात है, अपने बारे में सबसे पहले थोड़ा बताइए कि आप किस इलाके से आती हैं और मेडिकल की फील्ड में आप कैसे गई हैं?
1: वैसे तो मेरा इलाका पूरा भारत ही है
0: जी,
1: लेकिन ऑफकोर्स मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप मुंबई में ही हूँ, और ऑफकोर्स बोरीवली ही नज़दीक में आपके स्टूडियो के पास। और क्योंकि हम लोग का नेटिव प्लेस भदोही से है,
0: बनारस के पास
1: पहले बनारस होता था, अभी वो भदोही हो गया क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ डिस्ट्रिक्ट बढ़ गया, और थोड़ी पढ़ाई मेरी वहाँ पे भी हुई है। और एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जहाँ से मैं आई हूँ वहाँ पे लड़कियों का एजुकेशन न के बराबर था। तो आई एम फर्स्ट चाइल्ड टू डू 12th। उसके बाद जो भी पढ़ाई हुई, चाहे वो मेडिकल की हुई या हमारी जितनी पब्लिक वर्क है, वो डेफिनेटली हर एक चीज़ में पहला ही है। लेकिन मैं पहली नहीं हूँ, क्योंकि हमारे स्कूल कॉलेजेस हैं वहाँ पे, हमारे दादाजी ने शुरू किया था सेवाश्रम इंटर कॉलेज, जो 1923 में बनी थी, और उसके माध्यम से, और आज एक डिग्री कॉलेज भी उस गाँव में है जहाँ पे बीएड है, आईएएस ऑफिसर है, डॉक्टर्स हैं, ऐसे लोग वहाँ से पढ़ के बाहर निकल रहे हैं और देश भर में नाम कमा रहे हैं और कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो जरूर मैं पहली थी लेकिन आखिरी नहीं हूँ। और जिस तरह से काम हमारी संस्था, हमारी मेडस्केप इंडिया कर रही है, उसके इंस्पिरेशन से कई लड़कियाँ हर एक फील्ड में, इवन उस कॉलेज के लड़के भी, बहुत सारे देश को डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं।
0: जी, एक ऐसे परिवार से आप आती हैं जिसका ताल्लुक एजुकेशन से है, और मेडिकल फील्ड में आने के दौरान वो क्या फोकस था कि जिंदगी में आगे मेडिकल की दुनिया में क्या करना है?
1: पहले तो पता नहीं था कि डॉक्टर बनेंगे, क्योंकि डैड इतना जानकारी नहीं थी, बट उनके मन में अपने खुद के बाकी मेरे भाइयों को डॉक्टर बनाने की कल्पना रखते थे। और 12th के बाद अच्छे मार्क्स आए और वहाँ से थोड़ी ऐसी चेंज आई, एक्चुअली यू कैन से कि वहाँ पे एक बड़ा रिवोल्यूशनरी चेंज आई मेरी फैमिली में, कि उन्होंने मेडिकल कराना चाहते थे और मैं पायलट बनना चाहती थी। तो डैड बोले कि आपको ड्राइवर क्यों बनना है, नीचे का ड्राइवर ऊपर का ड्राइवर। और जब मैंने बोला कि आप पूछे कि आप क्यों बनना चाहते हो, तो उस टाइम क्या होता है 12th स्टैंडर्ड में, ऐसा भी होता है कि आप थोड़े से जो यूनिफॉर्म पायलट के होते हैं, जो लाइफस्टाइल होती है, वो आपको काफ़ी एज ए नो टीन एजर काफ़ी अट्रैक्ट करती है। तो ऑलवेज एक कल्पना थी कि हम ऐसा करें, तो वो तो नहीं हुआ। लेकिन डेफिनेटली डैड ने बोला वाइट, तो वाइट तो पता चला, एप्रिन भी वाइट होता है, और इमीडिएटली मेरा मेडिकल एडमिशन भी हो गया। तो वहाँ से एक नई दुनिया शुरू हुई जो मेडिकल की, जो काफ़ी सीरियस स्टडीज़ और हार्ड वर्क, आज भी वर्ल्ड की सबसे टफ स्टडी में मेडिकल ही मानी जाती है। और जो कि आई थिंक अगर मेडिकल मैंने नहीं लिया होता और आज जो भी काम कर रही हूँ उसका सारा स्वरूप जो स्टार्ट हुआ है, डेफिनेटली वही उसका एक ओरिजिन था। तो आई थिंक ईश्वर ने ज़्यादा बड़ी प्लानिंग की थी, मेरे छोटे आँखों से उस समय नहीं दिख रही थी, बट आई एम वेरी थैंकफुल और प्राउड कि मैं मेडिकल की।
0: आप रेडियोलॉजी की एक्सपर्ट हैं, और जब आप मेडिकल कॉलेज से निकली तो क्या मिशन था आपके जहन में कि मुझे क्या करना है?
1: एक बहुत क्लियर था कि जो भी मैं करूं वो सेवा हो, ह्यूमैनिटी के ऊपर मेरा पहले से

0: सेंसिटाइज भावनात्मक तरीके से मुझे बचपन में ही पता था कि मैं पब्लिक के लिए काम करूंगी। मेडिकल ने वो जरूर रास्ता दिखा दिया जिसमें ये बता दिया कि आपको जो सेवा है जो आपके मेडिकल के द्वारा बहुत बड़े स्केल में हो सकता है, तो वहाँ से शुरू ही। रेडियोलॉजी की ब्यूटीफुल चीज़ ऐसी है कि हमें सब दिखता है, हम डार्क में भी देख सकते हैं। एक जो शरीर पूरी तरह से नॉर्मल दिखता है उसको स्कैन के द्वारा उसकी एबनॉर्मलिटी बता सकते हैं, कैंसर है या किसी भी तरह का, पेट में पानी भरा हुआ है या बच्चा है, ऐसा ब्यूटीफुल यू नो ब्रांच हमारा जो रेडियोलॉजी आपको विजडम और एनालिटिकल पावर देता है जो आपको देख सकते हो कि प्रॉब्लम कहाँ है। अब जब एक बार आप प्रॉब्लम आपको पता चल जाती है तो आप सॉल्यूशन पे भी उतनी गहरी से काम कर सकते हो। आई थिंक ये जो ब्रांच है वो टोटली मुझे लगता है बहुत ही ब्लेस्ड आइडेंटिफाइड है ईश्वर के द्वारा मेरे लिए, क्योंकि आज भी जो भी हम प्रॉब्लम देखते हैं चाहे वो सोसाइटी में हो हमारे आसपास हो, उसमें सोचने के साथ साथ उसके सॉल्यूशन में भी काम करने की ताकत आई थिंक मुझे MBBS ने और रेडियोलॉजी ने दिया हुआ है।
1: क्या बात है, आगे और बातचीत करेंगे, लेकिन यहां इस कार्यक्रम का पहला गाना हम लेना चाहते हैं, तो बताइए आपकी पसंद का पहला गाना कौन सा होगा?
0: मेरा ऑल टाइम फेवरेट है आशाएं।
1: ओ, इकबाल फिल्म का गाना है।
0: हाँ, ये मुझे बहुत पॉजिटिव फील कराता है और मुझे लगता है कि ये हर एक कॉमन पर्सन से जुड़ी हुई सॉन्ग है और सबसे
1: जी,
0: रिलेट होता है।
1: क्या बात है, सुनते हैं।

0: ये आशाओं से भरा गाना हमने अभी सुना, और मैं जानता हूं कि रेडियोलॉजी की फील्ड में काम शुरू करने के बाद आपने बहुत अलग अलग तरह की मुहिम छेड़ी, जहां आपने डॉक्टरों के भले के लिए काम किया, गर्ल चाइल्ड के लिए काम किया और फिट इंडिया के लिए भी काम किया। तो ये जो आपकी मुहिम है, ये कहाँ से आपके जहन में आया? क्योंकि जो मेडिकल का आपका अपना प्रोफेशन है, ये आपको इतना बिजी रखता है कि बाकी कुछ सोचने का वक्त कैसे मिला आपको?
1: मैं 2007 में प्रोफेसर फॉर्मर APJ कलाम को मिली थी जब प्रेसिडेंट थे. तो उन्होंने बोला था कि आपको, जब वो प्रेसिडेंट नहीं थे तो वो मुंबई में, हम राजभवन में मिले, तब उनका कहना था कि आपको कोई भी, मतलब जो स्पेशली जो भारत में सबसे मेजर प्रॉब्लम है हेल्थ के प्रिवेंशन का, डिसीज़ प्रिवेंशन का, अगर आप रूरल हेल्थ में जाएंगे, मेरे गांव में भी जाएंगे, अगर मैं जाती हूँ 200 पेशेंट देखती हूँ तो उसमें कई पेशेंट ऐसे निकलते हैं, कैंसर के लिए निकलते हैं, एस्थमा के निकलते हैं और स्किन के प्रॉब्लम, छोटे छोटे प्रॉब्लम. तो उनका मन था कि हमने एक न्यू इंडिया का प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, 14 पिलर, और मैं चाहता हूँ कि आप उसमें काम करिए. और चूँकि आप डॉक्टरों के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि मेरे बहुत सारे, पहले ही 2011 में हमारा पहला ऑर्गेनाइजेशन मेडस्केप इंडिया है जो 21 मेडिकल बॉडी को एक साथ लाया, जिसमें हर स्पेशलिटी के लोग, चाहे एलोपैथ हो, होम्योपैथ हो, डेंटल, आयुर्वेदा, फिजियो, ऑल केम टुगेदर.
0: इसका मकसद क्या था मेडस्केप इंडिया का?
1: ये ऐसा मिशन था कि सारे डॉक्टर हर ब्रांच के एक साथ आएं और होलिस्टिक जो मेडिकल है उस पे सहयोग दें और अपनी स्ट्रेंथ, जैसे मैं रेडियोलॉजिस्ट हूँ, मैं अपने रेडियोलॉजी का एक्सपर्टाइज करूँ, कोई कार्डियोलॉजिस्ट है हार्ट के लिए काम करे, होम्योपैथिक प्रिवेंशन में काम करे, आयुर्वेदिक, जो सब एक साथ एकजुट कर आएं और अपने विचारों को, और ऑफकोर्स एक मेरा मिशन भी था सेव द गर्ल चाइल्ड, क्योंकि डॉक्टर अपने आप में ही बहुत बिजी रहते हैं तो उनके पास इतना टाइम नहीं कि कोई और भी सोशल वर्क करें जो उनके फील्ड बाहर हो. तो इसके द्वारा लोगों को जोड़ा. 2008 में हमारा पहला सेव द गर्ल चाइल्ड शुरू हुआ था, क्योंकि वो फीमेल फिटिसाइड से शुरू हुआ था, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश से हैं, राजस्थान हुआ या हरियाणा हुआ, ये सब जगह पे गर्ल चाइल्ड रेशियो, सेक्स रेशियो बहुत लो था 2008 में.
0: जी
1: तो उस विषय को, क्योंकि मैं खुद रेडियोलॉजिस्ट थी, लोग सोनोग्राफी के लिए आते थे तो पहला क्वेश्चन, जो ऑलरेडी मदर हैं, ऑलरेडी जिनको बेटी हैं, वो जरूर पूछती थी कि डॉक्टर मेरा बच्चा क्या है. तो डेफिनेटली वो मुझे इंटरनली, क्योंकि आप खुद लड़की हो, उत्तर भारत से हो, आपने वो लड़कियों की ज़िंदगी देखी हुई है,
0: जी
1: तो आपके मन में था कि आप अपने इस पर्टिकुलर नॉलेज को लोगों को एजुकेट करने के लिए यूटिलाइज करेंगे. तो मेडस्केप का भी एक बड़ा रोल है कि वो डॉक्टरों को इन्वॉल्व करके, पेशेंट जब आते हैं तो उनको किस तरह से उनका माइंड पॉजिटिव करे, गर्ल चाइल्ड के बेनिफिट्स बताएं, गवर्नमेंट्स के प्लान बताएं, किस तरह से उन्हें जोड़ें, ताकि वो अपनी बेटी को पैदा करने के लिए डरे नहीं. क्योंकि आज भी हम बोले या ना बोले, अनजाने में डाउरी है, एजुकेशन का प्रॉब्लम है, फाइनेंस का प्रॉब्लम है, आज भी एक बहुत बड़ा इशू है जो हमारी कम्युनिटी में चलता है. और बेटे को आज भी लोगों ने उसी लेगेसी की तरह देखा हुआ है. डेफिनेटली 2008 में आप जब बोलोगे कि क्या स्थिति थी, और आज 2026 में बोलोगे तो क्या स्थिति थी, वो बहुत, एक देखा जाए तो बहुत बड़ा ट्रांजिशन हुआ है, जो बहुत अच्छा है, क्योंकि सब इन्वॉल्व हो गए इस मिशन में. गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट आया, खुद महिलाओं ने महसूस किया कि मैं लड़की होके कैसे दूसरी लड़की को नेगेटिवली सोचूं, वुमेन में थोड़ा वुमनहुड बढ़ा, महिलाओं के बीच में आपसी सामंजस्य बढ़े, एजुकेशन आया, अवेयरनेस आया. तो डेफिनेटली आज जो लड़कियाँ कर रही हैं वो फ्रीडम है. आज हमारा सोशल मीडिया उन्हें हेल्प कर रहा है, तरह तरह की चीज़ें अवेलेबल है जो स्पॉट पर उनको पावर करती है. पहले ऐसा नहीं था, माँ बाप डरते थे कि एजुकेशन नहीं हुआ, अगर ज़्यादा एजुकेशन हुआ तो उनके एज की लड़का
0: शादी
1: मिलेगा
0: दिक्कत
1: कि,
0: आएगी।
1: हाँ मिलेगा कि नहीं, फिर मिला तो घर अच्छा है कि नहीं, तो उनके कई सारे क्वेरीज थे. बट जिस तरह से एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है इंडिया में, उससे एटलीस्ट पेरेंट्स सोचते हैं कि अगर मेरी बेटी को परिवार नहीं मिला, एटलीस्ट वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है बिकॉज वो एजुकेटेड है, आज भी मेरा मॉरल सपोर्ट रहेगा. बट
0: बिल्कुल
1: उस टाइम नहीं था, जब जो एरा में मैंने जो देखा था एज अ चाइल्डहुड, कि जो लेडीज़ थी वो ज़्यादातर आपको हाउस होल्ड वर्क की ट्रेनिंग देना चाहती थी ताकि आप अच्छे से लोगों को संभाल सको, क्योंकि उनका मानना था

0: कि पेट के द्वारे दिल पे राज करते हैं, उनके मन में ये था। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कुकिंग हाउस होल्ड वर्क को दिखाते थे। ऐसा नहीं कि हाउस होल्ड इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट मुझे लगता है कि वो इक्वली 360 डिग्री का इन्वॉल्वमेंट है, जहाँ पे हाउस होल्ड भी आपको देखना है, एटलीस्ट मैनेज करना है आपको, आपको करियर भी देखना है, आपकी फैमिली भी देखनी है, और आपका कोई मिशन है। वो तभी पॉसिबल है जब आप अपने को उस तरह से प्रिपेयर करते हो, एजुकेशन से, स्किल से, इन्वॉर्मेंट से, सपोर्ट से। तो आई थिंक दैट इज चेंज टूडे।
1: जी, इस संस्था को बनाने और लोगों को इससे जोड़ने के लिए, खासतौर पर एक्सपर्ट्स को जोड़ने के लिए, किस तरह की चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ा?
0: कोई भी रास्ता है वो कभी इजी नहीं होता है। इवन हम घर पे भी अगर एक डिनर भी होस्ट करते हैं तो उसमें कई प्रिपरेशंस होते हैं, कई चैलेंजेस होते हैं, बट एंड रिजल्ट बहुत स्मूथ लगता है। तो मुझे ऐसा मानना है कि जब आप संस्था बनाए थे तो डेफिनेटली वो एजुकेशनल और मेडिकल हेल्प के लिए बनाया था, बट वो धीरे धीरे पूरे जो दायरा है मेडस्केप इंडिया का, वो पूरी मैसिवली मेजर इशू जो भी महसूस हुआ गर्ल चाइल्ड का हुआ, तो आज हम एजुकेशन पे काम करते हैं, शुरू किया था फीमेल फिटिसाइड से,
1: जी
0: स्किलिंग से, सारे हेल्थ के, बट नाउ टुडे वी आर स्पॉन्सरिंग द एजुकेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड। वो कोविड से शुरू किया है, फिर हमारे वी डॉक्टर्स कैंपेन था जो कोविड-19 में काम कर रहा था, और पूरे देश के 17 स्टेट में हमारे मेडिकल के सपोर्ट चल रहे थे। इवन महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ हमारा कोलैबोरेशन था, टेली आईसीयू पूरे स्टेट के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लगे थे। 60% जो डेथ था वो रिड्यूस हुआ टेली आईसीयू डालने के बाद। फिर हमारा फिट महाराष्ट्र गेटवे ऑफ इंडिया पे प्रोग्राम हुआ जो स्पेशली हेल्थ और फिटनेस को अवेयरनेस के लिए हुआ, और फिट महाराष्ट्र बलून फेस्टिवल भी हुआ। और ये मकसद इसलिए था कि जब हम कोविड में वो 2-3 साल जो डिप्रेशन, जो हमारे जो लॉसेस हुए, हमारे जो मेंटल स्टेटस था, हमारी पूरी कम्युनिटी का ओवरऑल, उसमें ये थॉट प्रोसेस था हमारा कि अब नेगेटिविटी जा रही है, बलून रिलीज़ किया, सारे अपने के वर्ड्स लिखे, और पॉजिटिविटी गेटवे ऑफ इंडिया के से आ रही है। ऑफकोर्स पूरी सीएम से, डिप्टी सीएम, हेल्थ मिनिस्टर, सारे एक्टिवली सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि वो कंट्रीब्यूशन जो टेली आईसीयू टेलीमेडिसिन का था उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा था।
1: क्या बात है।
0: तो इसी तरह से हमारा फिट इंडिया भी प्रोग्राम है जो 2014 में शुरू हुआ, पायलट
1: जी
0: प्रोजेक्ट, और फिर उसमें 5 पिलर, ऑफकोर्स कलाम साहब को हमने एज अ मेंटोरिंग, एज अ गाइडेंस रखा। उनका इतना सिंपलिसिटी था और देश के लिए जिस तरह से सोचते थे, मुझे कहीं ना कहीं जरूर इंस्पायर किया, क्योंकि उन्होंने पहला वर्ड बोला था कि आप सिर्फ मेडिकल कम्युनिटी के लिए क्यों कर रहे हो, मेडस्केप नेशनल अवार्ड लाए हो, हैंड राइटिंग कैंपेन डॉक्टर्स का कर रहे हो, इतने सारे डॉक्टरों के लिए ही आपके ज़्यादा दिख रहे हैं, तो वाई डोंट यू थिंक अबाउट 126 बिलियन पीपल, आप उनके बारे में सोचिए। तो आई थिंक वही एक फिट इंडिया का बहुत बड़ा आविष्कार हुआ हम लोगों के द्वारा, और
1: उन्होंने एक तरह से विस्तार दे दिया।
0: हाँ, उन्होंने दिया एक्चुअली मिशन, दिया एक शब्द दिए कि कभी भी आपका विजन इतना छोटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर कितने भी हुए बहुत बड़ी तादाद नहीं है, लेकिन डेफिनेटली वही जो डॉक्टर आज के देश में है वही 140 बिलियन को केयर कर रहे हैं, उसी के सहारे पूरा देश हमारा हेल्दी है, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, चाहे वो प्रिवेंशन हो, चाहे वो मॉडर्न मेडिसिन हमारी खुद की ब्रांच हो। तो आई थिंक एक बड़ा रोल उन्होंने प्ले किया कि एक विचार को उन्होंने एक पिलर बनाया, जो हमारी 5 पिलर, जैसे उन्होंने 14 पिलर बनाया, तो उनसे इंस्पायर करके हमने 5 पिलर प्रोग्राम फिट इंडिया का है।
1: जी, फिट इंडिया के बारे में और भी बात करेंगे। यहाँ आपकी पसंद का एक गाना सुनते हैं।
0: जीतेंगे जीतेंगे ये एक गाना है जो बहुत इंस्पायर्ड करता है, और उसमें हमारे देश की जो एनर्जी है और जो पॉजिटिविटी है इस गाने में मुझे महसूस होता है। जब भी आप देखते हो अच्छा फील होता है, सुनते हो तो भी अच्छा फील होता है। इनफैक्ट हमारे डॉक्टर्स क्रिकेट लीग में वो गाना बहुत बार बार बजता रहता है।
1: अच्छा,
0: हमारे 2012 से हमारा डॉक्टर्स क्रिकेट लीग भी अक्रॉस इंडिया डॉक्टर्स उसको प्ले करते हैं।
1: वाह
0: तीन से
1: वाह,
0: 3,500 डॉक्टर, हर स्पेशलिटी के डॉक्टर, इनफैक्ट नेक्स्ट मंथ भी है, और 2 साल से तो इंटरनेशनली भी हो रहा है। नेक्स्ट हमारा मलेशिया में है, लास्ट ईयर दुबई में था, तो जीत भी रहे हैं। तो आई थिंक जीतेगा वो मुझे बहुत ही प्यारा लगता है गाना, आप
1: बिल्कुल
0: इसे प्ले
1: सुनते
0: कर
1: हैं।
0: सकते हैं।

0: 83 फिल्म का ये गाना हमने सुना जो भारत की जीत की बात करता है, और आप फिट इंडिया कैंपेन चला रही हैं और उसके अलावा ढेर सारे कैंपेन आप अलग अलग चला रही हैं, तो मुझे इसके बारे में और दूसरे कैंपेन के बारे में भी बताइए कि उनके ख्याल किस तरह से आए और कैसे आपने उस दिशा में काम करना शुरू किया, डॉक्टर सुनीता।
1: एक्चुअली अब ये होता है कि जैसे यू हैव क्लियर बहुत विजन है कि प्रॉब्लम अगर कभी दिखती है तो उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचना चाहिए, जैसा कि कलाम साहब का बोलना था। तो जैसे कि CPR जो लाइफ सेविंग ट्रेनिंग प्रोग्राम है, हमारा सबसे बड़ा प्रोग्राम है, और वो इंस्पिरेशन मेरा मेडिकल स्टूडेंट, मैं बॉम्बे हॉस्पिटल में थी कार्डियक डिपार्टमेंट में, तो वहाँ पर मैं ऑलरेडी CPR क्रिटिकल केयर तो हम लोग देखते ही थे, तो वहाँ पे मैंने CPR तो हम लोग डेली करते थे, डीप फिब्रिलेशन ये सब करते थे। तो हमने पहला CPR मैंने गांव में किया था जहाँ पे एक लेडी कोलैप्स हो गई थी।
0: और ऑल क्या हुआ था वो, क्योंकि वो घटना थोड़ा विस्तार से बताइए।
1: ऐसा था कि उनकी फैमिली में एक डेथ हो गया था और जो उनकी वाइफ थी वो जीना नहीं चाहती थी, यंग लेडी थी, एक बेटे के साथ थी, तो वो जीना नहीं चाहती थी तो कूद गई थी। और चूंकि वो कंडोलेंस का टाइम था तो वहाँ पे मैं भी पहुँची थी, और उसी टाइम उनको ऑलमोस्ट गांव वालों लोगों ने डिस्क्लेयर कर दिया कि लड़का तो गया और ये भी गई, लेकिन मैंने वहाँ पे CPR किया, उनके रिलेटिव के द्वारा माउथ टू माउथ ऑक्सीजन दिया और फिर वो सर्वाइव हुई। पास के मेडिकल शॉप से हमने इमरजेंसी मेडिसिन भी मंगाई, उसको दी और सर्वाइव किया, और वो आज एक स्टेबल महिला है। लेकिन उसके साथ ही कई बार ऐसा हुआ कि हम ये BKC हमारे मुंबई में ही, एक बार मैं रोड क्रॉस कर रही थी तो देखा कि एक कार रुकी है, भीड़ रुकी हुई है, बहुत सारे लोग एक आदमी को ज़मीन पर डाल के रोड पर भीड़ लगा के बैठे हैं, तो मुझे रियलाइज़ हो गया था कि वो कोलैप्स हो गया। मैंने उनका पल्स देखा तो पता चला, CPR किया, थोड़ा स्टेबल हुआ, एम्बुलेंस आया और एम्बुलेंस एशियन हॉस्पिटल में लेके गई तो उनकी जान बच गई। ICU ने बोला आपने राइट ली, उनको CPR दिया। दो बार फ्लाइट में भी हुआ, एक इंडिगो फ्लाइट में हुआ, एक और फ्लाइट में हुआ जो दिल्ली से आ रही थी, तो एक पेशेंट कोलैप्स हो गया, तो नॉर्मली बोलते हैं डॉक्टर ऑन बोर्ड फ्लाइट में।

0: तो जब अनाउंस किए तो उसमें मैंने जाके उनको सीपीआर किया, वो स्टेबल हुए। फिर इनफैक्ट दो और पेशेंट की हालत ख़राब हो गई थी वहाँ पे, क्योंकि थोड़ी पैनिक हो जाता है
1: बिल्कुल
0: ना
1: बिल्कुल
0: फ्लाइट में, थोड़ी पैनिक हो जाता है। तो सीनियर सिटीजन को हुआ था, तो वो भी एक जान बचाए। जब फ्लाइट रुकी तो उसको एम्बुलेंस आई, लेके गई। अभी रिसेंटली, बहुत रिसेंटली बैंगलोर जा रही थी, तो वहाँ पे भी जब रनवे शुरू हुआ तभी एक पेशेंट एक लेडी के साथ थी, वो कोलैप्स हो गया, सडनली गिर गए। तो फिर वही होता है ना, डॉक्टर ऑन बोर्ड। तो डॉक्टर सुनीता दुबे गए और उनको सीपीआर किया, स्टेबलाइज किया, और लकली क्या था, रन पे ही था तो उसको रुका गया और पेशेंट को शिफ्ट किए घाटकोपर में। ही वॉज स्टेबल लेटर ऑन। तो
1: लेकिन ये
0: अगर
1: कितनी ज़रूरी है, आपने इतनी सारी घटनाएं बताई कि किस तरह से आपने इमरजेंसी में सीपीआर देके लोगों की जान बचाई। आम जनता के लिए ये अवेयरनेस और ये करते आना, ये सीखना कितना इम्पोर्टेंट है, और इसके लिए आप क्या कर रही हैं?
0: पहले तो कि जो सीपीआर ट्रेनिंग था हमारा, लाइफ सेविंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें हम लोगों ने कई सारे बच्चों को, लिटिल डॉक्टर स्कूल में जो करते हैं बच्चे, अगर सीख लेते हैं, एक बच्चा सीखता है 20 को और सिखाता है, तो हम उसको लिटिल डॉक्टर बनाते हैं। उससे में हमारे दो फायदे होते हैं, एक तो डॉक्टर इंस्पायर्ड होता है कि हाँ मैं लिटिल डॉक्टर हूँ, और आगे भी एजुकेशन के लिए इंस्पायर्ड होते हैं, प्लस वो जान भी बचाते हैं। एक मेरा ही स्टूडेंट जो हमारे ही संस्था के द्वारा सीखा हुआ, जब उनकी प्रिंसिपल सडनली कोलैप्स हुई, इमिडिएटली वो बच्चा तुरंत सीपीआर दिया और वो लेके गए। बाद में लोगों ने पूछा कहाँ सीखा, तो प्रिंसिपल ने कॉल किया कि आप हमारे पूरे स्कूल के लिए करिए। ऐसे होता है, आप लिफ्ट में जा रहे, सडनली कोई कोलैप्स होता है, इट्स वेरी टेक्स वेरी सेकेंड पीपल टू कोलैप्स व्हेन
1: जी जी
0: हार्ट फेल्स। तो यू नो उस टाइम जो इसका है, तो अभी हमने मिशन निकाला हुआ है कि भारत एक ऐसा देश बनना चाहिए कि वो पहला लाइफ सेवर डिक्लेयर हो वर्ल्ड में। तो डेफिनेटली हमने गवर्नमेंट में भी कई चिट्ठी लिखी हुई है, आज से नहीं, 2014 से। तो अभी लास्ट फ्यू ईयर से, जैसे मनसुख मांडविया थे, उन्होंने भी एक्टिवली इस मैटर को लेकर सीपीआर किया। हमारे पास फोटो आए, अभी करंट जो हेल्थ सेक्रेटरीज हैं उन्होंने भी सीपीआर किया। उसके पहले डॉक्टर भारती थी, वो भी एमओएस की मिनिस्टर थी। तो कई लोगों ने सीपीआर को एक्सेप्ट किया, और प्लस मेरी हर प्रोग्राम में सीपीआर स्टेशन होता है।
1: जी जी
0: तो ये सर्टिफाइड प्रोग्राम है, हार्डली 5 मिनट लगता है उसको एक्सप्लेनेशन के लिए। आप कभी भी कार्डियोलॉजी से ऑनलाइन सीख सकते हैं, बट प्रैक्टिकली करने के लिए आप इसको 5 मिनट 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता है। और एक बार सीख लिए तो आप साल में एक बार और रिपीट कर सकते हैं। अगर आप लाइफ में एक भी जान बचा पा रहे हैं, तो ये आपका सबसे बड़ा अचीवमेंट हो जाता
1: कंट्रीब्यूशन
0: है।
1: बिल्कुल
0: और अगर हमारे देश में, अगर देख, पहले 2% ही था, और हमारा टारगेट ये है कि 2030 तक 25% हमारी पॉपुलेशन को सीपीआर आनी चाहिए,
1: जी
0: तो वो एक अच्छा मकसद है। एक ज़माने में, मैं 2000 की बात कर रही हूँ, कि कार्डियोपल्मोनरी रिसैसिटेशन बोलने के लिए लोगों को डिफिकल्ट जाता था। सीपीआर क्या है बहुत एक्सप्लेन करने के लिए टाइम जाता था।
1: जी
0: लेकिन चाहे वो मेरा खुद मेडिकल, मेरी कम्युनिटी हो, या पुलिस हो, या फिर गवर्नमेंट हो, या फिर एक एम्प्लॉई हो, वॉचमैन हो, आज लोग इजीली बोल पा रहे हैं कि सीपीआर करना है। तो
1: लोगों में
0: उस
1: ये अवेयरनेस आई है
0: अवेयरनेस बहुत,
1: कि ये कितनी इम्पोर्टेंट प्रोसेस है।
0: बहुत अवेयरनेस आया हुआ है, बट एडॉप्टेशन नहीं आया है। और इन्वॉल्वमेंट, जैसे कि हमें एक ने बोला, अरे डॉक्टर हम सीपीआर, मुझे तो आता था लेकिन मैं, डर लग रहा था कि मैं उसकी कहीं छाती की हड्डी नहीं तोड़ दूं। तो उसको ये जेन्युइन डर था, तो मैंने बोला देखो, अगर आप सीपीआर नहीं करोगे तो छाती की हड्डी टूटने की भी कुछ फ़ायदा नहीं। हड्डी टूट सकती है और रिपेयर भी हो सकती है, लेकिन जान वापस से नहीं आ सकती है। अगर अभी आप सीपीआर कर रहे हो, और समझो 1 2 3 1 में आपने देखा, पहला तुरंत किसी ने कॉल कर दिया, एम्बुलेंस को बुलाओ, जब तक एम्बुलेंस आएगा तब तक आप सीपीआर करो। एक बार में चेस्ट के कॉर्नर में एक पॉइंट है, वहाँ पे आप 100 बार 1 मिनट में पुश करो, और जब तक करते तब तक एम्बुलेंस आएगा, आपका पेशेंट चला जाएगा। एटलीस्ट आपने एफर्ट तो डाला। अगर आपने 30 से 60% चांसेस है कि डेथ प्रिवेंट हो जाएगा और पेशेंट सर्वाइव हो जाएगा, तो हमें कोशिश करनी चाहिए। हमारे भारत के लोगों में इतनी ताकत है कि चाहे वो चीज़ें जाने या ना जाने, वो कोशिश बहुत करते हैं। मैंने कोविड में वो कोशिश देखी, समाज ने किया, डॉक्टरों ने किया, गवर्नमेंट ने किया, और हम एक हो जाते हैं कभी कभी। तो इस पर्टिकुलर मुहिम में भी अगर आप एक जन की भी जान बचा सकते हो इस 5 मिनट के स्किल से, तो मुझे लगता है। और हमारी संस्था हर कॉर्नर में सिखा रही है, देश के हर कोने में सीपीआर दे रही है, ट्रेनिंग दे रही है और ईजली मॉड्यूल्स हैं, तो मैं टोटली ओपन हूँ कि हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लोग ओपन हैं कि कभी भी सिखाया जा सकता है आपको।
1: बिल्कुल, तो इस कार्यक्रम को देश दुनिया के कोने कोने के लोग सुन रहे हैं।

0: उनसे आप क्या कहेंगी कि वो कैसे CPR सीखें और ज़रूरत पड़ने पर लोगों को दें भी?
1: बहुत ही सिंपल है, इवन ऑनलाइन भी अवेलेबल है, यूट्यूब में भी बहुत अभी एग्रेसिवली ऑल ओवर वर्ल्ड ये फर्स्ट एड की एक टेक्निक है जो हो रही है। तो इसमें बहुत ही छोटा सा प्रोसीजर है, आप सीख कर उसको कर सकते हो, डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस टाइम पे कोलैप्स कोई होता है तो उसकी लाइफ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, न कि डर कि मैंने कोशिश नहीं की।
0: लोग अपने शहरों में किससे सीख सकते हैं ये?
1: आई थिंक जितने भी हॉस्पिटल हैं, जितने भी आसपास हॉस्पिटल हैं, वहाँ पे डॉक्टरों को CPR आता ही आता है, वहाँ पे जाके बैच बना के कर सकते हैं, या फिर हमारे मेडस्केप इंडिया के ऑफिस में फ़ोन करके अगर CPR सीखना चाहते हैं, या हमारे ऑर्गेनाइजेशन medscapeindia@gmail.com पे आप मेल भेजोगे तो हम कैसे कर सकते हैं, वी विल लाइन अप फॉर यू।
0: अच्छा, अब यहाँ पर एक गाना लाइन अप करते हैं।
1: मैं आपको गर्ल चाइल्ड एंथम के लिए बोलूँगी, जो मैंने 2008 में गाना प्लान किया था, लिखा भी था, समीर अंजान जी लिखे थे। तो वो ऐसा गाना था कि बच्चे पेट में से बेटी बोल रही है, 2008 की कल्पना सोचिए कि 2008 में बोल रही है कि मेरी माँ मुझे बचा टाइप, सुनो ऐसे गाना था। सो अभी जो, क्योंकि वो गाना किसी न किसी रिसोर्स की कमी की वजह से नहीं बन पाया, तो जब ये 2026 में बना तो ये टोटली स्टेडियम सेलिब्रेटिंग सॉन्ग था।
0: वाह वाह।
1: और बेटियों का जयकारा जो बेटियों के अचीवमेंट्स को दर्शाता है और लोगों को बताता है कि अब कोई ऐसी जगह नहीं बची जहाँ पे आपकी बेटी अपनी काबिलियत को न साबित करे और सिस्टम का स्ट्रॉन्ग पार्ट न हो। तो बहुत सेलिब्रेटिव सॉन्ग है जिसको हम लोगों ने मिलके बनाया हुआ है, समीर इसमें शान जी ने भी गाया, कई सारे लोग इस गाने को आवाज़ दिए हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है, आप इसको ज़रूर प्ले करिए।
0: बिल्कुल।

0: बहुत ही शानदार गाना हमने सुना डॉक्टर सुनीता, और अब बातचीत को आगे बढ़ाते हुए मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो 2026 और यहाँ से आगे की यात्रा है, इसमें आपका फोकस क्या है, किन चीज़ों पर आप ज़्यादा काम कर रही हैं?
1: वैसे फिट इंडिया में भी कैंसर स्क्रीनिंग और ट्रीटमेंट का था, बट एज आई सेड कि रिसेंटली मेरी मदर इन लॉ को यूट्राइन कैंसर था, तो आई वॉज एबल टू डिटेक्ट अर्ली. तो उनका यूट्रस निकाला, रोबोटिक सर्जरी हुई और वो आज एक हेल्दी और फिट एंड फाइन है. सिमिलरली मेरे फादर को भी रिसेंटली कैंसर हुआ, बट वो आए बहुत लेट, उन्होंने ओवर लुक किया. सो आई एम वर्किंग ऑन अ तारा कैंसर. सो ये एक तारा कैंसर का पोस्टर लॉन्च हो चुका है डॉक्टर्स डे पे, और पूरा ये प्रोग्राम इस कमिंग डॉक्टर्स डे पे आएगा, जिसमें हम लोगों को अर्ली डिटेक्शन से लेके प्रिवेंशन, अवेयरनेस. और आप देखे होंगे, आज मैं सुबह भी जब सोनोग्राफी कर रही थी, आज एक मैमोसोनोग्राफी सुबह में 3 पेशेंट थे जिसमें 2 को सीए था, तो वो जो लेडीज थी उनको पता नहीं था कि मैं बाद में जाऊंगी, अरे कैसे, यू नो, लाइक अभी भी वो स्टिग्मा है
0: जी.
1: जब तक बड़ा गांठ नहीं हो जाएगा, जब तक कुछ इशू नहीं हो जाएगा और तकलीफ बहुत बढ़ जाएगी, तब तक आते नहीं है लोग कैंसर के मामले में. तो ये अर्ली डिटेक्शन से लेके, और कभी कभी पैसे के वजह से भी पेशेंट नहीं आता है, क्योंकि उसे नहीं पता कि अगर उसकी कल डायग्नोसिस हो जाए, अगर उनका रिपोर्ट आ भी जाता है और डायग्नोसिस हो भी जाता है, तो भी पेशेंट उसको छुपाते हैं. वो सोचते हैं कि मेरी इस ट्रीटमेंट की वजह से फैमिली पे बर्डन होगा. पर मेरा आप लोगों को ये बोलना है कि आपको कोई भी बीमारी छुपाने के बदले में डिटेक्शन करनी चाहिए और डॉक्टरों के पास जानी चाहिए, न कि यूट्यूब से, तांत्रिक के पास और यू नो गूगल के पास. ये सब आपकी ट्रीटमेंट का जरिया नहीं है. आपको खुद से जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी अपनी खुद का. मैंने माना है, जो मेरे महसूस में हुआ है, कि जो आपका जो शरीर है वो आपका एक्चुअल में मंदिर है. हम बाहर जाते हैं पूजा करने के, लेकिन ये आपका शरीर ही ईश्वर ने दिया है, जिसको आपको, आपकी जो आत्मा है वो आपकी भगवान है. तो आत्मा के बारे में आपको सोचना है, और उसकी पूजा के लिए जो उसके आसपास जो ईश्वर ने शरीर दिया है, चाहे वो लीवर हो, आपका किडनी हो, या आपका पैनक्रियाज हो, इंटेस्टाइन हो, या एनी बोन, एवरीथिंग, उनकी रख रखाव की जिम्मेदारी आपके ऊपर है. तो आपको उसको अर्ली डिटेक्शन, समय समय पे जांच करना, और शरीर आपका संकेत देता है बीमारी का, और आपको भी मालूम है कि कोई ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है सही नहीं है, नॉर्मल नहीं है. और ये संकेत को अनदेखा मत करिए अपनी जिम्मेदारियों के सामने, कि नहीं नहीं आज मेरे बेटे की शादी हो जाए तब मैं ये करूँगी, अरे मैं उस जगह जाऊँगी उसके बाद करूँगी. कि मैं पेशेंट से सुनती हूँ कि आज रिसेंट जो सुबह की पेशेंट थी, मुझे बोली कि मैंने उनको बोला कि यू हैव अ लंप, उनका 3 सेंटीमीटर का वैस्कुलर लंप था. तो मुझे बोलती नहीं नहीं अरे मुझे तो गांव जाना है, मैं नेक्स्ट मंथ आऊँगी, तब मैं बायोप्सी करूँगी, तब मैं ये करूँगी. मुझे 5-10 मिनट तो उनकी यही बात चली. तो पूरे उसमें उनके हेल्थ का कोई उनका रोल नहीं
0: था, प्रायोरिटी नहीं थी,
1: प्रायोरिटी नहीं दिया था उन्होंने. वो सिर्फ बोली थी, अरे थोड़ा डिस्कम्फर्ट लग रहा था, अब मैं गाँव जा रही हूँ 6 महीने के लिए, तो ऐसे ही जाँच कर लिया. तो यू नो बहुत सारी चीज़ एजुकेटेड होने के बाद, इवन मेट्रो सिटी में फैसिलिटी होने के बाद भी लोग अपना केयर नहीं करते हैं. अगर आप कॉस्मेटिक बोलोगे चले जाएंगे सर्जरी कराने के लिए, बोटॉक्स लगाने के लिए, फेशियल के लिए, ब्लीचिंग, वैक्सिंग, सब चीज़ के लिए, बट अगर हेल्थ का कोई उनका एक नीड है तो वो नहीं जाते हैं. और उस पर कटौती भी करते हैं, क्योंकि मैं एक हॉस्पिटल भी है मेरा, आर्यन हॉस्पिटल, जहाँ पे मैंने देखा है कि लोग अपनी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए इतने बहाने करते हैं, ट्रीटमेंट को टाइमली, उसका फॉलोअप उसके. तो वो मुझे बोलना था कि आप अपने शरीर के संकेत को पहचानिए, और अपनी जानकारी जो भी है मेडिकल की, वो रेगुलर चेकअप पे कर. 30 के बाद आपको साल में हेल्थ चेकअप करना है. अगर आप महिला हैं तो आपको अपने हाथ से अपने ब्रेस्ट को टच करना है, गांठ देखना है, कुछ गड़ तो नहीं रहा है. अगर कुछ लगता है फिर आप क्लिनिकल डॉक्टर के पास जाइए. और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आप किसी झोला छाप या किसी वर्बल, या मेरे पास होता था किसी लेडी की बात में, या जिसको जानकारी ना हो, मेडिकल मॉडर्न जानकारी ना हो स्पेशली आई एम टेलिंग, तो आपको उसको अवॉइड करना चाहिए.
0: आजकल तो क्या हो रहा है कि लोग बहुत सारी रीलें देख लेते हैं और सेल्फ प्रोक्लेम्ड डॉक्टर्स या एक्सपर्ट्स की मदद, या इंटरनेट पर कुछ देख लिया और अपनी डॉक्टरी खुद कर ली. ये बेहद ख़तरनाक है.
1: ये बहुत खतरनाक है। अब एक अभी लास्ट वीक में एक पेशेंट हमारी आई थी, उसको पेट में दर्द था, तो उसने गूगल किया कि मेरे को फोटो उसने गूगल में डाल दिया चैट जीपीटी में। चैट जीपीटी ने बोला उसको कि भाई ये एरिया में यहाँ पे आपका किडनी आता है और आपको किडनी का और वो ओबेसिटी की मेडिसिन ले रही थी, एक मेडिसिन ले रही थी ओबेसिटी, कुछ हर्बा लाइफ ले रही थी, तो उसको एक्चुअली किडनी का कैंसर था।
0: Oh God.
1: लेकिन उसने अपना गूगल इलाज ऑलमोस्ट 6 महीने 7 महीने किए, और जब आई तो काफ़ी टॉक्सिक थी, अभी तो टाटा में भेजा हुआ है। बट मैं ये बोल रही हूँ कि जो लोग होते हैं वो, जो सोशल मीडिया होता है वो एल्गोरिदम पे चल रहा है, वो नंबरिंग पे चल रहा है, वो एक सोल्ड इन्फॉर्मेशन है। ऑथेंटिक जो डॉक्टर्स हैं वो लोग अगर आपको गाइड करते हैं तो, और जब तक आपका डॉक्टर आपको क्लिनिकली न देखे और आपको इन्वेस्टिगेशन आपके क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बाद आपके जो प्रॉब्लम्स हो उसके हिसाब के आपको जांच न कराए और फिर उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट हो, तब तक उसका कोई वैल्यू नहीं है। ये बहुत इम्पल्स जरूर आता है कि हम रील इतना एडिक्टिव है, इट इज़ सो एडिक्टिव एट टाइम यू फॉरगेट, टाइम सेंस भी ख़त्म हो जाता है। बट दीज आर थिंग्स आर मार्केट एंड यू हैव टू यूज़ इट इन अ पॉजिटिव वे। आपको ये सब चीज़ जो अवेलेबल है देश में, गूगल है या फिर इंस्टा है, वो पॉजिटिव चीज़ उसकी यूज़ करनी चाहिए, न कि उसको पूरी तरह से फॉलो करके मिसडायग्नोस करके। क्योंकि आज भी जब हम बैठे रहते हैं तो आजकल बहुत सारे डॉक्टर लिख रहे हैं कि अगर आप गूगल के डॉक्टर से आ रहे हो तो तुम्हारी फीस 6 बार ज़्यादा है, मतलब एज अ जोकिंगली। बट ये ट्रुथ है कि इतना ओवर एजुकेट आते हैं कि जब एक्चुअल डायग्नोस उनको पता चलता है, अरे मुझे तो सिर्फ बीपी गैस्ट्रिक पेन था और कुछ बेसिकली मेरा सोनोग्राफी नॉर्मल आ गया, लेकिन गूगल ने तो बहुत बड़ी बीमारी बता दी आपको
0: जी।
1: आपको तो इतना दूर पहुंचा दिया, आपने दवाई भी ले ली, खा भी लिए। तो बहुत सारे जो काउंटर मेडिसिन जो हम लेते हैं कि मुझे पेट में दर्द है तो साइक्लोस्पाजम ले लिया, कोई और मेडिसिन ले ली, और वो क्लिनिकली आपको किसी एक्सपर्टाइज डॉक्टर ने नहीं लिखी है तो उसके साइड इफ़ेक्ट हुए
0: जी।
1: उस साइड इफ़ेक्ट के चलते ये हुआ, और कितना भी कंट्रोल आप करते हो आज भी काउंटर पे मेडिसिन लिया जा सकता है।
0: बिल्कुल।
1: और जो पेशेंट है भारत के वो जुगाड़ू पेशेंट है, उनको हर जुगाड़ आता है। इवन मेरी मम्मी या मदर इन लॉ, अगर मैंने उनको एक बार पेट की दवाई दर्द की दी है तो नेक्स्ट टाइम मैं गांव में गई तो आधी गांव वो पेट की दवाई दर्द में खा रही थी,
0: सेम दवा।
1: हाँ, सेम दवा। सो ये बहुत ही कॉमन इशू, ये मेरे घर की नहीं है, ये हर घर की है। क्योंकि उनके घर में डॉक्टर है तो उनको पता है कि हाँ ये पेट दर्द का है, ये उल्टी का है और ये दर्द का है, तो वो फिर भी थोड़े डायग्नोस्ड एरिया में जा रहे हैं। बट मेनी ऑफ द हॉस्पिटल से दवाई बची हुई एक्सपायरी दवाई खा लेते हैं पेशेंट, क्योंकि अरे उसमें पैसा गया हुआ है, उससे मोह है। तो ऐसी बहुत सारी डेली बेसिस पे हमारे पास एज अ डॉक्टर केस आता है कि यहाँ पे ये दवाई खा ली और कॉम्प्लिकेशन हो गया। और हॉस्पिटल में जब स्टेज देखा है मैंने डॉक्टर पेशेंट का, उनके ऊपर सारी दवाइयाँ फेल हैं, क्योंकि हर एक चीज़ के लिए उन्होंने अपनी इम्यूनिटी बना ली है। और द टाइम कम्स व्हेन यू नीड द मेडिसिन मोस्ट, उस टाइम आपके ऊपर कोई दवाई नहीं काम कर रही, क्योंकि आउट ऑफ द काउंटर से आपने जो भी दवाई ली उसके साइड इफेक्ट नहीं पता थे, उसके कॉन्ट्रडिक्शंस और उसके यूजेस नहीं पता थे, तो वो कई सारी दूसरे ऑर्गन्स पे डैमेज करके चली आई हैं।
0: बिल्कुल, बहुत ज़रूरी बातें आपने बताई डॉक्टर सुनीता, और यहाँ एक और गाने की जगह है, और मुझे अंदाज़ा है कि अपने पिता से आपको बहुत प्यार रहा है और एक गाना आप उनको डेडिकेट करना चाहती हैं।
1: मेरे डैड बचपन में काफ़ी, जैसे कि डेफिनेटली वो सबके फादर करते हैं, बहुत ट्रैवल करते थे और बहुत सारे काम करते थे, जैसे एक नॉर्मल परिवार का जो जिम्मेदारी होता है वो देखते थे। लेकिन ये बात मुझे इम्पॉर्टेंटली ये फील हो रहा है कि विश्व में जितने भी बच्चे हैं ये रिलेट कर सकते हैं कि जो फादर होते हैं एक आसमान की तरह होते हैं, या आप सोचे एक पहाड़ की तरह होते हैं, और सामने ही होते हैं, हमें दिखता नहीं है। जब वो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि एक

0: बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है, और वो जो वैक्यूम क्रिएट होता है उनके जाने के बाद, वो मतलब ये कभी प्लेस नहीं हो सकता, एक
1: जी
0: डीप वैक्यूम। या आप उनकी बातों से इंस्पायर हों या उनको याद करें, लेकिन वो पेन जो डीप है वो कभी नहीं जाता है। वो प्रैक्टिकली मैंने महसूस किया। और अगर आपके डैड बहुत इंस्पिरेशनल हो, बहुत वेल लर्न हो, तो उनकी बातें आपके कानों में गूंजती रहती हैं, जो कि बहुत प्रैक्टिकल होती है। और आपके माँ बाप को छोड़कर कोई भी आपको वो नहीं बताता जो हार्श है। आपको बहुत पिंकिश लाइफ लोग दिखाएंगे, आप भी बहुत अच्छा सोचते हो, पर जो डैड थे वो आपको रियलिटी चेक कराते थे। तो
1: जी
0: उस टाइम जब वो जाते थे, बहुत जब मिस करते थे एज अ चाइल्ड, तो ये गाना मैं बहुत गाती थी,
1: पापा जल्दी आ जाना,
0: पापा जल्दी आ जाना। ये
1: क्या
0: गाना मुझे
1: बात है,
0: बहुत रिलेट होता था, एंड एज अ किड आई यूज टू सिंग अ लॉट।
1: सुनते ही गाना।

डॉक्टर सुनीता, बहुत सारी बातें हमारी हो रही हैं और आपने बताया कि कितनी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मेडिकल की दुनिया की, जिनको लेकर आप लगातार अवेयरनेस का काम कर रही हैं। अब

0: मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब थोड़ा सा भी खाली वक्त मिलता है तो क्या कर रही होती हैं आप?
1: खाली वक्त में आई प्ले लॉन टेनिस, आई एम अ किक बॉक्सर ऑल्सो.
0: अच्छा
1: सो मोस्टली खाली वक्त एज सच नहीं है, बट डेफिनेट.

श्रोताओं को नमस्कार। मीडियम वेव 374.5 मीटर यानी 801 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 5 बजना चाहते हमारी दूसरी सभा आरंभ होती है। प्रारंभ में आप सुनेंगे न्यूज़ हेडलाइंस।

मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि भारतीय योग परंपरा को सांस्कृतिक मूल्यों से जोड़कर स्वस्थ, जागरूक एवं आध्यात्मिक रूप से समृद्ध समाज के निर्माण की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी क्षेत्रांतर्गत आने वाले 16 जिलों में पीएम सूर्यघर योजना के तहत अब तक कुल 39,975 उपभोक्ता पंजीकृत हुए हैं, जिनके खातों में 311 करोड़ 64 लाख से अधिक की राशि

0: पूर्ण किया जा चुका है। प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत प्राध्यापकों के लिए राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान भोपाल द्वारा 3 से 5 जून 2026 तक भारतीय ज्ञान परंपरा विषय पर 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और विद्युत वितरण कंपनियों ने विद्युत दुर्घटनाओं से बचाव के लिए आमजनों और उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे विद्युत लाइनों, वितरण ट्रांसफार्मरों और अन्य विद्युतीय उपकरणों से किसी प्रकार की छेड़छाड़ न करें। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति है।

कुछ लोग चले जाते हैं मगर विचार अमर हो जाते हैं। जो देश के लिए जिए हों वो दिलों में घर कर जाते हैं। सपनों से जिसने भारत को नई पहचान दिलाई, ऐसे महान नेता को आज हम श्रद्धा सुमन चढ़ाते हैं। युववाणी कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों को सौम्या शिंदे का प्यार भरा नमस्कार। हर शाम की तरह आज भी हम लेकर आए हैं आपके लिए ढेर सारी बातें, नई जानकारियाँ और ऐसे विषय जो हमें अपने देश, समाज और अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाते हैं। आज का दिन बहुत विशेष है। 27 मई का दिन हमारे देश के इतिहास में एक भावुक स्मृति के रूप में याद किया जाता है, क्योंकि आज ही के दिन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, महान स्वतंत्रता सेनानी और आधुनिक भारत के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि मनाई जाती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू केवल एक राजनेता नहीं थे, बल्कि वे एक दूरदर्शी विचारक, लेखक और ऐसे नेता थे जिन्होंने स्वतंत्र भारत के सपनों को दिशा देने का काम किया। उन्होंने उस भारत की कल्पना की थी जो शिक्षा, विज्ञान, लोकतंत्र और एकता के आधार पर दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाए। नेहरू जी का जन्म 14 नवम्बर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। उनके पिता मोतीलाल नेहरू एक प्रसिद्ध वकील थे और उनकी माता स्वरूप रानी नेहरू एक सरल और संस्कारी महिला थीं। बचपन से ही नेहरू जी की पढ़ाई में बहुत ही रुचि थी और उन्हें प्रकृति, इतिहास और विज्ञान में भी विशेष रुचि थी। आगे की पढ़ाई के लिए वे इंग्लैंड गए, जहां उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से शिक्षा प्राप्त की। लेकिन विदेश में रहकर भी उनका दिल भारत के लिए धड़कता रहा। उन्होंने देखा कि किस तरह अंग्रेज भारत के लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं। महात्मा गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर वे स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। आज़ादी की लड़ाई के दौरान उन्होंने कई बार जेल यात्राएं की, कठिनाइयां झेली, लेकिन कभी अपने कदम पीछे नहीं हटाए। कहा जाता है कि सच्चा नेता वही होता है जो अपने देश के लोगों के लिए सपने देखे और उन्हें पूरा करने का साहस भी रखे। नेहरू जी ऐसे ही नेता थे। जब भारत आज़ाद हुआ तब देश गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा और कई समस्याओं से जूझ रहा था। ऐसे समय में उन्होंने आधुनिक भारत के निर्माण की नींव रखी। उन्होंने बड़े बड़े बांधों, फैक्ट्रियों और वैज्ञानिक संस्थानों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा। उनके प्रयासों से IIT, वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र और कई विश्वविद्यालय स्थापित हुए। उनका विश्वास था कि यदि देश को मजबूत बनाना है तो युवाओं को शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाना होगा। नेहरू जी बच्चों से बेहद प्रेम करते थे। बच्चे भी उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहकर बुलाते थे। वे मानते थे कि बच्चे देश का भविष्य है और यदि बच्चों को सही शिक्षा और संस्कार दिए जाएं तो देश का भविष्य उज्जवल होगा। यही कारण है कि उनके जन्मदिन को चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाया जाता है। नेहरू जी ने एक बार कहा था, नागरिकता देश की सेवा में निहित है। यह बात हमें सिखाती है कि केवल अधिकारों की बात करना पर्याप्त नहीं, बल्कि हमें अपने कर्तव्यों को भी समझना चाहिए। आज उनकी पुण्यतिथि पर हमें उनके विचारों को याद करना चाहिए और यह सोचना चाहिए कि हम अपने देश के लिए क्या कर सकते। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने अपने विचारों और कार्यों से देश को नई दिशा दी। देशभक्ति, एकता और अपने वतन के प्रेम के लिए भावना हमेशा उनके व्यक्तित्व में दिखाई देती थी। अब इसी खूबसूरत भावना को और करीब से महसूस करते हैं एक प्रेरणादायक देशभक्ति गीत के साथ। गीत के बाद आगे चर्चा करेंगे भारतीय लोकतंत्र और युवाओं की भूमिका के बारे में।

जब भी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात होती है तो लोकतंत्र और भारतीय राजनीति की चर्चा अपने आप ही शुरू हो जाती है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और इसकी सबसे बड़ी ताकत यहाँ की जनता है। आज़ादी के बाद भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी देश को एकजुट रखना। अलग अलग भाषा, धर्म, संस्कृति और परंपराओं वाले इस विशाल देश को एक सूत्र में बांधना आसान नहीं था, लेकिन नेहरू जी ने लोकतंत्र और संविधान के में विश्वास रखते हुए देश को आगे बढ़ाया। लोकतंत्र केवल चुनाव तक सीमित नहीं है। लोकतंत्र का मतलब है हर नागरिक को अपनी बात कहने का अधिकार, समानता का अधिकार और सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार। लेकिन इसके साथ साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं। आज के समय में सोशल मीडिया और इंटरनेट के कारण जानकारी बहुत तेज़ी से फैलती है। हर दिन हमें हजारों खबरें देखने और सुनने को मिलती हैं, लेकिन हर जानकारी सही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसलिए हमें जागरूक नागरिक बनना होगा और किसी भी खबर पर विश्वास करने से पहले उसकी सच्चाई जांचनी होगी। युवा शक्ति किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत होती है। आज भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में गिना जाता है। यदि हमारे युवा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें तो देश को नई ऊँचाइयों तक पहुँचा सकते हैं। नेहरू जी भी युवाओं पर बहुत भरोसा करते थे। उनका मानना था कि युवा केवल देश का भविष्य नहीं बल्कि वर्तमान की सबसे ऊंची ऊर्जा है। इसलिए युवाओं को राजनीति, समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण में भाग लेना चाहिए। राजनीति का मतलब केवल नेताओं की बहस नहीं होती। राजनीति का संबंध हमारे जीवन की हर सुविधा से जुड़ा होता है। शिक्षा, सड़क

बिजली, पानी, अस्पताल और रोजगार तक। इसलिए देश के हर नागरिक को जागरूक रहना चाहिए। आज कई युवा स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, नई तकनीकों पर काम कर रहे हैं और दुनिया भर में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। यह वही भारत है जिसका सपना नेहरू जी ने देखा था, आत्मनिर्भर, प्रगतिशील और मजबूत भारत। लेकिन यह भी याद रखना चाहिए कि विकास तभी संभव है जब समाज में एकता बनी रहे। धर्म, भाषा और जाति के नाम पर नफरत फैलाना देश को कमजोर करता है। नेहरू जी हमेशा एकता में शक्ति की बात करते थे। आज जरूरत है कि हम एक दूसरे का सम्मान करें और देश हित को सबसे ऊपर रखें। लोकतंत्र की ताकत केवल सरकार से नहीं बल्कि देश के जागरूक नागरिकों और युवाओं से मिलती है। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों और नेताओं ने जिस भारत का सपना देखा था, उसे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आज हम सभी की है। तो आइए देश के प्रति सम्मान और समर्पण की भावना को महसूस करते हैं और इस भावुक गीत के साथ उन्हें याद करते हैं। गीत के बाद बात करेंगे शिक्षा, विज्ञान और युवाओं के सपनों की।

देश की प्रगति की बात हो और शिक्षा का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। पंडित जवाहरलाल नेहरू का मानना था कि शिक्षा ही वह शक्ति है जो किसी भी समाज को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। आज शिक्षा का महत्व पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है। आज का समय प्रतियोगिता का समय है। हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए ज्ञान और कौशल दोनों जरूरी हैं। लेकिन केवल किताबों की पढ़ाई ही काफ़ी नहीं है, हमें व्यवहारिक ज्ञान भी सीखना चाहिए। नेहरू जी वैज्ञानिक सोच को बहुत महत्व देते थे। वे चाहते थे कि भारत अंधविश्वास से ऊपर उठकर विज्ञान और तर्क की राह पर चले। यही कारण है कि उन्होंने वैज्ञानिक संसाधनों और रिसर्च सेंटर की स्थापना पर विशेष ध्यान दिया। आज भारत के वैज्ञानिक अंतरिक्ष में नए कीर्तिमान बना रहे हैं। हमारे देश ने चंद्रयान और मार्स ऑर्बिटर मिशन जैसे मिशनों के जरिए पूरी दुनिया में अपनी क्षमता साबित की है। यह सब शिक्षा और विज्ञान की ताकत का ही परिणाम है। लेकिन शिक्षा का उद्देश्य केवल अच्छी नौकरी पाना नहीं होना चाहिए। शिक्षा हमें एक अच्छा इंसान भी बनाती है। हमें अपने जीवन में ईमानदारी, अनुशासन, दया और संवेदनशीलता जैसे गुणों को भी अपनाना चाहिए। आज डिजिटल युग में पढ़ाई के तरीके बदल गए हैं। मोबाइल और इंटरनेट के जरिए घर बैठे नई चीज़ें सीखी जा सकती हैं। ऑनलाइन क्लास, डिजिटल लाइब्रेरी और एजुकेशनल प्लेटफॉर्म ने शिक्षा को आसान बनाया है। लेकिन तकनीक का सही उपयोग करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम पूरा समय केवल सोशल मीडिया और मनोरंजन में बिताएंगे तो यह हमारे समय और क्षमता दोनों का नुकसान करेगा। इसलिए हमें इंटरनेट का इस्तेमाल सीखने और खुद को बेहतर बनाने के लिए भी करना चाहिए। किताबें आज भी हमारी सबसे अच्छी मित्र हैं। एक अच्छी किताब इंसान की सोच बदल सकती है। नेहरू जी स्वयं भी पढ़ने और लिखने के बहुत शौकीन थे। उन्होंने कई पुस्तकें लिखीं जिनमें द डिस्कवरी ऑफ इंडिया विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इस पुस्तक में उन्होंने भारत के इतिहास, संस्कृति और सभ्यता का सुंदर वर्णन किया है। आज ज़रूरत है कि हम शिक्षा को केवल परीक्षा पास करने का माध्यम ना समझें, बल्कि खुद को बेहतर बनाने का साधन माने। शिक्षा और सकारात्मक सोच ही वह शक्ति है जो इंसान को जीवन में आगे बढ़ने का हौसला देती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी हमेशा युवाओं को बड़े सपने देखने और मेहनत करने के लिए प्रेरित करते थे। आज जब हम विकास और आधुनिकता की बात करते हैं तो एक और महत्वपूर्ण विषय हमारे सामने आता है, पर्यावरण संरक्षण। प्रकृति केवल हमारी ज़रूरत नहीं बल्कि हमारे जीवन का आधार है। स्वच्छ हवा, शुद्ध पानी, पेड़ पौधे और प्राकृतिक संसाधन ही हमें स्वस्थ जीवन देते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी प्रकृति से बेहद प्रेम करते थे। वे मानते थे कि इंसान और प्रकृति का रिश्ता संतुलन और संवेदनशीलता पर आधारित होना चाहिए। उन्होंने बड़े विकास कार्य

के साथ साथ प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर भी जोर दिया था। लेकिन आज तेजी से बढ़ते प्रदूषण, पेड़ों की कटाई और प्लास्टिक के अत्यधिक उपयोग ने पर्यावरण के सामने कई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। गर्मी लगातार बढ़ रही है, मौसम बदल रहे हैं और प्राकृतिक संतुलन प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हम सभी की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। पर्यावरण की रक्षा के लिए हमें अपने जीवन में छोटी छोटी आदतें अपनानी होंगी, जैसे पानी की बचत करना, बिजली का सही उपयोग करना, प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करना और अधिक से अधिक पेड़ लगाना। आज के युवा इस बदलाव में सबसे बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। यदि हर व्यक्ति साल में केवल एक पौधा भी लगाए और उसकी देखभाल करे तो हमारा वातावरण काफ़ी बेहतर हो सकता है। हमें यह समझना होगा कि प्रकृति की रक्षा करना केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है, क्योंकि सुरक्षित पर्यावरण ही आने वाली पीढ़ियों को बेहतर भविष्य दे सकता है। इसी सकारात्मक सोच और प्रकृति के प्रति सम्मान की भावना के साथ सुनते हैं एक खूबसूरत प्रेरणादायक गीत जो हमें जीवन और उम्मीद का संदेश देता है।

आज के समय में एक और महत्वपूर्ण विषय है युवाओं का मानसिक और सामाजिक विकास। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में कई युवा तनाव, चिंता और अकेलेपन जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। कई बार प्रतियोगिता और असफलता का डर युवाओं को निराश कर देता है, लेकिन यह समझना होगा कि जीवन में सफलता और असफलता दोनों ही जरूरी हैं। कई बार प्रतियोगिता और असफलता का डर युवाओं को निराश कर देता है, लेकिन यह समझना होगा कि जीवन में सफलता और असफलता दोनों ही जरूरी हैं। असफलता हमें मजबूत बनाती हैं और आगे बढ़ने की सीख देती हैं। नेहरू जी हमेशा सकारात्मक सोच रखने की बात करते थे। उनका मानना था कि कठिन परिस्थितियों में भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। हमें अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना चाहिए, खेलकूद और योग को जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए और अपने मन की बात अपनों से साझा करनी चाहिए। स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन ही सफलता की असली कुंजी है। इसके साथ साथ हमें समाज के प्रति भी संवेदनशील बनना चाहिए। ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना, पर्यावरण की रक्षा करना और समाज में सकारात्मकता फैलाना हम सभी की जिम्मेदारी है। अगर हर युवा अपने जीवन में एक छोटा सा सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करे तो पूरा समाज बदल सकता है। आपसे बात करते करते समय का पता ही नहीं चलता। घड़ी अब इशारा कर रही है कि विदा लेने का समय हो गया है। आशा है कि आज का यह विशेष कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, पर्यावरण और युवाओं से जुड़े विचारों ने आपको ज़रूर प्रेरित किया होगा। अपने देश से प्रेम करें, अपने कर्तव्यों को समझें और हमेशा सीखते रहने की आदत बनाए रखें। इसी शुभकामना के साथ मैं सौम्या शिंदे आपसे लेती हूँ विदा। आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपने सपनों को पूरा करते रहें। नमस्कार।

0: अभी आप आकाशवाणी ग्वालियर के योगदान से सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश।
1: हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं।

अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। प्रारंभ में सुनिए अमिताभ बच्चन, ऋचा शर्मा को फिल्म बागवां से।

बाग को जन्म देने वाला बागबान, परिवार को जन्म देने वाला पिता, दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं, ना सिर्फ अपने पेड़ से, उसके साए से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है एक रोज जब वो जिंदगी से थक जाएगा, यही साया उसके काम आएगा।

फिल्म हीरो से अभी आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल मनहर उदास को। कार्यक्रम के अंत में सुनिए किशोर कुमार और साथियों को फिल्म नमक हलाल से।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। ये प्रसारण आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से किया जा रहा था। 5:58 होना चाहते हैं, वक्त है न्यूज़ हेडलाइंस का।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। इस समय हमारे स्टूडियोज की घड़ी में संध्या के 5:58 हुए हैं और अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम गंगटोक में सिक्किम विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। समारोह में 33 विभागों के करीब 14,000 छात्रों को उपाधि प्रदान की गई। 285 मेधावी छात्रों को स्वर्ण और रजत पदक से नवाजा गया, जिसमें 199 छात्राएं शामिल रहीं। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में सार्थक पीडीएस योजना को अम्ब्रेला योजना के रूप में जारी रखने की मंजूरी दी है। 16वें वित्त आयोग चक्र के दौरान लागू इस योजना के लिए केंद्र सरकार ने 25,530 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में आज 3 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक भी शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सत्यापन पुष्टि पर्ची से संबंधित दिशा निर्देशों में बदलाव की मांग वाली याचिका पर कहा है कि इस बारे में निर्णय लेने का अधिकार निर्वाचन आयोग का है। न्यायालय ने कहा कि यह तकनीकी मामला है और निर्वाचन आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है। खजुराहो के पश्चिमी मंदिर परिसर में केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 100 दिवसीय काउंटडाउन सीरीज के 25वें कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में करीब 2,000 लोगों ने भाग लिया। और आईपीएल में आज शाम 7:30 मोहाली में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
2: हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 6 बजे हैं। प्रस्तुत है एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: शब्दांग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। कांडला बंदरगाह कच्छ से जगदीश जौहरी जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: जो बदला जा सके उसे बदलिए, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकार कर लीजिए, और जो स्वीकार न किया जा सके उससे दूर हो जाइए, लेकिन हर हाल में खुद को खुश रखिए, क्योंकि खुश रहना आपकी जिम्मेदारी है।
3: बहुत ही सुंदर विचार, आपको धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है पोटिया कलां दुर्ग से संजय कुमार साहू जी का।
2: ग्राम नागर कोहरा जिला राजनंदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू।
3: और पगबंधी जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से कन्हैया लहरे और सेवती लहरे।
2: भदोही उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार विद्यार्थी।
3: ग्राम व पोस्ट बिरखेरा जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से मनीराम पाल, मलखान सिंह पाल।

0: को आज हम किस फूल की बात करेंगे?
1: विमलेश जी, आज हम बात करेंगे ट्यूलिप फूल की। ये भी दुनिया के प्रसिद्ध फूलों में से एक है।
0: वाह जी जी, भला ट्यूलिप फूलों की सुंदरता को कौन नहीं जानता।
1: बिल्कुल।
0: तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पहला प्रश्न श्रोताओं की ओर से मेरा ये है, ट्यूलिप फूल मूल रूप से किस देश का है, यानी इसकी उत्पत्ति का स्थान कहाँ माना जाता है?
1: विमलेश जी, वैसे दुनिया भर में ये माना जाता है कि ट्यूलिप फूल मूल रूप से नेदरलैंड्स या हॉलैंड का है, लेकिन यह सच्चाई नहीं है
0: जी।
1: तो जरा आप ही बताइए श्रोताओं को कि सच्चाई क्या है।
0: जी, श्रोताओं को बताना चाहती हूँ कि दरअसल ट्यूलिप फूल मूल रूप से मध्य एशिया के कजाकिस्तान देश का माना जाता है। यहाँ से ट्यूलिप तुर्की पहुंचा और फिर सारे यूरोप में फैल गया। तो अजीत जी, अब बात करते हैं ट्यूलिप नाम कैसे पड़ा, अब आपकी बारी।
1: जी, अब मेरी बारी। तो बता दूं कि ट्यूलिप शब्द आया है तुर्की और फारसी शब्द दुलबंद से, जिसका अर्थ होता है लंबी पगड़ी। यदि इस फूल की खुली पंखुड़ियों के मोड़ को देखें तो ये सच में मोड़दार लंबी पतली तुर्की पगड़ी जैसा ही दिखता है। 16वीं शताब्दी में जब ये फूल तुर्किस्तान के ओटोमन साम्राज्य में पहुंचा तो राजनयिक और सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित लोगों ने इसके समान दिखने वाली टोपियां बनवाई, जिसे तुलिपा कहा जाता था। बाद में ये शब्द फ्रेंच, डच और अंग्रेजी भाषा में मिलकर ट्यूलिप बन गया।
0: जी, रंग, आकार और पंखुड़ियों के आधार पर इस फूल की 3000 से भी अधिक प्रजातियां दुनिया में पाई जाती हैं। श्रोताओं, आपको बता दें कि ट्यूलिप फूल कई रंगों के होते हैं, जैसे लाल, सफेद, गुलाबी, बैंगनी और नारंगी। लेकिन सबसे प्रसिद्ध और महंगा है काले रंग का ट्यूलिप।
1: जी,
0: ये रात में ही खिलता है, इसलिए इसे क्वीन ऑफ द नाइट कहा जाता है। हर रंग का अर्थ है।
1: जैसे
0: लाल रंग ट्यूलिप प्रेम का, पीला ट्यूलिप मित्रता का,
1: जी,
0: सफेद ट्यूलिप क्षमा और शांति का, और बैंगनी ट्यूलिप राजसी गरिमा का।
1: जी, इसीलिए अक्सर अवसर और भावना के अनुसार ये ट्यूलिप फूल किसी को दिए या भेजे जाते हैं।
0: जी,
1: अविमलेश जी, एक और प्रश्न है मेरे पास जिसका उत्तर हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे, विशेषकर वे जो बागवानी में रुचि रखते हैं। और मेरा प्रश्न ये है कि ट्यूलिप फूल कैसे उगाया जाता है?
0: अजीत जी, सबसे रोचक बात तो ये है कि ट्यूलिप फूल बीज से नहीं उगता था, लेकिन कंद या बल्ब से उगाया जाता है। एक स्वस्थ कंद कई वर्षों तक फूल उगा सकता है। जहाँ तक इन फूलों के खिलने का प्रश्न है, ये फूल मार्च से मई तक खिलते हैं।
1: जी श्रोताओं, इन फूलों की दुनिया भर में भारी मांग है। ये व्यावसायिक या कमर्शियल फूल माने जाते हैं और इनका व्यापार करोड़ों डॉलर का है।
0: अजीत जी, जब आपने कमर्शियल फूल की बात की तो मुझे एक बहुत ही रोचक घटना याद आ गई।
1: हाँ, वो क्या?
0: 17वीं सदी में नेदरलैंड्स में एक अनोखी आर्थिक घटना हुई जिसे ट्यूलिप मेनिया कहा जाता है।
1: ये घटना क्या थी?
0: उन दिनों यूरोप में ट्यूलिप फूलों की भारी मांग थी। मांग इतनी अधिक थी कि कहते हैं कि ट्यूलिप फूल के मात्र एक कंद की कीमत लगभग एक घर की कीमत के बराबर हो गई थी।
1: ये तो बड़ी रोचक जानकारी विमलेश जी। श्रोताओं, नेदरलैंड्स के रंग बिरंगे फूलों के खेत दुनिया भर में बहुत प्रसिद्ध हैं। मीलों तक लहराते हुए ट्यूलिप फूलों के खेतों को देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक आते हैं। जहाँ तक भारत की बात है, भारत का सबसे प्रसिद्ध ट्यूलिप गार्डन है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन।
0: तो अजीत जी, समाप्त करने से पहले एक और बड़ी रोचक बात श्रोताओं से साझा कर लेते हैं। ट्यूलिप के फूल आमतौर पर गंधहीन होते हैं। कुछ प्रजातियां ही हैं जिनमें बहुत हल्की सुगंध आती है। तापमान और रोशनी के अनुसार अपनी पंखुड़ियां खोल या बंद कर सकते हैं। ये अक्सर रात को लगभग बंद हो जाते हैं
1: और सुबह होते ही अपनी पंखुड़ियां खोलकर सूर्य का स्वागत करते हैं, मानो कह रहे हो गुड मॉर्निंग सन।
0: तो श्रोताओं, ये थी आज की जानकारी ट्यूलिप के सुंदर फूलों की। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
1: तो हमारा प्रश्न है श्रोताओं कि मूल रूप से ट्यूलिप फूल किस देश का है और इसका नाम ट्यूलिप क्यों पड़ा? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: मूल रूप से ट्यूलिप फूल किस देश का है और इसका नाम ट्यूलिप क्यों पड़ा?
1: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
1: और अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो हमारा पहला कार्यक्रम है समझदारी।
0: उर्दू की कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में संदेश दिया गया है कि आपस में प्रेम और सहयोग की भावना के साथ रहने में ही समझदारी और सबकी भलाई है।
1: जी।
2: वकार पढ़ने में बहुत होशियार था। एक दिन उसने अपने वालिद से 50 रुपए मांगे। उसके वालिद ने पूछा,
3: बेटा तुम 50 रुपयों का क्या करोगे?
4: अब्बा, मुझे इन रुपयों की जरूरत है। मुझे एक पेंसिल, एक रबर और एक पेंसिल तराश खरीदना।

0: है।
1: अच्छा ठीक है, मैं कल तुम्हें ये सब चीजें खरीद कर दे दूंगा।
0: अब्बा, मुझे इन चीजों की अभी जरूरत है, मुझे स्कूल का काम करना है।
1: लेकिन बेटा, क्या तुम ये सब चीजें खुद खरीद लोगे? क्या तुम्हें रुपयों को जोड़ना और घटाना आता है?
0: जी हाँ, मुझे रुपयों को जोड़ना और घटाना अच्छी तरह से आता है।
1: अच्छा, जरा ये तो बताओ कि इन रुपयों से तुम ये चीजें किस किस तरह खरीदोगे?
0: इन 50 रुपयों से मैं 20 रुपए की एक कॉपी, 5 रुपए की पेंसिल, 5 रुपए की रबर और 5 रुपए की पेंसिल तराश खरीदूंगा।
1: बेटा, अब जोड़ कर बताओ कि कुल कितने रुपए हुए?
0: 20 रुपए की कॉपी, 5 रुपए की पेंसिल, ये हुए 25 रुपए। अब इन 25 रुपयों में 5 रुपए रबर के जोड़ दिए तो हो गए 30 रुपए। इन 30 रुपयों में 5 रुपए पेंसिल तराश के जोड़े तो कुल हुए 35 रुपए।
1: शाबाश बेटा, तुमने बिल्कुल ठीक हिसाब लगाया है। अच्छा तो ये बताओ कि 50 रुपए में से तुमने 35 रुपए का सामान खरीद लिया, अब तुम्हारे पास कितने रुपए बाकी बचे?
0: 50 रुपयों में से 35 रुपए घटाए तो बचे 15 रुपए।
1: तुम्हें तो जोड़ना और घटाना खूब आता है। ये लो 50 रुपए और ये सभी चीजें खरीद कर ले आओ।
2: प्रिय मित्र, अब कुछ हमारे सोचने और करने के लिए। जब हम छोटे बच्चों के हाथ में कुछ पैसे देते हैं तो क्या बाद में उस पैसे का हिसाब उनसे पूछते हैं? यदि हमारा जवाब हाँ है तो भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ऐसा करने से बच्चे में समझदारी, जिम्मेदारी और ईमानदारी का जज्बा बढ़ता है। और हाँ बच्चों, जब घर के बड़े आपको पैसे देते हैं तो क्या आप उन्हें खुद जाकर पैसे का हिसाब देते हैं? यदि हाँ तो फिर भाई इसके लिए तो आपको शाबाशी देनी चाहिए। बड़े पूछें या ना पूछें, आप हिसाब जरूर दीजिए। आई ना बात समझ में?
1: मश्क।
3: होशियार,
1: समझदार।
3: पेंसिल तराश,
1: पेंसिल को छीलने वाला शार्पनर। सोचिए और बताइए, वकार ने अपने वालिद से 50 रुपए क्यों मांगे?
3: वकार को क्या क्या चीजें खरीदनी थी?
1: सब चीजें खरीदने के बाद वकार के पास कितने रुपए बाकी बचे?
3: बेटे से सही हिसाब सुनकर वालिद ने क्या कहा?
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम समझदारी। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, अकादमिक समन्वय डॉक्टर रिजवानुल हक, तकनीकी निर्देशन बटी लैंगलिंगडो, वाचन स्वर शिमाइला परवेज और परवेज गौहर, ध्वनियांकन मयंक कुमार, निर्देशन विमलेश चौधरी, निर्माण जगबंधु जाना तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत। अभी आपने सुना कार्यक्रम समझदारी और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है कैप्टन विक्रम बत्रा।
4: इस कार्यक्रम में कारगिल युद्ध के दौरान अपार वीरता का प्रदर्शन करने वाले परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा के शौर्य का उल्लेख किया गया है कि किस प्रकार रणनीतिक और भौगोलिक रूप से कमजोर स्थिति में भी उन्होंने सियाचिन के टाइगर हिल पर तिरंगा फहराया और अपने प्राणों की आहुति दे दी।
5: साथियों, सन 1999 में हुआ कारगिल युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसमें सेना के युवा अधिकारी अग्रणी रहे। इन रणबांकुरों के साहस और शौर्य भरे कारनामों को जन जन ने पहचाना और इन रणबांकुरों की भारत की जनता से पहचान करवाई मीडिया ने। सन 1999 में

0: मीडिया ने पूरे देश को सेना के साथ एक आत्मीय बंधन में बांध दिया। लोगों ने घर बैठे सैनिकों को मोर्चे पर लड़ते देखा।
1: साथियों, मैं हूं मेघना उपाध्याय और इस समय कारगिल की युद्ध भूमि से मैं आपसे मुखातिब हूं। जैसा कि आप इस समय देख रहे हैं, चारों ओर हमारी सेना का भारी जमावड़ा है। तो आइए बात करते हैं हमारे एक सैनिक से। तो आपने बताया कि आप छुट्टी पर जा रहे थे।
2: जी, पर हमारे लिए देश और पलटन पहले हैं, घर बाद में।
1: आप तो काफी समय से घर से दूर हैं, क्या घर की याद नहीं आती?
2: हाँ, याद तो आती है, परंतु देश की रक्षा हमारे लिए सब कुछ है। समाचारों से पता चल रहा है कि पूरा देश हमारे साथ है। जिस माँ के हम बेटे हैं, उससे भी बड़ी माँ है हमारी भारत माँ। उसकी सुरक्षा को छोड़कर घर चले जाएं, हो नहीं सकता।
1: तो देखा साथियों, ऐसे हैं हमारे सैनिक, हमें इन पर नाज है।
3: वाह, अरे वाह, क्या बात कही है।
4: क्या बात है,
3: सुनकर ही जोश आ गया।
4: हाँ
3: भाई विक्रम, तुम तो अभी अभी छुट्टी पर आए हो और अब ये लड़ाई, शायद तुम्हें भी युद्ध में जाना पड़े। संभल कर रहना भाई।
4: युद्ध में तो जाना ही है दोस्त, तुम चिंता बिल्कुल मत करो। मैं या तो विजय तिरंगे को ऊंचा फहरा कराऊंगा या फिर तिरंगे में लिपट कराऊंगा।
0: ये शब्द थे कैप्टन विक्रम बत्रा के, जो कारगिल युद्ध के दौरान शेरशाह के नाम से भी मशहूर हुए। युद्ध के समय उनकी बहादुरी के किस्से सुन सुनकर लोग दंग रह गए। वे एक के बाद एक खतरनाक मिशन पर जाते रहे और देश एकजुट होकर उनकी सलामती की दुआ करता रहा। ऐसे थे 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल के कैप्टन विक्रम बत्रा। विक्रम बत्रा का जन्म 9 सितंबर 1974 को हिमाचल प्रदेश के छोटे से नगर पालमपुर में हुआ। हिमाचल एक ऐसा राज्य जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और खूबसूरती के लिए जाना जाता है। इतना ही नहीं, ये मनोरम राज्य जांबाजी के लिए भी प्रसिद्ध है। यहां के रणबांकुरों ने संकट की घड़ी में कुर्बानियां देकर इतिहास रचा है, दुश्मनों के छक्के छुड़ाए हैं। कारगिल युद्ध में इस राज्य के लगभग 30 जांबाजों ने शहादत देकर कुर्बानियों की परंपरा को आगे बढ़ाया है। और इसी पावन भूमि पर जन्म लिया हमारे इस परमवीर विक्रम बत्रा ने। विक्रम बचपन से ही निडर और साहसी थे। सन 1994 में विक्रम ने एनसीसी के सदस्य के रूप में गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लिया और जब वहां से लौट कर आए तो वे अपना लक्ष्य निर्धारित कर चुके थे और वो था भारतीय सेना में भर्ती। जुलाई 1996 में विक्रम ने भारतीय सेना अकादमी देहरादून में प्रवेश लिया। आईएमए में ट्रेनिंग के दौरान बहुत सी चीजों ने उन्हें प्रभावित किया, जैसे वहां का अनुशासन, सैनिक प्रशिक्षण और उन पंक्तियों ने जो अकादमी की बरसों से चली आ रही परंपरा है। अपने देश की सुरक्षा, सम्मान और कल्याण हमेशा और हर बार सर्वप्रथम है। फिर है आपके सैनिकों का सम्मान, कल्याण और सुविधा। आपकी अपनी सुविधा, आराम और सुरक्षा।

0: हमेशा और हर बार आखिर में आते हैं। ये पंक्तियां विक्रम की भावनाओं, विचारों और कार्यों में रच बस गई थीं। 6 दिसंबर 1997 को उन्हें 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल्स टुकड़ी में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त किया गया। युद्ध आरंभ हो गया था। एक जून 1999 को उनकी टुकड़ी कारगिल चली गई। कारगिल युद्ध के दौरान कैप्टन विक्रम बत्रा ने कई सैनिक अभियानों में अपनी टुकड़ी का नेतृत्व किया और हर मिशन में सफलता ने उनके कदम चूमे। कारगिल युद्ध के समय उन्होंने कई मिशन में भाग लिया। कई पर्वत चोटियों यानी पॉइंट्स पर अपूर्व शौर्य दिखाते हुए उन पर कब्जा किया। मिशन 1, दिन 12 जून 1999। कारगिल में तोलोलिंग नामक स्थान पर भीषण युद्ध चल रहा था। 25,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये चोटी सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण थी। इस चोटी से दुश्मन श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग को लगातार निशाना बना रहा था। कैप्टन विक्रम बत्रा की यूनिट को वहां लड़ रहे सैन्य दल की सहायता के लिए भेजा गया। 2 रात भयानक युद्ध चला और हमारी सेना ने कैप्टन विक्रम बत्रा के नेतृत्व में हम्प पर कब्जा कर लिया। वहीं से विक्रम ने अपने भाई विशाल को, जिसे वे प्यार से कुशु कहते थे, एक पत्र लिखा।
1: प्यारे कुशु, तुम रोज सुन रहे होगे कि यहां घमासान युद्ध चल रहा है। मैं 15,500 फीट की ऊंचाई पर दुश्मनों से लड़ रहा हूं। जान को पूरा खतरा है, कुछ भी हो सकता है। आज हम जीत तो गए हैं, लेकिन आज का दिन हमारी बटालियन के लिए दुख से भरा है, क्योंकि आज हमने एक अफसर को लड़ाई में खो दिया है। प्यारे कुशु, मां पिताजी को संभालना, क्योंकि यहां कुछ भी हो सकता है। तुम्हारा भाई विक्रम।
0: ऐसा था इस युवा सैनिक अधिकारी का हृदय। विजय के उल्लास में भी अपने साथियों को खोने की कसक उनके मन में थी। मिशन 2, दिन 19 जून 1999। स्थान 0.5140। 15,000 फीट ऊंची ये वो चोटी थी जहां से दुश्मन हमारे 2 हेलीकॉप्टर गिरा चुका था। इसे जीतना बेहद जरूरी था, क्योंकि ऊंचाई पर होने के कारण इस पॉइंट से दुश्मन हमारी सेना को भारी नुकसान पहुंचा रहा था। हमारी सेना के लिए केवल 1 रात का समय था। विक्रम ने अपने सैनिकों को उस पर्वत की खड़ी ढलान पर चढ़ने का आदेश दिया। सैनिक चुपचाप पहाड़ी पर चढ़ते रहे। सुबह के 3:15 का समय था। हमारे सैनिक शत्रुओं के बंकरों के समीप थे। तभी दुश्मन की ओर से रेडियो सिग्नल आया।
2: शेरशाह, तुम क्यों आ गए बीच में? अरे तुम में से एक भी जिंदा नहीं लौटेगा। एक

0: घंटे में ही तुम्हें मालूम चल जाएगा कि ऊपर कौन रहेगा।
1: अरे देख लेंगे।
2: कैप्टन विक्रम बत्रा का दुश्मनों के बीच भी इतना नाम था कि वे इन्हें उनके कूट नाम से भी जानते थे। दुश्मन को ये तो खबर थी कि भारतीय सैनिक उनकी तरफ बढ़े चले आ रहे हैं, पर शायद इस बात से वो बेखबर था कि हमारे सैनिक उनके इतने करीब हैं। विक्रम ने अपनी घड़ी की ओर देखा, 3:24 हो गए थे। 4:30 सूर्योदय हो जाएगा। उनके पास केवल 1 घंटे का समय था। बस फिर क्या था, उन्होंने दुश्मनों के बंकर पर धावा बोल दिया।
3: हमला करो, दुर्गा माता की जय,
2: और कुछ ही देर में विक्रम और उनके साथियों ने दुश्मन को वहां से खदेड़ दिया। 5140 पर अब हमारा कब्जा था। इस विजय के बाद एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा,
4: कैप्टन विक्रम, 5140 की विजय के बाद कैसा एहसास हो रहा है?
5: मैं और अधिक चोटियों पर कब्जा करना चाहता हूँ। ये दिल मांगे मोर।
4: ये दिल मांगे मोर। हाउ नाइस। विक्रम जी, आप पर सारे देश को नाज है, और हमारी कामना है कि इसी तरह आपका विजय अभियान चलता रहे और चलता रहे।
5: धन्यवाद।
2: इस प्रसारण को पूरा देश देख रहा था। लाखों दर्शकों ने उनका उत्साह भरा उत्तर सुना। ऐसे समय में जब लोगों की आंखें आंसुओं से नम थी और दिल डर से सहमे हुए थे, विक्रम बत्रा के इस एक जवाब ने सबके चेहरों पर एक मुस्कान छोड़ दी। देश का बच्चा बच्चा अब उन्हें जानने लगा था।

0: और अब आई बारी उस मिशन की जिसने विक्रम बत्रा को अमर बना दिया। मिशन 3 टाइगर हिल्स पिंपल पोस्ट 6 जुलाई 1999 की शाम। 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल्स की कमान एक बार फिर कैप्टन विक्रम बत्रा के हाथों में थी।
1: हमें जो सूचना मिली है उसके अनुसार एक बात पक्की है कि हमें दुश्मन पर पीछे से हमला करना होगा।
2: जी
3: चलो
1: अब मंजिल पर पहुंच गए हैं। इशारा मिलते ही टूट पड़ना।
2: जी सर।
1: देखो तुम यही पोजीशन संभालो।
2: जी सर।
1: और तुम दाहिनी तरफ जाओ।
2: जी सर।
4: हमला करो दुर्गा माता की।
0: दुश्मन उनके खूंखार हमले से घबराकर पीछे हटने लगा था। तभी विक्रम ने देखा कि उनका एक सहयोगी अफसर दुश्मनों से घिरा हुआ है। जब वो उन्हें बचाने के लिए बंकर से बाहर दौड़े, उनके एक सूबेदार ने उन्हें रोकना चाहा।
5: साहब जी आप मत जाइए, मैं जाता हूं।
1: नहीं, तू भी बचवा रहा है, पीछे हट।
5: नहीं लेकिन साहब जी,
1: मैंने कहा ना पीछे हट जा, मैं जा रहा हूं।
5: साहब जी

0: अभी विक्रम लेफ्टिनेंट नवीन को घसीटते हुए बंकर की ओर ले ही जा रहे थे कि दुश्मन की एक गोली उनकी छाती में आ लगी।
1: क्या हुआ तुम्हें? नहीं नहीं नहीं नहीं,
0: और तभी उन्होंने वीरगति पाई। उस दिन भारत ने पिंपल पोस्ट पर तो विजय पा ली, परंतु भारत मां का एक शेर सपूत शहीद हो गया। उनका पार्थिव शरीर पूरे सैनिक सम्मान के साथ जब उनके जन्म स्थान पालमपुर में लाया गया, तो इस अमर शहीद के दर्शनों के लिए हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी।

0: आज उस शिखर का नाम कैप्टन विक्रम बत्रा शिखर है। उनके असाधारण शौर्य के लिए कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें मरणोपरांत देश के सर्वोच्च वीरता पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया। याद आती है एक बार फिर वही बात जो कैप्टन विक्रम बत्रा ने युद्ध में जाने से पहले अपने मित्र को कही थी।
1: मैं या तो विजय तिरंगे को ऊंचा फहरा कराऊंगा या फिर तिरंगे में लिपट कराऊंगा।
0: कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपने दोनों वचन निभाए। उन्होंने दुश्मन को पराजित कर भारत के झंडे को 0.5140 पर फहराया और 0.4875 नंबर शिखर पर युद्ध में प्राण देकर बड़ी शान से तिरंगे में लिपट कर घर आए।

0: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कैप्टन विक्रम बत्रा, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 6:30 हुए हैं। लोक संगीत। इस कार्यक्रम में आज आप सुने नेपाल सिंह राजपूत के सगाए बुंदेली लोकगीत।

लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे नेपाल सिंह राजपूत के गाए बुंदेली लोकगीत। ये प्रसारण आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से किया जा रहा था। 6:45 हुए हैं। सुगम संगीत कलाकार हैं प्रकाश तिवारी।

इसके साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं, 7 बजना चाहते हैं, वक्त है समाचारों का।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना राज्य एजेंसियों को अंतर्राज्यीय खाद्यान्न परिवहन में सहायता प्रदान करेगी, उचित मूल्य की दुकानों को मदद करेगी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी।
1: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जिस सरकारों के एजेंसीज राज्य में तो एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिमुनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सार्थक पीडीएस योजना के दूसरे चरण की मंजूरी का स्वागत किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री अमित शाह ने कहा कि सरकार गरीबी उन्मूलन योजनाओं को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए उनमें प्रौद्योगिकी का समावेश कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र

और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की खंडपीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को

0: 2026 की अंतिम उत्तर कुंजी जारी की है। आयोग ने कहा कि परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार 31 मई शाम 6 बजे तक upscionline.nic.in पर उपलब्ध प्रश्न पत्र आपत्ति पोर्टल के माध्यम से अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए कम से कम 2 भारतीय भाषाओं सहित 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने संबंधी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करेगा। शीर्ष न्यायालय ने केंद्र सरकार, बोर्ड और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में आज 3 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल हैं। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा की अपनी यात्रा के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के वरिष्ठ नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें की। श्री गोयल ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाना और कार्यनीतिक क्षेत्रों में निवेश और तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। कई प्रमुख मानवाधिकार संगठनों और छात्र संस्थाओं ने पाकिस्तान में बलूच नागरिकों के जबरन गायब किए जाने की बढ़ती घटनाओं की कड़ी निंदा की है। आरोप है कि इन घटनाओं को पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा अंजाम दिया जा रहा है। इन संगठनों ने कहा कि कई प्रभावित परिवारों के लिए ईद का त्यौहार शोक, अनिश्चितता और अपनों से बिछड़ने के दर्द में बदल गया है। जापानी संसद ने आज विदेशी संकट से निपटने के लिए सूचना जुटाने की प्रक्रिया को केंद्रीकृत करने हेतु राष्ट्रीय खुफिया परिषद की स्थापना के लिए कानून को मंजूरी दे दी। परिषद की स्थापना जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकायची के शासन के प्रमुख उद्देश्यों में एक है। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स के साथ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। मैच की विजेता टीम शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटन से मुकाबला खेलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Abhishek Mukhopadhyay. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, today approved the continuation of the scheme to modernize the public distribution system, PDS, including ration, transport, dealer support and technology upgrades till March 2031. The umbrella scheme, called the Scheme for Assistance in Ration Transport and Handling Income with Automation and PDS, Sarthak PDS, has been cleared in the 16th Finance Commission cycle award period with an outlay of 25,530 crore rupees as central share. Briefing media in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwani Vaishnav said the scheme will provide assistance to state agencies for intra-state movement of food grains, will support fair price shops and help with modernization of public distribution system.
2: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं।
3: 3 मेजर रिफॉर्म्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोग्राम टुडे। फर्स्ट, द गवर्नमेंट विल सपोर्ट द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनकर्ड इन मूविंग फूड ग्रेन्स फ्रॉम लार्ज एफसीआई वेयरहाउसेस इन द स्टेट्स टू फेयर प्राइस शॉप्स अक्रॉस डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स एंड डिविजन्स। सेकंड, देयर वाज अ नीड टू इंक्रीज द रेम्युनरेशन ऑफ फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एंड अ डिसीजन हैज बीन टेकन इन दिस रिगार्ड एज वेल। थर्ड, एफर्ट्स विल बी मेड टू मॉडर्नाइज द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम थ्रू द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी।
2: पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं?
1: The minister said the scheme will work towards fulfilling the government's commitment to 81.35 crore persons covered under the National Food Security Act. He said the scheme is not a replacement of the existing PDS scheme. Home Minister Amit Shah has hailed the approval of Sarthak PDS Phase 2 by the Union Cabinet. The Assam Legislative Assembly today adopted the Uniform Civil Code Bill, making Assam the first state in the Northeast and the third state in the country to adopt such a legislation. The bill, introduced during the first session of the 16th Assam Legislative Assembly on Monday, was passed by the House today on the concluding day of the session. Assam Parliamentary Affairs Minister Atul Bora tabled the bill on behalf of Chief Minister Himanta Biswa Sarma. The Supreme Court today upheld the legality of the Special Intensive Revision SIR of the Electoral

0: rolls been conducted by the Election Commission of India, ECI. The court held that the Election Commission has the power to conduct SIR under Article 324 of the Representation of the People Act 1950 and the rules made thereunder. It observed that SIR advances the constitutional imperative of free and fair elections. The top court pronounced a judgment in the writ petitions which challenged the notification issued by the ECI in June last year to conduct SIR in Bihar. Hearing another case, the apex court today said the ongoing trial related to the 2023 violence in Manipur needs to be expedited and sought a status report from the authorities. A bench comprising Chief Justice of India Surya Kant and Justice Joymalia Bakshi noted that according to an SIT report, charge sheets had been filed in 207 cases against more than 400 accused persons. President Draupadi Murmu today said the development of the Northeast is vital for the country's overall progress. Addressing the convocation ceremony of Sikkim University in Gangtok, the president urged students to contribute to nation building through innovation, ideas and mutual trust. Early in the day, President Murmu flagged off a women-centric public transport service titled Pink City Rana Amma Didi Bahini Bus Seva in Gangtok. Prime Minister Narendra Modi has urged citizens across the country to take all possible precautions amid soaring temperatures being witnessed in different parts of the country. In a social media post, Mr. Modi advised people to keep themselves hydrated, avoid stepping out during peak afternoon hours, carry water when stepping out of homes, and extend help to others by offering them water during the harsh weather conditions. The Indian cities of Chandigarh and Bhubaneswar were awarded hosting rights of next year's Asian Relays and the 2028 Asian Indoor Championships by the continent's athletics governing body during its Executive Council meeting in Hong Kong today. The Asian Athletics Association's AAA Council meeting was held ahead of the Asian Under-20 Championships from May 28 to 31st. The Athletics Federation of India, AFI, had last year submitted the bids to host both the events. In IPL cricket, Sunrisers Hyderabad won the toss and elected to field against Rajasthan Royals in the eliminator match at New Chandigarh. The winner will take on Gujarat Titans in qualifier 2 on Friday for a place in the final, which will be played on the 31st of this month in Ahmedabad. And that is the end of this news bulletin.
1: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
2: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
5: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। देश भर में बढ़ती गर्मी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से सावधानी बरतने और हाइड्रेटेड रहने की अपील की। केंद्र सरकार ने सार्थक पीडीएस योजना को जारी रखने की मंजूरी दी, जिसके लिए 25,530 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। खजुराहो में केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने योग दिवस काउंटडाउन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने आज एयर एम्बुलेंस एमपी पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। अब समाचार विस्तार से। देश भर में बढ़ती गर्मी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर खुद को हाइड्रेटेड रखने और दोपहर की तेज धूप में बाहर निकलने से बचने और घर से निकलते वक्त पानी साथ रखने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि जो प्यासा हो उसे पानी पिलाएं और जानवरों व पक्षियों के लिए भी बाहर पानी रखें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम गंगटोक में सिक्किम विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुईं। समारोह में 33 विभागों के करीब 14,000 छात्रों को उपाधियां प्रदान की गईं। 285 मेधावी छात्रों को स्वर्ण और रजत पदक से नवाजा गया, जिसमें 199 छात्राएं शामिल रहीं। राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में सार्थक पीडीएस योजना को अम्ब्रेला योजना के रूप में जारी रखने की मंजूरी दी है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 25,000

0: 530 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इस योजना के तहत एआई, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग कर पीडीएस संचालन को आधुनिक बनाया जाएगा। सार्थक पीडीएस योजना की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि
1: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, राज्य सरकारों के एजेंसीज, राज्य में जो एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिम्यूनरेशन को बढ़ाने की जरूरत थी, तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय मौल्या बागची की पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत एसआईआर कराने की पूर्ण शक्ति रखता है। एक्ट्रेस टुषा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में भोपाल कोर्ट ने आरोपी पति समर्थ सिंह को 29 मई तक सीबीआई रिमांड पर भेज दिया है। सीबीआई की टीम उसे लेकर घटनास्थल का निरीक्षण भी करने गई। वहीं मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में रिटायर्ड जज और सास गिरबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई की नई भाषा नीति पर रोक को लेकर कोई भी दिशा निर्देश देने से इनकार कर दिया है। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने इस मामले में सीबीएसई को जवाब देने के लिए नोटिस दिया है। सीबीएसई की नई नीति के मुताबिक कक्षा 9-10 के लिए स्टूडेंट्स को 3 भाषाएं पढ़नी होंगी, जिसमें 2 भाषाओं का नेटिव इंडियन लैंग्वेज होना जरूरी है। इसी नीति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई थी। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 15-16 जुलाई की तारीख दी है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। खजुराहो के पश्चिमी मंदिर परिसर में केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 100 दिवसीय काउंटडाउन सीरीज के 25वें कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में करीब 2000 लोगों ने भाग लिया। श्री जाधव ने घोषणा की कि इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य समारोह 21 जून को कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। इस बार की थीम स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग रखी गई है। इस मौके पर श्री जाधव ने कहा कि
3: आज खजुराहो और छतरपुर केवल अतीत के प्रतीक नहीं, बल्कि योग, अध्यात्म और भारतीय परंपरा के और पुनर्जागरण के जीवित केंद्र के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित कर रहे हैं। आधुनिक युग में योग हमारे जीवन का एक अनिवार्य और अभिन्न अंग बनकर उभरा है। योग एक प्रगतिशील और स्वस्थ समाज की आधारशिला है।
0: उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने आज मंत्रालय में एयर एम्बुलेंस एमपी पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया। इसमें एयर एम्बुलेंस सेवा के लिए अनुरोध की प्रक्रिया अब और सरल व तेज हो जाएगी। पोर्टल में रियल टाइम ट्रैकिंग, डिजिटल सेवा अनुरोध और समयबद्ध अनुमोदन अलर्ट जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। सीबीआई ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में आज 3 और लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे के 2 कोचिंग संस्थानों के शिक्षक शामिल हैं। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर भोपाल में आज कांग्रेसजनों ने श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए। राज्यसभा सांसद एवं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने रोशनपुरा चौराहे पर स्थापित पंडित नेहरू की प्रतिमा पर पुष्पार्चन कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में भी उनके चित्र पर माल्यार्पण किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम का 134वां एपिसोड होगा। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800117800 पर कॉल करके नरेंद्र मोदी एप्लीकेशन या MyGOV ओपन फोरम के माध्यम से भी अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं। आगामी एपिसोड के लिए सुझाव 29 मई तक स्वीकार किए जाएंगे। प्रदेश ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 13,36,000 किसानों से 103,48,000 मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन कर देश में पहला स्थान हासिल किया है। खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि कोविड काल को छोड़कर विगत 10 वर्षों में यह सर्वाधिक गेहूं उपार्जन है। वहीं मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के 16 जिलों में पीएम सूर्य घर

योजना के तहत अब तक 39,975 उपभोक्ता पंजीकृत हो चुके हैं और उनके खातों में 311,64,00,000 रुपए से अधिक की सब्सिडी जमा कराई जा चुकी है। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में नौतपा के दौरान भीषण गर्मी का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना और रीवा जिलों में तीव्र लू का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं कल प्रदेश के 16 शहरों में अधिकतम तापमान 44 डिग्री या उससे अधिक दर्ज किया गया। इसमें खजुराहो सबसे गर्म रहा, जहां तापमान 46.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मौसम विभाग के अनुसार 28 मई तक गर्मी अपने चरम पर बनी रहेगी, लेकिन 29 मई से मौसम बदलना शुरू होगा और कई जिलों में आंधी व बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। विभाग का कहना है कि 10 से 16 जून के बीच मानसून प्रदेश में दस्तक दे सकता है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं भोपाल स्थित अनुसंधान संस्थान 3 से 5 जून तक भारतीय ज्ञान परंपरा विषय पर 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, जिसमें विभिन्न शासकीय महाविद्यालयों के 60 प्राध्यापक भाग लेंगे। खरगोन जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की ठिपगांव शाखा में 41,00,000 रुपये के गबन का मामला सामने आने पर बैंक प्रबंधन ने 3 कर्मचारियों को निलंबित कर विभागीय जाँच शुरू कर दी है। शिवपुरी जिले में बाल श्रम रोकथाम को लेकर कलेक्टर ने दुकानों, ढाबों, कारखानों में बाल श्रमिक न होने की जांच करने और होने पर कार्रवाई करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। पेयजल समस्याओं की सतत निगरानी और हैंडपंप संधारण संबंधी शिकायतों के निराकरण के लिए आगरमालवा में जिला स्तरीय नियंत्रण कंट्रोल रूम बनाया गया है। कटनी में IHSDP योजना के तहत प्रेमनगर बस्ती में बने आवासों पर 8 अनाधिकृत कब्जों को जिला प्रशासन ने अतिक्रमण मुक्त कराया। राजगढ़ में आज जिला पंचायत सभा कक्ष में जल संचयन जन भागीदारी अभियान के तहत तकनीकी मार्गदर्शन कार्यशाला का आयोजन किया गया। शहडोल जिले में खरीफ फसल की बोनी का लक्ष्य 3,000 हेक्टेयर बढ़ाकर धान की बोली का लक्ष्य 1,50,000 हेक्टेयर किया गया है। खंडवा जिला चिकित्सालय सह चिकित्सा महाविद्यालय में विश्व तम्बाकू निषेध सप्ताह के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नर्मदापुरम कलेक्टर ने आज CM हेल्पलाइन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जिलाधिकारियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। और IPL में अब से कुछ देर में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। जो टीम जीतेगी वह शुक्रवार को गुजरात टाइटन से भिड़ेगी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

कृषि जगत सुनबे बारे सभी किसान भैया हरों को मंगला भोजी की राम राम। सुभैया देखो ढलती शाम, कहीं दूर बैलों की घंटियां, पेड़ों पे चिड़ियों की आवाज और हल्की हवा सोई चल रही। और देखो तो चौपाल में कितनी उम्दा खाट सोई बिछी है। अब लल्लन कक्का जोन है जे हुक्का गड़गड़ा रहे और सोनम जो है जे लोटा से पानी भर के हर आबे बारे को पानी सोई पे बारी। और आसमान में तो बादलों की हल्की आवाजाही सोई दिख रही। और आज तो हम आए थे, जब हम दिन में बैठे हते तो अचानक से ऐसी टप टप आवाज आई, देखो तन्ना से बूंदे सोई गिरी। सुभैया नौ तपक हो तीसरो दिना, जेठ की धूप आज पूरो रौद्र रूप दिखावत रही। दोपहरिया में तो धरती ऐसी तप रही हती मनो अंगारे बिछे आए। और गाँव की गलियां एकदम सुनसान पड़ी, चिरई चुरुंग तलक जोन है जे पेड़ों की छाँव खोजत दिखे। अब मनो किसान को मन तो वो ऐसो है कि हर मौसम में अगली फसल के सपने सोई बुनत रहते हैं। अब देखो हमा भूरा भूरा कह रहा हो कि भैया की हम तो मोटर चालू करवे के लाने केवल गए हते, सो नंगे पांव जमीन पे चले और ऐसो लगो जैसे तवा पे खड़े हो गए। अब भैया नौ तपा को ताप सोई जरूरी आए। अब बुजुर्ग कहत रहे जित्तो तपे नौ तपा उत्तई बरसे सावन अपना। सो जौन जे दिना उम्दा से तप गए।

सुक्की ला मकोड़ा सोई खेतन में कम हो जाऊत है। अब राम सेवक कक्का कह रहे कि बिल्कुल सांची कही, और हमारे जमाने में तो लोग नौतपा को देख के ही बरखा को अंदाजा लगा लेते। नंदू तो मोबाइल देख के कह रहा होगी, अरे कक्का मौसम विभाग सुई कहत है कि ए बेरा गर्मी तेज रह सकत है, मनो अगले हफ्ता से कहूँ कहूँ हल्की बौछार को आनंद सुई मिल सके। सो भैया हम तो कहते हैं मोबाइल चाहू जोन बतावे, मनो हमें तो बादलों को इंतजार आए, बस जोर की बरसात हो जाए फिर देखो खेत कैसे मुस्काउत हैं। सो भैया नौतपा के जे दिना किसान के लाने केवल गर्मी नैया तैयारी को समय सोई होता है, को खेत की जुताई की सोचत है, को बीज के इंतजाम की, तो को अपने ढोर बचेरू के लाने पानी की चिंता में लगो रहत है। सो भैया चौपाल की जेई बातें जेई अनुभव गांव की खेती किसानी की असली ताकत आए। अब गर्मी में मवेशियों को खास ध्यान धरने सोई जरूरी आए, छाँव साफ पानी और थोड़ा गुड़ नमक सोई दे देने चाहिए, जानवर सोई राहत पावे। सीला काकी की जे सलाह है हम सभी के लाने सो मान्य जरूर है, और भैया खेत खाली नहीं छोड़ने, बरखा से पहले मेड़ बांध लो नमी बची रहत है, और लियो ऐसो लग रहो जैसे पूरी कृषि की पाठशाला इतई खुल गई, और पाठशाला में चार चांद लगावे के लाने आज अपने संगे दिनेश सिंह भैया सोई हैं, और दिनेश भैया कह रहे कि मंगला भौजी आज है एकादशी, और एकादशी में हमारे कृष्ण कन्हैया की बात ना हो सो का कहने। सो भैया देखो दिनेश भैया क्या उम्दा सो लोकगीत लाए अपन औरों के लाने।

0: सो भैया देखो, काकी कह रहे हैं कि भौजी, मौसम चाहूँ कैसे ही हो, तपिश चाहूँ कितना ही हो, मनो चौपाल तो सचती है। और आज तो है 27 मई 2026, मनो आज ही के दिना देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि सोई आए। अब रमेश्वर कक्कर ने आज बड़ी उम्दा बात बोली कि एक ओर तपती धरती, दूसरी ओर देश के विकास के सपने देख बेबारे नेताजी की याद। सो ऐसे में चौपाल की बात खेती से निकल के देश और समाज तलक पहुंचने की तो बात बनते ही है। अब अपने भूरे को ले लो, आज दिन भरे सफ़ेद कपड़ा पहन के गुलाब लगाए घूम रहा हो, तो अब पाठशाला में तो गर्मी की छुट्टियां पड़ रही, सो मोहल्ला सोई गुलजार कर रहा हो। पूछ पे बोलो, हमारे मास्टर जी ने बताओ हो तो कि चाचा नेहरू को जन्मदिन आए, सो हमने सोची कि आज लड्डू मिल हैं। सो हाँ भैया, हमें भी लगो कि अब बताओ मोड़ा ऐसे घूम रहा हो दिन भरे से हैं और मन में लडुआ की आस लाए, सो हम सोई लडुआ ले आए, सो उन्हें हमने खाने को दे दी। सो जब हमने दे दी, सो सुगनी कहने लगी कि भैया इनको तो जब देखो तब खावे से मतलब रहते हैं, हमने कही बढ़ती उम्र है, भूख सोई लगत है। अब नेहरू जी तो मोड़ा मोड़ी से बड़ो प्रेम करत थे, तो उन कहने लगी काकी कि अरे चाचा नेहरू जोन रहे उनको केवल बच्चन से ही नहीं किसानों से सोई बड़ो लगाव हो, तो अब बड़े बड़े बांध, कारखाने, खेती के नए तरीका सब उन्हीं के ज़माने में तो शुरू हुए थे। अब भूरा बोल रहा हो कि कक्का आराम हराम है, जे बात नेहरू जी नहीं कही हती, मतलब आदमी को मेहनत करते रहने चाहिए, तभी तो किसान सबसे बड़ो नेहरूवादी कहो जात है। सवेरे सूरज से पहले उठो और रात में तारा गिन के सो। भैया चौपाल की हंसी मजाक के बीच बात तो बड़ी गहरी निकल आई। अब देश के विकास हो या खेतन की हरियाली, दोनों ही मेहनत, दूरदर्शिता और सीख से आगे बढ़त है। अब नेहरू जी पढ़े लिखे आदमी रहे, वे चाहते थे कि गांव में हर मोड़ा हर मोड़ी पढ़े लिखे और खूब आगे बढ़े। आज खेती में जो नई मशीनें, नए किसान के बीज, कृषि विश्वविद्यालय जो दिखात है, उनकी नींव उसी समय में पढ़नी शुरू भई हती। अब भूरा पूछ रहा हूँ कि कक्का अगर आज नेहरू जी गांव में आ जात तो सबसे पहले बिका देखत। सो राम सेवक कक्का बोले, सबसे पहले किसान को पसीना देखत, काहे से कि देश की रोटी वही से बनत है। सो भैया नेहरू जी की पुण्यतिथि में उनको नमन करत हैं और आओ मेहनत, शिक्षा और खेती की नई सोच को अपनावे खो अपन और मिलके संकल्प सोई ले।
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है। Oh!

0: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
0: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: सो भूरा, तुम तो जाने ही हो कि हमारे जमाने में हसिया लेके पूरा परिवार खेतन में उतर जाओ तो दो दिन में खेत के एक जोन खेत हो तो उकी कटाई होती। अब मनो अब तो देखो हार्वेस्टिंग मशीन ऐसे दौड़त है कि देखत देखत पूरा खेत साफ हो जाऊत है, बस डीजल भरो और काम चालू। मनो जैसे ध्यान देने पड़त है कि कटाई में नमी ज़्यादा नहीं रहे, नहीं तो बादल बाद में जोन है भंडारण से अनाज के समय में फिर दिक्कत हो जाते, भंडारण के समय में अनाज खराब हो की है ना। सो हम तो कहते बेटा कि फसल उगाने एक काम आए और सही सलामत भंडारण के लाने पहुँचाने असली काम होता है, नहीं तो चूहा सीलन और घुन सब मिलके किसानन की मेहनत पे दावत सोई उड़ाउत है। और ऐसी नौबत ना आए एक ही लाने आज अपने संगे हैं डॉक्टर विकास गुप्ता और जे अपन औरों को गेहूँ की कटाई की आधुनिक तकनीक और भंडारण की जानकारी सोई दे रहे। सो सभी भैया हरे ध्यान से सुनो अब एक का बता रहे और उनको अपनाने सोई आए।
4: किसान घर भाइयों राम राम। अब हमारी मेहनत खेतों पर रंग लाने वाली है, यानी कि हमारी जो गेहूं की फसल है वो पककर तैयार हो रही है और इस समय सबसे महत्वपूर्ण है इस उत्पादन को सहेजना। तो आज हमारी बातचीत का विषय है गेहूं की कटाई के लिए आधुनिक तरीका क्या होना चाहिए और इसके भंडारण के लिए कैसे आप आगे बढ़ें। और ये महत्वपूर्ण बातचीत होगी डॉक्टर विकास गुप्ता जी से, जो कि सस्य विज्ञान विभाग जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय से हमारे बीच में पधारे हुए हैं। विकास जी, इस कार्यक्रम में स्वागत है आपका।
5: धन्यवाद सर।
4: हम अपने किसान बहन भाइयों के लिए जो हमारा आज का विषय है गेहूं की कटाई और भंडारण, पहली बात तो ये जानना चाहेंगे कि गेहूं की जो कटाई है इसकी आधुनिक पद्धति या आधुनिक तकनीक क्या है और मशीनों से कैसे हम इसकी कटाई कर सकते हैं, पूरा मार्गदर्शन आपसे चाहेंगे।
5: आपने जितनी मेहनत करी है उसका फल हमको मिलना चाहिए कि भाई हम किस तरीके से कटाई करें और कटाई की कौन कौन सी विधियां हैं। तो वर्तमान समय में जो गेहूं की कटाई गहाई आदि के लिए अनेक उन्नत मशीनें इस समय उपलब्ध हैं, जिनका उपयोग करके हम कम समय में कम खर्चे में और उच्च दक्षता के साथ, दक्षता से मतलब ये कि कम से कम बीज का हमारा नुकसान हो, उस प्रकार से हम जो है कटाई का कार्य कर सकते हैं। इनमें जो प्रमुख है जो मशीनें हैं उसमें आपका कंबाइन हार्वेस्टर है, रीपर है और आपका मैकेनिकल थ्रेसर है
4: जी।
5: सबसे पहले हम कंबाइन हार्वेस्टर के बारे में यदि बात करें तो तीन प्रकार के कंबाइन हार्वेस्टर हैं। एक आपका कंबाइन हार्वेस्टर होता है जिसमें कि आपका कटाई गहाई और सफाई का कार्य एक साथ हो जाता है। दूसरा है इससे जो एक उन्नत और है वो है फुल कंबाइन हार्वेस्टर, जिसमें आपका कटाई गहाई सफाई और इसके साथ साथ आपके भंडारण का कार्य भी उसमें हो जाता है। उसमें टैंक बना रहता है जिसमें आपका बीज जो है वो भंडारित हो जाता है
4: जी।
5: इसके बाद में अब एक और उन्नत तकनीक से जीपीएस युक्त जो है कंबाइन हार्वेस्टर भी अब उपलब्ध हो गए हैं। इनमें हमको ये फायदा हो जाता है कि आपका कंबाइन हार्वेस्टर जो है जो चलता है जब खेत में, तो जो उसका जो मूवमेंट है वो ऑटोमेटिकली जो है वो स्टीयरिंग सिस्टम के द्वारा ऑपरेट होता है, जिससे फायदा हमको ये होता है कि आपका कई बार जैसे होता है कि जैसे कि मान लीजिए चालक भूल गया तो एक ही जगह पर उसने दोबारा चला दिया, जिससे आपका फ्यूल ज़्यादा उपयोग में आ गया, ये चीज़ बचेगी, आपकी फ्यूल की जो है वो बचत होगी। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि इसके साथ साथ हम ये पता भी कर सकते हैं कि मान लीजिए हमारे चार खेत हैं तो हर खेत में आपको कितनी उपज प्राप्त हुई
4: जी।
5: ये भी हमको इसके द्वारा वो जानकारी प्राप्त हो जाती है
4: जी।
5: दूसरे में हम पर बात करते हैं, इसके अलावा जो दूसरी मशीन है वो है रीपर। तो सामान्य रूप से जो रीपर रहता है उसका काम रहता है कि कटाई को करना है, तो वो गेहूं की फसल को कटाई करता है और कटाई करके जो है वहीं पर जो है वो पंक्ति में छोड़ देता है, जो सिंपल रीपर रहता है सामान्य रीपर। इसके अलावा आपका रीपर वाइंडर में क्या होता है कि फसल की कटाई के साथ साथ वह वो बंडल बनाता जाता है, क्योंकि ये बंडल बनाना एक बहुत बड़ा कार्य है। आप भली बात ही जानते हैं क्योंकि अब गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उसमें आजकल आपके पास में जो है वो श्रमिकों की भी उपलब्धता का एक समस्या है, इशू है और इसका रेट भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो इसमें फ़ायदा हमको ये रहता है रीपर वाइंडर में कि ये वहाँ पर आपकी फसल को काटता है और वहीं बंडल बनाकर खेत में छोड़ता जाता है, बाद में आप बंडल उठा लीजिए और उसको आप आराम से थ्रेस कर सकते हैं
4: जी।
5: तीसरा एक जो है वो एक्स्ट्रा रीपर, जैसे एक पराली की बहुत बड़ी समस्या है, जैसे हम जानते हैं किसान भाई कि जैसे आप क्या है हार्वेस्टर का जब आप इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर जो है वो 10 से 15 सेंटीमीटर के डंठल जो है नीचे एक्स्ट्रा जो है आपका भूसा रह जाता है
4: जी।
5: इसके लिए जो है एक्स्ट्रा रीपर का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ये जो एक्स्ट्रा रीपर रहता है ये क्या करता है कि जो बचा हुआ आपका एक्स्ट्रा है उसकी कटिंग करता है, जो बीच में आपका जो एक्स्ट्रा छूट गया है उसको, और प्लस जो भी दाने आपके

0: जो भी बीज हमारा गिर गया है उसको भी ये इकट्ठा कर लेता है। ये एक्स्ट्रा रीपर का काम है। इसमें मैकेनिकल थ्रेसर जो है हमारे पास में उपलब्ध हैं, ये जो है आपके गाही का कार्य करते हैं और गेहूं के दानों को भूसों से अलग करने का काम करते हैं आवश्यकता के हिसाब से, और जो हमारा एरिया है उसके हिसाब से जो है अलग अलग प्रकार के जो थ्रेसर हैं, छोटा स्मॉल थ्रेसर, मीडियम थ्रेसर, PTO ऑपरेटर थ्रेसर और मल्टी क्रॉप थ्रेसर जो है वो बाजार में उपलब्ध हैं।
1: तो डॉक्टर साहब आपने जो जानकारी दी है बहुत अच्छी जानकारी दी है। अब बात करें यदि गेहूं कटाई के बाद सुरक्षित भंडारण की, इसमें आपका मार्गदर्शन क्या होगा?
0: देखिए किसान भाइयों, जब आपका एक बार बीज आपके घर पहुंच गया, भंडार घर तक पहुंच गया, उसके बाद में सबसे प्रमुख बात रहती है अब उसको बचाना, दो प्रकार से, दो कारणों से। आपको या तो उसको हमें मार्केट में सेल करना है, या दूसरा है कि अगले वर्ष हमको स्वयं ही उसको बीज के रूप में उपयोग करना है। दोनों स्थितियों के लिए सबसे बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है उसका सुरक्षित भंडारण करना। सुरक्षित भंडारण करने में हमें कुछ स्टेप्स, कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। जैसे पहला है आपका बीज की प्रॉपर सफाई और स्वस्थ बीज का कलेक्शन करना, दूसरा हो गया बीजों को अच्छी तरीके से सुखाना, तीसरा हो गया उसका उचित भंडारण, उचित कक्ष का चुनाव करना, और भंडारण के उपरांत की जो उसके मॉनिटरिंग जो है इंस्पेक्शन है वो करना।
1: तो विकास जी, हम चाहेंगे जो बिंदु आपने बताए हैं अलग अलग, इन पर थोड़ा विस्तार से हमें बता दें किसान बहन भाइयों के लिए।
0: सबसे पहले जब हम साफ और स्वस्थ बीज की बात करते हैं, तो जब आप बीज को लेके आते हैं तो उसमें जितने भी कटे फटे बीज हैं उनको आप अलग कर दीजिए। ऐसे बीज जिनमें कि किसी प्रकार का इंसेक्ट पेस्ट का अटैक है, बीमारियां से ग्रसित हमको समझ में आ रहा है, उसको अलग कर दीजिए। किसी भी प्रकार की मिट्टी है, भूसा है, कचड़ा है, किसी प्रकार का फिजिकल जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं, भौतिक जितनी भी अशुद्धियां हैं, उनको हमको अपने बीज से सबसे पहले अलग करने का काम करना चाहिए
1: जी।
0: दूसरे पॉइंट पर हम आते हैं तो बीज को अच्छी तरीके से सुखाना। कई बार क्या होता है कि हमारे जो किसान भाई रहते वो ध्यान नहीं देते, बीज जो है अच्छी तरीके से नहीं सूखा, हमने उसका जो है भंडारण कर दिया
1: जी।
0: किंतु ये सबसे प्रमुख बिंदु है मैं कहूँगा, क्योंकि जब हम यदि गेहूं की फसल की बात यदि करें तो सामान्य तौर पर यदि हम कुछ समय के लिए यदि भंडारण कर रहे हैं तो आपका 10-12% जो है वो यदि मास्टर लेवल तक यदि आप उसको सुखा लेते हैं तो पर्याप्त है। किंतु यदि हमें लंबे समय तक यदि उसको रखना है तो हमें कम से कम 8-10% तक जो है बीज को सुखाना चाहिए, उसके बाद ही उसका भंडारण करना चाहिए।
1: मतलब और ज़्यादा सुखाना
0: जी, ज़्यादा सुखाइए। सबसे अच्छा तरीका जो है, अब हम उसमें किसी प्रकार के इंस्ट्रूमेंट का उपयोग तो करते नहीं है, उसको आप जो है मुँह में रख के यदि हम उसको यदि चबाते हैं तो कट्टी की आवाज़ आती है, उससे ही हमारे किसान भाई जो है इस बात का अंदाज कर लेते हैं कि हमारा बीज जो है वो अच्छी तरीके से सूख चुका है। इस बारे में मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी और देना चाहता हूं, वो ये है कि जो सुरक्षित नमी प्रतिशत है, हमारी वैज्ञानिक अनुशंसा ये कहती है कि यदि मान लीजिए जैसे 9% पे यदि आपने किसी बीज को सुखाया, हमने यदि उसका 1% बीज की नमी को और कम कर लिया, 8% पे पहुंच गया वो, तो 1% नमी जब आप कम कर देते हैं किसी बीज की तो उसकी भंडारण क्षमता दुगनी हो जाती है। सपोज यदि एक बीज यदि 9% पे यदि मान लीजिए 1 वर्ष के लिए सुरक्षित रख सकते थे तो उसी बीज को यदि आप 8% तक यदि नमी ले आते हैं तो उसको आप जो है 2 वर्ष तक सुरक्षित रख सकते हैं, बशर्ते जो आपने बीज सुरक्षित किया है उसमें नमी का प्रवेश नहीं होना चाहिए।
1: विकास जी, अगला बिंदु जो आपने बताया था वो था बीज का उचित भंडारण।
0: सबसे पहले तो मैं किसान भाइयों का ध्यान इस तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जब आप भंडारण के लिए जाते हैं तो आप भंडारण के कक्ष का अच्छी तरीके से निरीक्षण कीजिए। सबसे पहले आप ये देखेंगे कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो आपकी जो दीवारें हैं वहां से कहीं से नमी तो नहीं आ रही है, या आपका जो फ्लोर है वहां से कहीं नमी का स्थान तो नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट उसमें नमी है। यदि आपकी नमी होगी तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि आपके बीज को खराब होने की बहुत ज़्यादा उसमें आशंका बढ़ जाती है। तो इस प्रकार का हम सबसे पहले ये ध्यान रखेंगे। फिर दूसरी बात, हम इंस्पेक्शन उसमें ये करना है हमको, किसी प्रकार का ऐसा तो नहीं कि पहले से ही पूर्व में ही वहाँ पर कोई जो भंडारण वाले कीट है वहाँ पर उपस्थित ना हो, उनके अंडे इत्यादि ना हो। इसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि आप जो है इमिडाक्लोप्रिड जो है उसका छिड़काव कर दीजिए स्प्रेयर में भरकर, और उसको कक्ष को आप सूख जाने दीजिए और फिर हम उसका इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। फिर हम जब भंडारण के उचित पात्रों की बात करते हैं तो सामान्य तौर पर आज भी हमारे यहाँ जो है वो गनी बैग्स का इस्तेमाल किया जाता है, किंतु आजकल जो एक अच्छी बात ये हो गई है कि अब जो है प्लास्टिक वाले बैग्स इस्तेमाल ज़्यादा हो रहे हैं। तो प्लास्टिक वाले जो बैग्स हैं उनमें जो है इन्फेक्शन की संभावना थोड़ी कम हो जाती है, काफ़ी हद तक वो सुरक्षित रहते हैं। फिर भी यदि आप मान लीजिए जूट वाले बोरे यदि इस्तेमाल कर रहे हैं तो यदि नए बोरे इस्तेमाल कर रहे हैं तो अच्छी बात है, किंतु यदि बोरे आपके यदि पुराने हैं तो उनको आप अच्छी तरीके से धोकर सुखाकर ही उनको इस्तेमाल हम करेंगे। दूसरी बात यह है कि जो इसके अलावा है धातु बिन जो रहते हैं, जो आपके जो स्टील या लोहे के जो कंटेनर रहते हैं, टंकियां रहती हैं, उनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। किंतु बीज को भंडारण करते समय हम आपसे ये बोलेंगे कि भंडारण करने के पूर्व ये जो पात्र बने रहते हैं वे डिफरेंट प्लेट्स को चादरों के मिलाकर बनाए जाते हैं। तो वहाँ पर जहाँ पर उनका जोड़ है वहाँ पर आप अंदर की तरफ भी मिट्टी की लेयर लगा दीजिए, नंबर एक। उसके बाद बीज का भंडारण कीजिए और भंडारण करने के बाद उसके ऊपर भी ढक्कन को भी अच्छी तरीके से मिट्टी से लेपित कर दीजिए ताकि वह एकदम से एयर टाइट हो जाए। यदि आपका एयर टाइट रहेगा तो आपका बीज सुरक्षित रहेगा। इसके अलावा जो हमारे बहुत बड़े किसान हैं उनके लिए है कि जो साइलो स्टोरेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो लोहे या कंक्रीट के बने साइलोज रहते हैं उसमें भी अलग अलग प्रकार के टावर साइलो जो वर्टिकल जो रहता है आपका हॉरिजॉन्टल जो रहता है उसको बंकर साइलो बोलते हैं, उनमें जो है आपका टेम्परेचर को और ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने की व्यवस्था रहती है, उनमें भी हम जो है बीज को सुरक्षित रख सकते हैं। एक और तरीका है वो जिसको वैज्ञानिक गोदाम हम बोलते हैं, इसमें पक्का फर्श रहता है और उसमें प्रॉपर एरेशन का ध्यान रखा जाता है, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को कंट्रोल किया जाता है और इसमें हम क्या है बैग्स में रखकर उनको प्लेटफार्म पर जो है सुरक्षित हम अपने बीज को रख सकते हैं। और एक हर्मेट्रिक स्टोरेज जो है वो उसमें अंतर्गत हम क्या है एयर टाइट कंटेनर जो है उनका उपयोग जो है वो आपके भंडारण के लिए हम करते हैं।
1: जी, अब बात आती है भंडारण के उपरांत उसकी जो मॉनिटरिंग की बात आपने की थी, किसान भाइयों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारी मेहनत जो है वो खराब ना हो।
0: कम से कम हर 15 दिन पर अपने भंडार गृह का इंस्पेक्शन करना चाहिए, उसका निरीक्षण करना चाहिए। सबसे पहले ये देखिए किसी प्रकार के कोई इंसेक्ट पेस्ट का अटैक तो नहीं हो रहा है, किसी प्रकार की कोई बीमारी तो हमारे बीजों में नहीं लग रही है, आर्द्रता बहुत ज़्यादा तो नहीं है, कहीं कोई लीकेज वाटर वगैरह का तो नहीं हो रहा है उसमें। यदि मान लीजिए इस प्रकार की कोई स्थिति है तो हमें फिर से पुनः अपने जो है बीज को बाहर निकाल कर उसकी प्रॉपर सन ड्राइंग करके और उसको हमको प्रॉपर फिर से पैकिंग करके रखना पड़ेगा। तो जो है इंसेक्ट पेस्ट से जो हम इस प्रकार जो है उसकी सीविंग करके पुनः जो है हमको भंडारण गृह में उसको ले जाना पड़ेगा।
1: तो डॉक्टर विकास गुप्ता जी, आपने जो राह दिखाई है हमारे किसान भाइयों को, हमें आशा है कि वो आधुनिक तरीके से गेहूं की कटाई कर सकेंगे और उसका भंडारण कर सकेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद सर।
2: सो भैया, हमें तो पूरी पूरी उम्मीद आए कि हमारे जितने भैया हैं उनने डॉक्टर विकास गुप्ता की जितनी बातें हैं गेहूं की कटाई की तकनीक की और भंडारण की भी ध्यान से सुनी हुई हैं और वे उन पे अमल स्वीकार हैं और बहुत लाभ को धंधा सोले। और भैया अब देखो, संझा बिरिया है और बोई बात एकादशी है, मिठाई लाल चक्रवर्ती भैया सोई हैं, सो कृष्ण कन्हैया के कैसे अद्भुत दर्शन करा रहे, मिल के सुनत हैं मिठाई लाल चक्रवर्ती भैया को।

0: मौसम और जलवायु, यह यूनेस्को का संदेश है। क्या आपने कभी सोचा है कि मौसम और जलवायु में क्या अंतर है? आइए हम मौसम और जलवायु के बीच अंतर के बारे में जानते हैं। मौसम होता है रोजमर्रा की स्थिति, जैसे आज बारिश हो रही है या कल धूप निकलेगी। लेकिन जलवायु का दायरा बड़ा होता है, यह 30 सालों में मौसम का सामान्य स्तर होता है। मौसम और जलवायु दोनों को मापने के लिए एक ही उपकरण का उपयोग किया जाता है, तापमान, बारिश, हवा, आर्द्रता और दबाव। लेकिन हम मौसम का अनुमान सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही लगा सकते हैं, जबकि जलवायु हमें दीर्घकालिक रुझान देखने में मदद करती है। यहाँ एक रोचक तथ्य है। दुनिया का सबसे पुराना तापमान रिकॉर्ड नेदरलैंड्स में बना, वो भी सन 1700 में।
1: सुभैया, मुनिया को देखो, मुनिया कहाँ से चली आ रही है। अरे मुनिया, तुम्हारी गुड़िया तो बड़ी नोनी है, दिखाओ तो तन्ना। अब देखो विष्णु, मुनिया की गुड़िया कितनी सुंदर आए, और एक तुम हो कि दिन भरे मोबाइल के डिब्बा में घुसे रहते हो। अब हमारे ज़माने में तो लकड़ी को घोड़ा दौड़त रहो, माटी की गुड़िया बोलत रही, और इतो ही नहीं मज़े की तो का पूछो। हमारी अम्मा बताऊ थती कि पहले मेला में सीटी, बांसुरी और माटी के घोड़ा आउ थते। मनो अब तो जब से विदेशी खिलौने आ गए, सो मोड़ा मोड़ी पारंपरिक खिलौना को भूल ही गए। अब रमेशर कक्का कह रहे कि जेई तो चिंता की बात है, भारतीय खिलौने ना केवल खेलन की चीज़ हैं, बल्कि वे तो मोड़ा मोड़ी में सीख और संस्कार को हिस्सा सोई हैं। अब भैया आप सोचो कि कैसे मोड़ा मोड़ी में सीख और संस्कार के मामले में खिलौने साथ दे हैं। सो भैया देखो, लकड़ी के खिलौना बच्चों को प्रकृति से जोड़त हैं, माटी के खिलौना हाथ की कला सिखाऊत हैं, पहेलियाँ और लट्टू दिमाग और शरीर दोनों को तेज करत हैं। अब हमारे कारीगर भोला को ही ले लो। भैया भोला की हम बात बताएं कि आज से कछु साल पहले, ज़्यादा बात नहीं कर रहे, 12-15 साल पहले की बात बता रहे, कि जब भोला कारीगर हमारे मोहल्ला से निकरत थो, सो बड़ी जोर जोर से चिल्लाउत थो कि लो आ गओ घोड़ा, जे देखो बंदरिया ग्लोट रही, और जे देखो आज पिटारे में का निकलो। और भैया आप यकीन नहीं मानो, मोहल्ला में को एक घर ऐसो नहीं होतो जे वे बच्चे सारे के सारे सड़क पे ना निकल आए। आजकल देखो इतो घाम पड़ रहा, पर गर्मी पहले भी कम नहीं होती। ठीक है आज जैसी नहीं, पर पहले भी बहुत थी। लेकिन भरी घाम में, भरी दोपहरिया में सारे बच्चे बाहर निकल आते और भोला से खिलौने लेते, और जब वो अपने जो टोकरी होती थी, टोकरी को सिर से उतार के उके ऊपर से लाल कपड़ा हटाओ, तो सो ऐसो लगत तो जैसे पूरी दुनिया की खुशी निकल के भी टोकरी में समा गई, और सारे मोड़ा मोड़ी दौड़त थे, और हर कोई अपने हिसाब से मोल लगा के भोला हर चीज़ को, जो कीमत होती, हमें आज भी ध्यान है कि कीमत पहले बढ़ा के बताओ तो। और फिर जब बच्चे बोलत थे, सो बे भैया बच्चों की मुंह मांगी कीमत पे खिलौने दे देते थो। सो जब हमें वो काल मिलो, तो बड़े सालों बाद हमने उनको देखो, हमने पूछ ली कि काय भोला अब भी खिलौने बनाओ थो। सो तन्ना भारी मन से बोलो कि मंगला भौजी, पहले खूब बिकत हते, तुम्हें तो ध्यान ही है हमारे पास फुर्सत नहीं रहती। इतो ही नहीं, हमने 4-6 लोगों को सोई अपने संगे परिवार के लगा के रखो हतो, इतने खिलौने बिक जाऊ थे। मनो अब लोग चमकदार विदेशी खिलौना मांगत है, हमारी कला तो धीरे धीरे ख़त्म हो रही, जबकि हमारे खिलौना तो सुंदर हैं, ऊपर से पर्यावरण के दोस्त सोई हैं, ना प्लास्टिक है, ना जहरीली रंग है। और साची भैया देखो, भारत के तो अलग अलग राज्य के खिलौना विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। पिछली बेरा जब हम लोग गए थे ना दक्षिण भारत की यात्रा पे, सो भैया हम तो देख के हैरान, कर्नाटक में चन्नपटना नाम के खिलौने मिलत थे, एक कारीगरी कहलाउत है, और इतने बड़े पैमाने पे उनके खिलौने बिकत हैं कि का कहने। जब बनारस गए तो वाराणसी के लकड़ी के खिलौने बे देख के मन हैरान कि अरे बाप रे, और अपन जैसे बड़े लोगों को सोई मन हिरा जाए, सो मोड़ा मोड़ी के तो क्या कहने। और भैया कोंडापल्ली से हस्त निर्मित खिलौनों के तो कोई कारीगरी को कहो ही नहीं जा सकत। इतनी बारीक, इतनी सुंदर कारीगरी करके मिलत है कि मन खरसा जाओत है। और राजस्थान की कठपुतली के तो का कहने। अब हमारे ते मोहल्ले में अभी मेला भरो तो सो मोहल्ले में जब मेला भरो सो सब ही गए। हमारे ते से सोई सब ने कही कि चलो मंगला भौजी आज अपन और सोई संजा बिरिया है घूम आउते हैं। हमने तो पहले सोची कि भैया इतनी गर्मी आ रही, और हमें ये देख के हैरानी भई कि जब हम और घर से निकल रहे थे तो करीब जेई चौपाल के बाद हम और 8 बजे के करीब सब ने मन बनाओ कि चलो चलत हैं मेला देखने। और जब हम वहाँ गए सो भैया गर्मी के हाल देख के मन बड़ो अजीब सो लगो। हम बार बार जेई सोच रहे थे पूरे रास्ता कि भैया ऐसी का बात हो गई कि जोन गर्म मौसम है वे कम हो ही नहीं रहो। अब भैया हर कोई यही कहते हैं कि ईश्वर की मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकत, और जो कछु हम सोई देत हैं सो ईश्वर की देन है। सो गर्मी सिखाए कि अब भैया हम और को सोचने को समय आ गो, तुमने तो खूब प्रकृति को दोहन कर लो और अब हम अपने रंग दिखा रहे। सो भैया अब देखो जब हम और ने जे देखी तो मन में बस यही बात आई कि बात तो सोचवे वारी है कि हमारे घर से लेके मेला के रास्ता तक और मेला में खड़े होबे के बाद सोई हम यही देखते रहे कि कहूँ बड़े पेड़ घने पेड़ नहीं दिख रहे। मन में बड़ी जे बेचैनी सी होने लगे कि आज तो हम और फिर भी खड़े हैं, हमारी जो आवे वाली पीढ़ी है बे कैसे अपनों काम करें, बे कैसे आगे बढ़ें। सो भैया हमने तो ई बेरा मन में ठान ली, और मजाक मजाक में तो हमने अपनी अम्मा को जिस वही कह दो कि अम्मा देखना 2 साल के अंदर हमको खुद हमारे देश से बड़ो सो पुरस्कार मिले। अम्मा बोली काहे तुम कैसे कह रही, ऐसे कौन सा काम तुम करने जा रही। हमने कही अम्मा इस बेरा जैसे ही ये बारिश की शुरुआत भई और हमने सड़क के किनारे उठा के पेड़ लगाने शुरू करे, छोटे छोटे पौधा लगाने हैं और देखो 3 से 4 साल में वे फिर बड़े बड़े पेड़ बन जाए हैं। अम्मा कह रही तुम तो ऐसे कह रही जैसे तुम में बड़ी हिम्मत है, कितने पेड़ लगाए हो, आजकल खरीद भी जाओ तो 40 रुपया 50 रुपया को एक पेड़ मिलता है। भैया जो सही बात है ऊ के बारे में सोचो। हमने कहे नहीं अम्मा, हम अपने संगे रोज लोगों को बोले हर व्यक्ति अगर एक पेड़ की जिम्मेदारी ले ले सो हमारी

आबे बारी पीढ़ी के लाने सांस लेने की व्यवस्था हो पाए, और उसके संगे संगे खिलौना तो हमारो व्यापार बन ही रहो है। खिलौनों को काम हमारों ने सोच ही लो है कि करने हैं। अब कठपुतली के बारे में हम बता रहे थे कि मेला में जब कठपुतली देखी तो पुराने दिन याद आ गए, और जे खिलौना जो है जे वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत को मजबूत बनाऊत है। सो भैया हम तो कहते हैं कि भारतीय खिलौना हमारी परंपरा, हुनर और ग्रामीण रोजगार को आधार सोई है, और जौन हमारे स्थानीय कारीगर खिलौना व्यापार को आगे बढ़ा हैं, सो जीवन खुशियों से भर जे हैं। अपनी माटी, अपनों मान और भारतीय खिलौनों को बढ़े सम्मान। और जब हमारे खिलौनों को खेलबे बारे हाथ, नन्हे नन्हे हाथ आगे चल के वृक्षारोपण में सोई साथ दे हैं, सो फिर तो हर पेड़ के नीचे, जैसे पहले अपन बैठते थे ना कि हर पेड़ के नीचे बैठे हैं और मिलकर हर मौसम को आनंद ले रहे, तो हमारी आवे बारी पीढ़ी सोई जे सभी आनंद ले सके, यही हमारी कोशिश है। और हमारी आप सभी से यही बिनती सोई है कि संकल्प लें कि कम से कम एक पौधा जरूर लगाएं जो आगे वृक्ष बन के सबके मन को शांति दे। और भैया देखो बतकाओ करत करत चलवे की बिरिया सोई हो गई। स्वीकारो मंगला भोजी की। राम राम, जय जवान जय किसान।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत। ये प्रसारण आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से किया जा रहा था। 8 बजना चाहते हैं, कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में
2: नमस्कार। सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं निखिल कुमार और आज हम चर्चा करेंगे केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रमुख निर्णयों पर। हमारे साथ जुड़ी हैं लक्ष्मी देवी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। लक्ष्मी जी कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: लक्ष्मी जी सार्थक पीडीएस योजना को दो अलग अलग योजनाओं को मिलाकर के एक तरह से अम्ब्रेला स्कीम के रूप में तैयार किया गया है जिससे कह सकते हैं कि इसे केवल प्रशासनिक पुनर्गठन नहीं बल्कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है उसमें एक बड़े सुधार की तरह लाए जाने की कोशिश की गई है। तो इससे जो राज्य और केंद्र सरकार के बीच का समन्वय है और जो भी जवाबदेही होती है जो भी व्यवस्था होती है उस पर कैसा असर पड़ेगा?
3: इस स्कीम में जो मेन जो कंपोनेंट है जो स्टेट एजेंसीज जो फूड ग्रेन्स वितरण करने में लगे हैं उसमें जो उनको दिक्कत आती थी वो जो कॉस्ट लगती थी जो एक स्टेट से जैसे सेंटर से स्टेट तक जाता है फूड ग्रेन्स वहां से फर्दर डिस्ट्रिक्ट लेवल डिस्ट्रीब्यूशन और पीडीएस या राशन शॉप तक पहुंचाने का काम हर एक स्टेट का जवाबदारी है। वहां पे उनको कुछ कॉस्ट बेयर करना पड़ता था अभी उससे वो उठा नहीं पा रहे थे। इस स्कीम के तहत वो वाला जो कॉस्ट जो भी सपोर्ट है अब सेंट्रल गवर्नमेंट देगी इससे उनका थोड़ा सा पीडीएस में जो इश्यूज थे वो रिजॉल्व हो जाएगा। और दूसरी इशू है जो डीलर्स का है। डीलर्स का जो रेम्यूनरेशन बहुत सालों से स्टैटिक था एंड वो अभी थोड़ा सा बढ़ेगा। इससे क्या है कि डीलर्स को भी वो शॉप्स चलाने में थोड़ा सा हेल्पफुल होगा एंड वो इंटरेस्ट के साथ ये काम करेंगे। और तीसरा है वो जो टेक्नोलॉजी है ये तीन जो है जो अडॉप्शन है उससे जो स्टेट और सेंटर का जो समन्वय से जो काम होना है उसमें और भी ट्रांसपेरेंट वे और एफिशिएंसी बढ़ेगा।
2: आइए सुनते हैं केंद्रीय मंत्री ने इस बारे में और क्या कहा है।
4: आज की कैबिनेट में एक ऐसा फैसला लिया गया है जो कि देश के 80 करोड़ नागरिकों को प्रभावित करता है। आप सब जानते हैं कि आज हिंदुस्तान में दुनिया की सबसे बड़ी फूड सिक्योरिटी

प्रोग्राम चल रहा है। फूड सिक्योरिटी से जुड़े जो विषय हैं, उन सबके प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। आज उस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने वाली जो व्यवस्था है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसमें बहुत बड़ा एक फैसला लिया गया है, वो है सार्थक पीडीएस स्कीम। सार्थक पीडीएस स्कीम

0: को सॉल्व करने के लिए भारत सरकार ने फैसला लिया है कि उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे इस प्रोग्राम के तहत। दूसरा, जो फेयर प्राइस शॉप्स हैं, उन फेयर प्राइस शॉप्स में डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था, एक लंबे टाइम से वो स्टैटिक था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी, तो वो भी इसमें आज फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला लिया गया टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
1: अभी केंद्र सरकार ने इस सार्थक पीडीएस के लिए अगले 5 वर्षों में लगभग 25,530 करोड़ रुपए के बड़े परिव्यय की मंजूरी दे दी है, तो इस राशि को प्रभावी और पारदर्शी तरीके से सुनिश्चित करने के लिए किस तरह से काम करना होगा?
2: तो इसके लिए जो रियल टाइम बेनिफिशियरी डेटाबेस है, जो निर्मल प्लेटफॉर्म के तहत ऑलरेडी है, इससे क्या है कि जो राइटफुल बेनिफिशरीज है वो जो राइटफुल बेनिफिशियरीज ने वो वीड आउट हो जाएगा, उनको निकाल देंगे। उस पैसे को कैसे अच्छे से यूज कर सकते हैं, इसमें एआई का और टेक्नोलॉजी का यूज किया गया ताकि वो पैसे सही तरीके से इस्तेमाल हो। एंड जो इरेगुलरिटीज जो होते थे पैटर्न को वो डिटेक्ट करना, और होस्ट डुप्लीकेट बेनिफिशरीज जो होते थे वो एआई और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम से ये सब वो डिटेक्ट होगा। तो इससे क्या है कि हमारा जो सब्सिडी है उसमें भी बचत होगी, और ये जो 25,000 है वो ज्यादातर हमें कमीशन जो डीलर्स के लिए जाएगा, जो स्टेट जो कॉस्ट उठा नहीं पा रहे तो उसमें ज्यादातर ये खर्चा वो जो रेगुलर है, बट बड़ा जो सेविंग्स होगा जो ये डुप्लीकेट बेनिफिशरीज के लिए और इरेगुलरिटीज जो होता था उससे थोड़ा सा हमारा सब्सिडी जो खर्चा होता है जो इम्प्लीमेंटेशन में उसमें बचत होगी।
1: बिल्कुल, अभी आपने रियल टाइम मॉनिटरिंग की बात की, एआई आधारित शिकायत निवारण प्रणाली की भी बात की है सार्थक पीडीएस के तहत, तो नई तरह की प्रक्रिया एक अपनाई जा रही है जिसमें शिकायतों के समाधान में तेजी आएगी और इसे पारदर्शी बनाया जाएगा। आइए सुनते हैं इस बारे में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने क्या कहा।
0: तीन बड़े एलिमेंट्स रहेंगे टेक्नोलॉजी के, सबसे पहला निर्मल, वो है पीडीएस बेनिफिशियरीज की रजिस्ट्री, करेक्ट व्यक्ति को सुविधा मिले और गलत व्यक्ति को सुविधा न मिले, इसके लिए एआई की टेक्नोलॉजी इसका यूज करके पीडीएस के बेनिफिशियरीज की एक रजिस्ट्री बनाई जाएगी। दूसरा है, किसी की भी पब्लिक की कोई ग्रीवेंस हो उसको सॉल्व करने के लिए एआई इनेबल्ड सिस्टम है आशा, इसमें प्रोएक्टिव फीडबैक भी है। तीसरा है सक्षम, इसमें सप्लाई चेन के पूरे प्लेटफॉर्म को टेक्नोलॉजी इनेबल करेंगे, हर एक फूड ग्रेन के बैग को क्यूआर कोडिंग करना, जितनी गाड़ियां जाती है उसका जीपीएस टैगिंग रखना, डैशबोर्ड्स प्रॉपर बना के उनका ट्रैकिंग करना, पीडीएस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए ये टेक्नोलॉजी का इनेबलमेंट इससे किया जाए।
1: लक्ष्मी जी, इस योजना में हम देख रहे हैं कि एआई, मशीन लर्निंग, एनएलपी और ब्लॉकचेन जैसी अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करने की बात कही जा रही है। अगर एक आम नागरिक के दृष्टिकोण से हम समझने की कोशिश करें तो किस तरह से ये वास्तव में बदलाव लाने का प्रयास करेंगी, जिसमें फर्जी लाभार्थियों की बात होती है, डुप्लीकेट राशन कार्ड की बात होती है या फिर खाद्यान्न लीकेज पर भी काफी चर्चा होती है।
2: देखिए, ये जो ग्रीवियंसेस है, जो भी कंप्लेंट्स है कंज्यूमर्स का और स्पेशली बेनिफिशरीज का, जो आशा एआई असिस्टेंट है, ये जो मल्टीलिंगुअल एआई ग्रीवेंस प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो बेनिफिशरीज कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, चैट बॉट्स भी है, इसके तहत वो जो भी कंप्लेन है उससे वो फास्टर रेजोल्यूशन होगा और वो मल्टीलिंगुअल है, कोई भी यू नो लैंग्वेज में वो बेनिफिशरी वहां पे कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि इससे क्या होगा कि यू नो सिटीजन का जो बेनिफिशरीज का जो कंप्लेंट्स है, जो एनएलपी टेक्नोलॉजी जो यूज कर रहे हैं वो मल्टीपल लैंग्वेजेस को प्रोसेस करके कैसे वो रिजॉल्व करें, इससे क्या है कि कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन भी होगा इससे बेनिफिशरीज को, हाँ उनका जो कंप्लेंट्स है वो कोई समझ रहे, कोई भी लैंग्वेज है, उस लेवल के जो राशन जो लेते हैं वो बेनिफिशरीज है, ज्यादातर अलग ही सेगमेंट के कुछ लोग पढ़े लिखे हैं, कुछ नहीं है, तो उनके लिए कई बार खाली लिखित में देना मुश्किल हो जाता है, वो कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप में वो वॉइस चैट भी कर सकते हैं, तो इस तरह का कंप्लेंट्स बहुत ही अच्छे से फास्टर वे में वो एड्रेस हो सकता है।
1: तरह की जब खाद्यान्न योजना की हम बात करते हैं तो हमेशा से सरकार सोच रही है कि लास्ट माइल डिलीवरी को विशेष तौर पर प्राथमिकता दी जाए, यानी कि जो देश के दूर दराज के निवासी हैं, दूर दराज के इलाकों में रहने वाले आदिवासी या फिर भौगोलिक रूप से जो कठिन क्षेत्रों में रहते हैं उनके सामने अक्सर राशन की चुनौतियां आती हैं, तो इस मिशन में अगर हम लक्ष्य की बात करते हैं तो अब जो सरकार ने एक अम्ब्रेला स्कीम तैयार की है, आपको क्या लगता है कि इसमें सफल होने के क्या क्या एलिमेंट्स हैं?
2: देखिए चैलेंजेस ज्यादातर जो है, रोड्स अच्छे नहीं है, स्टोरेज फैसिलिटीज रिमोट एरिया

0: में इस तरह का पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर होने के वजह से लास्ट माइल डिलीवरी में प्रॉब्लम होता है।
1: जी
0: सो अभी क्या है कि ये जो डेटा इनएक्यूरेसीज और रियल टाइम मॉनिटरिंग नहीं हो पाता है, और इसके वजह से दिक्कत बहुत होता था कि वहां तक पहुंचाना। अब ये जीपीएस टैग्ड व्हीकल्स जो इस स्कीम के तहत होगा, रियल टाइम ट्रैकिंग होगा,
1: जी
0: यहाँ से अगर गाड़ी निकलेगी तो कहाँ पे वो स्टक है, वो रोड वहां पे लैंडस्लाइड हुआ है या वहां पे रुका हुआ है, या पता, यू कैन मॉनिटर जीपीएस टैग व्हीकल्स कहाँ पे
1: बिल्कुल
0: दिक्कत हो रही है, कहाँ पे चोरी हो रही है, उस तरह का। और रूट ऑप्टिमाइजेशन में यहाँ पे होगा एआई एल्गोरिथम्स, जो एआई यूज करके कौन सा रूट्स जो है बहुत एफिशिएंट है, जहां से ट्रैवल टाइम कम ले सकता है, तो
1: जी
0: वो वाला भी एल्गोरिथम के थ्रू वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और वो डिमांड पे फोकस कर सकते हैं कि कौन से सीजन में हम ज्यादातर लोगों का जो है ज्यादा ऑफ टेक है राशन में। कई बार लोग जल्दी ले लेते हैं पहले हफ्ते में,
1: जी
0: क्योंकि वो उनका टाइम स्पैन होता है 1 महीने में राशन, कभी भी आप महीने के स्टार्टिंग में उठा सकते हैं या आखिरी में भी उठा सकते हैं। कई बार त्योहार के
1: जी
0: टाइम पे वो फर्स्ट वीक में उठा सकते हैं, कई बार डीलर के पास उतना स्टॉक नहीं होता, उसके वजह से भी बेनिफिशरीज को टाइम से मिलना मुश्किल होता। तो टेक्नोलॉजी की वजह से वो डिमांड भी फोकस कर सकते हैं कि कौन से वीक या कौन से महीने में स्टॉक सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है, उसी के वजह से प्री स्टॉकिंग वहां पे कर सकते हैं। दूसरा है कि वो जो बैग के ऊपर क्यूआर कोडेड की वजह से वो टैम्पर कोई कर ही नहीं सकते,
1: राइट
0: जो जिस फेयर प्राइस शॉप को, जो राशन शॉप के लिए जाना है, वो वहां पे पता चल जाता है कि ये वाला क्यूआर कोडेड कौन से राशन के दुकान में पहुंचा है, और वो ट्रैक भी कर सकते हैं। और रियल
1: जी
0: टाइम मॉनिटरिंग जो है ना, वेयरहाउस से लेके राशन शॉप के दुकान तक एवरी स्टेप जो डिजिटली कहाँ पे गया, कहाँ पे रुका, कहीं पे दिक्कत हुई, सब कुछ वो ट्रैक कर सकते।
1: लक्ष्मी जी, सरकार का ये भी कहना है कि ये योजना NFSA के तहत लगभग 81 करोड़ 35 लाख लोगों की खाद्य सुरक्षा को और मजबूत करेगी। इतनी बड़ी आबादी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रशासनिक और वित्तीय दोनों ही दृष्टि से चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन इस बारे में केंद्रीय मंत्री क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं।
2: पूरी स्कीम से जो बेनिफिट होंगे, सबसे बड़ा तो एलिजिबल बेनिफिशरीज आइडेंटिफाई होंगे, दूसरा सिटीजंस का सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा, तीसरा किसी की भी ग्रीवेंस हो उसको प्रॉपरली रिड्रेस कर पाए। एक जो फाइनेंशियल गेन होगा इस लॉजिस्टिक्स के पूरे रीऑर्गेनाइजेशन से और टेक्नोलॉजी यूज करने से, कॉस्ट ऑफ मूविंग रादर मूवमेंट ऑफ ग्रेन्स विल रिड्यूस ऑलमोस्ट 15-50%। लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट में 280 करोड़ रुपए की एनुअल सेविंग हो, और कार्बन एमिशंस बिकॉज ऑफ लेसर मूवमेंट ऑफ द फूड ग्रेन्स, कार्बन एमिशंस विल 35%। ये सारे इसमें बेनिफिट।
1: लक्ष्मी जी, पिछले कुछ वर्षों में अगर हम देखें तो राशन कार्ड डिजिटलीकरण, आधार सीडिंग और EPOS मशीनों के माध्यम से काफी सुधार हमें देखने को मिले हैं, लेकिन कुछ तकनीकी बाधाएं भी सामने आई हैं और उन्हीं को दूर करने के लिए सार्थक PDS की बात की गई। और इसमें हम अगर थोड़ा सा आगे बढ़ते तो इंटर ऑपरेबल और सिटीजन सेंट्रिक PDS ढांचे की बात की जा रही है, वन नेशन वन राशन कार्ड के बाद इस तरह की पहल को आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में?
0: क्योंकि वन नेशन वन राशन कार्ड ये बहुत ये इम्प्लीमेंट हो ही रहा है, तो ये अच्छा है कि कहीं पे भी अगर आप जाए वहां पे आप राशन उठाना चाहिए, और उठाने का वो एक प्रोसेस भी होना चाहिए। सो अगर आप दिल्ली में हैं, दिल्ली से अगर आप कोई बॉम्बे जाते हैं,
1: जी
0: वहां पे अगर राशन अगर लेना चाहते हैं तो वहां पे आप ले सकते हो। इस तरह का प्रोविजन अभी है, विच इज गुड। बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स है जो एक ही राशन होगा और कहीं पे भी वो ले सकते हैं।
1: जी लक्ष्मी जी, अगर थोड़ा सा पीछे जाकर के हम देखें तो उस सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कई समस्याएं रही जिनमें भ्रष्टाचार और बिचौलियों की भूमिका एक लंबे समय तक देखी गई, जिसकी वजह से इतने सारे बदलाव किए गए। आज जो बदलाव हम देखते हैं तो ये पारदर्शिता को काफ़ी हद तक बढ़ा चुके हैं, सरकार को इसमें काफ़ी सफलता भी मिली है। आगे की जो राह है उसमें और भी समस्याएं बिल्कुल ना हो, वो और भी अच्छे से काम करें ताकि और कहीं कहीं पर जो शिकायतें आती हैं उनको दूर किया जा सके। तो इस बारे में आपको क्या लगता है कि सरकार अपने प्रयासों में पूरी तरह सफल हुई है?
0: हाँ, इस सरकार ने इम्प्लीमेंटेशन इतना क्लोजली मॉनिटर करते हैं, अगर कोई भी अगर पॉलिसी डिजाइन करते सोच समझ के करते हैं, और जहाँ तक मैंने PDS इतने सालों से मैंने ट्रैक किया है,
1: जी
0: और जितना जो इनएलिजिबल बेनिफिशरीज को जो अचीव किया है वो वहां से लेके, और इवन वेयरहाउस मॉनिटरिंग और टेक्नोलॉजी अडॉप्शन

0: एक के बाद एक बहुत ही अच्छे से इंप्लीमेंट किया जा रहा है। एंड मुझे लगता है कि अभी ये जो एक ही स्कीम के अंदर जो ये दो कंपोनेंट्स को लाने के बाद टेक्नोलॉजी अडॉप्शन, इससे और भी ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगा
1: जी
0: और सब्सिडी भी कम होगा सरकार के लिए, और बेनिफिशरीज को टाइम से उनका राशन मिलेगा, और कुछ भी दिक्कत हो तो टाइम से उसका रेजोल्यूशन भी होगा।
1: जी
0: कि ये पूरा सिस्टम को पेपरलेस और डिजिटली मॉनिटर्ड और ट्रांसपेरेंट सप्लाई चेन को बढ़ावा देगा।
1: जी लक्ष्मी जी, एक आखिरी प्रश्न आपसे पूछूंगा मैं।
0: सके
1: लक्ष्मी जी, सार्थक पीडीएस को वर्ष 2031 तक लागू रखने की योजना है, तो यदि इस योजना की सफलता को हम पीछे के वर्षों से मापना चाहें, तो आपको क्या लगता है कि इस योजना ने किस तरह के बदलाव हमारे देश में लाए हैं?
0: देखिए, इसमें तो डीलर्स का तो रोल है ही इम्प्लीमेंटेशन में, तो पहले कुछ सपोर्ट नहीं था, अभी सपोर्ट थोड़ा बहुत मार्जिन्स देते थे, अब बेहतर देने से वो एक अच्छा बदलाव देगा, वो उनको भी प्रेरित करेगा कि उनका काम जो राशन डिस्ट्रीब्यूशन के काम में वो अब मन लगा के वो इम्प्लीमेंट करें। एंड
1: जी
0: दूसरा, जो स्टेट कॉस्ट इनकर्ड था वो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ा बहुत मदद कर रहे हैं तो दैट विल ऑल्सो हेल्प इन इम्प्लीमेंटिंग द स्कीम इन अ मच बेटर वे।
1: जी लक्ष्मी देवी जी, इस कार्यक्रम में भाग लेने और मेरे तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: तो श्रोताओं, इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
2: सुर्खियों में अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश।
3: हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 8:15 हुए हैं। फिल्म संगीत, पहला गाना किशोर कुमार की आवाज़ में सुनिए। फिल्म का नाम है अगर तुम ना होते।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये प्रसारण आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से किया जा रहा था। 8:45 होना चाहते हैं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। केंद्र ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए सार्थक पीडीएस योजना के विस्तार को मंजूरी दी। योजना पर 25,500 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2-3 दिन तक भीषण लू की चेतावनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ते तापमान के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का ध्यान रखने का आह्वान किया। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के निर्णय को बरकरार रखा। कहा, यह प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को बढ़ावा देती है। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित। यूसीसी लागू करने वाला तीसरा राज्य बना। भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने आईएसएसएफ विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता। और भारत 2027 एशियाई रिले और 2028 एशियाई इंडोर चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। अब समाचार विस्तार से। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी।
1: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जो सरकारों के एजेंसीज राज्य में तो एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिमुनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से देश के प्रत्येक जरूरतमंद लोगों को समय पर अनाज पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में इस प्रणाली को और अधिक आधुनिक तथा प्रभावी बनाने का निर्णय लिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सार्थक पीडीएस योजना के विस्तार की मंजूरी का स्वागत किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि सरकार गरीबी उन्मूलन योजनाओं को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए उनमें प्रौद्योगिकी का समावेश कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन

0: पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के अंतर्गत एसआईआर करवाने की शक्ति रखता है। एक रिपोर्ट।
1: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने एसआईआर को पूर्णतः संवैधानिक करार देने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। दिल्ली में एसआईआर की प्रक्रिया 20 जून से शुरू होगी। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 5 अगस्त को और अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। श्री कुमार ने बताया कि बूथ स्तर के अधिकारी 30 जून से दिल्ली की मतदाता सूचियों के सत्यापन के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे। असम विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया है। इसके साथ ही असम ऐसा कानून पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य बन गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस विधेयक को विधानसभा के पहले सत्र में सोमवार को पेश किया गया था।
2: असम में समान नागरिक संहिता विधेयक का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक कानूनी व्यवस्था स्थापित करना है। संवैधानिक संरक्षण और पारंपरिक रीति रिवाजों को सुरक्षित रखने के लिए अनुसूचित जनजातियों को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा गया है। वहीं विभिन्न धर्मों पर आधारित व्यक्तिगत कानूनों के स्थान पर समानता और लैंगिक न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक समान कानूनी ढांचा लागू करने का प्रावधान किया गया है। विवाह संबंधी प्रावधानों के तहत विधेयक में एक विवाह की व्यवस्था अनिवार्य की गई है तथा वर की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और वधु की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता पारित होने पर असम की जनता को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि समान नागरिक संहिता भाजपा का स्थापना दिवस से ही संकल्प रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 से 3 दिनों तक मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में लू की स्थिति बनी रहेगी। विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू का रेड अलर्ट जारी किया। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी कल लू का प्रकोप बना रहेगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कई भागों में भीषण गर्मी के और लू के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का विशेष ध्यान रखने की अपील की है।

0: रिपोर्ट।
1: आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रियों के साथ मौजूदा लू की स्थिति पर चर्चा की। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि उन विशेष कदमों पर चर्चा हुई जिन्हें प्रत्येक मंत्रालय और विभाग अपने अपने कार्य क्षेत्र में उठा सकते हैं।
2: प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में मौसम की जो हीट वेव की परिस्थिति है उसका भी सभी मंत्रियों के साथ चर्चा की और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो राष्ट्र के प्रति आह्वान है उसी आह्वान के तहत सभी से अपने अपने मंत्रालय में सुविधा पहुंचाने की किस तरह की सुविधाएं की जा सकती है उसके ऊपर भी चर्चा हुई।
1: आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर नवल किशोर विक्रम ने लोगों को लू से बचने के लिए खुद को हाइड्रेटेड रखना और ORS जैसे इलेक्ट्रोलाइट युक्त तरल पदार्थों का सेवन करना और दिन के समय तपती धूप में बाहर निकलने से बचने की सलाह दी। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उधर राजस्थान में भी राज्य के 5 जिलों में लू की चेतावनी जारी की गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: दिन और रात के बढ़ते तापमान से प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में जनजीवन पर असर पड़ा है। दिन के समय गांवों और शहरों में सड़कों और बाजारों में लोगों की आवाजाही सीमित हो गई है। विभिन्न जिलों में प्रशासन की ओर से गर्मी से निपटने के लिए कई स्तरों पर इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही विभिन्न संस्थाएं भी ठंडे पेय का वितरण कर लोगों को राहत पहुँचाने के जतन में जुटी है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रदेशवासियों से प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना करने की भी अपील की है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने भी आज सभी न्यायाधीशों से अपील की कि वे भीषण गर्मी को देखते हुए मामलों की सुनवाई ऑनलाइन करें। न्यायालय ने कहा कि वह इस संबंध में न्यायिक निर्देश जारी नहीं कर सकता। न्यायालय दिल्ली में बढ़ती हुई गर्मी को देखते हुए सभी अदालतों में ऑनलाइन कार्यवाही करने के निर्देश देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था। सर्वोच्च न्यायालय ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर सरकार द्वारा पूर्व प्रभावी 28% GST को बरकरार रखते हुए इसे वैध बताया है। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म केवल मध्यस्थ नहीं है बल्कि उन्हें आपूर्तिकर्ता माना जाना चाहिए और उन पर वस्तु तथा सेवा कर GST लागू होता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए कम से कम 2 भारतीय भाषाओं सहित 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने संबंधी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करेगा। शीर्ष न्यायालय ने केंद्र सरकार, बोर्ड और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने NEET UG पेपर लीक मामले में आज 3 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। संघ लोक सेवा आयोग ने पहली बार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 की अनंतिम उत्तर कुंजी जारी की है। आयोग ने कहा कि परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार 31 मई शाम 6 बजे तक upssconline.nic.in पर उपलब्ध प्रश्न पत्र आपत्ति पोर्टल के माध्यम से अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल www.awards.gov.in के माध्यम से 5 जुलाई तक भेजे जा सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि देश की उन्नति के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास बेहद आवश्यक है। आज गांगटोक में सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने शिक्षा को सशक्तिकरण का मार्ग बताया और विद्यार्थियों से कहा कि वे अपने विचारों, नवाचारों और आपसी विश्वास के जरिए राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं। और खेलों में म्यूनिख में

0: ISSF निशानेबाजी विश्व कप में ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में 43 हिट लगाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने जूनियर और सीनियर दोनों वर्ग में विश्व रिकॉर्ड कायम किया। फाइनल में ईशा ने पूर्व विश्व चैंपियन मिरोस्लावा मिंचेवा और कोरिया की शीर्ष खिलाड़ी जीन यांग को हराकर पहला स्थान हासिल किया। डेरिन वेनेकैंप दूसरे और मिरोस्लावा मिंचेवा तीसरे स्थान पर रहीं। उधर न्यू चंडीगढ़ में आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान रॉयल्स ने 16वें ओवर में 4 विकेट पर 211 रन बना लिए हैं। वैभव सूर्यवंशी ने 97 रन की पारी खेली। भारत ने एशियन इंडोर चैंपियनशिप 2027 और एशियन रिले 2028 की मेजबानी के अधिकार हासिल कर लिए हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स के उपाध्यक्ष आदिल सुमरेवाला ने आज इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि एशियन इंडोर चैंपियनशिप 2027 का आयोजन भुवनेश्वर में जबकि चंडीगढ़ एशियन रिले 2028 की मेजबानी करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए सार्थक पीडीएस योजना के विस्तार को मंजूरी दी। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2-3 दिन तक भीषण लू की चेतावनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ते तापमान के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का ध्यान रखने का आह्वान किया। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के निर्णय को बरकरार रखा। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित, यूसीसी लागू करने वाला तीसरा राज्य बना। और भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने आईएसएसएफ विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Centre approves extension of Sarthak PDS scheme to modernise public distribution system with outlay of over 25,500 crore rupees. Severe heat wave conditions to continue over central and northwest India during next 2 to 3 days. Prime Minister Narendra Modi urges citizens to take care of vulnerable people amid soaring mercury. Supreme Court upholds legality of Election Commission's SIR drive, says exercise advances free and fair elections. Assam Assembly passes Uniform Civil Code Bill, becoming third state in the country to adopt the legislation. Indian shooter Isha Singh breaks world record in women's 25-meter pistol event, clinching gold at ISSF World Cup in Munich. And India to host 2027 Asian Relays and 2028 Asian Indoor Championships. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, today approved the continuation of the scheme to modernise the public distribution system, PDS, including ration transport, dealer support and technology upgrades till March 2031. The umbrella scheme, called Scheme for Assistance in Ration Transport and Handling Income with Automation in PDS, Sarthak PDS, has been cleared in the 16th Finance Commission cycle award period with an outlay of 25,530 crore rupees as central share. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav made the announcement regarding the cabinet's decision while briefing media in New Delhi.
2: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं।
3: थ्री मेजर रिफॉर्म्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोग्राम टुडे। फर्स्ट, द गवर्नमेंट विल सपोर्ट द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनकर्ड इन मूविंग फूड ग्रेन्स फ्रॉम लार्ज FCI वेयरहाउसेस इन द स्टेट्स टू फेयर प्राइस शॉप्स अक्रॉस डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स एंड डिविजन्स। सेकंड, देयर वाज अ नीड टू इंक्रीज द रेम्युनरेशन ऑफ फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एंड ए डिसीजन हैज बीन टेकन इन दिस रिगार्ड एज वेल। थर्ड, एफर्ट्स विल बी मेड टू मॉडर्नाइज द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम थ्रू द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी।
2: पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं?
1: The minister said the scheme will work towards fulfilling the government's commitment to 81.35 crore persons covered under the National Food Security Act. Prime Minister Narendra Modi has said the government is committed to ensure that food grains reach every needy person in the country on time through

0: चर्चा का विषय है।
1: सीमाएं सिर्फ नक्शों पर खींची गई रेखाएं नहीं होती, ये किसी देश की पहचान होती हैं, उसकी सुरक्षा, उसकी संस्कृति और उसके भविष्य की सबसे मजबूत दीवार होती हैं। लेकिन जब इन्हीं सीमाओं को पार कर अवैध घुसपैठ देश के भीतर प्रवेश करती है तो सवाल सिर्फ सुरक्षा का नहीं रह जाता, सवाल उठता है जनसंख्या संतुलन का, सामाजिक ढांचे का, रोजगार, संसाधनों और राष्ट्रीय पहचान का। क्या बदलती जनसंख्या तस्वीर भारत के सामाजिक और आर्थिक ताने बाने को प्रभावित कर रही है? क्या सीमाओं से शुरू होने वाली ये चुनौती अब शहरों और गांवों तक पहुंच चुकी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आने वाले वर्षों में ये भारत की आंतरिक सुरक्षा और सामाजिक स्थिरता के लिए गंभीर संकट भी बन सकती है? इन्हीं महत्वपूर्ण सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे हमारे विशेष कार्यक्रम चर्चा का विषय है में। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। हमारा आज का विषय है जनसंख्या परिवर्तन का सामाजिक आर्थिक ढांचे पर प्रभाव। आज हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रफुल्ल केतकर और सीमा सुरक्षा की चुनौतियों को बेहद करीब से देखने वाले पूर्व बीएसएफ प्रमुख और असम के पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी नमस्कार।
3: नमस्कार
1: प्रकाश जी। आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो सबसे बड़ी चुनौती इस समय भारत के सामने है वो दूसरे देशों से आए लोग हैं। दो तरह के लोग हैं, एक शरणार्थी हैं और दूसरे घुसपैठिए हैं। इसको लेकर जो हमारे बॉर्डर स्टेट हैं वहां पर कई तरह की समस्याएं देखने को मिल रही है। क्या लगता है, चूंकि आप खुद बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के प्रमुख रह चुके हैं, असम एक ऐसे राज्य के आप डीजीपी थे जहां पर इस तरह की बहुत बड़ी समस्या है, कैसे देखते हैं आप इसे भारत के नजरिए से?
3: देखिए, भारत के नजरिए से तो बहुत साफ है और अलग अलग समय पे बड़े बड़े हस्तियों ने इस विषय पे रोशनी डाली है कि ये देश की सामाजिक ढांचे के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए और देश की सुरक्षा के लिए, तीनों ही दृष्टिकोण से ये बहुत बड़ी चुनौती है और बहुत बड़ा खतरा है। घुसपैठिए जो है आज से नहीं, ये स्वतंत्रता के बाद से, इंडिपेंडेंस के बाद से ही शुरू हो गया था। पर यह है कि इसकी प्रक्रिया अगर हम 1971 के बाद देखें, 1971 में बांग्लादेश बन गया तो उसके पहले जो कुछ उत्पीड़न हुआ था पाकिस्तान आर्मी द्वारा, उस समय आप जानते हैं लाखों की तादाद में बांग्लादेशी आए थे और यहाँ पे उन्होंने शरण ली थी। बाद में बहुतों को वापस भेजा गया, कुछ गए, शायद कुछ नहीं भी गए होंगे। परंतु 1971 के बाद भी ये समस्या ऐसा नहीं है कि इसका समाधान हो गया। हम लोग ये समझते थे कि अब बांग्लादेश इंडिपेंडेंट हो गया और भारत के सहयोग से हुआ है तो अब हिंदू वहां पे सुरक्षित अपने आप को महसूस करेंगे, मुस्लिम तो वहां पे रहेंगे। परंतु बहुत सारे कारण ऐसे हुए जिसकी वजह से ये घुसपैठ की समस्या बराबर बनी रही। सबसे बड़ा कारण जो था आर्थिक था। वो बांग्लादेश तो बन गया पर उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो इतनी बड़ी जनसंख्या को सबको एम्प्लॉयमेंट दे सके, सबको रोजी रोटी की व्यवस्था हो सके। नतीजा ये हुआ कि आर्थिक कारणों से बहुत भारी संख्या में 1971 में बांग्लादेश के बनने के बाद भी यहाँ पलायन होता रहा, लोग आते रहे सीमा पार से और जितने बॉर्डरिंग स्टेट से वहां पे बढ़ते गए। इस समस्या से सारी सरकारें अवगत थी। आपको याद होगा कारगिल युद्ध के बाद 4 टास्क फोर्सेस बनी थी बॉर्डर की समस्या देखने के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी की, डिफेंस की, इंटेलिजेंस की, और चारों टास्क फोर्स बड़े हाई पावर्ड बॉडीज थी। इसमें एक बॉर्डर मैनेजमेंट वाली जो बॉडी थी वो माधव गोडबोले उसका नेतृत्व कर रहे थे, जो भारत सरकार के गृह सचिव थे और बड़े योग्य आईएएस अधिकारी थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो अगस्त 2000 में प्रस्तुत की और उस रिपोर्ट में ये लिखा कि हर वर्ष करीब 3 लाख बांग्लादेशी भारत में घुसपैठ कर रहे हैं और इस समय वर्तमान में 2000 में उनकी संख्या 1,50,00,000 लाख है। ये 2000 की बात है, उसके बाद भी बढ़ता ही रहा होगा। आज की तारीख में 3 करोड़ हो गया हो, 3.5 करोड़ हो गया, कुछ कहा नहीं जा सकता। अलग अलग समय पे भारत सरकार ने इसका अलग अलग एस्टिमेट दिया है। 2001 में एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बना था। ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने चारों टास्क फोर्सेज के रिपोर्ट को इवेल्युएट किया था, उसका आकलन किया था और इन्होंने भी बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा था कि इतनी बड़ी संख्या में घुसपैठियों को होना देश की सुरक्षा, सामाजिक सौहार्द और अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा खतरा है। फिर बाद में आ जाइए 2005 में सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला गया, सोनोवाल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस था एक 2005 में। उसमें उन्होंने कहा था कि दिस इज ए डेमोग्राफिक एग्रेशन और एक्सटर्नल एग्रेशन में इसको उन्होंने क्लासिफाई किया था कि एक्सटर्नल एग्रेशन है ऑन इंडिया और कहा था इसके लिए भारत की संप्रभुता, अखंडता और आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो ये समस्या आज से नहीं, बहुत पहले से चली आ रही है। और अगर आप और पहले जाना चाहें तो 1998 में जब जनरल सिन्हा आसाम के राज्यपाल थे तो उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को 8 नवंबर 1998 में एक रिपोर्ट भेजी थी जिसमें लिखा था कि असम में जो घुसपैठ हो रही है उससे जनसंख्या में जो परिवर्तन हो रहे हैं, हो सकता है कि कालांतर में मतलब बहुत कुछ वर्षों बाद बांग्लादेश ये मांग करे कि असम के जो सीमावर्ती मुस्लिम बाहुल्य प्रदेश है इन्हें बांग्लादेश में मिला दिया जाए क्योंकि ये मुस्लिम मेजोरिटी डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं। तो ये तो स्थिति है, ये आज से नहीं कम से कम 1998 से बराबर चेतावनी हमको मिल रही है। अब 26-27 साल हो गए हैं, वर्तमान सरकार को इस बात का श्रेय तो हम देंगे कि इन्होंने इस समस्या की नोटिस ली है और मोदी जी ने अपने इंडिपेंडेंस डे के स्पीच में कहा है कि एक डेमोग्राफिक कमीशन बनाएंगे तो इस समस्या को गंभीरता से उसको स्टडी करके अपने रिकमेंडेशन देंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई अवसरों पर कहा है कि घुसपैठिए राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है।
0: जब डेमोग्राफी परिवर्तन होता है, सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी में परिवर्तन होता है, तब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा होता है। देश की एकता, अखंडता और प्रगति के लिए ये संकट पैदा, सामाजिक तनाव के बीज बो देता है और कोई देश अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता है, दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता है। तो हम भारत को कैसे कर सकते हैं? हमारे पूर्वजों ने त्याग और बलिदान से आजादी पाई है, हमें स्वतंत्र भारत दिया है। उन महापुरुषों के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम हमारे देश में ऐसी हरकतों को स्वीकार न करें, उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और इसलिए मैं आज लाल किले की प्राचीर से कहना चाहता हूं, हमने एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है। इस मिशन के द्वारा ये जो भीषण संकट नजर आ रहा है, भारत पे मंडरा रहा है जो संकट है, उसको निपटाने के लिए तय समय में सुविचारित सुनिश्चित रूप से अपने कार्य को करेगा, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं।
1: जी हाँ, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 को उच्च स्तरीय जनसांख्यिकी मिशन की घोषणा की थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 सितंबर 2025 को इस प्रस्ताव को मंजूरी दी और अब न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नवेलकर सेवानिवृत्त समिति के अध्यक्ष होंगे। जनगणना आयुक्त के अतिरिक्त 3 विशिष्ट विशेषज्ञ श्री दुर्गा शंकर मिश्रा सेवानिवृत्त IAS, श्री बालाजी श्रीवास्तव सेवानिवृत्त IPS और डॉक्टर शमिका रवि समिति के सदस्य होंगे और गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव भी समिति के सदस्य सचिव होंगे। ये समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। आवश्यकता पड़ने पर गृह मंत्रालय समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ा सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 15 अगस्त 2025 को घोषणा की थी उच्च स्तरीय कमेटी की, अब उसका गठन हो गया है और घुसपैठियों के बुरे दिन की शुरुआत भी इसी के साथ हो गई है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: भारत सरकार ने ये तय किया है कि हम न केवल घुसपैठ को रोकेंगे, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर निकालेंगे और हमारी जनसांख्यिकी में अकृत्रिम बदलाव नहीं होने देंगे। ये जो जनसांख्यिकी का बदलाव करने का षड्यंत्र है, इसको सीमा सुरक्षा बल ने रोकना है। और आज मैं बड़ी शांति से, निश्चिंत मन से आपको कह रहा हूं कि अब त्रिपुरा, आसाम और पश्चिम बंगाल तीनों जगह ऐसी सरकारें हैं जो नीतिगत रूप से मानती है कि देश में घुसपैठ नहीं होनी चाहिए।
1: प्रफुल्ल जी, आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि सीमावर्ती जिलों और देश के कुछ चुनिंदा महानगरों में अचानक आई इस जनसांख्यिकी बदलाव के संकेत जो मिल रहे हैं, क्या आपको लगता है कि सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने को ये प्रभावित कर रहा है?
4: जी निश्चित, वैसे तो ये अचानक नहीं आया है, लेकिन समस्या के रूप में अचानक उसको अभी देखा जा रहा है। जैसे हमने हाल ही में देखा नोएडा में अचानक से एक

0: इरप्शन हुआ मूवमेंट के रूप में, और बहुत सारे सोसाइटीज में क्रिमिनल एक्टिविटीज में जब भी नाम आता था तो शुरू में इसके बारे में चर्चा जरूर होती थी लेकिन कोई एक्शन नहीं होता था। हमको ये ध्यान में रखना चाहिए, अभी IMDT एक्ट 1983 में बना, उस एक्ट का नाम ही था इलीगल माइग्रेंट्स डिटर्मिनेशन बाय ट्रिब्यूनल। इसका मतलब पहली बार तो समस्या उस समय से शुरू कम से कम मानी गई कि इलीगल माइग्रेंट्स है। अब इसमें दो तरीके के अलग अलग थे, एक जो 1971 से पहले या 1971 के बाद, फिर 1990 के दशक में भी 92 के बाद खास करके अयोध्या के आंदोलन के रिएक्शन में वहां पे जो मंदिर गिरा गया, और केवल हिंदू ही नहीं हिंदू बुद्धिस्ट वहां की सो कॉल्ड जिनको हम माइनॉरिटीज बांग्लादेश के संदर्भ में कह सकते हैं, ऐसे लोग भारत में उनको शरण लेनी पड़ी जिनके लिए CAA जैसा प्रावधान करना पड़ा। लेकिन दूसरा एक बहुत बड़ा वर्ग था जिसने इलीगल इमिग्रेंट्स की या इलीगल माइग्रेशन की एक बहुत बड़ी इकोनॉमी इसके आधार पर खड़ी कर दी। प्रकाश सिंह जी ने जैसे बताया कुछ कारण तो पर्यावरणीय कुछ कारण आर्थिक भी रहे होंगे, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं आप यदि इंटरनेशनल इंडेक्स निकाल लो तो बहुत सारे पैरामीटर्स में असम के सीमावर्ती जिले या बंगाल के सीमावर्ती जिले उनकी तुलना में बांग्लादेश की इकोनॉमी उस समय बहुत अच्छा कर रही थी। तो ऐसे में उनको क्या माइग्रेट होने की जरूरत पड़ी? मुझे लगता है कि इसके पीछे आर्थिक और पर्यावरणीय एनवायरमेंटल कारणों की वजह से, क्योंकि कुछ हिस्से ऐसे हैं बांग्लादेश के जहां पे बाढ़ की स्थिति आती है और वहां से माइग्रेशन होता है, लेकिन मुझे लगता है कि इसके पीछे एक सोची समझी राजनीति थी, एक सोची समझी रणनीति भी थी। काउंटरफिट करेंसी का एक बहुत बड़ा नेटवर्क, जब कालियाचक की पुलिस चौकी को जलाया गया था बंगाल में तो उस समय उजागर हुआ था, ये साफ साफ दिखाता है। या इलीगल जो आर्म्स का ट्रेडिंग है उसका एक इंपॉर्टेंट रूट रहा है, ड्रग ट्रैफिकिंग का ये एक इंपॉर्टेंट रूट रहा है। यही रास्ता है जहां म्यांमार से बांग्लादेश में गए हुए रोहिंग्या रेफ्यूजीज भी सीधे आकर उसी रूट से कोई जम्मू कश्मीर तक कोई हैदराबाद तक पहुंच गया। वो यदि रेफ्यूजी थे तो वो वहीं पे शरण ले सकते थे, उनको जम्मू कश्मीर तक जाने की क्या जरूरत थी? किसने पहुंचने के लिए उनको मदद की? उनके कार्ड्स भी बन जाते थे वहां, बॉर्डर क्रॉस करने से पहले उनको सारे आधार कार्ड और डॉक्यूमेंट्स बनाने की प्रक्रिया एक चलाने का प्रयास शुरू हुआ, और उसके बहुत सारे नेटवर्क भी भारत के अन्य शहरों से एक्सपोज हुए। क्या हुआ दुर्भाग्य से 1980 के बाद, मुझे याद है उस समय ममता बनर्जी का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट पार्लियामेंट में था 2005 में शायद, और उस समय वो लेफ्ट गवर्नमेंट को और बुद्धदेव भट्टाचार्य को घेर रही थी, और उस समय वो पूछ रही थी कि कब तक इन इलीगल माइग्रेंट्स को वोट बैंक बनाकर अपने लिए पोसोगे। दुर्भाग्य से वही ममता बनर्जी बाद में वही नीति आगे बढ़ाने लगी, तो सामाजिक ताना बाना बिगड़ता है, वहां की सांस्कृतिक स्थिति खराब होती है, वहां के रिसोर्सेस पर अतिरिक्त भार पैदा होता है और ये इलीगल एक्टिविटीज को बढ़ावा भी मिलता है। तो एक समग्र दृष्टि से आंकड़े अलग अलग होंगे, क्वेश्चन ये है कि पहली बात किस कारण से इसको बढ़ावा मिला, दूसरा उसको रोकने की, तीसरा जो भारत में आ गए हैं उनको आइडेंटिफाई करने की। तो डिटेक्शन इज द फर्स्ट स्टेज, एक्सेप्टेंस एंड डिटेंशन जब तक डिटेक्ट नहीं होंगे उसके बाद तो बाकी सारी प्रोसेस आएंगी कि उनको वोटर्स लिस्ट से डिलीट करना है या डिपोर्ट करना है, ये तो बाद की स्टेज है। उनको वर्क परमिट्स भी दिए जा सकते हैं, लेकिन कम से कम आइडेंटिफाइड हो कि
1: जी
0: विदेशी
1: बिल्कुल
0: मूल का नागरिक है, बिना पासपोर्ट के आया है और हमारे पास उसका एक ठोस डेटा है। और पूरे विश्व भर में ये होता है, उसमें भारत को अलग से कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। हमने यदि बांग्लादेश और पाकिस्तान ये दो अलग अलग बॉर्डर्स पार्टीशन के बाद एक्सेप्ट किए हैं तो वैश्विक नियमों के अनुसार उनको भारत में आना है तो वीजा लेकर ही आना चाहिए, लीगल तरीके से ही आना चाहिए, इलीगल इन्फिल्ट्रेशन उसका रास्ता नहीं हो सकता। तो इसके नेटवर्क को डिसमेंटल करना ये राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक सांस्कृतिक आधार पर भी एक महत्वपूर्ण विषय है, और मुझे लगता है आने वाले समय में ये जो समिति बनी है वो उस दिशा में 1 साल के अंदर समग्र रिपोर्ट भी देगी और इसके आधार पर नीति भी बनेगी।
1: जी हाँ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा है कि शरणार्थी और घुसपैठियों को अलग अलग तरह से देखना चाहिए क्योंकि दोनों के साथ अलग तरह की चुनौतियां हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: शरणार्थी और घुसपैठिया दोनों को एक पेज पर रखकर नहीं सोचना चाहिए। जो हमारे संविधान को जानते हैं, जो हमारे इतिहास को जानते हैं, हमारे देश की राजनीतिक इतिहास को जानते हैं, उन्होंने कम से कम ये गलती नहीं करनी चाहिए। हमारा संविधान बहुत स्पष्ट है, घुसपैठ कर आते हो, अलग अलग उद्देश्यों से आते हो तो आपको

0: जरूर घुसपैठे का लेबल लगेगा और वो लगाना चाहिए शासन में। फिर कुछ लोग दलील करते हैं कि अगर वो भारत में ही रहना चाहते हैं तो हम क्यों सीमित करते हैं, कुछ सीमित नहीं करते हैं। इसके लिए भी कानून है, किसी भी धर्म का व्यक्ति एप्लीकेशन करे और एप्लीकेशन करके वैध तरीके से पासपोर्ट लेकर वीजा लेकर आए, हम उनके क्रेडेंशियल देखकर उनको नागरिकता देंगे, ये रास्ता खुला ही है। मगर आप अवैध तरीके से घुसपैठ करोगे तो सीमाएं पोरस नहीं हो सकती, सीमाओं से घुसपैठ नहीं होनी चाहिए और उनको संभालना भी चाहिए।
1: प्रकाश जी, चूंकि इन चुनौतियों को आपने काफी करीब से देखा है और अक्सर देखा जाता है कि सीमा पार करने के बाद जो घुसपैठिए हैं वो स्थानीय आबादी में घुल मिल जाते हैं, सुरक्षा बलों और स्थानीय राज्य पुलिस या खुफिया एजेंसियों के बीच जो तालमेल है उसको आप कैसे देखते हैं इस समस्या के निराकरण में?
2: देखिए, ये तालमेल तो बहुत जरूरी है, पर मेरा अपना अनुभव यह है कि जो सिक्योरिटी एजेंसीज है अगर वो डिटरमिंड है तो इसका बहुत तरह से उपाय है। मैंने एज IGBSF पंजाब कुछ ऐसा काम किया है जिसको 25 साल तक तो उसको गोपनीय रखा मैंने, उसके बाद उसकी किताब में मैंने खोल के रख दिया। बहुत सारे भारी बांग्लादेशी जो थे, भारी मुसलमान बांग्लादेश से चलते थे और वो पंजाब में आ जाते थे और पंजाब में गुरुद्वारों में लंगर खाते थे, फिर जब उनको मौका मिला तो बॉर्डर पार करते थे। अब मेरे जाने के पहले BSF क्या करती थी, उसको बॉर्डर पे रोकती थी, उनको पंजाब पुलिस को हैंडओवर करती थी, पंजाब पुलिस 2-4 दिन रखते थे, उसके बाद कहते थे हम आतंकवाद से लड़ें कि इनको कलकत्ते पहुंचाएं, ये छोड़ दो इनको, फिर थोड़े दिन बाद फिर वो वापस जा रहे हैं। तो मैंने अपने जिम्मेदारी पे बिना किसी होम मिनिस्ट्री के सैंक्शन के चिदम्बरम साहब से जब मैंने पूछा तो उनका यू विल बी डूइंग दिस एट योर ओन रिस्क, आई कैन नॉट परमिट दैट ऑफिशियली। मैंने अपने कहा जितने लोग हैं इनको अपने BSF के कैंप्स में रात भर रखो और जब अंधेरी रात हो तो इनको सीमा पार से इनको पाकिस्तान भेज दो। मैंने कम से कम 25-30 हज़ार आदमी तो भेज दिए। इसका उपाय हर आदमी अपने लेवल पे काम कर सकता है। मैंने पर इसका ढिंडोरा नहीं पीटा, कोई इनाम नहीं मांगा, इसका ढोल नहीं बजाया, चुपचाप ये काम हो गया। फिर 25 साल बाद मैंने कहा कि मैंने इस तरह का काम मैंने किया था। पर यह है कि अभी भी इस समस्या का देखिए कुछ निदान हमें ढूंढना पड़ेगा। कुछ सुझाव तो गोडबोले साहब ने अपने कमेटी की रिपोर्ट में दे रखा है, मैं कहूंगा कि उस रिपोर्ट को फिर से अध्ययन किया जाए सरकार द्वारा, और जिन समस्याओं के लिए ये डेमोग्राफी कमीशन बन रहा है उन समस्याओं पे गोडबोले साहब ने बहुत गहन चिंतन किया है। इसके अलावा देखिए अभी जैसे प्रफुल्ल जी ने कहा उनको हमें डिटेक्ट करना है, आइडेंटिफाई करके उसके बाद उनको डिपोर्ट करना है। अब डिपोर्टेशन में दिक्कत आ सकती है, बांग्लादेश उसको नहीं मानेगा तो उसका क्या करना होगा ये हमें बाद में देखेंगे। पर अगर मान लीजिए एक संख्या कोई आपने रखी है जो होल्डिंग सेंटर्स बनाए हैं, उनको कहिए कि भाई अगर तुम हिंदुस्तान में रहना है तो हम तुम्हें रहने देंगे पर तुम्हें अपना सिटीजनशिप कार्ड या आधार कार्ड तो सरेंडर करना पड़ेगा और तुम्हें एक बांग्लादेश का एक कार्ड दिया जाएगा कि तुम बांग्लादेश के नागरिक हो, इस देश में तुम्हें 2 साल रहने की और काम करने की इजाजत दी जाती है, 2 साल बाद फिर हम इसको रिव्यू करेंगे कि तुम्हारा क्या किया जाए। और पर इन आदमियों को जिनको ये बांग्लादेश का कार्ड दिया जाता है ये हमारे आई कार्ड से रंग में फर्क होना चाहिए, केवल कार्ड को देखकर ही मालूम हो जाए कि ये बांग्लादेश का ये आदमी, और इस आदमी को 2 कंडीशन होनी चाहिए कि तुम हिंदुस्तान में रह सकते हो और अपनी जीविका उपार्जन कर सकते हो परंतु तुम वोट नहीं दे सकते और कोई अचल संपत्ति नहीं खरीद सकते। ये 2 कंडीशन उस पर इम्पोज की जाए और उसको सख्ती से लागू किया जाए कि मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं खरीदोगे और तुम्हारा नाम इलेक्टोरल लिस्ट में नहीं होगा। तो इसमें हमें थोड़ा ह्यूमैनिटेरियन कंसिडरेशन भी रखना पड़ेगा और कालांतर में मैं कहता हूं कि इस पे हमें बांग्लादेश से सख्ती से कहना पड़ेगा, देखिए आपके अभी भी हमारे पास 2.5 करोड़ 2 करोड़ जितना भारत सरकार का आकलन हो इतने आदमी है, या तो आप इन्हें वापस लीजिए या इसके बदले में हमें जमीन दीजिए, और वो जमीन हम मांगे ठीक चिकन नेक के अगल बगल रंगपुर डिवीजन में मांगे, हमारा चिकन नेक की समस्या भी हल हो जाएगी और इन आदमियों को हम वहां बसाएं या जहां भी बसाएं, पर हम कहीं इतने आदमियों को रहने के लिए इतने वर्ग फुट हमें जमीन चाहिए, इतनी जमीन आपको देना पड़ेगा, तो सख्ती तो करनी पड़ेगी, या तो इनको वापस लो, तो एक स्ट्रिक्ट लाइन ऑफ एक्शन लेना पड़ेगा हमें और उसकी भी शायद नौबत कालांतर में आएगी। पर यह है कि इस समस्या का हमें निदान ढूंढना है वरना ये तो हमारे ऊपर बोझ है आज की तारीख में।
1: जी प्रफुल्ल सर, आपसे ये समझना चाहेंगे कि जो अवैध रूप से जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं जब स्थानीय श्रम बाजार यानी लेबर मार्केट में शामिल होते हैं तो रोजगार, सब्सिडी, राशन और स्वास्थ्य सेवाओं जैसे सीमित सरकारी संसाधनों पर इसका जो असर पड़ रहा है वो एक राज्य सरकार और केंद्र सरकार के लिए चुनौती है और वो कितनी गंभीर समस्या बनते जा रही है भारत जैसे देश में जहाँ की आबादी 140 करोड़ से ज्यादा है।
3: देखिए, आज की भाषा में जैसे कहा जाता है कि डेमोग्राफी इज डेस्टिनी, और डेमोग्राफी इज डेस्टिनी ये मोर रिलेवेंट हो जाता है जब आपकी डेमोक्रेसी हो, क्योंकि उस डेमोक्रेसी में आपको सरकार चुनने का भी अधिकार मिल जाता है और उस सरकार से दिए हुए योजनाओं का लाभ लेने का भी। मैं उस पर आऊंगा लेकिन उससे पहले और एक बिंदु मैं श्रोताओं के लिए स्पष्ट कर देना चाहता हूं।
1: जी,
3: 1983 में जो IMDT एक्ट बना, जनरल सिन्हा की रिपोर्ट में उस पर बहुत डिटेल में ये दिया था और वेंकैया नायडू उस समय मंत्री थे, मुझे स्मरण है, शायद ठीक बता रहा हूं, तो उन्होंने पार्लियामेंट में उसको लेकर स्टेटमेंट भी दिया था, गोडबोले कमेटी ने भी उसका रेफरेंस लिया था। आईएमडीटी एक्ट ने एक बहुत बड़ा लूपहोल था। आईएमडीटी एक्ट में जो इलीगल व्यक्ति जो आया है वहां से, उसको अपनी नागरिकता प्रूव करने का कोई भी बंधन नहीं था। जो कंप्लेन उसके विरोध में करेगा कि ये बाहर से आया हुआ है और ये भारत का नागरिक नहीं है, उस पर ओनस था कि वो ये प्रूव करे कि ये भारत का नहीं है। और ऐसे में भारत में स्वाभाविक रूप से मानसिकता होती है, और इसने भारत में कॉम्पिटिटिव वोट बैंक पॉलिटिक्स को जन्म दिया। शायद मुझे पता नहीं है जानबूझकर रखा गया था उस समय का, उसका क्या लॉजिक था, क्या कारण थे, लेकिन इसने इस समस्या को बढ़ाया। अब आपने जो पूछा कि सरकार की योजनाएं हो, चाहे वो खाद्यान्न से जुड़ी हुई हो या अन्य योजनाओं का लाभ हो, इन सबके लिए अल्टीमेटली बेनिफिशियरी कौन होता है, जिसका हक ये मारते हैं? भारत का जो गरीब तबका है, उसके अधिकारों का, उनके रिसोर्सेस का एक तरीके से ये इलीगल माइग्रेंट जो है, जो रोजगार के नाम पर या अन्य किसी नाम पर आते हैं, मैं नहीं मानता रोजगार पर, भारत के लोग नहीं जाते क्या रोजगार के लिए बाहर? लेकिन क्या वो इलीगल बाउंड्री क्रॉस करके जाते हैं? बाउंड्री क्रॉस करके जाते हैं तो भी भारत उनको स्वीकार करता है। ऐसी कुछ घटनाएं बाहर के देशों में हुई तो हमने कहा कि भाई हम उनको कोई भारत बढ़ावा नहीं देता है। तो हमको वही नीति हमारे पड़ोसी देशों के बारे में या भारत और नेपाल के बीच में बहुत सारे लोग आते जाते हैं, लेकिन उसके लिए भी एक प्रावधान बना हुआ है, एक आई कार्ड दिखाकर वो आते हैं, वर्क परमिट के नाते यहाँ पे रहते भी है। तो मुझे लगता है इसका जो परिणाम होता है वो स्थानिक संसाधनों पर होता है, सरकारी योजनाओं के लाभ लेने के कारण होता है, राष्ट्रीय सुरक्षा पर होता है, और खास करके असम में जो समस्या आई, स्थानिक संस्कृति, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे जंगलों के, और अभी पूर्वोत्तर के बहुत राज्यों में ही आ रहा है, जहां पे भारत के सामान्य व्यक्ति को भी जाने के लिए एक परमिट लेना पड़ता है, इनर लाइन परमिट जिसको कहते हैं। बांग्लादेशी घुसपैठिए वहां पर आकर बैठ गए हैं, वहां के जंगल संसाधनों का नुकसान कर रहे हैं। तो ये हमारा मल्टीपल रिसोर्सेस का एक तरीके से एक्सप्लॉयटेशन भी है, उन पर स्ट्रेन भी है। तो मुझे लगता है कि ये भी डायमेंशन हमको, जब हम रिलीजियस इम्बैलेंस तो है ही, वो इम्बैलेंस क्रिएट होता है जिसके कारण समाज में एक तनाव पैदा होता है, लेकिन सांस्कृतिक और आर्थिक साधनों के आधार पर भी ये घुसपैठ बहुत बड़ी समस्या सीमावर्ती क्षेत्र में बनी हुई है, जिसके कारण इस समिति का गठन करना पड़ा है।
1: असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने भी कहा है कि बाहर से आए हुए लोग देश की समस्या के साथ साथ असम के लिए भी एक बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
4: आई थिंक चैलेंज हैज बिकम मोर ग्रेव, दैट डेमोग्राफिक पैटर्न इज चेंजिंग फास्ट। टुडे ऑलमोस्ट 40% ऑफ आवर टोटल पॉपुलेशन विल बी फ्रॉम दोज हु हैज कम फ्रॉम बांग्लादेश एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। Legalities apart, today Assamese is marginalized in our own land, our culture is marginalized in our own land, economy is fast shifting to those people who were never associated with our culture and with our history. So the silence continue, but one good thing is that there is a collective spirit today to face the silence, and I am sure that our new generation will fight, will keep on fighting. And God will bless us, we'll survive.
1: प्रफुल्ल जी, आप बहुत समय से भारत के अलग अलग विषयों पर पैनी नजर रखते हैं। ये जो समिति बनी है और प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2025 को लाल किले के प्राचीर से इसकी घोषणा की थी, क्या लगता है कि इस समिति के बनने से क्या कुछ बदलने वाला है निकट भविष्य में?
3: देखिए, मुझे इसमें सबसे बड़ा जो बदलाव लग रहा है बंगाल के चुनाव के बाद, मुझे लगता है एजेंसीज के बीच में कोऑर्डिनेशन से भी ज्यादा इसमें अलग अलग स्टेट्स की कोऑर्डिनेशन की बड़ी समस्या रहती थी। बांग्लादेश से एंटर कर रहे हैं असम में जा रहे हैं, असम से एंटर कर रहे हैं बिहार तक पहुंच रहे हैं या झारखंड तक पहुंच रहे हैं, और ऐसे में फिर एक राज्य दूसरे राज्य पर ये चीज झकेल देता था कि ये तो हमारी समस्या नहीं है, ये तो आपको रोकना है, और फिर ये वहां का राज्य ये केंद्र पर कि ये तो आपको बीएसएफ के लेवल पर हैंडल करना चाहिए, लेकिन बॉर्डर की जो लैंड है वो पोरस रखेंगे, उसको ट्रांसफर नहीं करेंगे बीएसएफ को। तो ये सारा कॉम्प्लेक्स सिनारियो था। आज अभी राजनीतिक स्तर पर मुझे लगता है प्रधानमंत्री ये निर्णय ले पाए, उसमें एक महत्वपूर्ण कारण आज ये है कि इस सीमावर्ती क्षेत्र में झारखंड छोड़कर लगभग सारे हिस्सों में सत्ताधारी दल एक ही है, और या वो एनडीए का हिस्सा है या भाजपा से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे में ये समन्वय ऐसे ही हुआ था नक्सलवादी समस्या के बारे में।

0: तुरंत बॉर्डर क्रॉस करके चले जाते थे, और फिर छत्तीसगढ़ का ये कहता था नहीं मध्य प्रदेश की समस्या है, मध्य प्रदेश वाला कहता था उसने क्राइम तो हमारे यहाँ पे नहीं किया है, वो तो महाराष्ट्र भाग गया है। तो ऐसे में पहली मीटिंग जब की थी गृहमंत्री, मुझे याद है चारों राज्यों के गृहमंत्री और डीजीपी को लेकर मीटिंग की थी। अब ये समन्वय संभव हो पाएगा, केंद्र सरकार ने जब ये समिति बनाई है तो मुझे लगता है समिति एक तो इसका समग्रता से अध्ययन करेगी, पिछले रिपोर्ट्स के आधार पर इसका एक जिसको हम कह सकते हैं एक क्लियर पिक्चर इसके कारण सामने आएगा। दूसरा मुझे लगता है कि इसके समस्या के निराकरण के लिए भी नीतिगत सीधा सीधा एक मुझे लगता है कि क्लियर कट पिक्चर सरकार के सामने भी आएगा कि नीतिगत विषय में इसको आगे कैसे बढ़ाना है, और समन्वय के नाते कौन कौन सी एजेंसी की क्या क्या भूमिका रहेगी, ये भी स्पष्टता इस समिति के गठन के कारण आने की संभावना है। तो आने वाले जैसे शब्द तीन चले डिटेक्ट डिलीट एंड डिपोर्ट, लेकिन मुझे लगता है कि कम से कम डिटेक्शन और आने वाले कालखंड में इसको फिर से और आगे ना बढ़े, ये इलीगल माइग्रेशन ना बढ़े, जो है उनको डिटेक्ट करके क्या करना है वो तो है ही, लेकिन वो ना बढ़े इसके लिए क्या हो, इसके लिए निश्चित रूप से हमको एक नीतिगत दिशा मिलने की संभावना इस समिति से बनेगी, यह मेरा विश्वास है।
1: जी हाँ बिल्कुल, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल अगर होगा तो इस चुनौती से पार पाया जा सकता है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: सिर्फ सीमाओं की सुरक्षा कर हम देश की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते, हमने क्षेत्रीय सुरक्षा का राज्य सरकारों के साथ रहकर चिंता भी करना पड़ेगा और वो जिम्मेदारी का निर्वहन भी करना पड़ेगा। हमारी जिम्मेदारी है कि सीमा से नजदीक 50 किलोमीटर के किसी भी गांव में कोई अवैध निर्माण होता है तो हम सिविल प्रशासन को सूचित कर, कलेक्टर को सूचित करें, एसपी को सूचित करें। हमारी जिम्मेदारी है कि 50 किलोमीटर की बॉर्डर तक के सभी गांवों में जनसांख्यिकी का परिवर्तन हो रहा है, कृत्रिम परिवर्तन हो रहा है, तो उसके प्रति सजग रहकर राज्य सरकार को आगाह करें।
1: प्रकाश जी, एक और सवाल आपसे समझना चाहेंगे कि 2014 के बाद इस समस्या को लेकर वर्तमान केंद्र सरकार ने बहुत सारी कोशिशें की हैं और उसी दिशा में इस समिति का गठन भी है, कैसे देखते हैं पिछले 12 वर्षों के मौजूदा सरकार के प्रयासों को घुसपैठियों और ये जो डेमोग्राफिकल चेंज है इससे पार पाने की दिशा में?
3: देखिए, समस्या की गंभीरता को समझा गया है, उसको स्वीकारा गया है और उसके निदान के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं, ये तो यहाँ तक तो सार्थक है। अब हमें अपनी लॉ एनफोर्समेंट मशीनरी से ये काम लेना पड़ेगा, और ये काम मतलब वर्तमान सरकार लेने में सक्षम है। उन्होंने नक्सलियों को कहा कि हम मार्च 2026 तक खत्म कर दें, उन्होंने खत्म कर दिया, ठीक है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इस समस्या के लिए भी उनको कुछ टारगेट रखना पड़ेगा और इसकी मंथली ईयरली या क्वार्टरली कुछ इसकी मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। हम पहले ये एस्टिमेट बनाए कि हर स्टेट में कितने कितने बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, उसके बाद हर स्टेट में कहें कि इस महीने में आपने इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की, इनको कितने को डिटेक्ट किया, कितने होल्डिंग सेंटर में है, किनको डिपोर्ट करने के लिए क्या कार्रवाई की, एक रेगुलर मॉनिटरिंग होनी पड़ेगी। इसमें सख्ती बहुत जरूरी है, मैं समझता हूँ कि वर्तमान सरकार करने में सक्षम है, इन्होंने नक्सल समस्या पे विजय पा ली है, तो इस समस्या का भी ये समाधान प्रभावी ढंग से ढूंढ सकते हैं, इसके लिए सख्ती करनी पड़ेगी और मैं समझता हूं कि सरकार ये सख्ती कर सकती है।
1: प्रफुल्ल जी, कार्यक्रम के अंत में एक और सवाल बहुत संक्षेप में आपसे समझना चाहेंगे कि आज के दौर में जब सोशल मीडिया का जमाना है तो सोशल मीडिया और फेक डॉक्यूमेंट नेटवर्क, आपको क्या लगता है ये घुसपैठ को बढ़ाने में कितनी भूमिका निभा रहे हैं?
0: देखिए, मैंने जैसे पहले कहा कि इसकी जुड़ी हुई एक इकोनॉमी है, ये केवल फेक डॉक्यूमेंट नेटवर्क नहीं है, ये फेक करेंसी नेटवर्क है, ये ड्रग ट्रैफिकिंग का नेटवर्क है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का नेटवर्क है, इसमें आर्म्स के ट्रैफिकिंग का नेटवर्क है और एक क्रिमिनल सिंडिकेट के रूप में ये काम करता है। तो मुझे लगता है कि ये निश्चित रूप से जिम्मेदार है, और आज के जमाने में सोशल मीडिया इसको एम्पलीफाई करता है ह्यूमैनिटेरियन के नाम पर। जैसे ही ऐसी कुछ केसेस होती है, डिपोर्टेशन के लिए कुछ बात बढ़ती है, तो सोशल मीडिया में एक्टिविज्म चलता है, राजनीतिक कारणों से भी चलता है, कुछ धार्मिक कारणों से भी चलता है, कुछ इंटरनेशनल कॉन्स्पिरसीज के द्वारा भी चलता है। तो ऐसे में एक बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी भी देश के लिए किसी भी इलीगल माइग्रेंट्स के विरोध में सख्त कदम लेना। और आज जब टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग एक अच्छा उपयोग हो सकता है गवर्नेंस में आइडेंटिफाई करने के लिए, चाहे सीसीटीवी कैमरेज के रूप में, चाहे सेंसर्स के रूप में, हम बहुत सारी चीजों का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ये सिंडिकेट्स डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग करना, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो मुझे लगता है कि जब अननेचुरल डेमोग्राफिक चेंज के बारे में सोचा जाएगा तो इसके टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, मीडिया एक्टिविज्म के एस्पेक्ट्स और अन्य

0: जो इससे जुड़े हुए सिंडिकेट और क्रिमिनल एस्पेक्ट्स है, इस पर भी मुझे लगता है ये समिति सोचेगी भी और उस पर कुछ उपाय योजना भी सरकार को बताएगी।
1: सीमाओं की सुरक्षा सिर्फ जवानों की जिम्मेदारी नहीं होती, ये पूरे राष्ट्र की सामूहिक चेतना का विषय है। जनसंख्या परिवर्तन और अवैध घुसपैठ जैसे मुद्दे केवल आंकड़ों की बहस नहीं है, इनका सीधा संबंध देश की सामाजिक स्थिरता, आर्थिक संसाधनों और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से है। आज की चर्चा ने यह साफ कर दिया है कि चुनौती केवल सीमा पार से आने वालों की नहीं, बल्कि उस सोच की भी है जो राष्ट्रीय हित से ऊपर व्यक्तिगत और राजनीतिक लाभ को रख देती है। जरूरत है सजग नीति की, मजबूत सीमा प्रबंधन की और सबसे बढ़कर जागरूक समाज की। प्रफुल्ल केतकर जी आपका, प्रकाश सिंह जी आपका, आकाशवाणी के इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद, नमस्कार।
1: इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: चर्चा का विषय है।
4: हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं, 10 बजे हैं। शास्त्रीय संगीत इस कार्यक्रम में आज आप सुनिए डॉक्टर प्रभात टे का गायन, राग मधुवंती में ख्याल गायन, तबला संगति मुकुंद राजदेव की, हारमोनियम पर है अनंत राणे, तानपुरा पर रागनी और छाया साकरे।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे डॉक्टर प्रभात त्रिका गायन। ये प्रसारण आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से किया जा रहा था। 10:30 हुए हैं। मन भावन, सभी सुनने वालों को हमारा नमस्कार। पहला गाना सुनिए, हरिहरन कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों में, फिल्म परदेश से। सुनना चाह रहे हैं छत्रपति संभाजीनगर से राजेश पाटिल, राजदीप राशि इनके परिवार के सदस्य। घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका गुनगुन, सनप्रीत हेमेंद्र, सनमति पंचोलिया। दतरेगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार झावेंद्र इनके परिवार के सदस्य। विजयनगर से डॉक्टर अपूर्वा तिवारी और इनकी बहुत सारी सखियां। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश मेंडी, शाइना, निवान शर्मा।

जबलपुर कैंट से लखन राही, लक्ष्मी अंकिता सृष्टि, किशनपुर से आलम दिलकर शवाना इनके परिवार के सदस्य, सागर नेपाल पहले से तिलक राणा इनके परिवार के सदस्य, विश्वविद्यालय रोड सागर से चंद्रेश गौहर और इनके परिवार के सदस्य, तीन महुआ खापरखेड़ा जिला रायसेन से तुलसीराम साहू, मुकेश कुमार साहू, हेमंत कुमार साहू, आरती रागनी साहू इनके परिवार के सदस्य, यंग रेडियो लिसनर्स खोआ मंडी जवाहरगंज जबलपुर से जिनेन्द्र जैन, महेंद्र सत्येंद्र अरुण चौरसिया, आप सभी सुनना चाह रहे हैं लता मंगेशकर सुरेश वाडकर को फिल्म प्रेम रोग से।

फिल्म नमक हलाल से सुनिए। आशा भोसले, बप्पी लहरी और साथियों को सुनना चाह रहे हैं पटियाला से मुकेश बत्ता नीलम, इनके परिवार के सदस्य, पुणे से प्रियंका, वरूड से मीनाक्षी, इनके परिवार के सदस्य। इसी गीत को सुनना चाह रहे हैं बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा, हैप्पी, गाजीपुर से प्रतीक, प्रांजल।

किसे नहीं मरने दोगी? ये क्या हो गया तुम्हें है? तुम्हारे माथे पर पसीना क्यों? किसकी मौत के बारे में सोच रही थी? मेरी? अरे मेरी जिंदगी और मौत तो अब तुम्हारे साथ है, और प्यार करने वाले मौत से डरा नहीं करते।

भोसले को सुना चाह रहे थे बीडी से राजेश, सोनी, कंचन, गायत्री, यहीं से वैष्णवी, चंचल, धीरज, बेमेतरा से पूर्णिमा, सारथी, यहीं से आरती भाविया। इसके साथ ही ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देते हुए कहा कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में आज 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने राज्यों से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं जैसे कचरा प्रसंस्करण और गोवर्धन संयंत्रों को तेजी से पूरा करने को कहा। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपये लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के अंतर्गत SIR कराने का अधिकार रखता है। एक रिपोर्ट।
1: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया है। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में इस निर्णय को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को पूर्णतः संविधान सम्मत स्वीकार कर दिया है। राजनीतिक पराजय के बाद अब यह विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी की संवैधानिक धरातल पर भी यह पराजय हुई है।
0: असम विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया। इसके साथ ही असम ऐसा कानून पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य बन गया है। इस विधेयक को विधानसभा के पहले सत्र में सोमवार को पेश किया गया था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट UG पेपर लीक मामले में आज 3 और लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का तीसरा राज्य होगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दिया जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है। राष्ट्रपति ने ईद उज जुहा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि यह पर्व समर्पण, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 2 से 3 दिनों तक मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में लू की स्थिति बनी रहेगी। विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल लू का रेड अलर्ट जारी किया। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा

ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी कल लू का प्रकोप बना रहेगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कई भागों में भीषण गर्मी और लू के मद्देनजर जरूरतमंद वरिष्ठजन और बच्चों का विशेष ध्यान रखने की अपील की है।